0: छोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 44 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड़नी

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एवॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है और साथ में वो दूर तक एट दी अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है। एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना के युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए, इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानेक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LRLACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानेक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानेक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसके एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मानेक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA and VP को वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है, जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है, जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit spectrumtv.com.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 1999 का करगिल युद्ध और देश के वीर जाबाजों की वो जाबाजी जिसने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। करगिल विजय की इसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा और देश के अमर शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय सेना ने एक बेहद खास और जज्बे से भरे ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की है। सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक तोलोलिंग पीक के लिए एक स्मारक अभियान का आयोजन किया, जिसे 19 जून को द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग टीम में उन्हीं सैन्य टुकड़ियों के जवान शामिल हैं जिन्होंने 1999 की बैटल ऑफ तोलोलिंग में दुश्मन को मात देते हुए इस चोटी को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। चोटी पर पहुंचकर जाबाजों ने एक बार फिर से पूरी शान से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का ये दूसरा शतक लगाया तो रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में शानदार 79 रन जोड़े और इसके अलावा मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने करियर का पहला फाइफर यानी 5 विकेट छटके। और चेपॉक में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए 219 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने 28.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

2500 जगहों पर योग का जश्न मना रहा भारत। कोलकाता में दिखा योग दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह। लेजर लाइट शो के जरिए आसमान में उकेरी गई योग दिवस की तस्वीर, रोशनी से जगमग हुआ पूरा इलाका। योग दिवस को लेकर विशाखापट्टनम में दिखा जबरदस्त क्रेज। 40 नौसैनिकों ने एक साथ पानी में किया योगा। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय की होगी कमिश्निंग। आज देशभर में होगा नीट का री एग्जाम। दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन। परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त में सफर करने की भी सुविधा। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह। नीरज चोपड़ा को मिला बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब। PT उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुंबई में NCP नेता सुप्रिया सूले की बेटी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर पहुंचे, राहुल गांधी, उद्धव फडणवीस समेत भी कई हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई।

नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिलदेव, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज दुनिया भर में लोग बड़े ही उत्साह और जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज 12वां साल है जब भारत की पहल पर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आज दिन को खास बनाने के लिए देश और दुनिया में लोग कई दिन पहले से योगाभ्यास शुरू कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। भारत में आज का दिन स्पेशल तरीके से मनाया जाता है, यूं कहें कि सेलिब्रेट किया जाता है। आज देश भर में योगाभ्यास के लिए लाखों कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे जिनमें करोड़ों की संख्या में लोग भी शामिल होने वाले हैं। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वामी रामदेव के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से हजारों लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 35,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। रेड रोड पर योग दिवस कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी वो भी लगातार आपको जीएनटी पर हम दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कॉमन योग प्रोटोकॉल, जिसको CYP कहा जा रहा है, उसकी अगुवाई करेंगे, जो लगभग 80 मिनट तक चलेगा। ये स्वास्थ्य और भलाई के लिए योग को एक वैश्विक आंदोलन बनाने की भारत की कोशिश का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। इसके साथ ही सिर्फ कोलकाता में ही आज 10 लाख लोगों के योग कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी अपील की है। रेड रोड पर आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने वालों का आयुष मंत्रालय की ओर से आयुष आहार देने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। थीम की बात कर लेते हैं तो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर एंटी एजिंग या हेल्दी एजिंग भी इसको कह सकते हैं, जो स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए। और अगर आप जवान रहना चाहते हैं, एजिंग को आप स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग को आपको अपनाना होगा। योग को जीवन भर की आदत के तौर पर अपनाने के महत्व पर आज के दिन जोर दिया जाता है। देश भर में योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन की बात की जाए तो योग संगम पोर्टल पर योग दिवस कार्यक्रम के लिए 6 लाख से ज्यादा संस्थाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिला है। आज के दिन देश की सांस्कृतिक विरासत और योग का संगम भी देखने को मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से देश भर की 100 मशहूर जगहों पर योग के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 12 प्रमुख जगहों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिन 12 महत्वपूर्ण जगहों पर योग के खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें दिल्ली का लाल किला, हरिद्वार, कोणार्क, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, लेह, हैदराबाद और सिलचर शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से योग के साथ जुड़ने और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग के संदेश को मजबूत करने की अपील भी

0: की है। विदेशों की बात की जाए तो दुनिया भर में योग को लेकर एक क्रेज देखने को मिल रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के समन्वित प्रयासों से दुनिया भर में फैले 210 से ज्यादा भारतीय मिशन आज अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसके जरिए भारत की कोशिश ये है कि लोग योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में पूरी तरह से अभी अपना लें। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं जीएनटी पर, आप भी कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए इस योगा उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, योगा को एक प्रैक्टिस के तौर पर मत देखिए। अगर किसी भी तरह की बीमारी से आप पीड़ित हैं तो अगर योग को आप अपनाते हैं तो इसके माध्यम से आप तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। योगा एक अभ्यास है जो आपकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है, देश के अहम हिस्सों में लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी पर हम दिखाई रहे हैं। योग दिवस की रौनक देखिए सिर्फ देश में नहीं बल्कि आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नजर आएगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी योग को अपनाया जा रहा है, क्योंकि योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, योग दिवस की रौनक देखिए कैसी लगातार बढ़ती जा रही है। और जीएनटी पर योग उत्सव बाबा रामदेव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो कि योग गुरु के रूप में प्रचलित है और लगातार लोगों को एक संदेश लगातार देते आ रहे हैं कि अगर आप योग करते हैं तो आप अपनी जीवन शैली को और भी बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए मत कीजिए बल्कि योग को एक साधना के रूप में अपनाइए, एक संकल्प के तौर पर। अगर आप योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो आपको बहुत बड़े बदलाव अपने जीवन में, सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विजयवाड़ा की तस्वीरें, ये तमाम छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। ये देखिए, छोटी उम्र से ही योगा के अभ्यास को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर आप छोटी उम्र से योग को अपनाते हैं तो फिर आप योग में पारंगत हो जाते हैं। अब देखिए, ये तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाएंगे ही। कोलकाता में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर लोगों का उत्साह कैसा है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता, जो उस जगह पर ही मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में योग करने वाले हैं।
1: इस वक्त हम लोग कोलकाता के रेड रोड में हैं, एक घंटे से करीबन थोड़ा सा ज्यादा वक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आज गुजारेंगे और 12वीं जो योग दिवस का, इंटरनेशनल योग दिवस का कार्यक्रम है, जो मूल कार्यक्रम है, वो आज कोलकाता के रेड रोड में होगा। इसका यहाँ का नजारे थोड़ा दर्शकों को दिखा दे, हजारों की तादाद में लोग अभी से यहाँ पे अपने पोस्चर में बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 6:25 वो समय है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आके पहुंचेंगे और उसके साथ साथ ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका आगाज शुरू हो जाएगा। और ये पहली बार इस भव्य तरीके से योग दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा, पिछले ही महीने जब नया सरकार बनाया पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सरकार, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम इस बार यहां पे करने की जो मांग उन्होंने रखी थी और केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, आयुष मंत्रालय ने। और आपको यहां पे दिखा दें जिस तरह से लोगों का तादाद सुबह से पिछले एक घंटे से लोग यहां पे वेट कर रहे हैं, अभी भी लोग अंदर आ रहे हैं। और देखिए इधर दूसरा साइड हम दिखा देते हैं रेड रोड का, जो मेन इलाका है जहां पे स्टेज बनाया गया है, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है, बहुत बड़ा एक गेट यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे पीएम मोदी की तस्वीर है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का तस्वीर है, और उसके साथ साथ लोग या इस पूरे रेड रोड के जो हिस्सा है वो पूरे खचाखच भरा हुआ इस वक्त दिख रहा है। अभी भी लोग आ रहे हैं लेकिन कहाँ बैठेंगे, ज्यादा जो स्पेस है वो खाली दिखता नहीं है।
0: और चलिए सीधे हमारे सहयोगी पूजा का रुख कर लेते हैं, जो कि विजयवाड़ा में मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं। पूजा, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है पूजा, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे मैं आपके पीछे बैकग्राउंड में देख पा रही हूँ। पूजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
2: स्वर्णम स्वर्णम, अलग विजय
0: चलिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जीएनटी पर भी योग उत्सव लगातार जारी है। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और देश भर में अलग अलग आयोजन भी इस मौके पर किए जा रहे हैं। कोलकाता में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, 6:25 का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, 80 मिनट तक यहां पर योग कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं विजयवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ सुबह 5 बजे से ये तमाम लोग और उनके अनुयायी और तमाम बच्चे जो के साथ लगातार योगाभ्यास करते हैं, वो आप तस्वीरें सुबह से ही देख रहे हैं। तो आज योग दिवस पर आपको बता दें, आप भी एक संकल्प के साथ इस उत्सव को मना सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए दोबारा से रुक कर लेते हैं विजयवाड़ा का। हमारी सहयोगी पूजा वहां पर लगातार मौजूद हैं। पूजा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सुबह से आप तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रही हैं, इस वक्त वहां पर कैसी हलचल है, क्या रौनक है, जरा दिखाइए।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। विजयवाड़ा में मौजूद हूँ, कृष्णा नदी के तट से, विजयवाड़ा से। आज योग का संदेश देश ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि नियमित योग और ना केवल वो शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मानसिक रूप से भी संतुलन ऊर्जा बनाए रखता है। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी उत्साह के साथ यहाँ पर योग का आयोजन किया गया है और अब मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू, और वो भी अब यहाँ पर योग कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और साथ ही स्वस्थ जीवन बनाने की दिशा में इस पूरा आयोजन किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी इस बार विजयवाड़ा में योग दिवस कार्यक्रम का ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर योग की शुरुआत करेंगे। 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और ये 7:30 बजे तक लगभग कार्यक्रम चलता रहेगा। आयोजकों ने दावा ये किया है कि इस बार बहुत ही बड़े स्तर पर यह आयोजन किया गया है, लगभग महाकुंभ जैसी व्यवस्था की गई है। 100 से अधिक प्रकार के योगाभ्यास, प्राणायाम और योग गतिविधियां कराई जा रही है। मेरे पीछे आप आवाज सुन सकते हैं, लोगों की गूंज सुनाई दे रही है मुख्यमंत्री को देखकर। देखिए ये आवाज सुनिए आप, कितने भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। हरिद्वार से हर द्वार तक योग को पहुंचाने का ये आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी भव्य तस्वीरें आप विजयवाड़ा से देख रही है शगुफ्ता। और कई योगासन अभी तक स्वामी जी करवा भी चुके हैं और जिसको फॉलो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से लोगों ने किया है। स्टेज पर आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू जी मौजूद है, बालकृष्ण जी मौजूद है और खुद योग गुरु स्वामी रामदेव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार सुबह 5 बजे से योग करवा रहे हैं। एक तरफ ये भव्य तस्वीरें आप यहाँ विजयवाड़ा में देख रही हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में देश भर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे विजयवाड़ा हो, लेकिन जो भव्य कार्यक्रम कोलकाता में भी हो रहा है शगुफ्ता। और हम ये तस्वीरें आपको विजयवाड़ा से दिखा रहे हैं, यहाँ पर योग गुरु स्वामी रामदेव यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए उनको योग करवा रहे हैं और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी योग शुरू करेंगे। शगुफ्ता
0: पूजा, एक बात बताइए, सुबह से कौन कौन से योगासन बाबा रामदेव करवा चुके हैं और आप कौन कौन से योगासन कर चुके हैं, वो जानने में मैं ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। आपने कहा कि 5 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, प्राणायाम के साथ शुरुआत हुई होगी और आगे बढ़े होंगे बाबा रामदेव, और 7:30 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, आगे किस तरह से बढ़ने वाला है ये?
2: देखिए शगुफ्ता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, अब वो भी यहाँ पर योग करेंगे। सुबह 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और योग गुरु स्वामी रामदेव ने कम से कम 100 से ज्यादा योग कराने का कहा गया है आज इस भव्य आयोजन में, जिसको लेकर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया है, उष्ट्रासन किया गया और साथ ही सूर्य नमस्कार से, क्योंकि योग की शुरुआत हमेशा योग गुरु करते हैं, सूर्य नमस्कार किया गया, उष्ट्रासन किया गया और ओम का उच्चारण भी काफी तेजी से यहाँ पर किया गया है। और देखिए इतिहास भी योग दिवस का काफी बड़ा है, काफी पुराना है। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए,

0: तो ये तस्वीरें देख रही है ना आप शगुफ्ता, कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। कला नृत्य का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और साथ ही योगा तो हर कोई यहाँ पर कर रहा है। शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलन और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने के लिए यहाँ पर योग किया जा रहा है। देखिए इस बार का थीम जो चुना गया है उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि दुनिया भर में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है और इसके लिए इसके साथ ही उम्र से जुड़ी जो स्वास्थ्य चुनौतियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, ऐसे में योग को करना काफी ज्यादा हमारे जीवन में जरूरी है क्योंकि शरीर का चाहे लचीलापन हो, संतुलन बांधना हो, जीवन में बैलेंस बनाना हो, उसके लिए योग बहुत जरूरी है और योग गुरु यहाँ पर इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी को यहाँ पर योग करा रहे हैं और इस बार की थीम भी इसीलिए यही तय की गई है। शगुफ्ता,
1: बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। एक और चीज, क्योंकि आप भी योगा करती हैं, मैं भी योगा करती हूं, तो जो बात हम अक्सर करते हैं ना योग के बारे में वो यही है कि योगा सिर्फ एक व्यायाम नहीं है बल्कि खुद से जुड़ने का भी एक तरीका है, एक माध्यम है जो आपको अपने ही साथ जोड़ने की एक प्रैक्टिस के रूप में इसको आगे बढ़ाता है। लचीलापन आता है, आप बहुत सारी बीमारियों को इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया भी आज इस अमूल्य विरासत का हिस्सा बन रही है और इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रही है। लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। अच्छा पूजा, आप ने बाबा रामदेव जी से भी बात की होगी, तमाम ये जो बच्चे इस वक्त मैं देख पा रही हूँ ये क्या बाबा रामदेव जी के साथ ही आए हैं, उनके ग्रुप का ही ये हिस्सा है जो सुबह से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं?
0: तो कुछ बच्चे यहाँ पर पतंजलि से पहुंचे हुए हैं, मलखम का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, उस पर योग किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें ऐसी भी है, लेकिन हजारों से ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो आंध्र प्रदेश के लोग हैं और वो यहाँ पर योग करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी उन लोगों के साथ योग अभी कुछ देर में करेंगे। और देखिए ये भव्य आयोजन, ये भव्य तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको शगुफ्ता दिखा देती हूँ। योग गुरु है मंच पर और बालकृष्ण जी है और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए शगुफ्ता, योग के फायदे बहुत ज्यादा है। योग गुरु ने योग करते करते योग के फायदे भी बताए कि योग को अपने जीवन में जितना जल्दी आप उतार सकते हैं, अगर आपने अभी तक योग नहीं किया है तो आज से योग की शुरुआत कर दीजिए, आज से अपने जीवन में योग को उतारें। और ये तस्वीरें मैं आपको अब दिखाती हूँ, काफी भव्य तस्वीरें हैं और यहाँ पर म्यूजिक भी आपको सुनाई दे रहा होगा शगुफ्ता। और शगुफ्ता ये तस्वीरें आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो पीछे ये तस्वीरें दिखाए। भव्य तरीके से आयोजन किया गया है, योग गुरु स्वामी रामदेव यहाँ पर नजर आ रहे हैं और देखिए अभी यहाँ पर आपको धुन सुनाई दे रही होगी। जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं ना शगुफ्ता तो अपने आप ही काफी ज्यादा मन करने लगता है थोड़ा थिरकने का, थोड़ा योग करने का। और कुछ इसी तरीके से यहाँ की अद्भुत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल तस्वीरें लगातार देखिए आपको दिखा रहे हैं, विजयवाड़ा की तस्वीरें पूजा लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। दुनिया भर में आपको बता दें 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंच पर खुद बाबा रामदेव मौजूद हैं, उनके साथ ही उनके अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं, पतंजलि पीठ के तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। मलखम करते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से आप इन बच्चों को देख सकते हैं। योग दिवस की इस बार जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वो है योगा फॉर एंटी एजिंग। सिर्फ शारीरिक तौर पर योगा आपको मजबूत नहीं करता बल्कि मानसिक रूप से भी ये आपको मजबूती प्रदान करता है। तमाम जगहों की देश भर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आप भी अगर इस वक्त GNT की स्क्रीन को देख रहे हैं, GNT TV को आप लाइव देख रहे हैं, तो आप भी एक संकल्प के साथ शुरुआत कर सकते हैं आपके आज के दिन की। और ये संकल्प ये होना चाहिए कि हमें अपने जीवन शैली में योगा को ज़रूर शामिल करना है। किसी भी तरह की बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं, किसी भी तरह का रोग आपको सता रहा है तो योगा के माध्यम से, हालांकि योगा जो है आपकी एजिंग को भी स्लो डाउन करता है, लेकिन योगा के माध्यम से धीरे धीरे आपकी तमाम बीमारियां जो हैं उनका भी इलाज आसानी से हो सकता है। शारीरिक तौर से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आप मजबूती प्रदान करते हैं अपने आप को। और देश भर में 100 महत्वपूर्ण जगहों पर योगा के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, वो जैसे जैसे तस्वीरें आगे आएंगी वो भी आपको GNT पर हम लगातार दिखाते जाएंगे। ये चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, विजयवाड़ा से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वाटर योगा, वाटर थेरेपी भी इसको कहा जाता है। आप पानी में फ्लोट कर सकते हैं, पानी के भीतर जाकर भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है वो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अगर आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यूस है तो आप वाटर योगा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो दुनिया भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आधुनिक जीवन की ये लगातार भागदौड़ है जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, जिसमें तनाव, डिप्रेशन और जीवन शैली से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए आज आप ये संकल्प लीजिए कि आपको योग अवश्य करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसका ऐलान किया था और तब से ही 21 जून यानी आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लगातार मनाया जाता रहा है। ये मलखंब करते हुए इन तमाम बच्चों को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। विजयवाड़ा की तस्वीरें एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। 6:25 अब से 2-3 मिनट के बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। 80 मिनट तक का ये कार्यक्रम चलेगा। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी वो भी आपको GNTV पर हम लगातार दिखाते रहेंगे। तो 21 जून का इतिहास भी आपको बता दें, भारत के लिए देखिए ये बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि खगोलीय तौर पर भी 21 जून का यानी आज का दिन जो है वो सबसे लंबा दिन कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे बड़ा आयोजन होगा, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योग दिवस करने वाले हैं। तमाम योगाभ्यास, योगासन प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे, वो भी तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी वो भी एक एक करके आपको लगातार हम दिखाते जाएंगे। तो आज देखिए, योगा को सिर्फ एक व्यायाम के रूप में मत अपनाइए, आप योग से जुड़ने के रूप में इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। और यही वजह भी है कि आज पूरी दुनिया भी आज इस अमूल्य विरासत को अपना रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है। इस साल का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 21 जून का ये दिन इस रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है और हर बार का थीम अलग अलग रखा जाता है। आज का थीम जो है वो है योगा फॉर एंटी एजिंग, यानी एक ऐसा योग अभ्यास, एक ऐसी योगा प्रैक्टिस जो सिर्फ आपको फिट नहीं रखती बल्कि जीवन में आपको ऊर्जा देती है। आपकी बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन कम है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप सकारात्मक फील करते हैं, युवापन की भावना भी योगा अभ्यास आप में जगाए रखता है और बनाए रखता है, उसमें मदद भी करता है। उम्र को देखिए, उम्र का बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उम्र के हर पड़ाव पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं तो योगा को आप अपना सकते हैं। और योग हमें यही रास्ता दिखाता है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का संदेश भी योगा हमें लगातार देता है। तो भारत ने योग के साथ ही दुनिया को जोड़ा है। सिर्फ देश की तस्वीरें नहीं बल्कि विदेशों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर भी किस तरह से इस योग अभ्यास को, इस योग प्रैक्टिस को अपनाया जा रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, GNTV पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से, कहां कहां से योग अभ्यास लोग कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, दिल्ली के कौन से हिस्से में मौजूद हैं, किस पार्क में मौजूद हैं, बताइए वहां पर इस वक्त योगाभ्यास कहां तक आगे बढ़ा है और कौन वहां पर पहुंचा है।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में दुनिया जो है वो बढ़ चढ़कर योग करने के लिए आज अलग अलग स्थानों पर जो है पहुंच गई। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोधी गार्डन में। हालांकि अभी यहां पर योगा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई जो है अपनी स्थान पर आपको नजर आएंगे, अपनी पोजिशन पे, अपनी योगा मैट पर जो है वो नजर आने वाले और देख सकते कि किस तरीके से बस इंतजार है कि कुछ ही देर बाद जो है यहां पर योग अभ्यास जो है वो शुरू होगा। और योग जो केवल योग है वो केवल सिर्फ कहते हैं ना कि एक लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, योग से ही होगा। हर कोई यही जो है हमेशा दोहराता है और हमेशा ही बोलता है और इसी संदेश के साथ जो है हर कोई आपको आज यहाँ पर नजर आने वाला है। हालांकि मैं लोधी रोड पे इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो हर एक राज्य से, पूरी दुनिया से जो है अलग अलग तस्वीरें आज के दिन जो है वो लोग की आने वाली है। और आपको मैं कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि सुबह की ताजी हवा के बीच जो है लोग किस तरीके से आपको अभी कुछ ही देर बाद योग अभ्यास करते हुए जो है वो दिखाई देने वाले है। हर कोई जो है सूर्य नमस्कार के साथ, प्राणायाम के साथ जो है अपना योगासन की जो है शुरुआत करेगा। लेकिन अभी लोगों से हम बातचीत करते हैं, हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ी सी तैयारी दिखाते हैं कि किस तरीके से हर कोई जो एक्साइटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कोई नजर आने वाला है, चाहे बच्चों की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए, हर एक इंसान जो है आपको आज अपनी अपनी योगा मैट में जो है वो नजर आएगा। हालांकि थोड़ा वक्त है अभी योग करने में, अभी थोड़ी देर का जो है थोड़ा समय बताया जा रहा है, लेकिन आप कितने एक्साइटेड हो, रोज करते हो या फिर आज स्पेशली?
3: नहीं, रोज करते हैं। योगा करना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, हमारी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो ये सबको ही करना चाहिए।
2: यस, बच्चों के पास भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बच्चे भी नजर आ रहे हैं अपने स्कूल बैग के साथ जो है, बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। रोज योगा करते हो या आज आए हो स्पेशली?
4: रोज करते।
2: अच्छा, रोज करते हो। अच्छा, किसके साथ आए हो आप?
4: मैं अपनी मम्मी और नानी के साथ।
2: मम्मा और नानी माँ के साथ आए हो। अच्छा, स्कूल में भी आपको सिखाते हैं योगा, ये बताइए?
4: नहीं
2: सिखाते। अच्छा, चलो, बच्चे मन के सच्चे होते शगुफ्ता, तो बच्चे हर कोई जो है सच्ची बात करने के लिए यहाँ पर एकदम आपको देखेंगे किस तरीके से सच सच बोलते हुए नजर आएंगे। चलो, बच्चों की मम्मा से ही पूछते हैं कि योगा को आप योग को किस तरीके से इम्पोर्टेंट समझते हो कि बच्चों की सबसे जो एक बेसिक नींव रखनी चाहिए ना, वो योगा से उनकी रख देनी चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए।
5: मैम, योगा ना हमारे से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और एक्टिविटी, बॉडी एक्टिव रहती है, और हमारे क्या है, बीमारियों से दूर रहते हैं। इसलिए
2: आप खुद रेगुलर करते हैं योगा?
5: यस मैम, हम रेगुलर करते हैं।
2: क्या आज जो है हर कोई पूरी तरीके से रेडी है? और शगुफ्ता, देखो, हर कोई अपने घरों में योगा जरूर करता है, ऑफिस की बात की जाए या फिर कहीं भी बात करें, हर कोई जो है अपने घर से ही पहले योगा कर आता है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हो तो आप देख सकते हैं कि नजारा पूरा आपको अलग ही नजर आने वाला है, लोगों की एक्साइटमेंट भी जो है वो एकदम बढ़ जाती है। चलो, हम थोड़े और सीनियर लोगों से भी बात करते हैं। आप पूरी पोजीशन पे आ गए हो योगा करने के लिए, रोज करते हो पहले ये बताइए?
6: रोज होती है मैडम,
2: रोज
6: योगा होती है।
2: आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज कितने ज्यादा एक्साइटेड हो?
6: हम तो रोज ही एक्साइटेड होते हैं, आज कोई ज्यादा एक्साइटेड वाली बात नहीं है। हमारे लिए तो हर दिन एक नया वो है योगा के लिए। हम सुबह यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारी क्लास होती है 6:30, लेकिन हम 5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और डेली योगा करते हैं।
2: सबसे फेवरेट आसन कौन सा है आपका?
6: फेवरेट तो सारे आसन से फेवरेट है, इसमें फेवरेट से कुछ नहीं है, सब आसनों का अपना ही लाभ है, क्योंकि सब आसनों का मिश्रण होता है, कोई खाली एक आसन आपको बेनिफिट नहीं देगा, वो सब जब हम इसकी सीक्वेंस है पूरी, तो जब हम सीक्वेंस से करेंगे तो उसी का लाभ है। और फेवरेट तो हमारे तो सारे ही फेवरेट हैं, हमारे थे जो भी मर्जी करवा लो आप।
2: कहते हैं ना कि योग जो करता है उसके सभी जो बीमारियां स्पेशली वो दूर होती है, और जो लॉन्ग टाइम से करते हुए आ रहे हैं वो तो कभी वो चीज फील ही नहीं कर पाते कि हमारे को किसी तरीके की कोई दिक्कत है। तो आप भी लंबे समय से जो है योगा करते हुए आ रहे हैं, तो अपने में चेंजेस नजर आए आपको?
6: बहुत चेंजेस है मैडम, बहुत चेंजेस है। खाली शरीर ही नहीं ठीक होता, मन भी ठीक होता है, और आदमी की सोच भी चेंज हो जाती है। योगा करने से खाली शरीर का निर्माण नहीं है, दिमाग भी है, पूरी बॉडी और मन और आपका सब कुछ चेंज, आपके अंदर दूसरी भावना आ जाएगी।
2: ये बात बहुत सही बोली शगुफ्ता, वाकई में किस तरीके से मेंटल पीस के लिए, आपके हेल्थ के लिए तो सही, लेकिन मेंटल पीस के लिए भी योगा जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हर किसी ने अब इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है कि भाई योग से ही होगा। और वाकई में योगा से जो लोग योगा करते हुए आ रहे हैं एकदम शुरुआत से, वो वाकई में उनके अंदर उनको वो चेंजेस जो है फील होते हैं। और अब आजकल की जनरेशन की बात करें, आजकल के पेरेंट्स की जो अगर हम बात करें, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी से उनकी शुरुआत कर दी है कि बच्चों को एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत जरूरी है, लेकिन योगा जैसी एक बेसिक चीज है बच्चों को वो जो है करवानी चाहिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जो है अच्छी खासी लंबी लाइन जो है वो नजर आने वाली है। मैम के पास आते हैं, मैम से एक बार बात करते हैं। हाँ जी मैम, क्या हाल है पहले तो ये बताइए?
7: बढ़िया,
2: आप एकदम फिट लग रहे हैं, एकदम सही लग रहे हो
7: मैडम। सही है।
2: रोज है आपका भी योगा का जो नियम है?
7: हम 5 बजे पार्क में चले जाते हैं, 7:30 बजे तक करते रहते हैं। निरो करूंगे सब कुछ शीश, सब कुछ अच्छी।
2: अच्छा, चलो कोई एक आसन करके दिखाओ मुझे, मैं चाहूंगी। कौन सा है इसके बारे में भी बताना?
7: इसे जो है अंदर जो सांस को होता है, मतलब उससे हमारे सांस में कपाल भाती है, तो इससे हमें सांस लेने में आसानी होती है, फायदा होता है।
2: आप देख सकते हैं कि आज ना शगुफ्ता हम ये चीज भी करने वाले हैं कि हर कोई जो जो आसन करेगा ना उनसे ये चीज पूछेंगे बीच बीच में जाकर, एक उनको ये सरप्राइज देंगे कि भाई बताओ कि किस कौन सा आसन जो है आप कर रहे हो, क्योंकि लोग कहने को तो आसन कर रहे हैं लेकिन कभी कभी उस आसन के बारे में भी लोगों को पता नहीं होता। चलो इनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइए, आप पूरे एकदम कहते हैं ना हेडबैंड के साथ एकदम पूरे से लग रहे हो कि आप रोज योगा करने वाले।
8: हाँ, मैं पिछले 4.5 साल से रोज योगा कर रहा हूँ। मतलब मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना था। मैं छोटे से गांव से आया था दिल्ली अपने सपने लेके, तो ऑब्वियसली मैंने इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाया है। तो
2: चेंजेस फील हुए हैं?
8: हाँ, मैं योगा करता हूँ, बहुत चेंजेस हुए हैं। मतलब मैं बहुत एग्रेसिव रहा हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, एनआईटी जयपुर से, सिद्धार्थ मेरा नाम है। तो मैं बहुत एग्रेसिव रहा हूँ अपनी लाइफ में, बट ना मैं बहुत सटल हो गया हूँ, बहुत कॉम्पैक्ट हो गया हूँ, बहुत मतलब मैं अलाइंड होकर काम करता हूँ, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत बहुत बैलेंस मिला है, बहुत पावर मिली है।
2: आपने मुझे हांजी बोला तो मुझे ऐसा लगा वो फुल एग्रेशन के साथ।
8: तो एग्रेशन मतलब देखो कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। इफ यू आर वेलकमिंग मी, इफ आई एम गोइंग टू शो समथिंग टू होल वर्ल्ड एज फ्रॉम योर चैनल, तो वो मेरा जिम्मेदारी है सबको बताना से क्या क्या चेंजेस आए। बट वो मेरी लाइफ का सटल पार्ट है जो मैंने योगा करने के बाद बहुत आत्मसात किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है योगा करके।
2: अच्छी बात है ये वाली चीज कि लोगों ने अब किस तरीके से योगा को जो है अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया है। शगुफ्ता आप देख सकते हो कि किस तरीके से, ये तस्वीर तो मैं लोधी गार्डन की आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस वक्त हर एक राज्य की और पूरी दुनिया की, जो देश के अलग अलग कोने से जो है आज की तस्वीरें आने वाली है। मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहूंगी शगुफ्ता, क्योंकि आप भी जो है बहुत फिट रहती है और आप भी कंटिन्यूसली जो है योगा करते हैं, तो मैं जरूर कि आपकी जो शुरुआत हुई दिन की वो योगा के साथ हुई है या नहीं हुई है अभी तक?
1: मेरी शुरुआत अभी तो स्टूडियो से हुई है मनीषा, आप सबसे सवालों के साथ हुई है। मैं अभी अपने आप को सिर्फ 10-15 मिनट ही दे पाई हूँ। योगा प्रॉपर हम करेंगे 7 बजे से, जब हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ते जाएंगे। तो एक योगा अभ्यास की जो शुरुआत होती है ना ओम के उच्चारण के साथ, फिर आप प्राणायाम के साथ आगे बढ़ते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर बाकी आसन आते हैं, वो क्रमवार तरीके से हम धीरे धीरे करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप बात कर रही थी तब भी मैं थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर ही रही थी। अच्छा, आपने सुबह से कौन से आसन किए हैं ये भी बताइए। आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती हैं, क्योंकि आप इतनी गर्मी में अभी जिस तरह का मौसम हमने देखा है, ठीक है, आप लगातार बाहर से रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप लोग खुद को कैसे मेंटेन करते हैं ये भी बहुत जरूरी है जानना।
2: शगुफ्ता मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, माना आज योगा डे है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आज के दिन मैं जो है थोड़े बहुत अभ्यास जो है कर सकूं, इन लोगों से ही थोड़ा इनको देख देख के जो है वो चीज फॉलो कर सकूं। लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरा रेगुलर जो है मेरा योगा जो है सेशंस वहां पे होते थे, योगा क्लासेस जो है स्कूल में होती थी, तो मैं स्कूल में हमेशा रेगुलर जरूर रही। लेकिन बात अगर अभी की करूं तो अभी मैं बिल्कुल योगा नहीं करती हूं। अगर आप फिट रहने की बात करेंगे तो दिन भर हमारा चलने का काम होता है, हम बाहर फील्ड पर रहते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा वर्कआउट जो है वो चलने से ही थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मुझसे किसी आसन के बारे में पूछ लेंगे तो शायद मैं वो चीज ना बताऊं। बेसिक चीजें मैं फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी स्कूल की वजह से स्कूल में इतना ज्यादा योग हम लोगों ने कर लिया कि बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा आ गई। तो आपको, आप मुझे कभी भी कोई भी चैलेंज दे सकते हो, अगर आप मुझे कोई भी आसन बोलो तो मैं डेफिनेटली वो चीज कर सकती हूँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने आज सुबह कोई एक्सरसाइज या किसी तरीके का जो योगा है मैंने वो करी है, लेकिन आज मैं डेफिनेटली करने जरूर वाली हूँ। जब हम लाइव करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जब यहाँ पर जो योगा सेशन है इन लोगों का शुरू होगा, तो मैं डेफिनेटली मैं भी अपनी जगह पर बैठ के जो है योग आसन जरूर ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें जो यहाँ पर आ रही है, और हर कोई बहुत रिलैक्स पोजिशन पे इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। और वाकई में आज का दिन जो है वो हर किसी के लिए खास है, जो सबसे ज्यादा अपने जो हेल्थ को प्रायोरिटी रखता है, प्रायोरिटी में जो है वो चीज देखता है। तो ये नजारा जो आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको एक आयोजन नहीं लगने वाला, बल्कि उस जागरूकता का प्रतीक है जो लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है लगातार उनके अंदर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बच्चे की बात हो, बड़ों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, हर कोई जो है अब ये जरूर करना चाहेगा कि योगा हम लोगों को करना है और वो मैंडेटरी है। क्योंकि जिस तरीके की हम लोगों की जिंदगी हो गई है, तनाव हो चुका है और हर कोई जो है बहुत हड़बड़ी में रहता है, तो इस चीज के लिए समय नहीं निकाल पाता। लेकिन अब लोगों को लगता है कि समय सबसे ज्यादा इस चीज के लिए निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो लोगों की लाइफ में ना सिर्फ मतलब उनके बॉडी में चेंजेस नहीं लेकर आ रही, बल्कि उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। और जितनी भी एक्सपर्ट्स है वो खुद भी ये चीज बोलते हैं कि अगर आप कुछ ही देर, कुछ ही मिनट के लिए योग करते हैं तो उससे आपका तनाव जो है वो कम होता है, आप कंसंट्रेट जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपकी नींद जो है, स्लीप साइकिल जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो उसी को देखते हुए लोगों ने अब अपनी एक दिनचर्या का जो है इस चीज को पार्ट बना लिया है और हर कोई जो है चाहे सुबह 10 मिनट दे, 15 मिनट दे, या फिर कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे तक जो है वो योगा करना पसंद करते हैं। तो अब लोगों की जिंदगी का ये पार्ट बन चुका है और वाकई में इससे कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिलता है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से।
1: बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, योग के बारे में हम अक्सर यही बात कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से आप मजबूत नहीं होते, अपनी बीमारियों को दूर नहीं करते, बल्कि मेंटल स्ट्रेस को आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह का तनाव है, वेट लूज करना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो चाहते हैं, डायबिटीज को दूर करना चाहते हैं, पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है उसको दूर करना चाहते हैं, आर्थराइटिस, आप नाम लीजिए किसी भी बीमारी का, योग के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है कि आपको नियमित तौर से इसको अपने जीवन शैली का एक हिस्सा जरूर बनाना होगा। अच्छा, एक और चीज मनीषा, मैं जानना चाहूंगी कि कितनी देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अभी तो ध्यान आसन में ही लोग मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि छोटे बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग का इंसान यहां पर आपके पीछे बैठा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। योगासन करने के लिए लोग इतने तत्पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, वही बात मैंने आपको बोली कि बहुत से लोगों को अब जाकर ये चीज रियलाइज हुई है कि योगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब की जो जनरेशन है वो डेफिनेटली ये श्योर करती है कि उनके बच्चे जो है वो शुरुआत से ही इस चीज के हैबिचुअल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता पिता जो है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। और अगर मैं समय की बात करूँ तो बस कुछ ही देर में जो है अब यहाँ पर आसन जो है वो शुरू होने वाले हैं। हालांकि 7 बजे का समय था, लेकिन बस अभी आप थोड़ी देर में जो है अलग ही यहाँ पे नजारा जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है यहाँ पर आपको इस वक्त अब आसन करते हुए नजर आने वाला है। अच्छा, मैं उस साइड भी दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे जो है वो वहां पे नजर आ जाएंगे। पीछे एक छोटे से बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ है, कोशिश करती हूँ मैं आपको वहां पर ही लेकर जाऊं और उस पूरे ग्रुप से जो है एक बार बात करूं कि बच्चे जो है वो थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कुछ इस तरीके का इवेंट जब होता है तो वो ज्यादा उनको रहता है कि पूरा एक गैंग शामिल है और उसमें जो है वो मजा आने वाला है। तो उन बच्चों के पास एक बार मैं आपको लेकर चलती हूँ कि किस तरीके से बच्चे नजर आते हैं। अच्छा, सब फ्रेंड्स हो आप लोग, दोस्तों क्या हो गया, नींद आ रही है? नींद आ रही है। मम्मा लाई है, पापा लाए हैं आपको?
4: पापा।
2: पापा कहाँ हैं आपके? दादू लेकर आए। तो बच्चों को नींद से सवाल करो, बड़े लोगों का फर्ज है कि बच्चों को लेना लेकर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दादू के पास ही जाऊंगी क्योंकि दादू ही बच्चे को उठा के लेकर आए। सर, आप तो बड़े, आपकी तो नींद पूरी होगी, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हुई, वो नींद में बैठी है।
9: ये भी जिद कर रहे थे, रात से जिद कर रहे थे, हम भी योगा करेंगे।
2: अच्छा, हम भी योगा करेंगे। लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं कि वो नाइट सूट में ही आई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, बच्चों को एक्साइटमेंट लेवल देखो कि आना जरूर है, चाहे वो नाइट सूट में ही भले आई हो, लेकिन वो आई है और योगा मैट में जो है वो बैठी हुई है। अच्छा, आप बताओ, आपको तो नींद नहीं आ रही?
4: नहीं।
2: योगा करने वाले हो? आप किसके साथ आए हो?
4: मैं दादू के साथ।
2: अच्छा, आप भी दादू को, आप भी दादू, मतलब दादू आपको पकड़ के लाए? मन था आपका या दादू जबरदस्ती लाए?
4: मेरा मन था।
2: अच्छा, मन था। चलो कोई आसन करके दिखाओ मुझे, आता है कोई आसन?
10: नहीं आता।
2: अच्छा, आज जो सर सामने करेंगे उनको फॉलो करोगे आप? उनको देख देख के करोगे? चलो ठीक है, आप बताओ, आप कर लेते हो आसन अच्छे से? कर लेते हो? कोई एक आसन करके दिखाओ। चलो, तो कपाल भाती जो है वो हर कोई शगुफ्ता करना जानता है। आप देख सकते हैं कि ये भी आपको रुको मत, करते रहो आसन, कभी रुकना नहीं है, बीच में करते रहो आप। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अब आपको इस तरीके के आसन करते हुए जो है वो बच्चे नजर आने वाले हैं। हालांकि धीरे धीरे सीख रहे हैं ये बच्चे जरूर। पीछे भी लेके चलती हूँ, वहां पर भी मेरे को अच्छा खासा बच्चों का जो ग्रुप है वो नजर आ रहा है। इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ आते हैं। चलो, अच्छा, एक मैट पे दो दो लोग शेयर कर रहे हैं। कौन मैट नहीं लेकर आया?
4: लाया।
2: अच्छा, आपने लेकर आए? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। स्कूल में हमेशा से योगा करते हो या फिर आज इंटरनेशनल योगा डे इसलिए आए हो आप?
4: स्कूल में करते
2: हो? स्कूल में योगा करते हो? आप करते हो योगा, ये बताओ?
11: यस यस।
2: रोज करते हो?
11: नहीं, समटाइम,
2: कभी कभी आप करते हो? चलो ठीक है, कभी कभी करते हैं, लेकिन करते हैं लोग जो है, बच्चे जो है, हर कोई इस चीज को हैबिट में डालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत हैप्पी फेसेस नजर आ रहे हैं, आज हैप्पी योगा इंटरनेशनल डे है शगुफ्ता। आपको ये लगने वाला, देखो सब तरफ बच्चे आपको नजर आने वाले। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से हर एक वर्ग आपको नजर आएगा, छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। आप यहाँ देखिए, नींद पूरी नहीं है लेकिन उत्साह फिर भी है, पूरी तरीके से है, जोश पूरा है कि मुझे यहाँ पर आना है। पानी की बॉटल के साथ जो है पहुंचे। क्या नाम है आपका?
4: वान्या।
2: वान्या नींद पूरी हुई है ये बताओ पहले।
4: हाँ
2: हो गई है, पक्का हो गई है। आज योगा करोगे यहाँ पे? पक्का करोगे? चलो कुछ करके दिखाओगे आप योगा? आता है कुछ योगा? अच्छा फॉलो करोगे, उनको देख देख के करोगे? कितने साल के हो?
4: पाँच।
2: पाँच साल के हो? अच्छा वैसे आप घर में करते हो, स्कूल में करते हो योगा?
4: नहीं
2: करते हो। किसके साथ आए हो?
4: दादू के।
2: ये सबके दादू ही पकड़ के क्यों लेकर आए शगुफ्ता? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी शायद नींद पूरी हो गई है तो इसलिए वो अपने बच्चों को जो है हर कोई यहाँ पर जो है वो योग करवाने के लिए जो है वो लेकर आया है। अच्छा यहाँ पे ये लोग बहुत हंस रहे हैं, इनसे बात करती हूँ मैं। क्यों इतनी हंसी आ रही है सबको आज?
10: मैम मैम अच्छा लग रहा है आज योगा डे है।
2: अच्छा अच्छा लग रहा है। करते हो, रेगुलर करते हो योगा?
10: नो मैम, स्कूल में करवाया जाता था तो स्कूल में करते हैं हम।
2: अच्छा स्कूल में करते हो। अच्छा यहाँ पे भी क्या टीचर लेकर आए हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ है?
10: हाँ।
2: कहाँ है आपकी स्कूल टीचर? कहाँ है?
10: स्कूल टीचर नहीं है, ट्यूशन की तरफ से आए।
2: अच्छा ट्यूशन की तरफ? हाँ
11: एनजीओ की तरफ।
2: अच्छा एनजीओ की तरफ से आए हैं तो अच्छा ये वो आपकी मैम है राइट? अच्छा वो मैम पीछे है लेकिन वो सभी एनजीओ के बच्चों को यहाँ पर लेकर आई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो टीचर्स है वो भी इस दिन की बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो चीज अच्छे से समझते और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है एनजीओ की तरफ से जो है बच्चों को यहाँ पर जो है ना।
1: मनीषा आपने सबको बोला है कि एक आसन करके दिखाओ, आपको भी एक आसन करके दिखाना पड़ेगा जीएनटी के दर्शकों के लिए और मेरे लिए। बताइए आपका कौन सा आसन फेवरेट है, वो कर दीजिए जरा एक बार।
2: मैं टच करके दिखा सकती हूँ, नीतक अगर आप चाहोगे तो मैं वो डेफिनेटली कर सकती हूँ।
1: हाँ उसके लिए भी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, माइक
2: रिमूव नहीं करूंगी।
1: नहीं नहीं मत कीजिए, माइक साइड पे रख दीजिए, एक बार करके दिखा दीजिए।
2: मैं माइक साइड रख,
1: कैमरा पर्सन को बोलिए जरा फोकस कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये इसके बाद तो आपको एक सूर्य नमस्कार भी कर देना चाहिए मनीषा। इनफैक्ट मैं जो आपने इस वक्त किया है ना ये आम लोगों से हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ट्रस्ट में इसके लिए अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर लचीलापन नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। आपने सर से जो अपने घुटनों को टच किया है ना वो करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद आप ये कर पाते हैं। आपने बोला कि आप नहीं कर पाती हैं, आप योगा नहीं करती हैं, ये देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप योगा नहीं कर पाती हैं।
2: हाँ जी मैंने कहा ना शगुफ्ता, मैंने स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा योगा करी है। हम पिरामिड्स भी जो है स्कूल में बनाया करते तो ये उसी का ही असर है। लेकिन मैं सूर्य नमस्कार डेफिनेटली कर सकती हूँ बट मैं शायद कोई स्टेप बीच में भूल जाऊं तो मुझे उसके लिए माफ कर देना या फिर कोई मेरे अगेंस्ट मत जाना। बट आई कैन डेफिनेटली डू द सूर्य नमस्कार बट मैं थोड़ा मिस कर सकती हूँ तो मुझे उसके लिए अभी से मैं माफी चाहती हूँ।
1: चलिए सूर्य नमस्कार करते हुए आप हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा को देख सकते हैं। दिल्ली में ये मौजूद हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर सुबह से 5 बजे से पहुंचे हुए हैं योगाभ्यास करने के लिए। सूर्य नमस्कार की ये प्रक्रिया जिसको कहा जाता है कि दिस इज अ फुल बॉडी वर्कआउट, 12 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कोई और आसन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी पर ये काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो तमाम जगहों की तस्वीरें लगातार देश भर सामने आ रही हैं, वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया मनीषा, मैं स्टूडियो से इनफैक्ट आपके लिए ताली बजा रही हूँ, बहुत अच्छा किया। 12 फॉर्म्स आपने कंप्लीट किए हैं।
2: स्टेप्स जरूर आगे पीछे किए मैंने।
1: इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो शुरुआत में हो जाता है। लेकिन आपने जैसे कहा कि प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिस में ना होने के बावजूद अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो वो बहुत अच्छी बात है।
2: थैंक यू शगुफ्ता, बस मैं को इंतजार है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं भी टीवी देखूं और मेरे को आपको जरूर करते हुए एक्सरसाइज देखना है क्योंकि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो इस चीज में और तभी शायद आप हमेशा हमें योग दिवस के मौके पर जो है एंकरिंग करते हुए नजर आते हो क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपसे बेटर योगा मैंने कभी किसी और को करते हुए देखा है। तो मैं खुद इंतजार करूंगी कि कुछ देर बाद जो है आप भी योगा करो हमारे जितने भी गुरु है उन लोगों के साथ बैठकर और हम सभी के साथ भी।
1: जी चलिए तस्वीरें लगातार मनीषा दिखाते रहिए और स्टूडियो में भी जो तस्वीरें लगातार आएंगी वो भी देखते रहिएगा। अगर आप साथ में योगा करना चाहते हैं और तमाम लोगों को मैं इनफैक्ट अपील करूंगी कि अगर आप भी योगा अभी तक आपने अपने जीवन शैली में इसको नहीं अपनाया है तो आप आज के दिन एक संकल्प के साथ आगे बढ़िए कि आपको योगा अवश्य करना है, कि योगा को अपने जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बनाना है। किसी भी चीज़ से आप पीड़ित हैं, किसी भी रोग से अगर आप पीड़ित हैं, उससे निजात चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं तो योग को आप अपने जीवन शैली का एक अहम हिस्सा ज़रूर बनाइए और आज इस संकल्प के साथ ही उठिए और अपने जीवन की शुरुआत को इसी क्रम के साथ आगे बढ़ाइए। मनीषा, कब तक माने कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कब तक ये लोग योगासन करते हुए हमें नजर आएंगे?
11: हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में।
1: चलिए, तस्वीरें अलग अलग जगहों की लगातार सामने आ रही हैं। ले लद्दाख की चोटियां देख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर हिंद महासागर तक योग दिवस के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। इस बार योगा थीम जो है वो आपको बता दें, योगा फॉर एंटी एजिंग, जिस पर जोर दिया जा रहा है कि अगर आप भी योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसका ऐलान किया था और तब से दुनिया भर में 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमने अपनाया है और इस दिन को हम सेलिब्रेट लगातार करते आ रहे हैं। योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग भी आप इसको कह सकते हैं, योगा फॉर एंटी एजिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। आधुनिक जीवन की जितनी भी ये भागदौड़ जिसका हम हिस्सा है, जो रैट रेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको तनाव है, डिप्रेशन है, जीवन शैली से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां हैं, उनको आप योग से दूर कर सकते हैं, योग से आप निरोग हो सकते हैं, क्योंकि होगा तो सिर्फ योगा से होगा। जीएनटी पर योग उत्सव लगातार जारी है जिसको हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप अभी अगर आप उठे हैं तो आप हमारे साथ इस योग प्रैक्टिस में शामिल हो जाइए और योगा कीजिए। योगा की शुरुआत देखिए ऐसे करते हैं, योगा की शुरुआत में हम कहते हैं कि 3 बार ओम के उच्चारण के साथ, ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों इन सिंक हो जाए, बॉडी और माइंड इन सिंक हो जाए, उसके साथ शुरुआत कीजिए। दुनियावी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें हैं उनको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप योगा पर ही फोकस कीजिए। तो देश भर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 21 जून का दिन देखिए, आज का दिन बेहद खास होता है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कोलकाता की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ हजारों की तादाद में लोग आज योगासन करने वाले हैं, वो भी तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। विजयवाड़ा की तस्वीरें लगातार आपको सुबह से हम दिखाई रहे हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और उनके साथ योगाभ्यास लगातार कर रहे हैं। चलिए, विजयवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधा हमारी सहयोगी पूजा के पास आपको लिए चलते हैं। पूजा, आप सुबह से कौन कौन से आसन कर चुके हैं वो भी बता दीजिए जरा।
12: इलांटी ब्रह्मांडमैन कार्यक्रमंलो मनं भागस्वामुलयां, दानिकि कारणं योगा गुरु बाबा रामदेव गारिकि ఇక్కడ ఉన్న అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని
1: चले तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 21 जून पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, इसका आयोजन देश के हर हिस्से में किया जा रहा है, वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। विजयवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में यहां पर तमाम लोग जो पहुंचे हैं वो योगासन अभी करेंगे, योग अभ्यास जो है वो शुरू हो जाएंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब देखिए, अलग अलग महाद्वीपों की बात करें तो लोगों को जोड़ने वाला एक पर्व ये बन चुका है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। योगा सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस के रूप में इसको मत देखिए, बल्कि अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा इसको आप बना सकते हैं। कुछ देशों तक सीमित ना होकर बल्कि पूरी दुनिया में योगा ने अपनी खास पहचान बनाई है। 2014 में इसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ावा मिला। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसके बाद दुनिया भर में योगा की ये लोकप्रियता, योगा की ये पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली गई। अब ये सूक्ष्म व्यायाम करते हुए लोगों को आप इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान आसन में बैठे हुए आप लोगों को देख रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा मौजूद हैं। मनीषा, जरा आम लोगों से ही बातचीत कर लीजिए कि कौन कौन से आसन, जैसे आपने कहा था ना कि आप लोगों से पूछ भी रही हैं कि आप आसन कौन कौन से कर रहे हैं, तो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं जरा इनसे बातचीत कीजिए, देखते हैं कि लोगों की जनरल नॉलेज योगा को लेकर कितनी है।
13: तो मैं लोगों को पकड़ना ही कोशिश करती हूँ, मैम दिख रही है, हालांकि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन चलो पूछ ही लेती हूँ मैं एक बारी।
12: ऊर्जा के साथ
13: आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी क्योंकि आप बहुत अच्छे से आसन कर रहे थे। आज हम लोगों की जीके टेस्ट करने वाले हैं कि जो वो योगा कर रहे हैं, जो आसन वो कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। अभी आपने कौन सा आसन?
10: अनुलोम विलोम प्राणायाम धारे।
13: प्राणायाम क्या बेनिफिट्स है उसकी, क्या बता?
10: इससे शांति, मन को शांति मिलती है, मतलब मन में एक अच्छा, सबको एकजुट करने का होता है, बाकी गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहट जैसे होता है हम लोगों का।
13: तो आपकी अभी शांति को डिस्टर्ब किया, आपको गुस्सा नहीं आया, इस आसन का मतलब बेनिफिट हुआ
10: है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घर में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हमें बहुत योग करने से होता है यही, तो हमारा तो रूटीन है ये रोज का, आते हम लोग गार्डनिंग पे।
13: आप देख सकते हैं शगुफ्ता आपके सामने ही हैंड्स प्रूफ हो चुका है कि आसन के कितने बेनिफिट्स है। शांति से अपना आसन कर रहे थे, मैंने इनको डिस्टर्ब किया लेकिन उनको किसी तरीके से गुस्सा नहीं आया। अच्छा, पीछे और भी हम लोगों को आसन करते हुए देख रहे हैं, हम इन्हीं लेडीज के पास जो है इन महिलाओं से जाके बात करेंगे। कौन सा आसन कर रहे हैं मैम, ये बताइए?
5: ये आसन का तो नाम है लेकिन एक महीना से मैं कर रही हूँ, नाम तो भूल गया, सारा करना आता है लेकिन नाम भूल जाती हूँ।
13: कोई नहीं, कर रहे हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका असर दिखना चाहिए।
5: हाँ, मुझे मैं बहुत करती हूँ, मैं दिन कम से कम 4-5 घंटा करती हूँ दिन में।
13: 4-5 घंटे अलग अलग इंटरवल्स में करते होंगे?
5: अपने घर में भी करती हूँ, पार्क में भी करती हूँ, कई और जगह भी करती हूँ। बहुत अच्छा होता है,
13: जो है वो आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा,
5: पूरे जिंदगी का मेरे हिस्सा है, उसकी जगह मैं कोई चीज नहीं देखना चाहती हूँ।
13: आप देख सकते हैं शगुफ्ता की ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, जो लोगों को सिखाया जा रहा है की उसको अपने जीवन का जो है हिस्सा बनाओ, वो इनका बन चुका है। तो कितने साल हो गए आपको?
5: मैं मेरे तो ऐसे तो 4-5 साल हो गया, लेकिन लगातार मेरे साइटिका का प्रॉब्लम हो गया ना, तब दोबारा मैं आई हूँ इस लाइन पे। मैं 5-6-7 घंटा करते रहती हूँ, खाना खाती कम हूँ, योगा ज्यादा करती हूँ।
13: आप देख सकते हैं कि जो योगा से होगा वो बिल्कुल हो रहा है,
5: एकदम ठीक हो गया। मेरे साइटिका का प्रॉब्लम थी, मैं चल भी यहाँ से एक कदम नहीं जा सकता था, अब मैं इतना अच्छा चलती, इतना पैर उठाती हूँ, इतना कूदती, इतना भागती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता।
13: ये बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं कि किस तरीके से योग जो है वो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आ रहा है। मैम के पास जाएंगे, मैम से भी जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूंगी मैं, हालांकि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, बट आपका जो ये मोटिवेशन मिल रहा है ना मुझे आपको देखकर, तो मेरे को पूछना
14: चाहिए।
13: 60+ हो आप?
14: 66
13: हो आप? बहुत बढ़िया बात है कि आप इस एज में भी आके योगा की इम्पोर्टेंस समझ रहे हो और उसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा आपने बना रखा है। कितने सालों से आप योगा करते हैं?
14: 4 साल से।
13: 4 साल से?
14: हाँ जी।
13: तो एक टाइम के बाद आपने शुरू करा, ऐसा लगा कि मुझे अब जरूरत है, खुद को फिट थोड़ा रखना है, एज हो रही है, ये चीज़?
14: नहीं नहीं, बस मन में तमन्ना आ गई सीखने की, करने की, अब लगन ही हो गई है करने की, अब मैं रह नहीं सकती इसके बगैर।
13: आपका कोई ग्रुप है जिनके साथ आप करते हैं?
14: हाँ जी हाँ जी,
13: अभी पूरा ग्रुप के साथ
14: आए। हाँ जी हाँ जी,
13: ग्रुप की मैम है। अच्छा, पूरा ग्रुप ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटिवेशन से भरा है कि मैम भी वो सब के सब जो है वो सेम ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा, अभी आप कौन सा आसन कर रहे हैं?
14: अब ये नहीं पता
13: कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। उससे कुछ आपको फर्क आया आपकी बॉडी में?
14: हाँ जी, फर्क है, शरीर हल्का हो जाता है जरा, और काफी मतलब बहुत फर्क है मेरे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
13: अच्छी बात है कि किस तरीके से लोगों को फर्क दिख रहा है। आपको दिखाती हूँ कि बच्चे देखो किस तरीके से आपको शगुफ्ता आसन करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इन मैम से भी बात करते हैं, उन बच्चों के पास भी जाते हैं। मैम, कौन सा आसन कर रहे हो आप?
15: उष्ट्रासन।
13: क्या फायदे इस आसन?
15: इससे फायदे जो है कि जो थायराइड वगैरह है उसमें ग्लैंड एक्टिवेट होती है और मसल्स गेन होते हैं, और आपके जो शोल्डर का है वो जो पेन है सर्वाइकल वगैरह उसके लिए काफी लाभदायक रहता है।
13: योगा टीचर तो नहीं है?
15: पार्डन,
13: योगा टीचर तो नहीं है?
15: मैं योगा टीचर।
13: ओह, सही पकड़ा मैंने, क्योंकि जिस तरीके से आप कर रहे हो बहुत ही परफेक्शन के साथ कर रहे हो और आपको हर एक चीज के बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छे से पता है।
15: मैं 10 साल की उम्र से करती हूँ।
13: 10 साल की उम्र से? और अभी आप पूछू नहीं, 62 की आप इस वक्त हो चुके हो, और 10 साल की उम्र से, मतलब लगभग 50 साल आपको हो चुका है, 5 दशक से योग बहुत ज्यादा, मतलब आपने तो फिर हद से ज्यादा चेंजेस अपने अंदर फील करे होंगे। लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करते हो?
15: मैं अपने एक्चुअली मैं कभी चार्जेस नहीं लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, और मैं अपनी सोसाइटी एरिया में जो भी आते हैं उनको फ्री कोचिंग देती हूँ योगा की, और पेशेंट मैं एक्चुअली सोशल वर्कर, तो मैं पेशेंटों को भी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से उनको बीइंग अ थेरेपिस्ट उनको करवाती रहती
13: हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छा पीछे की तस्वीर दिखाऊंगी, दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, देखो किस तरीके से आसन करते हुए नजर आ रहे हैं शगुफ्ता, और मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी बट आप ये देखिए किस तरीके से परफेक्शन, और मेरे ख्याल से इनकी उम्र 7 से 8 साल होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी बॉडी में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नजर आएगी, और कितनी खूबसूरती के साथ चेहरे पे एक मुस्कान के साथ आपको जो है ये बच्चियां जो है वो आसन करते हुए नजर आएंगे। आप बहुत सुंदर कर रहे हो। आपका नाम क्या है?
4: आद्या।
13: आद्या क्या उम्र है आपकी?
4: 7 इयर्स।
13: कब से कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत परफेक्ट कर रहे हो?
4: मैं रोज करती हूँ सुबह।
13: हमारा स्वभाव। कितने सालों से करवा रहे हैं आपको?
4: योग ही करवाती है।
13: मम्मा या टीचर्स भी?
4: वो स्कूल में योगा होता है तब होता है, और मम्मा भी करवाती है।
13: अच्छा, अभी आप कौन सा ये आसन कर रहे हो?
4: ये जो लेग स्ट्रेच करके वो
11: शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग,
4: हेड को नीचे करते लेग से टच करते वो।
13: तो आप देख सकते हैं कि शगुफ्ता 7 साल की उम्र है इनकी, और किस तरीके से इन्होंने जो है आसन किया है। अच्छा इनके पास भी जाते हैं ये, उनसे भी आई थिंक मुझे बहुत छोटी लग रही है। आपकी क्या उम्र है?
4: 8 इयर्स।
13: 8 इयर्स, आप उतने बड़े हो। अच्छा क्या नाम है आपका?
4: प्रणवी।
13: आप भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं? आप भी बहुत फ्लेक्सिबल हो। घर में क्या पेरेंट्स रोज करवाते हैं आपसे?
4: नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स नहीं, पर मैं खुद करती हूँ।
13: जब खुद करते हो आपको मतलब ऐसा नहीं रहता कि मम्मा को आपको जगाना पड़ रहा है कि उठो और आसन करो, आप खुद पंक्चुअल हो इस चीज को लेकर? मतलब योगा को आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा, एक रूटीन सेट कर लिया है कि योग करना ही है?
4: यस
13: यस करना। तो आज योगा डे है, कितने एक्साइटेड हो आज योगा के लिए आप?
4: बहुत
13: बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठ के करने? आप देख सकते हो आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको जो है ये छोटे छोटे बच्चे जो है इस तरीके से आसन करते हुए नजर आ रहे हो, और वाकई में ये तारीफ काबिल है कि आप किस तरीके से इतनी छोटी उम्र में इस तरीके का जो परफेक्शन देखते हैं ना, तो आपको आप इसी को ही देखकर शगुफ्ता मोटिवेट होते हैं कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, और बच्चे भी किस तरीके से जो है आपको इस तरीके से दिखेंगे। अच्छा ये सर के पास चलते हैं, ये चक्रासन करने की आई थिंक कोशिश कर रहे हैं। नहीं आई थिंक चक्रासन नहीं है, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इनके पास चलती हूँ कि सर के आ सकती हूँ, सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कौन सा आसन कर रहे हो?
16: आसन
13: चलो आसपास से लोगों से पूछ लिया, लेकिन ठीक है, कर अच्छे से रहे हो ये बताओ?
16: हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक ढंग से कर रहे हैं, हाँ एकदम।
13: अच्छा क्या फायदे है?
16: फायदे बहुत है,
13: फायदे बहुत है। एक तो फायदा बता दो फिर।
16: बीपी शुगर को कंट्रोल रखता थोड़ा ये, और गैसेस नहीं होती पेट में, ठीक ठाक रहता
13: है। तो आप देख सकते हैं, चलो हालांकि चीटिंग करी सर ने, आसपास से पूछा, लेकिन जरूरी है कि वो ये चीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है आपको इसी तरीके से आज अलग अलग आसन जो है वो करते हुए नजर आने वाला है। और आगे चलते हैं, हम कुछ डिफरेंट देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग रंग जो है, अलग अलग तरीके से लोग आसन करते हुए जो है आज नजर आने वाले हैं। तो कुछ देखते हैं कि कोई कुछ डिफरेंट बहुत कर रहा होगा, तो उनके पास डेफिनेटली हम आपको वो तस्वीर जो है वो जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से आज जो है लोग यहाँ पर आसन करने के लिए, योगा करने के लिए जो है वो पहुंचे, और अलग ही जो है पूरा माहौल यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। चलो मैम के पास चलते हैं, इनके पास चलते हैं। ये आई थिंक लगता है मुझे किसी ग्रुप का हिस्सा है, सबने कपड़े सेम पहने हुआ है, किसी ग्रुप का हिस्सा हो आप?
17: हाँ।
13: कौन सा ग्रुप है?
17: उर्मिला दीदी का, पतंजलि का ग्रुप है।
13: अच्छा पतंजलि का ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं कि सबके सब आपको व्हाइट सूट में होंगे। अच्छा आप लोगों के से कितने आसन रोज के है, कितने सालों से करते
17: हुए? हम बराबर ही करते आ रहे हैं, कम से कम 1.5 घंटा।
13: 1.5 घंटा आप कम से कम करते?
17: कम, हाँ।
1: चलिए मनीषा
13: आसन कर ले,
1: लौटती हूँ आपके पास। चलिए मैं आपको भी यही कहूंगी कि आज का दिन ही है, देखिए वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन आज के दिन आप भी इनके साथ, जब तक मैं आपके पास दोबारा नहीं आती अगले प्रश्न के साथ, तब तक आप आसन करते रहिए, और मैं पूछूंगी कि आपने क्या क्या किया है। चलिए इसी बीच स्टूडियो का रुख कर लीजिए, जरा हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, इनका नाम है संदीप आर्या, वर्ल्ड चैंपियन एथलीट है। वेलकम ऑन GNT, कैसे हैं आप? नमस्कार।
18: नमस्ते जी।
1: इनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि 37 आवर्स का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नॉन स्टॉप इन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। कितनी बार किया था संदीप, उसके पहले प्रैक्टिस कितनी की थी, कितना वक्त लगा, इस सब पर मैं जाऊंगी कि, लेकिन सबसे पहले प्रश्न जो मैं हर गेस्ट को पूछती हूँ और जो भी मेरे साथ योगा करता है, कि आपके लिए योगा क्या है?
18: मतलब योग ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। योग से मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और आज योग के बल पर ही विश्व चैंपियन बन पाया।
1: योग आप कब से करते आ रहे हैं?
18: योग में 2006 में मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन 2015 मैंने योग को ज्यादा जोड़ा, क्योंकि जब मुझे लिगामेंट इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स के टाइम में, तो योग के टाइम मैंने इंजरी ठीक किया, मुझे बहुत इसको बेनिफिट मिला, इम्यूनिटी पावर बढ़ी और योग करने से फिर स्टेमिना बढ़ा और मन इतना मजबूत हुआ। तो योग से मेरा न्यू मानो कि एक जन्म माँ की कोख से, ये मानो कि दूसरा जन्म योग से, तो हमें पूर्ण जन्म मिला है योग से।
1: बहुत बढ़िया, मतलब योग तन और मन को एकाग्र करने में, बैलेंस प्रदान करने में, लाइफ में अगर आप संतुलित नहीं है तो आपको संतुलित करता है, आप किसी चीज पर डिफोकस्ड हो गए हैं फोकस आपको प्रदान करता है, बीमारियों को दूर करता है। योग सिर्फ एक योग को सिर्फ व्यायाम के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं संदीप, है ना, योग इससे बहुत ज्यादा है। योग को सिर्फ ऐसे नहीं देखिए कि आपने जिम में जाकर पसीना बहाया आप ठीक हो गए, आपके बाइसेप्स बन गए, आपकी बॉडी बन गई, ये नहीं। योग टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जिम के बराबर ही योग भी काम करता है। आप जिम में जाकर सिक्स पैक एब्स बनाते हैं, योग से भी आप सिक्स पैक एब्स बना सकते हैं, सही है ये?
18: बिल्कुल, मतलब जिम में जाने से हमारी ऊर्जा शरीर की नष्ट होती है, लेकिन योग करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिम में जाकर शरीर का व्यायाम किया जा सकता है, लेकिन योग को हम एक सिर्फ व्यायाम न समझे, ये तो एक जीने की कला है, ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, योग एक चिकित्सा है।
1: बिल्कुल, स्पिरिचुअल रास्ते पर अगर आप जाना चाहते हैं तो योग को आप अपने जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा संदीप, अब आते हैं जिस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिस चीज के बारे में मैं जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, वो ये है कि आपने 37 आवर्स का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नॉन स्टॉप आपने सूर्य नमस्कार किया। कितने सूर्य नमस्कार आपने किए थे उसके बारे में बताइए, उसके

0: और शुरुआत मैंने 5-7 सूर्य नमस्कार से करी थी, और
1: अच्छा
0: धीरे धीरे 5-7 से शुरुआत करते 10-15-20-100 तक जाना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 100 तक पहुंच गए। जब 100 सूर्य नमस्कार लगाने लगे, सोचा कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शरीर में ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और बाद में धीरे धीरे 500, 1000, और पहली बार मैंने अपने जीवन में 2018 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 के अंदर RSC ग्राउंड कोटा में 5000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड स्थापित किया था लगातार करने का। और उसके बाद 10000 का, 12000 का, 15, और अभी ये 20। मतलब ये कि शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत जो आज मिली है वो योग से मिली है।
1: बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। इनफैक्ट देखिए, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि योगा का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। एक बार ओम के उच्चारण के साथ संदीप आगे बढ़ते हैं, और सूर्य नमस्कार मैं आपके साथ करूंगी। मैं आपके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपके साथ मैं इस फ्रेम में हूं, तो मैं सूर्य नमस्कार जितने कर सकती हूँ उतने जरूर करूँ। चलिए, 3 बार हम ओम के उच्चारण के साथ डीप ब्रीथ करते हुए।

0: प्राणायाम की तरफ बढ़ लेते हैं, है ना।
1: जी बिल्कुल
0: आप जब योगा करते हैं तो नॉर्मली हम यही करते हैं कि ओम के उच्चारण के साथ, ताकि आपका माइंड और बॉडी इन सिंक हो जाए। यही एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का विचार आ रहा है, कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, उसको दूर करने के लिए पहले आप पॉजिटिव हो जाइए, तमाम विचारों को दूर कर दीजिए, फिर आप योगा अभ्यास को करना शुरू कर दीजिए। ये बेसिक एक रूल बताया जाता है योगा को जब हम शुरू करते हैं। ओम के उच्चारण के बाद आप भी प्राणायाम पर आते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। प्राणायाम करते हैं पहले कपाल भाती, अनुलोम विलोम,
1: पहले भस्त्री का प्राणायाम करेंगे।
0: चलिए भस्त्री का करते हैं, चलिए आप शुरुआत कीजिए।
1: पूरा लंबा गहरा श्वास को भरते हुए,
0: चलिए। ये आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्टूडियो की तस्वीरें तो देखते रहिए, योगा अभ्यास लगातार जारी है, लेकिन ये कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं योगा अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए। अभी ये सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पर चल रहे हैं, नॉर्मल बॉडी को रोटेट करते हुए और बॉडी में जो लचीलापन है उसको थोड़ा सा फोकस करते हुए, स्टैंडिंग पोजिशन में आप इनको देख रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स करते हैं जब हम किसी भी योगासन को करते हैं, उसके पहले की ये प्रक्रिया इस वक्त यहाँ पर चल रही है। कोलकाता की तस्वीरें ही आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत जगहों पर हालांकि योगा कार्यक्रम इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में ये लोग आज योगा अभ्यास करेंगे। चलिए ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये देखिए नेक मूवमेंट्स इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हुए देख सकते हैं। अगर आपकी नेक में कोई दिक्कत है उसको आप दूर कर सकते हैं, धीरे धीरे आप नेक को राइट और लेफ्ट रोटेट कीजिए, फिर आप उसको आगे और पीछे कर सकते हैं। इस वक्त संदीप मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप इस वक्त प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम के तीन या चार फॉर्म्स होते हैं, उसको आगे बढ़ते हुए फिर हम आएंगे सूर्य नमस्कार के ऊपर। भस्त्रिका कर रहे हैं इस वक्त, भस्त्रिका में लंबा श्वास आप गहरा

0: कोई बताते जाते हैं
1: जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हमारे हार्ट को मजबूत करता है, हमारे हार्ट को स्ट्रोंग कर देता है और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। आजकल की टाइम देखते हैं कि कोरोना काल के और उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, और बहुत जबरदस्त रामबाण इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम इसको भस्त्रिका को अगर धीरे धीरे, शुरुआत जिनको अस्थमा की शिकायत रहती है उन अस्थमा वाले मरीजों के लिए बहुत रामबाण है। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। जो बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, वहाँ पता लग जाता है कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी है। अगर एक मिनट थोड़ा इसको फास्ट भी कर लेते हैं, जो युवा साथी है, जो हमारे व्यायाम करने वाले खिलाड़ी साथी है, तो इसका थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं।

0: तो ऐसे फास्ट करने से पूरी शरीर में ऊर्जा ऐसे पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, यहाँ पता लगता है।
1: अच्छा, तो ये वो लोग ना करें जिनको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है,
0: हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको धीरे धीरे हर रोगानुसार हमें योग अभ्यास करना चाहिए।
1: बिल्कुल, योगा के बारे में वैसे कहते हैं कि आप स्लोली स्टेडीली इसको करना शुरू कीजिए और अपने जीवन में अपनाना शुरू कीजिए। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम।
0: जी जी,
1: आप अनुलोम विलोम के थोड़े से फायदे बता दीजिए, वो भी करते हैं।
0: अनुलोम विलोम आजकल सबसे पहले राइट हाथ से राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, फिर राइट से बाहर निकाल देंगे, फिर राइट से भर लेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लंबा गहरा जितना 5-7 सेकंड सांस लेने में लेते हो इतना ही छोड़ने में कीजिए। अनुलोम विलोम हमारे मानसिक जो आजकल डिप्रेशन की बहुत समस्या हमारे देश में देखने मिल रही है, तनाव बच्चों में भी, बड़ों में भी, बिजनेस में वालों में, तो अनुलोम विलोम इसके लिए रामबाण है। जिनको भी तनाव डिप्रेशन की शिकायत रहती है, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए सबसे अद्भुत अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जिनको हार्ट के मरीजों के लिए तो बहुत अद्भुत है, अगर धीरे धीरे अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करते हैं तो ऐसे भी फिट भी रहेंगे और बहुत अद्भुत। जिनको बीपी बहुत हाई रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है बीपी का, इसकी परमानेंट टेबलेट चलती रहती है, लेकिन अनुलोम विलोम से बीपी को बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इतना बच्चों की याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अद्भुत है। जिन बच्चों की, जो बच्चे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर अनुलोम विलोम अभ्यास करें, वो 6 घंटे की पढ़ाई वो 3 घंटे में कर सकते हैं, इतना अद्भुत रामबाण इसका। जिनके बाल झड़ते हैं तो इसके लिए बहुत अद्भुत अनुलोम विलोम प्राणायाम।
1: मतलब बस धीरे धीरे, अनेकों
0: मतलब एक लाभ नहीं है इसके, अनेक लाभ है एक प्राणायाम के। बस धीरे धीरे श्वासों के साथ अगर हम अभ्यास किया जाए, मतलब प्राणायाम से हमारे जो प्राण हैं वो मजबूत होते हैं, इसलिए इसका नाम प्राणायाम, क्योंकि सारा खेल हमारे श्वासों का, प्राणवायु का है, ऑक्सीजन का है। और जितनी हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी उतने हमारे शरीर की एक नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ एक एक नस नाड़ी का शुद्धिकरण कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
1: बिल्कुल,
0: जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है वो भी बिल्कुल इससे आराम मिलता है।
1: संदीप, एक और चीज बताइए, जो योगा बिगिनर्स हैं जिन्होंने शुरुआत की है, उनके लिए प्राणायाम वो कितने मिनट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी जानकारी।
0: शुरुआत में प्राणायाम के लिए कम से कम 15-20 सेकंड का अभ्यास शुरुआत करिए, ऐसे धीरे धीरे 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट प्राणायाम को कम से कम 1 घंटा अगर हम दिया जाए तो बहुत इसका जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है। और जितना प्राणायाम से लाभ तो मिलता है, इतनी शरीर में ऊर्जा देखने को मिलती है। और प्राणायाम के बल पर इंसान, कहते हैं कई बार कि इंसान बिना खाने के बिना कैसे रह सकता है, वो प्राणायाम के बल पर रह सकता है।
1: बिल्कुल, चलिए आपके पास इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, योगा भी करेंगे। एक बार विजयवाड़ा का रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त मौजूद है। पूजा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे रिकनेक्ट करने के लिए। पूजा इस वक्त विजयवाड़ा में मौजूद है, योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 5 बजे से ये कार्यक्रम निरंतर जारी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते हुए इन लोगों ने ढेरों योगासन आज के दिन किए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खास मौका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम और आप इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इस वक्त उठे हैं, दिन की शुरुआत अगर आपने की है, तो हमारे साथ कीजिए, जीएनटी के साथ कीजिए, और योगाभ्यास में आप भी शामिल हो जाइए। अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और एक संकल्प के साथ, जिसके बारे में हम कहते हैं संदीप की, संकल्प लेकर आपको इस दिन की शुरुआत करनी है। किसी भी तरह का तनाव है, किसी भी तरह का प्रेशर है, मेंटली अगर आप स्टेबल नहीं है, एकाग्र करने की भी कोशिश आप कर सकते हैं खुद को आज के दिन में, अगर आप योगा को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहते हैं। एक संकल्प लीजिए कि आज के दिन हम उठे हैं तो आज के दिन की शुरुआत, और निरंतर आगे भी हम इस योगाभ्यास को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाते जाएंगे। पूजा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी शगुफ्ता। पूजा, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है वो भी बताइए, और पहले जो सवाल मैंने किया था कि कौन कौन से योगासन पीछे चल रहे हैं और आप कौन कौन से योगासन कर चुके हैं, वो भी बताइए जरा।
2: देखिये शगुफ्ता, योग की शुरुआत हुई थी सूर्य नमस्कार के साथ सुबह 5 बजे, और अब लगभग
3: या फिर सूर्य नमस्कार के बाद उन्होंने चक्रासन भी करवाया, वार्म अप सेशन भी हुआ, और अभी भी लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं उसी जोश के साथ। सभी लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं।
2: सभी लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अभी आधे घंटे और ये पूरा कार्यक्रम चलेगा शगुफ्ता। ये तमाम तस्वीरें भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर योग करवाया, चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर योग करवाया और साथ ही नारा लोकेश ने भी यहाँ पर स्टेज पर योग किया। और जब ये योग हो रहा था तो लोग काफी ज्यादा यहाँ उत्साहित थे जब नारा लोकेश को स्वामी जी योग करवा रहे थे। अभी बाबू नायडू ने यहाँ पर योग करवाया और साथ ही नारा लोकेश ने भी यहाँ पर स्टेज पर योग किया। और जब ये योग हो रहा था तो लोग काफी ज्यादा यहाँ उत्साहित थे जब नारा लोकेश को स्वामी जी योग करवा रहे थे। अब ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अभी बालकृष्ण आचार्य और योग गुरु स्वामी रामदेव अभी योग कर रहे हैं और उनके साथ ये अद्भुत तस्वीरें मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं वो भी योग करने का, और स्वामी जी आराम आराम से हर चीज उनको सिखा भी रहे थे और उन्हें करेक्ट भी कर रहे थे शगुफ्ता देखिए, और फायदे भी लगातार वो योग के बता रहे हैं। और क्योंकि योग अभ्यास से हमारे शरीर की गतिशीलता बढ़ती है, योग से संतुलन बनता है, वो भी स्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से आप बैलेंस अपनी लाइफ में बना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, वो भी स्वामी जी ने बताया। साथ ही तनाव को कम करने के लिए योग कितना ज्यादा जरूरी है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जो डेली लाइफस्टाइल है हमारा, उसके बारे में भी स्वामी जी ने बताया और कई योग उसको लेकर भी बताए कि प्राणायाम ध्यान लगाने से आपका जो मेंटली तनाव है वो कम हो सकता है। वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में प्राणायाम करना। और शगुफ्ता मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी मानना है कि जो हमारी उम्र होती है वो भी एक तरीके से वो हमारे फेस पर नहीं आती अगर हम हर दिन योग करें। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से लोग जूझ रहे हैं, अनिद्रा से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में योग से बढ़ती उम्र में कई फायदे मिलते हैं, वो योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी बताया। और मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर संबोधन किया, उन्होंने भी कई योग को लेकर बातें कही और कैसे योग से आप अपने जीवन को मजबूत बनाए और तनाव से आप दूर रहे वो भी चंद्रबाबू नायडू ने बताया। और मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि इस बार 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग। और इस बार की थीम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये थीम इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा स्टेबल और काफी ज्यादा स्ट्रांग रह सकता है, तो इसलिए थीम को रखा गया है। ये थीम चुनने का मुख्य कारण ये है क्योंकि दुनिया भर में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है और ऐसे में क्योंकि हमारी आयु बढ़ती है तो उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां हम हमारे जीवन में देखते हैं, तो ऐसे में योग को अपनाने के लिए भी इस बार की ये थीम रखी गई है। और भारी तादाद में यहाँ पे हजारों की संख्या में शगुफ्ता लोग योग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि स्वामी जी को किस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव आसान आसन भी करवा रहे हैं लोगों से और साथ ही कुछ कठिन आसन भी लोगों को करवाए गए, लेकिन लोगों ने प्रयास जरूर किया सभी आसनों को करने का। और देखिए ये भुजंग आसन अभी योग गुरु स्वामी रामदेव करवा रहे हैं, आराम आराम से एक एक स्टेप वो सबको सिखा रहे हैं कि पहले आप एक गहरी सांस लीजिए, उसके बाद ब्रीद आउट कीजिए, तो पूरा एक एक स्टेप वो हर एक आसन का बता रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें शगुफ्ता मैं आपको विजयवाड़ा से दिखा रही हूँ।
4: बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जरा स्टूडियो की तस्वीरें भी दिखा दीजिए क्योंकि हम वो आसन इस वक्त कर रहे हैं जो इस वक्त कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हजारों लोग इस वक्त कर रहे हैं। ये संदीप इसके बारे में जानकारी देंगे। संदीप जरा योगासन के बारे में लगातार जानकारी भी दे दीजिए क्योंकि बॉडी को मूवमेंट करने के लिए लगातार योगाभ्यास किए जा रहे हैं, क्यों किए जाते हैं और क्यों ये जरूरी है।
0: एक आसन जिसका अभी कर रहे हैं हम कटिचालन, तो इससे हमारे कमर में जो जकड़न रहती है वो दूर करने के लिए सबसे अद्भुत आसन है। तो इसको धीरे धीरे श्वासों के साथ लंबा सांस भरते हुए लंबा सांस छोड़ते हुए,
4: बिल्कुल ये तो जो मतलब इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहा है ये कर लेते हैं।
5: ने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, ये बार अपना कोसे कोड़ा आसन करो, अभ्यास करो धीरे धीरे से बैठ चल जाएगा ये पोषक
0: त्रिकोण आसन का अभ्यास।
5: सामने की तरफ सीधा कीजिए, दोनों पाके सामने रखिए, सोजा करो, दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए, दोनों हाथ के नितंब के पास रखो, कमर गर्दन सीधा रखे, कुमोर एवं घर सोजा रखो। इसको हम दंडासन कहते हैं, एक दंडासन बोला है। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ववर्ती अभ्यास
4: संदीप इस वक्त चल रहा है दंडासन।
0: जी भी घुटने में दर्द, बिल्कुल बैठ जाएं सीधे।
5: ऑस्टियोआर्थराइटिस से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए। दुटो पायर पाता के एक संगे जोरो करुन और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। पायर आंगुल गुलो के हाथ दिए धरार चेष्टा करुन। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए। गोराली के निजे नितंबर काछे नियासर चेष्टा करुन और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। हाटू मेजर दिखे, सिर गर्दन सीधा रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए,
6: दोनों हाथ के पीछे नर्दी के लिए जान
5: और दोनों पैरों के बीच में एक फीट का अंतर रखिए।
6: दोनों पायर माझखाने एक फीट दूरत्व बजाय रखून।
5: गर्दन को एक तरफ दाई या बाई तरफ रखकर विश्राम कीजिए।
6: घर जेकोनो दिखे जेमन डान दिखे एवं बाम दिखे।
5: अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे।
6: परवर्ती अभ्यास वज्रासन।
5: जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए।
6: धीरे धीरे एकटा एकटा करे पा नितंबर काछे भाज करुन।
4: संदीप वज्रासन और इसके बारे में थोड़े से फायदे अगर आप बता सकते।
0: जी वज्रासन ये एक योग में एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद करना चाहिए। ऐसे कोई योग में खाने के बाद कोई एक्सरसाइज आसन व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक वज्रासन ही है जो खाने के बाद करना चाहिए। इससे हमारा डाइजेशन बड़ा मजबूत होता है, पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और जिनको बार बार नाभि डिगने की समस्या होती है वो नाभि डिगने की समस्या भी दूर हो जाती है वज्रासन करने से। इसलिए खाने के तुरंत बाद कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ऐसे बैठें वज्रासन में, मतलब वज्र की भांति हमारा पूरा शरीर मजबूत हो जाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। तो सबको ये खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए और खाने के बाद करने वाला एक ही मात्र आसन है वज्रासन।
6: दोनों हाथ के कोमोड़े पीछे स्थापित करो
5: और धीरे धीरे श्वास।
4: चलिए विजयवाड़ा का रुख कर लेते हैं। पूजा भी इस वक्त योगासन करते हुए मुझे नजर आ रही हैं। पूजा इस वक्त क्या कर रही हैं वो भी बता दीजिए जरा। पूजा मेरी आवाज आप तक आ रही है?
7: जी ईशा गुप्ता, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं इस वक्त मयूर आसन कर रही थी
4: जी।
7: और देखिए मतलब इसके लिए मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले हमें वार्म अप थोड़ा करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में कोई भी एकदम से अचानक से कोई झटका ना आए। हाँ। इसलिए बहुत जरूरी है इससे पहले थोड़ा वार्म अप करना। और देखिए योग गुरु तो लगातार हमें योग करा रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा योग मैं भी कर लेती हूँ। और शगुप्ता देखिए कार्यक्रम हमारा 5 बजे शुरू हुआ था, लगभग एक एक आसन योग गुरु यहाँ पर करा रहे हैं, आसान भी है, थोड़े कठिन योग भी है। और उसी के साथ चंद्रबाबू नायडू की भी हमने तस्वीरें शगुप्ता आपको दिखाई, वो भी यहाँ पर योग कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं शगुप्ता, पतंजलि से भी कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जब उनको देखते हैं शगुप्ता हम, तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे नहीं, वो रबड़ है, वो जहां चाहे वहां मुड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से उनको ट्रेन किया गया है। और बचपन से ही अगर आप योग करेंगे तो आपको बढ़ती उम्र में कोई भी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, ऐसा माना भी जाता है। और हमारी इस बार की थीम भी है योग फॉर हेल्दी एजिंग, और वो थीम इस चीज के लिए बिल्कुल सटीक होती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं शगुप्ता कि तमाम लोग यहां पर, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहां पर योग कर रहे हैं। हर तरीके का यहां पर आसन किया जा रहा है, चाहे वो उष्ट आसन हो, चाहे सिद्ध आसन हो, चाहे सुखासनम हो, पद्मासनम हो, हर तरीके का योग यहां पर किया जा रहा है। काफी धुरंधर लोग भी यहां पर आए हुए हैं, योगा के जो ट्रेनर्स हैं वो भी यहां पर है ताकि लोगों की थोड़ी हेल्प की जाए, कि उनको बताया जाए किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर जो स्वामी जी योगासन बता रहे हैं उसको कैसे किया जा सके। शगुप्ता
4: बिल्कुल, चलिए तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, लेकिन स्टूडियो की तस्वीरें भी देख लीजिए। शीर्षासन इस वक्त संदीप मेरे साथ कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस और बहुत एकाग्र होने की जरूरत होती है जब आप शीर्षासन करते हैं। ये उन लोगों को नहीं करना है, अगर आपको गर्दन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको बिल्कुल ये आसन नहीं करना है। इसको करने के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा वजन जो है वो आपके सर के ऊपर आ जाता है। जैसे इस वक्त आप संदीप को देख पा रहे हैं, हाथों के बल से आप सर को बैलेंस करते हैं, आपका ब्लड रोटेशन जो है वो पूरा का पूरा आपके सर की तरफ होता है, और आप ये बैलेंस कर पाएंगे अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे योगाभ्यास करने का, तभी आप इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि ये दिखने में इजी लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही मुश्किल आसन है, और बहुत अभ्यास के बाद इस आसन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी बीच कोलकाता की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं देख पा रही हूँ। लोगों के बीच में वो पहुंचे हुए हैं, योगासन भी वो लगातार कर रहे हैं और लोग भी वहां पर लगातार योगासन कर रहे हैं। आपने इस वक्त शीर्षासन किया, उसके बारे में भी थोड़े से लोगों को जानकारी दे दीजिए।
0: शीर्षासन आसनों का जो योग में राजा है वो शीर्षासन है। तो शीर्षासन 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड, 3 मिनट से लेकर 5 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार। सबसे पहले शीर्षासन सीखने के लिए दीवार का सहारा लेकर सीखिए, और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अद्भुत शीर्षासन का अभ्यास, जिनको बाल झड़ते हैं, तनाव रहता है, उनके लिए बहुत अद्भुत रामबाण है शीर्षासन। और तनाव, डिप्रेशन और चेहरे पर चमक लाने के लिए बहुत अद्भुत शीर्षासन। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा बीपी हाई रहती है, उनको शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
4: ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोलकाता में इस वक्त गोमुख आसन चल रहा था, तो गोमुख आसन एक बार करके बता देते हैं। गोमुख आसन किस तरह से करना है वो भी बता देंगे लोगों को, और गोमुख आसन के फायदे क्या हैं वो भी आपको बता देंगे।
0: जी जी, सबसे पहले दंडासन में बैठे, फिर उसके बाद वज्रासन में, और वज्रासन के आने के बाद में राइट पांव है लेफ्ट पांव के ऊपर।
4: और जो ये भी कई लोगों से हो नहीं पाता, तो फिर वो लोग क्या करें?
0: वो इसको ऐसे बैठ सकते हैं,
4: उनके लिए इजी बता दीजिए।
0: ऐसे आराम से वो बैठ सकते हैं, पांव थोड़ा मोड़ा ऐसे कर सकते हैं।
4: ठीक है, जितना आप कर पाए
0: ऐसे आराम से थोड़ा, लेकिन जो पूरा कर सकते हैं तो पूरा ऐसे पंजे नीचे लेकर ऊपर घुटने
4: के बाद पीछे से आपको हाथ जोड़,
0: और
4: हाँ ये
0: जो पांव ऊपर है,
4: हाँ

0: और ऋषि को दूसरे पांव से।
1: दाएं हाथ पर स्थापित करें, दान एवं पाम काल स्थापित करो नाते रूप। इसको हम मकरासन कहते हैं, मकरासन बोला है यहाँ।
2: अच्छा, बहुत लोगों के संदीप हाथ भी नहीं मिल पाता तो वो क्या करें?
0: वो थोड़ा कोशिश करे धीरे धीरे अभ्यास में, स्टार्टिंग में नहीं पहुंचे लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो यह अभ्यास होने लग जाता है।
2: अच्छा, ये आसन भी एक बार करके बताते हैं, इसका नाम भी बता दीजिए और
0: वक्रासन
2: लोगों को जानकारी दे दीजिए। इसको कहते हैं
0: वक्रासन का अभ्यास।
2: दंडासन में बैठेंगे, क्या है
0: दंडासन में, सबसे पहले राइट पांव को मोड़ेंगे और राइट हाथ ही पीछे रहेगा,
2: राइट हाथ ही पीछे
0: और लेफ्ट हाथ घुटने के अंदर की तरफ आएगा ऐसे।
2: ये भी नहीं हो पाता लोगों से,
0: तो इतना हो सके इतना करें, जो पकड़ सकते हैं पकड़े और घूम जाएं जिस साइड हाथ उसी साइड।
2: मेरी डायरेक्शन उल्टी है, आपकी उल्टी है।
0: हाँ, श्वास को बाहर निकाल के घूम जाएं।
1: तो हाथ के छाती सामने नहीं आ सकता और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसपास।
0: यह आसन शुगर जिनको रहती है उनके लिए बहुत अद्भुत है, कमर दर्द को दूर करने के लिए अद्भुत आसन है।
1: सामान्य श्वास प्रश्वास,
0: इससे पूरी कमर और पेट की नसें खिंच जाती है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। फिर दूसरे साइड से
1: पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को।
0: सो आसन का मतलब ठहरना उस स्थिति में कम से कम 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड एक मिनट तक ठहरें, तभी हमें उसका पूर्ण लाभ मिल पाता है।
2: ये है वक्र आसन। अगर आपको बैक एक की शिकायत है,
0: जी जी,
2: अगर आपको
0: शुगर की दिक्कत रहती है,
2: शुगर की दिक्कत है, तो उसमें वक्र आसन
0: पाचन को बढ़ाने के लिए, इससे पूरी कमर और पेट की नसें पूरी।
2: और शुरुआत में जो योगा बिगिनर्स हैं संदीप, वो कितनी देर के लिए करें वो भी बता दीजिए।
0: स्टार्टिंग में इसको 2-3-4-5 सेकंड का अभ्यास करें धीरे धीरे। श्वासों का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसा अभ्यास हो श्वास आगे झुकने वाला तो श्वास को बाहर निकालें, पीछे झुकने वाला कोई अभ्यास है श्वास को अंदर भरें, ये विशेष ध्यान देना है श्वासों में। योग में वे सारा खेल श्वासों का है, कब श्वास लेना कब श्वास छोड़ना है।
2: बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से मैं इस योगी पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा इस वक्त मुझे ध्यान आसन में बैठी हुई नजर आ रही है, अनुलोम विलोम करती हुई मुझे पूजा इस वक्त नजर आ रही है। पूजा अच्छे से बैलेंस्ड होकर, अच्छे से एकाग्र होकर आप इस वक्त जो योगा कर रही हैं ना, वो सबको इंस्पायर कर रहा है। यही चल रहा है इस वक्त वहां पर प्राणायाम। पूजा, मेरी आवाज आ रही है? चलिए पूजा का रुख करेंगे। कोलकाता की तस्वीरें भी इस वक्त आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। संदीप, इस वक्त कोलकाता की जो तस्वीरें हैं, ये आपको शवासन में लेटे हुए लोग नजर आ रहे हैं?
0: जी,
2: शवासन के एक बार फायदे भी बता दीजिए और शवासन योगासन करने के अंत में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी बता दीजिए।
0: श्वासन करने से मतलब हमारा मन शांत रिलैक्स हो जाता है। जब भी हम व्यायाम एक्सरसाइज का अभ्यास किया है तो उसके लास्ट में जब हम श्वासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा तुरंत जिनको ज़्यादा तनाव डिप्रेशन की समस्या रहती है उनके लिए बहुत अद्भुत रामबाण है। और जो हमारा मन है वो हमारे श्वासों पर केंद्रित हो जाता है।
2: बिल्कुल, ये योगासन एक बार संदीप हम टीवी पर देखते हुए करते हैं, ये जो इस वक्त चल रहा है सामने। आई थिंक सीधे लेटकर पीठ के बल पर पैरों की मूवमेंट्स चल रही है लेफ्ट और राइट।
1: आज सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखे, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45

0: ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे।
1: तो ये हमारे पेट पाचन के लिए बहुत अद्भुत आसन है, जिनको भी वायु की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अद्भुत आसन पवन मुक्त आसन का अभ्यास 3 से 5 बार रोज करना चाहिए।
2: पवन मुक्तासन किन लोगों को नहीं करना चाहिए संदीप, एक बार फिर से बता दीजिए।
1: जिनको ज्यादा कमर में दर्द रहता है उन्हें बिल्कुल अर्ध पवन मुक्तासन करना चाहिए, आधा करना चाहिए, पूर्ण नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे इतना ही करना चाहिए बस। जिन्हों कमर में दर्द नहीं है तो वो गर्दन को उठा सकते हैं,
2: ठीक है। और जिनको दर्द है वो अपनी
1: कमर में दर्द इतना अभ्यास करें, इससे कमर के दर्द में आराम मिलेगा।
2: और जिनकी बैक या नेक में पेन है वो बिल्कुल गर्दन को ना उठाएं।
1: हाँ, गर्दन को नहीं उठाना उनको, सिर्फ घुटने को चेस्ट पर लगाने की कोशिश करें,
2: ठीक है। चलिए इस मुद्रा में आते हैं संदीप, अब जो कोलकाता में चल रही है ध्यान आसन में बैठे हुए ये सारे
0: कपालभाति, जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द,
2: कपालभाति,
0: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
3: जेकोनो ध्यान मुद्राए बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोखके आलतो करे बंध करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखें एवं चोक बंद रखें।
2: एक बार विजयवाड़ा का रुख कर लेते हैं। पूजा वहां पर मौजूद हैं। पूजा कौन सा आसन कर रही हैं इस वक्त बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को और हमें भी। गुप्ता, मैं अभी स्टूडियो से सुन रही थी, हर तरीके के आसन किए जा रहे हैं स्टूडियो में और मुझे आपकी आवाज अभी ज्यादा ठीक से नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार वार्म अप कर रही थी और क्योंकि स्वामी जी भी योग करा रहे हैं तो उसको भी लगातार फॉलो कर रही हूँ मैं। स्वामी जी काफी योग अभी तक करवा चुके हैं और योग और भी योगासन करवा रहे हैं और हर कोई उनको फॉलो कर रहा है शगुफ्ता। और यहाँ पर इतनी तादाद में भीड़ है, सबका जोश 5 बजे जैसा था वो अभी भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। और मैं आपको भी बता दूं शगुफ्ता कि अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी पिछले आधे घंटे से योग कर रहे हैं उसी उत्साह के साथ और अलग अलग तरह से योगासन किए जा रहे हैं। और क्योंकि अगर हम योग करेंगे तो हम हर तरीके से मजबूत रहेंगे, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, क्योंकि ये थीम का मुख्य कारण ही ये है कि दुनिया भर में जो लोगों की आयु अब बढ़ रही है, जो लोगों की एज बढ़ रही है, वो उम्र से जुड़ी जो स्वास्थ्य चुनौतियां उनके सामने आ रही है उससे ना जूझे और पहले से ही अगर योग को किया जाए तो आपकी जब उम्र बढ़ेगी तो आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी और आप काफी ज्यादा फिट फील करेंगे। तो शगुफ्ता, तमाम तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं वो तस्वीरें जहां पर खुद योग गुरु स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं और साथ ही वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे शगुफ्ता। और मुख्यमंत्री भी योग कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था है कि अगर आप थोड़ा योग कर थक रहे हैं तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं ताकि वो बीच बीच में थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी खा पाए शगुफ्ता।
3: बिल्कुल, चले विजयवाड़ा की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी बीच कोलकाता की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं। 4 लोग आपको मंच पर योगाभ्यास करते हुए और लोगों को गाइड करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा संदीप, योगा बिगिनर्स जो होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि बहुत ही शुरुआती दौर में आप योगा सीख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अभ्यास कैसे वो शुरू करें। और एक और सवाल मैं पूछूंगी अपने तमाम साथियों के लिए जो लगातार डेस्क पर बैठते हैं, डेस्क जॉब जिनका रहता है, लगातार आपकी सिटिंग जॉब है, उनके लिए अगर आप योगाभ्यास बता सकें तो बहुत फायदेमंद।
4: बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमें जब अभ्यास करना सीखते हैं योगाभ्यास तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम, अभी हम जब कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम है कंधों के लिए, जिन कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की समस्या रहती है, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम क्रिया। जो बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं और करते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, उनको 5-10 मिनट का टाइम निकाल के सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए, जिससे उनकी जो जकड़न है कमर में वो जकड़न दूर होगी, दिमाग रिलैक्स होगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया का अभ्यास
3: श्वास को ये
4: सूक्ष्म व्यायाम क्रिया।
3: रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जीएनटी के जितने भी मेरे साथी हैं प्लीज हमारे साथ, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं अपने लिए 5 से 10 मिनट जरूर निकालिए। चेयर पर मौजूद हैं आप, जहाँ पर बैठे हैं वहां पर बैठे हुए आप ये योगासन हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यू विल फील अ चेंज डेफिनेटली।
5: ये हम सूक्ष्म व्यायाम के हिस्से ही कर रहे हैं संदीप,
4: ये थोड़े हाँ सूक्ष्म व्यायाम गुट पहले हमने कंधों के किए, थोड़े पंजों के।
3: अच्छा, कोलकाता में इस वक्त ये व्यायाम भी चल रहा है वो भी बता दीजिए जरा।
4: जी जी, भ्रामरी प्राणायाम।
3: भ्रामरी, अच्छा भ्रामरी भी आपको आपके माइंड और बॉडी को एकाग्र करता है।
4: जिनको बहुत ज्यादा
3: स्ट्रेस होता है
4: उनके लिए, बहुत तनाव डिप्रेशन वालों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अद्भुत है। सबसे पहले 3 उंगली आंखों पर, ऊपर वाली माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करके लंबा गहरा श्वास को भरते हैं, ओ की धमनी नासिका के द्वारा श्वास को बाहर निकालते हैं

0: मिथिली प्रकटते हुए आंखों पर लगाएं और इससे हमारे पूरे दिमाग का वाइब्रेशन होता है, जब ऊ की ध्वनि गूंजती है तो इससे हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और एक मन में एक नई शांति, एक नई ऊर्जा का प्रदान होती है हमारे शरीर में।
1: बिल्कुल। और देखिए कोलकाता में जो योगा प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं वो अंत की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये ध्यान आसन में बैठे हुए तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। शुरुआत भी हम ध्यान आसन से ही करते हैं, योग का अंत जब होता है तब भी हम ध्यान आसन और ध्यान मुद्रा में बैठकर योगा का अंत करते हैं। योग उत्सव देखिए लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक मैं आपके साथ हल आसन करना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: हल आसन के बारे में पहले तो किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हैं जिनको माइग्रेन है, जिनको नेक पेन रहता है, जिनके शोल्डर्स में पेन रहता है, वो कतई ना करें। ये
0: जिनको कमर में ज्यादा दर्द रहता है उनको भी नहीं करना चाहिए,
1: उनको भी नहीं करना चाहिए।
0: और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत अद्भुत सर्वांगासन का अभ्यास,
1: हलासन
0: का अभ्यास। तो हलासन
1: आई थिंक हम अपना मैट शिफ्ट कर लेते हैं। ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए तमाम लोगों को इस वक्त आप देख रहे हैं, और अगर आप भी जहां पर इस वक्त मौजूद हैं ओम की ध्वनि के साथ, ओम के उच्चारण के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और तमाम योगासन करते हुए धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक जो चीज मैं संदीप के साथ जरूर करना चाहूंगी, चूंकि आप रिकॉर्ड होल्डर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, सूर्य नमस्कार अभी तक हमने नहीं किया है, तो मैं देखना चाहूंगी कि मैं आपके साथ कितने कर पाती हूँ। रिकॉर्ड तो जाहिर सी बात है नहीं तोड़ पाऊंगी, लेकिन वी विल ट्राई।
0: ऐसा रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूटे ना टूटे लेकिन फिट रहने का रिकॉर्ड तो बना ही सकते हैं हम। फिट रहना जरूरी है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भी है फिट इंडिया। तो पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को फिट बनाना है, वो योग के बल पर ही पूरा विश्व फिट रह सकता है।
1: वही मैसेज हम भी जीएनटी के जरिए आपको दे रहे हैं। चलिए हलासन मैं बहुत टाइम से करती आई हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस छूटी हुई है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी आपके साथ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम मैट को इस दिशा में घुमा लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कैमरा पे एक प्रॉपर एंगल आए।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मैट को इधर को कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए। हम डायरेक्शंस, हाँ आप इस दिशा में आ जाइए, मैं इस दिशा में आ जाती हूँ। और जो प्रैक्टिस में है वो हमारे साथ साथ ये आसन कर सकता है। संदीप थोड़े से फायदे बता दीजिए फिर हम शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल, ये कमर में लचीलापन लाने के लिए, लेकिन जिनको ज्यादा कमर में दर्द है उनको अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे दोनों पाओ को उठाते हुए और दोनों हाथ कमर के नीचे लगाते हुए पहले सर्वांगासन, उसके बाद सीधा हलासन। कोशिश करेंगे दोनों पाओ के पंजे पीछे लग जाएं, इससे मेरुदंड मजबूत होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। हलासन हल जैसी आकृति, आसन ठहरना कम से कम 30 सेकंड तक ठहरें।

0: ये इस वक्त हम क्या कर रहे हैं संदीप, वो बता दीजिए।
1: सेतुबंध आसन, जिनको भी कमर में दर्द रहता है उनके लिए अद्भुत आसन है, और जिनको बार बार ना भी दिखती हो उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। श्वास को बाहर निकाल कर कमर को ऊपर से उठा देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड रखें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे नौकासन का अभ्यास।
0: ठीक है, इसमें पैर और सर दोनों उठाने हैं,
1: दोनों पांव उठेंगे, दोनों हाथ उठेंगे। जिनको भी ना भी दिखती उनके लिए बहुत अद्भुत आसन है, इससे हमारा पाचन स्ट्रॉन्ग होता है, जिनको लीवर की समस्या वो दूर होती है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे। जब भी उठे हम चारपाई से योग कर तो लेफ्ट साइड करके उठे हैं करवट।
0: चलिए योगा अभ्यास जीएनडी के साथ, हालांकि ये करके थोड़ा सा आप ब्रेथलेस तो हो जाते हैं ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको इसके बाद थोड़ा सा 2 घूंट पानी जरूर पीना है। संदीप अपना मैट आप घुमा लीजिए, उसी दिशा में हम आ जाते हैं वापस।
1: सूर्य नमस्कार।
0: अब बैठ जाइए।
1: ये लगा पीछे।
0: चलिए एक बार फिर से विजयवाड़ा का रुख कर लेते हैं। पूजा हमारी सहयोगी लगातार देखिए वहां पर योगासन कर रही हैं। पूजा इस वक्त कौन सा आसन कर रही हैं वो भी बता दीजिए, और पीछे तस्वीरें भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए।
2: पुण्य क्षेत्रमु कृष्णा मरी गोदावरी नदुल संगमु कदलु कृष्णा नदी जलमु सौंदर्यमु मरियु।
0: पूजा मेरी आवाज आ रही है आप तक?
2: इच्छिनु गोदावरी जीवनमु मरियु सुख समृद्धि इच्छु नदीगा लोकमन प्रसिद्धिम।
0: चलिए पूजा के बाद दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, विजयवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे हुए हैं। सुबह 5 बजे से प्रोग्राम निरंतर जारी है, हजारों की संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी भी यहां पर पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जो कि योगा करने में पूरी तरह से पारंगत हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देश दुनिया में योग दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कोलकाता में जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हजारों लोग योगाभ्यास कर रहे हैं वो भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगाभ्यास देखिए एक ध्यान आसन के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ओम के उच्चारण के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ आगे बढ़ते हुए जितने भी योगासन के बारे में आपको जानकारी है वो धीरे धीरे आप अपनी जीवन शैली में उसको एक अहम हिस्सा बना सकते हैं, और इस तरह से आप आज के दिन को, इनफैक्ट मैं जो बात आपको लगातार बोल रही हूँ कि आप भी इस दिन को हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। आप इस वक्त जहाँ पर भी मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, दफ्तर में मौजूद हैं, स्कूल में मौजूद हैं, किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ जीएनटी के साथ इस योग उत्सव को सेलिब्रेट जरूर कीजिए। तमाम बीमारियों को अगर आप दूर भगाना चाहते हैं तो योग से आपको जुड़ना होगा, इस योग उत्सव का आपको हिस्सा बनना होगा। इस बार का जो थीम है योगा फॉर एंटी एजिंग, हेल्दी एजिंग, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी बायोलॉजिकल एज को अगर आप कम करना चाहते हैं, ये भी सही है ना संदीप, बायोलॉजिकल एज आपकी बहुत कम हो जाती है अगर आप डेली प्रैक्टिस के रूप में योगा को अपनाते हैं।
1: अगर हमने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को दे दिया तो ये है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने शरीर को फिट रह सकते हैं जब तक हम जिए, लेकिन इतने फिट निरोगी शरीर हमारा रहेगा। इसलिए हमें योग को सिर्फ एक दिन न करके योग दिवस पर 365 दिन योग करना चाहिए, और जिसमें आप प्राणायाम है, आसन है, सूर्य नमस्कार है, जो भी आपको थोड़ा टाइम मिले कम से कम 1 घंटे का टाइम अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल, ये जो तस्वीर हम दूसरी तस्वीर आप इस वक्त संदीप देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर कौन सा आसन चल रहा है उसके बारे में बता दीजिए। नौका आसन करते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं वैसे। चलिए, तमाम आसन आपको लगातार उसके बारे में हम लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन योग की शुरुआत में जैसे कि हम कहते हैं कि आप ध्यान को एक जगह लगाइए, एक जगह अगर ध्यान नहीं लग रहा है किसी कारणवश तो एक बिंदु पर आप देखिए, उस बिंदु को देखते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए फिर आप योगा की शुरुआत कीजिए, ये भी सही है।
1: बिल्कुल, जब हम ध्यान की तरफ कोशिश करते हैं तो ध्यान नहीं लग पाता, तो कोशिश करें जो हम श्वास को ले रहे हैं उस श्वास वाली क्रिया पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करें, कैसे श्वास शरीर में आ रहा है, किस श्वास शरीर से बाहर निकल रहा है, उसको देखने की, उसको महसूस करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान एक स्थान पर केंद्रित होने लग जाता है।
0: और ये इस वक्त संदीप देखिए ये शवासन कर रहे हैं,
1: शवासन का अभ्यास।
0: और शवासन कितनी देर तक करना चाहिए?
1: कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, कुछ लोग तो आधा आधा 1-1 घंटे भी कर लेते हैं, तो बहुत आनंद आता है एक प्रकार की, कईयों को तो नींद भी आ जाती है, जिनको नींद नहीं आती है ना उनके लिए तो बहुत अद्भुत है शवासन का अभ्यास।
0: 1-1 घंटा करते हैं मुझे लगता है वो सो जाते होंगे।
1: कुछ लोग तो कहते हैं हमें सबसे योग में अगर कोई आसन लगता है तो वो शवासन ही लगता है।
0: चलिए योगासन में कुछ और मत कीजिए लेकिन शवासन ही कर सकते हैं। शवासन में भी आपको करना ये है कि तमाम तरह के विचार अगर आपके जहन में हैं उनको दूर कर दीजिए, उसके बाद आप फोकस कर दीजिए योगा करने पर, इस प्रैक्टिस को करने पर, तभी इसका फायदा आपको दिखाई देगा। सूर्य नमस्कार आपके साथ करना बनता है
1: बिल्कुल, आप मैं तो ही कहना चाहूंगा और कुछ करो ना।
0: 37 घंटे का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, विच इज अ बिग रिकॉर्ड। मैं देखना चाहूंगी कि मैं कितने कर पाती हूँ, मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं है, इसको कंपटीशन की तरह नहीं लेना। लेकिन चलिए अपनी जगह पर एक बार आ जाते हैं, मैट को सेट करते हैं। क्योंकि आपने कितनी बार बताया था मुझे,
1: 20,000 बार
0: इन्होंने सूर्य नमस्कार किए हैं। अच्छा मैं एक बार करके बताती हूँ, ठीक है, मैं करके बताऊंगी फिर आप मुझे बताना कि मैंने सही किया या नहीं किया। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं रिकॉर्ड होल्डर के साथ, लेकिन मैं एक बार करके दिखा रही हूँ इनको। अच्छा लेफ्ट और राइट दोनों से करना है या सिर्फ राइट से करना
1: starting
0: है?
1: पहले स्टार्टिंग में राइट से करती होता है, 9 में फिर लेफ्ट आएगा।
0: अच्छा मैंने सही किया नहीं किया वो आप मुझे बताएंगे,
1: ठीक है?
0: अच्छा उतनी देर आप फायदे बता दीजिए।
1: बिल्कुल, सूर्य नमस्कार करने से सूर्य की तरह हमारे शरीर में तेज और चमक आ जाती है। सूर्य नमस्कार एक शरीर का पूरा संपूर्ण व्यायाम है, और सूर्य नमस्कार सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं है, इसमें आसन भी आते हैं सूर्य नमस्कार में, इसमें प्राणायाम भी आते हैं सूर्य नमस्कार में, हमारे हार्ट को, किडनी को, लीवर को मजबूत करने के लिए और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़े। हम तो अद्भुत है, और जिनको तनाव डिप्रेशन की समस्या उनके लिए भी रामबाण है सूर्य नमस्कार, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो इतना अद्भुत है कि दुनिया के वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करने लगे हुए हैं।
0: सही किया मैंने,
1: बिल्कुल बढ़िया किया। अब करते हैं एक साथ,
0: इसी स्पीड के साथ करना है, स्लो करना है।
1: बिल्कुल, श्वासों के साथ करेंगे पहले हम अभ्यास। अच्छा, सबसे पहले एक में,
0: अच्छा मैं थोड़ा मैट पे कर लूं,
1: एक, अब श्वास की गति नॉर्मल, दो श्वास को भरते हुए, एक में,
0: अच्छा मैं थोड़ा मैट पे कर लूं,
1: एक, अब श्वास की गति नॉर्मल, दो श्वास को भरते हुए, तीन श्वास को बाहर निकालते हुए,
3: कोशिश करें घुटने सीधे रहे, माथे पर लगाएं,
1: चार राइट पांव पर बैठेंगे लेफ्ट पीछे, श्वास को भरते हुए, छह
3: श्वास को बाहर निकालते हुए,
1: छह दोनों पांव के घुटने हृदय ठोड़ी, सात श्वास को भरते हुए। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, इसमें 7 आसन 5 आसन फिर से रिपीट हो जाते हैं, 8 और 9। अब लेफ्ट पाँव आगे और 10, राइट आगे और 11 और 12। अगर ऐसे रोज 10 मिनट या 10 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास,
3: पहले धीरे धीरे सीखते हुए
1: फिर थोड़ा फास्ट भी इसको हम थोड़ा कर सकते हैं।
0: अगर बिल्कुल, चलिए
1: 100 सूर्य नमस्कार रोज तो कम से कम कर लेने
0: कर सकते हैं। कितने सारे फायदे हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है, अगर अभी तक नहीं किया है तो हमारे साथ कीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये योगासन के बारे में जानकारी देने के लिए। ये पेशकश लगातार यूं ही चलती रहेगी, आप देखते रहिए GMT। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
4: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
0: आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम स्वस्थ आयु के लिए योग सेहत का मना रहे हैं जश्न। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगासन, दुनिया को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। दुनिया भर में 2500 जगह पर योग कार्यक्रम का आयोजन, लोगों में दिखा उत्साह, अद्भुत तस्वीरें बनी गवाह। देश के अलग अलग हिस्सों में नेता भी योग करते हुए नजर आए, अहमदाबाद में अमित शाह ने तो झांसी में योगी आदित्यनाथ ने किया योग, दिल्ली में भी कई नेताओं ने किया योग। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच में बीएसएफ जवानों का जोश भी दिखा हाय, भारी ठंड के बीच में किया योग, लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी ने किया योग। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योगासन करते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता

0: ईद का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 21 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, आखिरकार सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है, अगर चंद्रमा का संबंध माँ से है तो सूर्य का पिता से है, लेकिन आखिरकार ये संबंध कैसे आप इसे समझ सकते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये?
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य और पिता का आपसी संबंध क्या है, सूर्य से पिता और पिता से सूर्य कैसे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है। देखिए, सूर्य इस जगत के प्राण और पालन पोषण का महत्वपूर्ण मुख्य ग्रह है। अगर सूर्य का अस्तित्व ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन होगा ही नहीं। सूर्य से ही इस जगत के अंदर जीवन और प्राण का संचार होता है। हमारे पिता भी हमारे प्राण और जीवन के केंद्र हैं। संतान को आत्मज कहते हैं, यानी पिता की आत्मा से जन्म लेने वाला। तो पिता मतलब आपकी आत्मा, आपका प्राण, सूर्य का भी वही मतलब है। इस आधार पर पिता का संबंध सूर्य से माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य की स्थिति को देख करके आप अपने पिता की स्थिति को समझ सकते हैं। इसी तरह से आपके पिता को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर सूर्य को भी समझा जा सकता है। यानी अगर हम ये जानना चाहें कि आपके पिता के हालात क्या हैं, उनका जीवन क्या है, तो हमें कुंडली के सूर्य और सूर्य से नवम भाव को देख लेना है। और अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा सूर्य कैसा है तो हमें पिता को देख लेना है। तो पिता से सूर्य को और सूर्य से पिता को समझा जा सकता है।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, तनाव आपका कम होता है।
0: आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। स्तंभ।

0: भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, कुंडली में सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है। ऐसे में पिता का सम्मान ना करने से, उनके साथ संबंध ठीक ना रखने से क्या कमजोर हो सकता है आपकी कुंडली का सूर्य? आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग अपने माता पिता का सम्मान करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं रखते। तो अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो क्या होगा? पिता का मतलब है सूर्य। तो अगर पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है तो जीवन में सूर्य की शुभ शक्तियां घटती शुरू हो जाएंगी, सूर्य की शुभ शक्तियां कम हो जाएंगी। और सूर्य की शुभता घटेगी अगर, तो जीवन में मान सम्मान और यश आपका घटेगा, अपयश की स्थिति जीवन में बनेगी। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो शरीर में सूर्य के तत्व कमजोर होंगे, फलस्वरूप आपको हड्डियों की समस्या होगी और हृदय रोग की संभावना भी बन सकती है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ, बॉसेस के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, और बार बार आपके रोजगार में, बार बार आपके करियर में समस्याएं पैदा होंगी। यानी अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो शुभता है, वो आपके जीवन से धीरे धीरे कम हो जाएगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न विशाल जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 5 जून 2002 का जन्म है, 8 बजे रात को कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विशाल जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या कोई क्लैरिकल नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक देखिए स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस कुंडली में आपको बेवजह की चिंताओं से और तनाव से बचना होगा। कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं बन रही है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं, साथ में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखेगा। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न दिलीप प्रजापति जी ने वाराणसी से लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 2005, 9:52 सवेरे, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं, तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और बेटी का करियर कैसा रहेगा। दिलीप जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली में बुध की गड़बड़ी की वजह से कान नाक गले की एलर्जी की साइनस की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, कोल्ड कफ और सेंसरी ऑर्गन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ समय के बाद, लगभग फरवरी 2027 के बाद, इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जहां तक करियर का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी और उस क्षेत्र में ये बेहतर करियर बना पाएंगी। एक तो इनसे कहिए कि एक पन्ना बनवा के पहन लें, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगी, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये दो काम नियमित रूप से करें, स्वास्थ्य और जीवन बेहतर होगा।
1: तो देखिए, पिता का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से क्या होगा, क्या आपकी कुंडली में इससे सूर्य मजबूत हो सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, पिता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप पिता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो क्या होगा जीवन में? कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, कितना भी गड़बड़ हो, अगर पिता का सम्मान करेंगे, पिता के साथ संबंध ठीक रखेंगे, तो कुंडली में खराब सूर्य मजबूत होगा। जीवन में बिना प्रयास किए हुए मान सम्मान मिलेगा, नाम और यश की कमी जीवन में नहीं रहेगी। अगर पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। और पिता का सम्मान करने से सूर्य की ताकत मिलेगी, प्रशासन के मामले में और राजनीति के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो आपका सूर्य कितना भी खराब हो, कितने भी निगेटिव कंडीशन में बैठा हो, अगर आप पिता का सम्मान करेंगे तो आपके अंदर सूर्य की शुभता बढ़नी शुरू हो जाएगी।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
0: तुला राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक चिंता आपकी समाप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो अगर आपको अपने कुंडली में मौजूद सूर्य को मजबूत करना है, उसके लिए पिता के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का संबंध रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
0: देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, सूर्य कितना भी निगेटिव हो, अगर पिता का आशीर्वाद आपको मिले तो आपका सूर्य बेहतर परिणाम देगा। तो पिता के साथ कैसे रहें, कैसे व्यवहार करें कि सूर्य मजबूत हो, रोज सुबह और शाम अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा। अगर साथ में नहीं रहते या पिता का देहांत हो गया है तो उनके चित्र के सामने सर झुकाकर सुबह शाम प्रणाम करिए। पिता अगर जीवित हैं तो उनके अन्न, वस्त्र और चिकित्सा में कोई कमी ना आने दें। संभव हो अगर तो पिता के साथ रहने का प्रयास करें और अपने कमरे के साथ ही, अपने कक्ष के साथ ही पिता का कमरा रखना अच्छा होगा। किसी भी रविवार को अपने पिताजी के हाथ से तांबे या सोने की वस्तु ले लें और इसको अपने पास हमेशा रखें, इसका हमेशा प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पिता जीवन में प्रधान हो जाएंगे, लीड करेंगे, और अगर जीवन में पिता की प्रधानता होगी तो आपकी कुंडली का सूर्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा।
1: तो पिता के साथ संबंध ठीक रखने के लिए किस प्रकार सूर्य की उपासना करें और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता स्वस्थ रहें, आपका रिश्ता पिता के साथ अच्छा रहे, पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन उसमें रुकावट है, अड़चन है, तो किस प्रकार सूर्य की पूजा करें कि पिता के साथ संबंध बेहतर हो जाएं? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठकर या अपने पूजा स्थान पर बैठकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पिता की लंबी आयु के लिए रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन मत करिएगा। तो ज्यादा नहीं, अगर आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो केवल इतना करने से आपके जीवन में पिता की स्थिति मजबूत होगी, रिश्ते बेहतर होंगे और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, हालांकि दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अपूर्व दवे जी ने हमें लिखा है, गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 1996, 6:17 प्रातः, उमरेठ, आनंद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी कनाडा में रहता है, वहां नौकरी करता है, उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अपूर्व जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, पहली बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके कनाडा में ही परमानेंट बस जाने के योग बनते हैं। करियर को लेके, धन को लेकर के कोई बहुत मुश्किल कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। इस कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है और आने वाले साल में वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो सकता है। आगे आपके पुत्र का जीवन बेहतर हो, दूसरा विवाह हो सके, करियर में सेटल हो सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हमारे ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको पंडित जी जरूर देंगे। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न प्रियंका सिंह ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 16 नवंबर 1992 का जन्म है, 11:35 प्रातः, रीवा मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि 4 साल से मेरा तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, तलाक का केस चल रहा है, उससे मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा। प्रियंका आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। अगले 8 महीने में अप्रैल 2027 के पहले आपका डिवोर्स होगा और आपको अपने पहले विवाह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपका दूसरा विवाह साल 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। तो आपका आने वाला समय अच्छा है, भविष्य बेहतर है, बहुत चिंता करने की, बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें। अगर ये काम आप करें आप केस से जल्दी छुटकारा पाएंगी और आगे आपका दूसरा विवाह भी समय पर हो पाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल की उम्र हो जाने के बाद मंगल दोष कुंडली में से समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, कुंडली में कोई भी शुभ योग हो या अशुभ योग हो या कोई दोष हो वो कभी समाप्त नहीं होता। दशाओं के अनुसार उसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसका प्रभाव जीवन भर बना रहेगा और इसके प्रभाव से आप प्रभावित होते रहेंगे।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर शुभ पहर का समय क्या है और उसका उपाय क्या है।
0: दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम के समय 6 बजे से 7:30 तक का समय शुभ पहर का समय रहेगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा एजुकेशन कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। ये लोग शिक्षा और ज्ञान के मामले में आगे रहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि युवावस्था में, यंग एज में एक बार इनकी पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपके घर में सारे सदस्य, ज्यादातर सदस्य बीमार रहते हैं तो क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला और लाल धागा ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और इस छल्ले को लाल धागे में डालकर अपने मेन डोर पर दरवाजे की हैंडल से लटका दीजिए। ऐसा करने से घर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगेगी और आपके घर में बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: तो आज देश और दुनिया बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस के इस खास मौके पर देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बार योग दिवस की थीम जो है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंटी एजिंग, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग किया जाता है। इस थीम का उद्देश्य ये बताना है कि योग सिर्फ फिटनेस का जरिया मात्र नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर, आपके मन और मानसिक स्वास्थ्य को जो दिक्कतें आती हैं उसको दूर करने के लिए योगा आपको मददगार साबित होता है। अपने जीवन शैली को अगर आप बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योगा करना है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योग किया। देश और दुनिया से लगातार योग दिवस की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन योग उत्सव का ये सेलिब्रेशन सुबह से ही जारी है। जीएनटी पर भी ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर पानी में योगा किया जा रहा है, कहीं पर योगा अभ्यास निरंतर सुबह से 5 बजे से जारी है। विजयवाड़ा की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थकों और आम लोगों ने योगाभ्यास किया। निरंतर ये योगाभ्यास किया जा रहा है, आम लोगों के साथ खास भी आज इस योगाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। राजनेताओं से लेकर आम लोग सभी इस योगाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। तो तस्वीरों में आपको अनुराग ठाकुर और हिमंता बिस्वा शर्मा भी नजर आएंगे, जो कि योगा के इस प्रैक्टिस को लगातार फॉलो करते हैं और वही योगा करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। तो बीमारियों को जड़ से अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक संकल्प के साथ आज के दिन की शुरुआत, ये गोमुख आसन करते हुए इन तस्वीरों में आप अनुराग ठाकुर को देख सकते हैं। गोमुख आसन, जिसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में या बैक एक की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करता है, आपकी पाचन प्रक्रिया है जो है उसको भी काफी हद तक ये बेहतर बनाता है। तो आज बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको देश और दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। आज जीएनटी भी इस दिवस को सुबह से ही आपके साथ लगातार मना रहा है। ये गोमुख आसन को पहले आप लेफ्ट से करते हैं, फिर आप राइट से करते हैं। दोनों हाथ पीछे अगर आप जोड़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, तो उस अवस्था में आते हुए ये बताता है कि आपका बैलेंस कितना अच्छा है, आप कितना एकाग्र होकर योग कर सकते हैं। अब इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं दुनिया भर में इस शिल्पा शेट्टी को देख रहे हैं आप। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और योगा भी ये करती आई हैं और योगा का संदेश भी देती आई हैं। कितने फिट हैं ये स्टेज में भी ये देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिम भी करती हैं, ये योगा भी करती हैं। कई जगहों पर इनको योगा प्रैक्टिस करते हुए आपने देखा होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम से ये शुरुआत करती हुई आप देख सकते हैं, और ये भी अक्सर यही कहती हैं कि अगर आप हेल्दी एजिंग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको योगा तो नियमित रूप से करना ही होगा। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको सुंदर रहना है, अगर आपको चेहरे का ग्लो गायब नहीं करना है, तो आप निरंतर योगाभ्यास जरूर कीजिए। और रेलवे स्टेशन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये देखिए, ये भी अचंभित करती हैं कि यहाँ पर भी योगाभ्यास किस डिसिप्लिन के साथ और किस अनुशासन के साथ किया जा रहा है। ये अभी इनको आपने बटरफ्लाई आसन करते हुए देखा, ध्यान आसन से शुरू करते हुए धीरे धीरे, अगर आप योगा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आसान आसनों के साथ आगे बढ़ते हुए फिर आप बाकी आसनों पर आइए। लेकिन इसका अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद जितना आपको बॉडी आपको अलाउ करती है।
1: अच्छे से उनको वार्म कीजिए।
0: और पैंगोंग लेक की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन उन दिक्कतों को भी दूर करते हुए, क्योंकि योग अगर आप करते हैं, योग में अगर आप भस्त्रिका करें यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर में, तो आप योग अभ्यास आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एक ऊर्जा पैदा होती है जब आप योगासन करते हैं। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब अगर आप करते हैं तो फिर आपको ठंड या फिर गर्मी दोनों आपको फील ज़्यादा नहीं होंगे। कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो नियमित रूप से अगर आप योगाभ्यास करते हैं, आपकी जीवन शैली का ये अहम हिस्सा है, तो फिर आप इन चीज़ों से भी दूर हो जाएंगे। ये पैंगोंग झील की तस्वीरें, आप पैंगोंग लेक के किनारे लोग अपने मैट लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी ओम के उच्चारण के साथ ध्यान आसन में बैठते हुए, नमस्कार आसन में बैठते हुए, हथेलियों को रगड़ते हुए, एक ऊर्जा का संचार करते हुए ये लोग योगासन और योगाभ्यास कर रहे हैं। तो जीएनटी पर योग उत्सव लगातार जारी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। ये लेग मूवमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हम शिशुपाल आसन भी कर सकते हैं। तो देश और दुनिया की तस्वीरें इसी तरह से जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये पेशकश लगातार जारी है।

0: चलिए देश और दुनिया की तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक तरफ फ्रेम में है संदीप आर्या, हमारे साथ वर्ल्ड एथलीट हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन हैं जिन्होंने 37 घंटे तक सूर्य नमस्कार करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। और प्रियंका मेरे साथ फ्रेम में आ गई हैं। प्रियंका बता रही हैं कि बहुत मुश्किल आसन कराने वाली हूँ। शगुफ्ता तैयार हो जाओ अपनी ऊर्जा को बरकरार रखेंगे। वेलकम ऑन GNT। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइए।
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: अच्छी खबरें, good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। DIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगासन। दुनिया भर में 2500 जगह पर योग कार्यक्रम का आयोजन, विदेश में भी लोगों में दिखा उत्साह, अद्भुत तस्वीरें बनी गवाह। देश के अलग अलग हिस्सों में नेता भी योग करते हुए नजर आए। अहमदाबाद में अमित शाह ने तो झांसी में, योगी आदित्यनाथ ने किया योग। दिल्ली में भी कई नेताओं ने किया योग। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों का जोश भी दिखा। हाय, भारी ठंड के बीच में किया योग। लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योगासन करते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। गुरुग्राम में शिल्पा शेट्टी ने भी किया योग। आज 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरों से निगरानी की जा रही है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जीएनटी पर ये उत्सव हम लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो में। वेलकम ऑन जीएनटी अगेन। संदीप आर्या मेरे साथ सुबह से बने हुए हैं। संदीप आपको बता रहे हैं कि योगा आप सबके लिए कितना फायदेमंद है, योगा आपको नियमित रूप से क्यों करना चाहिए, योगा करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, रोगों का निवारण आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। संदीप आपको बता रहे हैं कि योगा आप सबके लिए कितना फायदेमंद है, योगा आपको नियमित रूप से क्यों करना चाहिए, योगा करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, रोगों का निवारण आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रियंका आपसे पहले, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके लिए योगा अभ्यास क्या है, आपके लिए योगा के क्या मायने हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा फॉर यू?
1: देखिए, योगा क्योंकि मैं 10 साल की थी तब से योगा कर रही हूँ, तो मुझे लगता है योगा ने मेरी पूरी पर्सनैलिटी को यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मेंटली, फिजिकली,

0: है जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, मनुष्य का मनुष्य से जुड़ना, जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, ये भी एक योग ही है।
1: और खुद का खुद से जुड़ना,
0: का खुद से जुड़ना भी योग ही है।
1: अच्छा ये बताइए प्रियंका
0: जी,
1: आजकल डिप्रेशन बहुत है लोगों को
0: जी,
1: है ना, स्ट्रेस बहुत है,
0: बहुत ही ज्यादा,
1: जिन पे काम का प्रेशर है वो स्ट्रेस में है
0: जी,
1: घर में कोई बीमार है उसका स्ट्रेस है
0: जी,
1: काम करते हैं उसका स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्ट्रेस बस्टर योगा क्या हो सकता है?
0: देखिए स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए सबसे पहले जो, अगर हम आसन में जाते हैं, पहले आसन प्राणायाम मुद्रा बन धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पे बात में करेंगे। सबसे पहले आसन, तो जितना फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं।
1: अच्छा।
0: जानते हैं क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड की तरफ सिर की तरफ आता है, तो जो हमारे हमारे ब्रेन को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जैसे इस तरीके से पाद हस्तासना हो गया, या फिर हम बैठ करके भी ये पाद हस्तासना और ये पश्चिमोत्तानासन, ये सारे जितने भी आसन
1: ना हो पाए तो
0: आप
1: बताओ
0: इजी में आप जितना जा सकते हैं,
1: अच्छा
0: डोंट फोर्स टू योरसेल्फ, आप जितना जहां तक जा सकते हैं आसानी से उस तरीके से कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जैसे ये चाइल्ड पोज हो गया इस तरीके से, तो इससे क्या हुआ, आप देखेंगे आपके ब्रेन की तरफ ब्लड गया, तो जब ब्लड जाता है ऑक्सीजन वहां की आपकी प्योर होती है। और स्ट्रेस एंजाइटी होता क्यों है, ऑक्सीजन की कमी से। अगर उससे साइकोलॉजिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो ऑक्सीजन की कमी से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। जब हम ऑक्सीजन को प्रॉपरली अपने ब्रेन तक ले जाते हैं तो ऑक्सीजन इससे दूर होता है। और स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग करें इसको, इससे आपका एंजाइटी दूर होता है। सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस भरें, माउथ से एक्सहेल करिए, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे 10 to 1 के क्रम में आइए। जैसे 10 पे काउंट किया फिर 1 तक ऐसे आइए, आप देखेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप इस अभ्यास को करते हैं तो सडनली आपका स्ट्रेस आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा प्रैक्टिकली।
1: ये तो बहुत ही नॉर्मल और नॉर्मल बैठे कर सकते
0: कहीं पे भी बैठे, जैसे बहुत से लोग किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ लोग हाथ पैर इधर उधर मारने लगते, मैंने देखा यंग एज के लोगों को,
1: बच्चे भी करते हैं
0: घर में। तो ये प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को कराएं, इससे उनका एंजाइटी लेवल दूर होगा। इसके साथ साथ ओम चैंटिंग है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये भी आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। मैं एक एक प्रैक्टिस बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। आप सुखासन पद्मासन किसी भी पोज में बैठ सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। इनहेल करेंगे, सबसे पहले ओम चैंटिंग करेंगे,

ओम चैंटिंग जब हम करते हैं तो उसको पूरा फील भी करें. जब हमें स्ट्रेस रिलीज करना होता है तो जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी, जब भी हम स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, जब हम ओम चैंट करते हैं उसको लास्ट में, जो उसकी शांति आई है आपके हमिंग करने से, वो आप पूरी तरीके से महसूस करें. और कम से कम 3 से 4 बार आप ओम चैंटिंग करें. इसके बाद एक बार आपको बताऊंगी सही तरीका भ्रामरी प्राणायाम का क्या है. आपके थंब इस तरीके से आप ईयर्स को लॉक करिए, लिटिल फिंगर आपकी लिप्स के पास में. ये हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों को पहले लॉक कर रहे हैं, फिर हम नॉस्टिल के पास रखते हैं और आईज पे और फोरहेड पे. अब जो नॉस्टिल है वहां धीरे से उंगलियों को ऊपर उठा करके लंबी गहरी सांस भरेंगे और उंगलियों को हल्के से रख करके हमिंग करेंगे लाइक अ बी.

0: ये जितने हमिंग और ओम चैंटिंग वाले ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको आप फील भी करिए. जैसे 3 से 4 बार किया, कुछ देर आंख बंद करके शांति से बैठिए, उसको ब्रेन में फील करिए, तब आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन रिलीज होता है.
1: होगा. अच्छा संदीप, आपने अभी हम जब ब्रेक में थे आपने बताया कि 1 मिनट का चैलेंज.
2: बिल्कुल.
1: है ना, सांस रोकने का चैलेंज. पहले तो वो बताइए, फिर मैं टाइमर ऑन करूंगी.
2: बिल्कुल.
1: ठीक है, 1 मिनट तक देखते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अच्छा, आप मत कीजिए बिना प्रैक्टिस के. मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ दर्शकों को, क्योंकि ये श्वास की प्रैक्टिस है कि आप 1 मिनट तक अगर आप श्वास को रोक पाते हैं, ब्रीथ को रोक पाते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस को, तो फिर आप पूरी तरह से फिट हैं. यही कहा ना आपने.
2: बिल्कुल.
1: तो उसके फायदे क्या है वो बता दीजिए, और किनको नहीं करना है वो भी बता दीजिए.
2: जी, जिनको ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है उनको ये अभ्यास नहीं करना है. स्टार्टिंग में आप 10-12 सेकंड का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट है, कहते हैं मैं बिल्कुल फिट हूं, तो पता लग जाएगा. आप एक बार अपने पूरा श्वास को भर के फेफड़ों के अंदर उसको होल्ड करना है. अगर आप जितना टाइम उसको 1 मिनट या उससे अधिक रोक सकते हैं तो आप बिल्कुल फिट है. एक बार करेंगे सभी.
1: ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी.
2: बिल्कुल.
1: मैं 1, 2, 3 करूंगी और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ये मैं टाइमर लगा रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर, कौन कितना रोक पाता है. ठीक है,
0: ठीक है,
1: वो क्लियर हो जाएगा इससे. ठीक है, 1, 2, 3.

0: ये अगर आप जूम इन कर सकते हैं इस पे, तो मैंने भी रोक लिया है. संदीप एक मिनट तक रोका है, प्रियंका ने भी रोक लिया है. आई थिंक ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. अच्छा मैं फिट हूँ फिर?
1: बिल्कुल
0: है, रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने.
2: सुपर फिट.
1: कोशिश करनी चाहिए हमें कम से कम.
0: अच्छा ये
1: 12 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 40 सेकंड.
0: एक मिनट का क्या पैमाना है? एक मिनट आपने जो बोला, एक मिनट अगर आप करते हैं तो ये किस आधार पे आपने कहा कि
1: ये मतलब हमारे हार्ट के
0: लिए?
1: अगर हार्ट को आपको 100% अगर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना है ना,
0: हाँ.
1: तो इसे अभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं इसको.
0: अच्छा.
1: अष्टांग योग का भाग. तो हाँ. अभ्यंतर प्राणायाम श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास.
0: हाँ.
1: तो जितना इसको अभ्यास हम 3-4-5 वर्ष लेके 10 बार तक कर सकते हैं, और इसको फिर धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं. 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट तक भी श्वास को.
0: अच्छा, ये आप पानी में भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल,
0: है ना, पानी में भी यही प्रैक्टिस करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और वहां पे कितनी देर तक, शुरुआत में कितनी देर तक की?
1: शुरुआत तो 10-15 सेकंड की होती है, धीरे धीरे. इससे आपका शरीर का स्टेमिना, ताकत और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो तेजी से बढ़ जाता है, और किसी प्रकार का रक्त का में नस नाड़ी कोई ब्लॉकेज हो रही है वो ये प्राणायाम का अभ्यास करने से ब्लॉकेज भी दूर हो जाता है, और एक बिल्कुल फिट इंसान बन जाता है.
0: ठीक है, आसन कौन सा कराएंगे आप नेक्स्ट बताइए.
1: जी जी, आसन कराएंगे. सब आसनों का राजा शीर्षासन.
0: शीर्षासन तो आप ही करेंगे ना?
1: जी जी.
0: शीर्षासन जो नहीं करने वाले वो नहीं करेंगे, ठीक है? 2-2 घंटे ये लोग योगा करके आए हैं. अच्छा मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. मीनल पाठक, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट, स्टूडियो में आ गई हैं. वेलकम ऑन GNT.
3: नमस्कार.
0: इनके ग्लो का राज, एक तो मुझे लगता है इनको देखते हुए थीम रखा गया है इस बार, योगा फॉर एंटी एजिंग, फॉर मीनल, जस्ट फॉर मीनल. मैं आपका इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, ठीक है?
3: शगुफ्ता, ये आपके लिए भी कह सकती हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल, सेम चीज. आई थिंक वो सभी लोग जो अपने फिटनेस के लिए, अपनी वेलनेस के लिए जागरूक है ना, ये सबके लिए बात है. इनफैक्ट कल आई वॉज डूइंग दिस वन शो जिसमें वो बोल रहे थे कि ER करके जीन थेरेपी आ रही है फॉर एंटी एजिंग. कितने इंजेक्शन लगवा लेंगे, कितना बोटॉक्स करवा लेंगे, कितना फिलर करवा लेंगे, यू कांट डू इट फॉर एवर. लेकिन वो जो बॉडी का अंदर से जो काम है ना, वो जरूरी है. वो दैट हैज टू स्टार्ट.
0: ठीक,
2: और वो योगा से ही होगा.
0: और योगा से ही होगा, वरना नहीं होगा. देख लीजिए, मान लीजिए आप इस बात को कि नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं.
2: आप एज को रिवर्स कर सकते हैं योगा से, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को. हाँ. बहुत से लोग एग्जाम्पल हैं इस फील्ड में. तो योगा आप लोग भी करिए घर बैठ करके, और अपनी अपनी एज को भूल जाइए. आप कितने साल के हैं?
0: एज रिवर्स हो जाएगी.
2: हो जाएगी,
0: है ना, रिवर्स हो जाएगी. आप आजकल कह रहे हैं ना कि जो मिलेनियल्स हैं वो बूढ़े क्यों नहीं हो रहे.
3: एग्जैक्टली,
0: यही रीजन.
3: बिकॉज ऑफ, और इनफैक्ट उन सभी के लिए हमने किया है ना इस बार थीम, योग फॉर एंटी एजिंग.
0: एंटी एजिंग. अच्छा मीनल, चलो आप आ गई हो तो फिर आप ही शुरुआत कराओ. बताओ कहाँ से शुरू करें.
3: तो आई थिंक जब हम ये इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत यूथ टाइप की पॉपुलेशन है, बट लोगों का योग की तरफ थोड़ा झुकाव कम हो रहा है. तो आइए एक ऐसा आसन करते हैं जो हेल्प करेगा आपके फेस के ग्लो के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत चल रहा है. तो एक सिंपल सी क्रिया है, हम इसको फॉरवर्ड फोल्ड भी बोलते हैं, पश्चिमोत्तान आसन भी बोलते हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ पोज ऑफ सरेंडर. मतलब आप अपना जितना भी आपके दिमाग में जितने भी ब्लॉक्स हैं इसको छोड़ दीजिए, इसको आज के इस मैट पे छोड़ के जाएंगे इस तरह से.
0: मैट तो घर ले जाऊंगी लेकिन छोड़ जाऊंगी क्योंकि खरीदा हुआ मैंने. ठीक है, चलो.
3: ठीक है, तो अपने पंजे सीधे कर लीजिए. लंबी गहरी सांस, भरते हुए हाथ ऊपर. वो सभी लोग जिनकी स्पाइन में अभी हल्का सा इन्फ्लेमेशन है और लगता है कि फोल्ड करेंगे तो दर्द हो सकता है, तो आप पहले हल्के से घुटने मोड़ सकते हैं. अपनी चेस्ट को अपने थाइस के साथ लगा लीजिए, सांस को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए. ठीक है, इस तरह से. अब जब आप एक्सहेल करेंगे ना, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक लेकर जाइए.
2: मैं तो पूरा
3: सांस को छोड़ते हुए पूरा, अगर पूरा जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बट बहुत सारे लोग हैं जो पूरा फोल्ड नहीं कर सकते. आपको इससे आसन का पूरा फायदा हो रहा है. जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए, और फिर धीरे से अपने फोरहेड को भी डाउन कर लीजिए. होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर, लेकिन सांस को नहीं. सांस को लंबा गहरा भरिए, और फिर विद एवरी एक्सहेल आप जाने दीजिए. आप देखिए आपका पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्कल की तरफ आ रहा है. ये सारे के सारे जो पोजेज है ना जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये नॉट जस्ट फॉर यू नो योर ग्लो, ये आपको इंटरनली ना द आइडिया ऑफ लेटिंग गो सिखाते हैं. सो यू नो वो आपके सोच में भी, आपकी नेचर में भी फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक सोच जिसमें आप दूसरे का नजरिया भी शामिल कर पाएं, वो सिखाते हैं और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए।
0: अच्छा, इसमें जो स्ट्रेच फील हुआ है
3: वो है, पूरा काफ्स में भी, हैमस्ट्रिंग्स में भी, लोअर लंबर स्पाइन में भी, सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल,
0: ये इस एरिया में पूरा का पूरा आपका स्ट्रेच।
2: और देखो, जो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग होती है ना, थाई
0: बढ़ जाएगी क्या अब
2: क्या है वैसे आप डेली प्रैक्टिस करो तो
0: नंबर में, मतलब पूछना चाह रही हूँ कि नहीं मीना,
3: नहीं बिल्कुल
2: बढ़ जाएगी एक दो इंच तो बढ़ जाती है।
3: जो बुढ़ापे के साथ हमारी हड्डियां और हमारा फेशिया टाइट हो जाता है ना, वो नहीं होगा इसमें, फेशिया पूरा ऐसे हाइड्रेट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो जो ये चीज हो जाती है ना, ये खुल
0: जाएगी। कुछ लोग, हाँ मैंने देखा कुछ लोग ना चेयर पे बैठे बैठे, अच्छा पोस्चर करेक्शन,
2: जी जी
0: संदीप आई थिंक थोड़ा सा वो तो नहीं फील कर रहे कि महिलाएं मेरे पे हावी हो रही है, महिलाएं बैठा दी हैं, अकेला वहां पे बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं है संदीप। पोस्चर करेक्शन की बात करते हैं, पोस्चर करेक्शन के बारे में बताइए। लोग ना स्लाउच करते हैं
1: जी,
0: है ना, आप नॉर्मली इस चीज को फील नहीं करते, आप फोन देखते हैं, आप फोन चला रहे हैं या आप घर में बैठे इसी पोस्चर में आप लेट जाते हैं, यू डोंट फील कि आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, है ना, उसी तरह बैठ के आप खाना भी खाते हैं, तो उसको कैसे करेक्ट करें?
1: आजकल कमर दर्द की जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है ना,
0: यही है
1: वो सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें बैठना नहीं आ रहा आज तक, हमें सोना नहीं आ रहा, खाना खाना नहीं आ रहा,
0: करना क्या आ रहा है हमें,
1: करना
0: तो कुछ गलत कर रहे हैं,
2: फोन देखा
0: ही करके
1: करना क्या हमें, बस कमर सीधी करके बैठना, जब भी खाना खाएं तो कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
0: ठीक है,
1: जब भी हम कहीं बैठे तो कमर, लेकिन स्कूल में भी आजकल बच्चे देखते हैं ऐसे बैठे
0: ऐसे बैठे,
1: जल्दी बुढ़ापा ऐसे आ जाता है बच्चों को आजकल, तो 20 साल के बच्चे भी कहते हैं जी हमसे भी योग नहीं होता।
0: बताओ फिर पोस्चर करेक्शन के लिए बताओ क्या करना चाहिए,
1: सबसे बढ़िया है इसके लिए
0: आप सभी इनफैक्ट एक एक करके बता सकते हो
1: जी,
2: हाँ बिल्कुल,
1: सबसे बढ़िया है कि आप पहले पद्मासन सीखिए, पद्मासन सीखो धीरे धीरे अपने आप ही, पहले पाँव
0: बस यही नहीं होगा,
1: जब ये सीख जाओ तो कमर अपने आप सीधी रहने लग जाएगी हमारी,
0: ठीक है। सुखासन या पद्मासन में आप बैठे हैं ना, बट आपकी जो बैक
1: वज्रासन में बैठ सकते हो आप,
0: वज्रासन में भी कुछ लोगों से नहीं बैठा जाता,
1: नहीं वज्रासन में बिल्कुल।
0: अच्छा, वो बात सही है कि खाना खाने के बाद अगर आप 40 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है,
2: बिल्कुल सही है,
1: खाने के बाद करने वाला एक ही आसन,
3: एक ही ऐसा आसन है, हम हमेशा बोलते हैं कि योग करना और खाने के बीच में गैप दीजिए, बट वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद भी बैठ सकते हैं, इसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना पूरा एंडोक्राइन रीजन में जाता है, तो आपके डाइजेशन के लिए, आपके पाचक के लिए बहुत अच्छा है। तो पोस्चर करेक्शन के लिए मैं एक सिंपल आसन बताऊंगी, द आइडिया इज कि हम सारा दिन ये करते हैं, आपको इसका ऑपोजिट करना है, सो नथिंग बेटर देन भुजंग आसन और द कोबरा पोज, और इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि जब वो लोग ना जो ऑफिस में काम करते हैं और किसी दिन एक दिन आपका वर्क फ्रॉम होम है ना, तो अपने लैपटॉप्स को अपने सामने रख दीजिए, ठीक है, हम इसे स्पिंक्स पोज भी बोलते हैं, अपने हाथों को अपने चीक्स के पास रख दीजिए और उसके बाद अच्छे से अपने लेग्स को ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, ये तो बहुत सिंपल है ना, आराम से कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा, आप देखिए आपके शोल्डर्स, आपके रोटर्स, चेस्ट सब खुला है और रिलैक्स भी है,
1: इससे कमर का दर्द है ना उसको भी जिनको रहता है वो ठीक होगा और वजन भी कम होता है इससे,
3: बहुत बढ़िया, क्योंकि कोर एंगेज है ना। आइए अब इसमें कोबरा पोज करते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, ठीक है, अपने पंजों को खींच के रखेंगे, ग्लूट्स को एंगेज रखेंगे, लोग क्या करते हैं इसमें सारा का सारा वेट छोड़ देते हैं और कमर के भार पे ऊपर आ जाते हैं, वो नहीं करना है आपको, अपने शोल्डर्स को कान से दूर भी रखना है और ग्लूट्स और लोअर बॉडी को अच्छे से एंगेज भी रखना है। अब सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ आए, एल्बोस को सॉफ्ट रखेंगे, लॉक नहीं करेंगे और सीलिंग को देखिए, और अगर देख सकते हैं तो पीछे देखिए, देखिए ये आप इस आसन में अपने थ्रोट चक्र को भी पूरा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपका हार्ट चक्र अनाहता पूरा खुल गया है, मणिपुरा चक्र नेवल के आसपास कितना ज्यादा आप, यू कैन फील द प्रेशर, सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है और हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है एज अ बिगनर ऑल्सो, और धीरे से वापिस आ जाइए। So this is very important and very simple pose which everyone can do for posture correction.
2: और इसके बाद एक मैं बताऊंगी posture correct का आसन, ये बहुत ही आसान है, सभी कर सकते हैं, जिनके
3: spine,
2: हाँ बैठ के कर, जिसके स्पाइन सीधी नहीं रहती ऐसे हमेशा झुके रहते हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगी, आप गौमुख आसन करिए सबसे पहले, तो
0: अच्छा,
2: एक पैर को इधर ले जाइए, दूसरे पैर को ऊपर से, अब ध्यान रहे कि जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर आएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ आपका नीचे जाएगा। अब एक हाथ को ऊपर उठाइए, दूसरा हाथ पीछे से ले जाइए। अगर आप लॉक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लॉक कर सकते तो आप कोई रुमाल या कपड़ा या रोप ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। इससे देखिए आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो गई। ये जो ये पोस्चर करेक्शन का सबसे बेस्ट आसन है, इससे आपकी स्ट्रेट स्पाइन होगी। देखो गर्दन और आपके पेट पे और आपकी थाईस पे, इसमें भी आपके जो लंग्स हैं वो स्पेंड हो रहे हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल दूसरी तरफ से भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जरूरी है, ये पोज जब हम एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से भी करना जरूरी है, क्योंकि हाथों को, हम दोनों हाथों को मूवमेंट चाहिए, तो इसलिए आप दूसरे साइड से करेंगे।
4: और यही वाला हाथ,
2: हाँ, अब ऊपर वाला राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और नीचे से लेफ्ट हैंड। देखो मैंने तो आसानी से पकड़ लिया, आपने सगुप्ता पकड़ लिया, मीनल आपने, संदीप आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, तो जो आप लोग देख रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो वो एक रस्सी ले लें या रुमाल ले लें या कुछ भी ले लें, जिससे ऊपर नीचे करके आप आसानी से पकड़ लेंगे, आपका पोस्चर तो करेक्ट होगा एटलीस्ट। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है, और ये पोस्चर करेक्ट ना होने के चक्कर में और होती, लोग लंबे समय तक डेस्क पे बैठते हैं, काम करते हैं कंप्यूटर पे,
1: वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन,
2: बहुत, हाँ,
1: जिनको भी शुगर की
2: शुगर है और सर्वाइकल है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर है।
4: अच्छा, किसी ने सवाल भेजा है, बता देती हूँ, आपका होगा कुछ नहीं वैसे, बट उन्होंने कहा कि बैठे बैठे मैम कैसे वेट कम किया जा सकता है, भाई कोई जवाब आपसे देना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: कौन से आसन करें
3: बैठे बैठे, हमारे बड़े अच्छे प्राणायाम है एक्चुअली। द आइडिया बिहाइंड वेट लॉस इज कहीं ना कहीं अपनी श्वास का यूज कीजिए, अपने प्राण एनर्जी का, तो उसके लिए आई थिंक भस्त्रिका बहुत बढ़िया है। आप जिस तरह से अपने पूरे सिस्टम को, हर सेल को ऑक्सीजनेट करते हैं ना, तो मजा आ जाता है। और आप मेरे साथ अभी करिए, यू विल रियलाइज कि आपको कुछ मिनटों तक सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतने अच्छे से अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को यूज करते हैं।
2: अभी मिनल, आपके आने से पहले हमने ब्रीथ की वैसे एक्सरसाइज कर रखी है,
3: हाँ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हाँ, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। तो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे।

0: अब धीरे से ज्ञान मुद्रा में बैठिए, देखिए कितनी देर तक यू कैन फील दैट सेंसेशंस। आप वो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं अपने पाम में, अपनी उंगलियों में, अपनी चेस्ट में। दिस इज द मैजिक ऑफ प्राण एनर्जी। आजकल लोग सांस लेना भूल गए, याद भी नहीं रहता कि कब ले रहे हैं, गर्दन से ले रहे हैं, छाती से ले रहे हैं, बेली ब्रीदिंग तो चली गई है आज कहीं। तो आप देखिए, अगर आप इस तरह से अपनी बॉडी को प्राण एनर्जी से भर देंगे तो आपका हर एक सेल डीपली ऑक्सीजनेट हो रहा है। हमें इसी एनर्जी को तो यूज करना है, इसी तरह से तो फैट लूज होता है। मतलब व्हेन यू वर्क आउट क्या हो रहा है, आप इस एनर्जी को अंदर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कसरत नहीं करेंगे, वो जरूरी है, लेकिन बैठे बैठे कुछ करना है तो ये कर सकते हैं।
1: गुप्ता, बैठे बैठे और भी आसन है जो किए जा सकते हैं, जैसे आप दोनों पैरों को इस तरीके से ब्रॉड करिए और बस थोड़ा सा इधर जाइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। इससे क्या होगा, आपका पेट बेली फैट जितना है वो धीरे धीरे कम होगा। 20 से 30 बार आप इसको करें दिन
2: में। कुछ लोग बेचारों पे स्ट्रेस बहुत होता है ना, काम का प्रेशर बहुत है, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपने श्वास की प्रक्रिया बताई है ना। चेयर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं वो?
3: वजन कम करने सबसे बेस्ट एक ये सूर्य नमस्कार, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। एक दिन में आप 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं।
2: कैसे?
3: सूर्य नमस्कार।
2: सूर्य नमस्कार।
1: संदीप तो
2: खाना कुछ नहीं है। संदीप खाना क्या है?
3: ये खाना क्या है? बिल्कुल थोड़ा सलाद ले लो, फ्रूट ले लो,
0: ये बंद कर बिकॉज आप कहीं ना कहीं कसरत कर लीजिए और खाते रहिए। तो
3: सबसे पहले जरूरी है, मतलब कि अपनी डाइट तो हमें जरूरी है। अगर हम डाइट फॉलो नहीं कर रहे, सुबह योग करते हैं, कपालभाति, प्राणायाम कर लिया, जाके बर्गर खा लिया,
1: बर्गर पिज्जा ऑल दीज,
3: फिर वजन कम नहीं होने वाला है।
0: अच्छा, इनफैक्ट आई वॉज नोटिसिंग कि हमारे यहाँ पर बस स्टेशन्स के आगे, रेलवे स्टेशन्स के आगे आपको इतने लोग पूरी छोले छोले भटूरे खाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आज मैं नोटिस कर रही थी, मेरे ख्याल हमें सड़कों पे भागते हुए कसरत करते हुए कितने कम लोग दिखते हैं, लेकिन खाते पीते सब दिखते हैं।
2: मतलब एक दिन की जगह रोज कर लीजिए ना योगा, आप रोज सेलिब्रेट कीजिए। 21 जून एक दिन आता है, लेकिन आपके लिए बाकी
3: जब योग से हम जुड़ जाते हैं ना, फिर ये चीजें ऑटोमेटिक छूट जाती है।
0: और अब जब आप ये बात मान लेंगे ना कि जिस तरह से नाश्ता जरूरी है, जिस तरह से वो नहीं भूल रहे ना, उस तरह से कसरत भी जरूरी है, वो भी नहीं भूलनी है, वो भी हर दिन करनी है, आपके दिनचर्या का भाग होना चाहिए।
2: अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब संदीप क्योंकि वो सूर्य नमस्कार के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो इनके साथ एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ना सारे क्रम में। संदीप खुश होगा, एक बड़ी सी स्माइल दे रही है।
3: आप तो कर रहे हो, मेरे देशवासी भी साथ में करें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए।
2: आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जीएनडी के माध्यम से कि योग दिवस को हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, प्रियंका, मीनल, संदीप और शगुफ्ता के साथ और जीएनटी की पूरी टीम के साथ।
3: बिल्कुल,
2: चलिए कराइए शुरू।
3: एक श्वास, एक दिन नॉर्मल, दो श्वास को भरते हुए, तीन श्वास को बाहर निकालते हुए,
4: चार
3: श्वास को भरते हुए, पांच श्वास को बाहर निकालते, पर्वतासन बोलते, छह अष्टांग नमस्कार, इसमें श्वास निकलती नॉर्मल, सात श्वास को भरते हुए भुजंगासन। यह आसन साथ में मेरुदंड को भी, कमर को भी ठीक करेगा, फेफड़ों को मजबूत करेगा। आठ,
4: यह आसन फिर से रिपीट हो जाता है, पर्वतासन।
3: नौ, लेफ्ट पांव आगे, दस राइट आगे,
4: श्वास बाहर,
3: और ग्यारह श्वास को भरते हुए।
2: चलिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमने तो एक बार किया है, लेकिन आप कम से कम 10-15-20
3: सूर्य नमस्कार डेली,
2: 10 सूर्य नमस्कार का चैलेंज हम आपको देते हैं कि
3: जिनको बिल्कुल फिट बनना हमारी तरह, तो 100 सूर्य नमस्कार रो रूटीन में बनाएं।
2: और हम सबको एक काम कीजिए, अपना सूर्य नमस्कार करते हुए जीएनटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को और इन सबको टैग करते हुए हमें पोस्ट कर दीजिए।
1: हम आपको टैग करेंगे,
2: हम टैग करेंगे, कोलैबोरेट भी करेंगे,
1: कोलैबोरेट भी करेंगे।
3: बताइए कि हम इतने इतने सूर्य नमस्कार रोज लगा रहे हैं, पता चलेगा कि हमारे देश के युवा आज 100-100 सूर्य नमस्कार, 200-200, 500-500 लगा रहे हैं।
0: और मुझे लगता है कोशिश करके बाहर कीजिए, अपनी बालकनीज में कीजिए, अपने और इस भाव से
3: कीजिए। कम से कम
2: सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। प्रियंका, मीनल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू।
2: और तस्वीरें आपको केरल की दिखाते हैं। चलिए, केरल में भी योगा अभ्यास किया जा रहा है,
0: हाथियों पर सवार होकर ये योगाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य
6: कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगासन। दुनिया भर में 2500 जगह पर योग कार्यक्रम का आयोजन, विदेश में भी लोगों में दिखाई दिया उत्साह, अद्भुत तस्वीरें बनी गवाह। देश के अलग अलग हिस्सों में नेता भी योग करते हुए नजर आए। अहमदाबाद में अमित शाह ने तो झांसी में, योगी आदित्यनाथ ने किया योग, दिल्ली में भी कई नेताओं ने किया योग।
10: स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। जब जब योग की बात होती है तो स्वामी जी का जिक्र होता है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी आपसे ही योग बना है।
11: योग युगो युगो से भारत में है। योग हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, और योग पूरी दुनिया की जरूरत है। अब देख रहे हैं दाई तरफ बाई तरफ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारा प्यारा योग कर रहे हैं, पीछे से मुड़ करके यहाँ आ गए कि जो है आकंठ जो है योग में पूरे खो गए, और यहाँ ये पीछे तो पावर योग चल रहा है। देखो ऐसे ये योग पूरे देश में जिस दिन होगा उस दिन ये पूरा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा, और पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और बीमारी ना हो जीवन को भी तो अच्छा बनाना। मैं कहता हूँ ना एक बहुत बड़ा तत्व है मेरी बहन पूजा जी, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से अपने भीतर का वो देवत्व, योग से भीतर की वो दिव्यता। अब इतना कठिन योग ना हो किसी से तो घबरा नहीं रहे हमसे, तो ये इतना
10: मेरे को तो बहुत समय लगेगा ये करने।
11: पूजा सूत्री कहे मुझे स्वामी जी ना कह दे कि ये करो। तो ये योग इतना कठिन भी हो तो इतना तो होगा आपसे कि आप जो है भस्त्रिका कर सके, कपाल भाती कर सके, आप भी और हम भी कर सकेंगे। ये बिल्कुल ये बिल्कुल सहज मंडू का आसन सब कर सकते हैं। ऐसे आगे झुक गए मंडू का आसन हो गया। तुम कह रहा था स्वस्थ जीवन के लिए इस बार का थीम रखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर प्रिवेंशन, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। अब देखो एक तो ये यहाँ पर हमारे साथ योगा फॉर यूथ, योगा फॉर जेंजीज है, और देखो क्या ये तो नजारा ही देखिए, और यहाँ कृष्णा नदी का ही पावन। चंद्रबाबू नायडू जी जो एक देश के विजनरी मुख्यमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ऐसा देश के सभी मुख्यमंत्री हो जाए, तो जो मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विकसित बनाना 2037 तक ही पूरा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ इस बार आंध्र प्रदेश में इसलिए नहीं, सच में विजन होना चाहिए, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा सभी मंडू का आसन, गोमुख आसन, जिससे जितना बन पाए योग भी करें, और जरा सोचे कि योग करते करते क्या कर्म योग करना है, क्या अपना कर्तव्य करना है। तो योग में योग भी है, योग में कर्मयोग भी। गीता के 18 अध्याय अष्टादश योग है पूजा जी।
10: बिल्कुल स्वामी जी, आप क्योंकि बोल रहे हैं कि सबको ही योग करना चाहिए,
11: सबको योग करना है, जाति वर्ग समुदाय का कोई इसमें भेद नहीं है। और वैसे भारत के मुसलमानों के बारे में तो कहूंगा, भारत के मुसलमानों का DNA और हमारा DNA एक है, अर्थात हमारे पूर्वज एक है, सब हमारे पूर्वज योगी थे। और योग तो बात यहाँ कोई इस्लाम की, कोई ईसाइयत की, कोई आस्तिकता नास्तिकता की है ही नहीं, बात मानवता की और बात ह्यूमन वैल्यूज की, बात हेल्थ की है। अब सबको मोटापा है ना, अब देखो मोटे है, यदि ये करे मैं तो कहता हूँ ये दो ही अभ्यास करे, ये देखो ये बाई तरफ तो क्या गजब आसन कर रहे हैं बच्चे, टिट्टी भासन, इधर भूलो बनासन हो रहा है और इधर पीछे पावर योग चल रहा है।
10: स्वामी जी मैं कह रही थी कुछ योग दीदी के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि दीदी जी काफी परेशान है बंगाल में।
11: ये उलट पुलट योग करना चाहिए, देखो ये अब आप कहेंगे दीदी को क्या योग करना चाहिए, अब दीदी से हम कहेंगे हनुमान आसन, फिर ये इधर कठिन कठिन आसन, ये तो नहीं हो पाएगा। दीदी को प्राणायाम करना चाहिए,
10: धैर्य बनाए रखे,
11: धैर्य बनाए रखे, अनुलोम विलोम, जो पंछी उड़ गए अब नए एमपी बनाने पड़ेंगे, नए एमएलए बनाने पड़ेंगे, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी पूरी खंडबंड हो गई। तो योग में राजयोग भी सन्निहित है, योग में अध्यात्म योग है, योग में राजयोग है। मैं तो कहता हूँ योग मूलक शिक्षा, मेरी बहन पूजा जी, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक शिक्षा तंत्र, योग मूलक चिकित्सा तंत्र, योग मूलक शासन तंत्र, योग मूलक जिस दिन कृषि तंत्र, योग मूलक समाज तंत्र जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन सारा षड्यंत्र ही दूर हो जाएगा। अब ये इतना कठिन योग तो था, मुश्किल हो जाएगा
10: ये तो, ये बहुत तो मुश्किल हो जाएगा,
11: पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है।
10: स्वामी जी कितना समय लगा इन बच्चों को,
11: ये तो एक साल में ट्रेंड कर देते हैं, वैसे आपको भी एक साल में योगी पूरा बना देगा लेकिन एक साल में नहीं, एक महीने में हम तो ट्रेंड कर देते हैं, आप तो वैसे भी जो है स्वभाव से ही योगी है। तो देखो जो बात मैं कह रहा था ना, योग जाति पंथ से परे, योग क्या है, अतः योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों मन चित्त चेतना आत्मा का अनुशासन, डिसिप्लिन इन बॉडी इन माइंड इन थॉट्स इन एक्शन, डिसिप्लिन इन फूड, डिसिप्लिन लाइफ ही योग है, अतः योगानुशासन। डिसिप्लिन होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, तो वैयक्तिक जीवन में परिवार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक जीवन में परिवार में सब जगह योग हो, योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र और योग में विश्व। अब योग धर्म, योग धर्म बनेगा ऐसा हमारा विचार है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि आज लोग प्रेरणा लेंगे, और जैसे आपने कहा आज तक शुरू नहीं किया तो आज शुरू कर दे, और योग जब आदत बन जाएगी ना तो सुबह उठने की आदत बन जाएगी, योग करने की आदत से सब बुरी आदतें, नशा की आदत, ज्यादा खाने की आदत, उल्टा पुल्टा सोचने की, उल्टा पुल्टा देखने सुनने की, बोलने की करने की आदत, बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। योग में कितना कुछ है, माने योग करेंगे सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बुरी आदतें, सब रोग, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रताओं से मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होंगे। योग से जीवन में शुचिता जरूर आएगी, शुचिता पूर्ण जीवन योग से होगा, ये एकदम पक्की बात है पूजा जी।
10: स्वामी जी जैसे हम ऑफिस में होते हैं ना पूरे समय, तो बहुत समय नहीं मिल पाता, जैसे मैं बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो योग करने का समय ही नहीं मिल पाता, तो क्या करें हम ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ऐसे आसन।
11: ये तो सुबह सुबह करके चले जाना, मंडूक आसन आगे झुकने वाला, अब ये योगा प्रोटोकॉल में भी उष्ट्रासन ऐसे, ये तो बहुत ईजी है। और फिर देखो एक है आगे झुक गए ऐसे, ये शशकासन, तो ये तो सुबह सुबह करके जाना, सुबह सुबह एक बार आप जाने से पहले। अब बच्चों को तो शीर्षासन करना चाहिए, जैसे बच्चे शीर्षासन कर रहे, अब देखो सुबह सुबह यदि ये करके चले गए ना, इससे तो पूरी जिंदगी बन जाती है, ऊपर उठे नीचे आए ऐसे, ये ऐसे, तो देखो घर जाने से कहीं पर भी ऑफिस में जाने आदि से पहले भुजंगासन करके निकल। मैं तो कहता हूँ एक भुजंगासन भी कर लेंगे ना, तो देखो हम आपकी तरह हम भी दुबले पतले
10: हैं तो नहीं है स्वामी जी
11: लेकिन आपके भी पूजा जी ऐसे ही बना देंगे, ये देखो पूरा शरीर,
10: तो मतलब मैं डेली करके जाऊंगी तो जल्दी बन जाएंगे
11: सोमवार भुजंगासन करना तो, और अश्वगंधा शतावर थोड़ा खा लेना। और फिर देखो ये बच्चों को इधर देखा तो मैंने देखा मैंने कहा कोई टूट फूट तो नहीं गए, और इधर
10: मुझे रबड़ की तरह है, जहाँ मुड़े वहां मुड़ जाते हैं।
11: देखो ये पावर योग चल रहा है, ऐसे आज का हमारा एक संदेश भी है, पावर योग आपको चाहिए तो भी कर, योगा फॉर यूथ पावर योग। फिर जिनको डायबिटीज है जिनको कमर में दर्द है, जिनको ओबिसिटी है, सबके लिए योग तो। और इसके साथ जो आप बोल रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भस्त्रिका कर सकते हैं, ये तो मेन है ना भस्त्रिका। सांस लिया और छोड़ा, कपाल भाति, फिर ये अनुलोम विलोम, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, ऐसे। फिर ये भ्रामरी, ओम। कभी आपस में गुस्सा ज्यादा हो जाए बोस लोग
10: तो तुरंत आसन कर ले,
11: तो थोड़ा अपने चित्त को, अपने मन को शांत करने के लिए शीतली। हाँ, ये शीत कर ये, और कभी ये ना खड़े होकर के भी ना, जैसे ये बड़ा अच्छा है, ऐसे कर लिए। तो मैं तो कहूंगा अभी जब भी थोड़ी फुर्सत मिले, कुछ लोग सिगरेट का सुट्टा लगाने निकल जाते हैं अपने, वैसे इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, और उसी से तो सब लाइफस्टाइल डिजीज, तीन ही तरह की तो बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात पित्त कफ त्रिदोष, फिर जेनेटिक डिजीज, जीन्स में भी चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना रेडिएशन, पोल्यूशन, और चारों तरफ यूरिया, डीएपी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ये सब के कारण से लोगों की जिंदगियां बहुत खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है। तो योग से जेनेटिक चेंज आता है, माने योग करेंगे ना तो देखो ये भी कर लेना चाहिए, कंधे खुल जाते हैं। योग से जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, और जिनको इनकेरेबल डिजीज बोला जाता है ना, हम तो लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, ऑटोमेटिक डिजीज, इनको भी ठीक करते हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं पर भी फुर्सत मिली, और ऑफिस में भी बैठ के प्राणायाम तो सबसे हो जाता है, तो सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। हाँ, ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, चलो हलासन करो बट, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सबको करना चाहिए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो बच्चों चक्रासन करो, चक्रासन खड़े होकर के करते हैं। अब देखो खड़े होकर के चक्रासन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा,
10: खड़े होकर नहीं होगा, पर बैठ कर मैं कर लूंगा।
11: हाँ, आप लेट करके करो, चलो ऐसे ऐसे लेट करके। तो अरे पूजा ने भी अच्छा किया भाई, जोरदार अभिनंदन। हाँ तो जो है
10: स्वामी जी आपसे ही सीखा है योग तो मैंने, आप भी जानते हैं स्वामी जी, इस बार का जो योग का थीम है उस पर क्या कहें, क्योंकि हर बार योग का थीम बदल ही रहा है।
11: योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब देखो आप तो हमसे आधे से भी कम उम्र के हो लेकिन हम भी आपसे दुगने उम्र के नहीं लग रहे, इसको कहते हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग धीरे धीरे एजिंग होती है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट कोई सामान बाजार से लाते तो लिखा रहता है 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में एक्सपायरी हो जाएगी। खाने पीने की चीज में जल्दी एक्सपायरी होती है, कुछ चीजें थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती है। तो व्यक्ति की भी एजिंग है, व्यक्ति 100 साल तक युवा रह सकता है, 150 साल तक, 200 साल तक जी सकता है, प्राचीन काल में 400 साल तक जिया करते थे। इसके लिए एक तो प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्ट चक्र नव द्वार, बेहतर को बेहतर लाख 10201 नाड़ियां, अष्ट चक्र नव द्वार, देवाराम पुर, अयोध्या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, 86 ब्रेन के जो 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, और उनका पूरे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन वो अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग से, हेल्दी एजिंग के लिए डीप ब्रीदिंग, फिर कपाल भाति, फिर अनुलोम विलोम। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम योग करेंगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, मोटापा नहीं होगा, बीपी शुगर नहीं होगा, लिवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाएंगे और उसको बीट कर पाएंगे, हम जीवन में हर समय एक विजयी बनकर के उभरेंगे। तो डिटोरेशन जो बॉडी में होता है एज जो है आयु के साथ, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे, तो उस डिटोरेशन को आप रोक सकते हो एक तो योग से, फिर अपनी दिनचर्या में थोड़ा चेंज करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं पिछले 50 सालों से 1 बार भी बीमार नहीं पड़ा, 1 बार भी कोई दवाई नहीं ली, 1 बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना ओबेसिटी ये तो हमारे पड़ोस में भी नहीं फटकती है। तो ये आप यदि योग करते हैं तो सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज से जेनेटिक डिजीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। हमने बीपी शुगर थायराइड ऐसे लोगों का रिवर्स किया और जो बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो योगा फॉर इम्यूनिटी भी है, योगा फॉर लॉन्जिविटी भी है, योगा फॉर एंटी एजिंग है, योगा फॉर
10: विपक्ष भी है,
11: योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर पक्ष एंड विपक्ष
10: है,
11: योग तो निष्पक्ष है ना। योग दरअसल क्या है, ये योग जो है ना वो आपके पूरे शरीर में एक जो नैसर्गिक व्यवस्था, पूजा जी एक बड़ी बात कह रहा हूं, प्रकृति परमेश्वर ने 99% इस बॉडी को, ब्रेन को, हमारे जीवन को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर बनाया है। मनुष्य भगवान की धरती पर अप्रतिम रचना है और इस पूरी बॉडी की एनर्जी का अलाइनमेंट करने के लिए योग एक तरीका है। नहीं तो योग नहीं करेगा ना तो आदमी जो है ना उलट पुलट हो जाता है जिंदगी में, और वो इतना कठिन कठिन योग जो बच्चे कर रहे ना, कभी कोई घबरा जाए रे भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमसे ना हो।
10: खूबसूरत लग रहा है,
11: इधर भी देखिए उधर भी देखिए, संतुलन कितना गजब है। और देखो पीछे तो ये देखो बहन पूजा, एक हाथ पर पूरा संतुलन, ओए राम राम राम राम राम राम,
10: जीवन में भी संतुलन हो जाएगा।
11: ऐसा संतुलन के लिए तो अब इतना ना हो तो अनुलोम विलोम तो हो जाता है, हम हर कार्य को ठीक से प्रामाणिकता से कर सके, यही हमें योग सिखाता है। योग कर्म सुकौशलम, और जहां पर भी रहे वहां संतुलित होकर के रहे, बैलेंस। ये जब बैलेंस होता है ना तब आदमी गड्ढमड्ढ होता है, तो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे बच्चे देखो कठिन कठिन योग कर रहे हैं,
10: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा,
11: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। देखो ये बड़े, ये विश्वविद्यालय के बच्चे, पता नहीं विश्वविद्यालय के आचार्य कुलम के बच्चे,
10: स्वामी जी छोटे छोटे बच्चे,
11: ये बेटियों को देखो इधर क्या अजब गजब है। अब भी मेरे पास और छोटी आती है ना तो आपको भी ऐसे ही बना देता पूजा, मैं आपको भी अभी काफी सिखा दिया। तो समत्वम योग उच्चते योग कर्मसु कौशलम, मैं आज सबसे एक आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सब योग करो, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत लो, स्वदेशी का व्रत लो, अपने जीवन में कुछ ऐसे तत्व अपनाओ, दो बार खाओ, कम खाओ, गम खाओ, गम को सहलो, सहज रहो। ये जितने भी सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, जितने भी अनहेल्दी चीजें, इनका बहिष्कार करो। इतनी छोटी छोटी कुछ पहल कर लेंगे जीवन में, छोटे छोटे इनिशिएटिव ले लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी।
10: स्वामी जी एक आखिरी सवाल कि वैसे तो विश्व में भी अब योग किया जा रहा है, योग को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है, अब और इसको एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए क्या सोचा है?
11: मेरे चित्त में ये चल रहा है, वैसे तो मैं जन्म जन्मांतरों से, जुगन जुगन से हम जोगी है, एक कबीर साहब का भजन है, जुगन जुगन हम योगी, तो युगो युगो से योग चला रहा है। और मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया योग करेगी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो ट्रंप साहब को है, सबसे ज्यादा जरूरत तो पुतिन साहब को है, जेलेंस्की जी को है, खामनाई को है। अच्छा पूरी दुनिया में युद्ध मचा हुआ है, युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। और ये चारों तरफ हिंसा, घृणा, नफरत, मार धार, लूट मार, ये सब क्या चल रहा है? तो योग से युद्ध भी रुकेंगे, योग से लोगों में सच्चरित्रता, पवित्रता आएगी, योग से सच्चे अर्थों में जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो योग से ही उभरेंगी। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूं पूरी दुनिया में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सब जगह योग होगा,
10: क्योंकि
11: योग से ही उद्योग भी अच्छा होगा। और एक दूसरे का योग करें, सहयोग करें, योग के पथ पर चले और चलाए। मैं तो कहता हूँ कम से कम इंटरनेशनल योग डे पर, जैसे क्रिसमस के दिन तो सब लोग चर्च में जाते थे,
10: हाँ।
11: कि भाई आज तो चलो, लोग ईद और जो है रमजान आदि में तो कहते हैं भाई आज तो चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जब कोई गुरु पर्व होता है तो कहते हैं चलो आज तो गुरुद्वारा चलते हैं, जैसे रामनवमी जन्माष्टमी है तो बोला आज तो चलो मंदिर में चलते, आज तो चलो तिरंगा फहरा लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी है, चलो आज तो योग कर लेते हैं, योग दिवस है। तो शुरुआत तो कहीं से होगी तो फिर धीरे धीरे योग जीवन में समा जाएगा।
10: यही बहुत, बहुत शुक्रिया।
11: एक बार जरा हास्य आसन करेंगे, ये भी एक योग है, हास्य योग, लाफ्टर योग,
10: ये भी एक
11: हास्य योग और सिंहासन है, दाढ़ो
6: गला थायराइड भी लोगों का गड़बड़ हो रखा है।
10: बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पे हमें समय देने के लिए।
12: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
13: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योगासन। दुनिया भर में 2500 जगह पर योग कार्यक्रम का आयोजन, विदेश में भी लोगों में दिखा उत्साह, अद्भुत तस्वीरें बनी गवाह। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हजारों लोगों ने एक साथ किया योग, दिखा अद्भुत नजारा। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों का जोश भी दिखा हाई, भारी ठंड के बीच में किया योग। लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योगासन करते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। गुरुग्राम में शिल्पा शेट्टी ने भी किया योग। आज 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरों से रखी जा रही निगरानी।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में,

प्राचीन काल से आभूषण के रूप में मंत्र जप करने के लिए और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप ग्रहों की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, खास तौर से शनि की पीड़ा को दूर कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहन करके शनि की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का पालन करना होगा। रुद्राक्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं। आप रुद्राक्ष अपनी कलाई में, अपने कंठ में और गले में एक माला भी पहन सकते हैं। शनि के लिए जब आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो इसकी माला या धागे में डाल करके रुद्राक्ष गले में धारण करेंगे, और जब शनि के लिए रुद्राक्ष पहनेंगे तो इसको शनिवार को धारण करेंगे। लेकिन धारण करने के पहले भगवान शिव को अर्पित करें, शिवलिंग से स्पर्श करा लें। जब भी रुद्राक्ष धारण करिएगा अपने आचरण में और अपने व्यवहार में सात्विकता रखिएगा। एक तरफ आप रुद्राक्ष पहने और दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन करें, अपशब्द बोलें, तो रुद्राक्ष पहनने का कोई लाभ नहीं होगा। रुद्राक्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब

0: लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पारिवारिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित समस्या है तो किस रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे? अगर आपके रोजगार में समस्या है, नौकरी में, व्यापार में, कारोबार में अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे? इसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा। रोजगार के लिए 1 दाना भी आप पहन सकते हैं या 3 दाने पहन सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में शनिवार को पहनिएगा। 1 साथ 3 दाने 10 मुखी रुद्राक्ष के हों तो उनको धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आपको शनि की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है या शनि की वजह से आयु की समस्या है तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, आयु को लंबा करने के लिए शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा या केवल 1 दाना 8 मुखी रुद्राक्ष का पहने या 8 मुखी रुद्राक्ष के 54 दाने 54 दाने गले में पहनिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्या, आपकी आयु की बाधा दूर होगी। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, जैसे इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, सिंह राशि और धनु राशि पर अगर शनि की ढैया चल रही है, जो कि चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? इसके लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करिएगा और ये माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहने तो बहुत अच्छा होगा। धारण करने के पहले माला पर शिव जी का मंत्र नमः शिवाय 108 बार पढ़ लें और उसी माला पर 108 बार शनि का मंत्र पढ़ लें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करके पांच मुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहने तो साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग हो, शनि चंद्र का विष योग हो, शनि राहु का शाप दोष हो, अगर कोई ऐसा योग है तो क्या करेंगे? एक मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करिएगा। इसमें एक दाना एक मुखी रुद्राक्ष का हो और दो दाने 11 मुखी रुद्राक्ष के रखिएगा। इसको एक साथ लाल धागे में डालकर अपने गले में शनिवार को पहनिएगा। इसको पहनने से शनि का अगर कोई अशुभ योग कुंडली में है तो वो योग भंग हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की रुद्राक्ष के प्रयोग से शनि की बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी को तुलसी के दल यानी दो पत्ते तुलसी के अर्पित करें और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, नौकरी में आपका परिवर्तन हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इसके बाद 27 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: States, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मंगल के राशि परिवर्तन से क्या दुनिया में उपद्रव हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से क्या किसी राशि के व्यक्ति को करियर में लाभ हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के व्यक्ति के दुर्घटना की नौबत आ सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव और महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
10: भगवान को ज्यादातर आप लोग नहीं, दूसरे देश के लोग भगवान को ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय भी नहीं, भगवान अनुभव करने का विषय है। उसे अनुभव किया जा सकता, वो तो कण कण में व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है। भगवान का एक नाम दीनानाथ है और दीनानाथ का अर्थ होता दीनों का नाथ, जिसका कोई नहीं उसका दीनानाथ है। मेरे पागलों, द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, बिचारी द्रौपदी जतन करती, प्रयत्न करती, सबसे पहले द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, क्योंकि उनके साथ विवाह हुआ तो पतियों के पांचों पांडवों की तरफ देखा, लेकिन जब पांचों पांडवों ने सिर नीचा कर लिया, द्रौपदी अवाक रह गई। अब कौन बचाएगा हमें? तब तक द्रौपदी की नजर भरी सभा के मंडप में परम विद्वान बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष बैठे, जिनकी भुजाओं में बल था, ऐसे ऐसे योद्धा बैठे। तब तक द्रौपदी की नजर उसी सभा में द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की तरफ गई और याचना की, ये हमारी लाज बचाओ, ये हमारी साड़ी को खींच रहा, हमारे तन को निर्वस्त्र करना चाहता, और कृपा करके आप हमारी लाज को बचाओ। और ये कह ही रही थी, पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने भी कुछ ना कहा, दुशासन को रोका नहीं। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब बचाएगा कौन? ये विचार करते करते करते द्रौपदी ने सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूंगी। तो साड़ी का पल्लू लिया और दांतों तले दबाया, जैसे दांतों तले दबाया तो सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूंगी। लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल, वो दुशासन भला क्या नहीं कर सकता? एक झटका मारा और दांतों में जो पल्लू दबा रखा था वो छूट गया, और जैसे ही छूटा तब द्रौपदी ने अंत में विचार किया, इस समय यदि मेरी कोई लाज रख सकता है तो जिसका नाम दीनानाथ है, वो इस दीन की लाज केवल वही रख सकता है।

तुम्हारी लाज न बचाएगा। और द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर आर्तनाद पुकार करती है, हे गोविंद बचाओ, हे ठाकुर बचाओ, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे वृक्ष के ब्रज के रक्षक, हे ठाकुर बचाओ बचाओ बचाओ। और ये पुकारने ही लगी, भगवान ने सोचा यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो दुशासन को मारेंगे, तो और भी दुशासन के पक्ष में आएंगे, उनको मारना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो भगवान ने, भगवान को स्मरण आया कि एक बार जब हमारी उंगली में चोट लगी थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर हमारी उंगली में बांध रखा था, तब हमने वचन दिया था कि तुमने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके हमारी उंगली को क्यों बांधा, पल्लू को फाड़ करके क्यों बांधा। तब द्रौपदी ने कहा था कि ठाकुर आपकी पीड़ा से ज्यादा मेरी कीमती साड़ी नहीं है। तो ठाकुर ने भी उसी का एक एक रेशम के धागे का बदला करोड़ों साड़ियों के रूप में दिया। और जब दुशासन साड़ी खींचता तो भगवान तो नहीं जाते, लेकिन घटना विचित्र होती, दुशासन देख करके पस्त पड़ गया, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी। उसके समझ में ना आया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। समझ ना पाया, अंत तो गत्वा थक गया। मेरे पागलों एक बात तुम याद रखना, भगवान यदि तुम्हारे साथ हो तो जगत तुम्हारे विरोध में भले ही खड़ा हो जाए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, तुम्हारा पाल बाका ना होगा, पाल बाका नहीं होगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, कोई भी परिस्थिति आए हनुमान दादा का ध्यान करो, संकट आए तो भी घबराना नहीं। गोस्वामी जी ने हनुमान दादा को कहा।

घबराना नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में संकट है तो बचाने वाला संकट मोचन भी। देखो बुरा न मानना, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से साधक अकेला महसूस नहीं करता। भले ही दुनिया विरोध में रहे, पर यदि भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण है तो साधक को लगता है कि पूरा संसार हमारे पक्ष में। इसलिए कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आए ना, विपरीत, बहुत मुसीबत वाला, सब आपके विरोध में हो, जगत आपके विरोध में हो, तब मेरे पागलो एक बात तुम याद रखना, भीड़ तो कौरवों के पास थी लेकिन पराजय हुई भगवान पांडवों के पास था, उनकी विजय हुई। इससे सिद्ध होता है कि जिसके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उसकी जीत हो, जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में भगवान होता है। और भगवान पक्ष में हो जाए तो सारा संसार विरोध में हो तब भी बाल बांका होने वाला नहीं है, जगत तुम्हारे विरोध में हो जाए तब भी बाल बांका होने वाला। इसलिए जगत के भरोसे मत रहना, रहना तो जिसने जगत को बनाया है उसके भरोसे रहना। एक बात और बोले कह दो, बोलो, आपके घर में टीवी सेट है, बोलो, किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, है, बोलो, तो फिर माइंड क्यों अपसेट है? टीवी सेट है, किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर आपका माइंड क्यों अपसेट है? जिंदगी को प्रसन्नता में जीना है तो ये सेट घर पर हो या ना हो, यदि माइंड सेट है तो तुम्हारी लाइफ सेट है। हाँ, और यदि तुम्हारा माइंड अपसेट है तो चाहे जितने सेट तुम अपने घर पर रख लो, कुछ भी खुशी देने वाला नहीं है, कोई भी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी। चाहे जितने सेट घर पर रख लो, चाहे चार्जिंग सेट रख लो, टीवी सेट रख लो, बीबी सेट रख लो, हाँ, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, प्रसन्नता मिलने वाली। बोले प्रसन्नता कब होगी? बोले कुछ भी सेट घर पर ना हो, पर यदि भगवान का भजन और संतुष्टि मन में है तो कोई भी सेट ना हो, यदि माइंड सेट है तो आपका जीवन सेट हो जाएगा। हा? देखो एक बात सुनो, हम संकट आने पर यदि ये सोचें कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये पक्का मान के चलना तुम्हारी फिल्म पिटनी। हाँ, कई लोग हमारे पास आते, बड़े बड़े लोग, अरे बोले आप जानते नहीं, हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हमारे हाथ में राजकोट का ये है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हाथ है, खुद का हाथ है, तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ठठरी के बरे न कटा, अपना हाथ ही अपने हाथ में नहीं है तो दूसरा क्या अपने हाथ में होगा। हलुगा जो भी है सब किसके हाथ में है, बोलो बोलो बोलो, अरे खा पी के नहीं आए हो, गोस्वामी जी ने इस पर लिखा, भी है सब किसके हाथ में है, बोलो बोलो बोलो, अरे खा पी के नहीं आए हो क्या, किसके हाथ में है पागलो? भगवान के हाथ में, गोस्वामी जी ने इस पर लिखा रामायण।

नारायण में गोस्वामी जी ने कहा, सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मर गट की नाई। जैसे बंदर को मदारी नचाता, बंदर को मदारी क्या कहता, जो बंदर का मालिक होता, चल भाई बंदर डांस दिखा, बंदर तुरंत डांस दिखाने लगता, हाँ या ना। फिर मदारी क्या कहता, चल भाई बंदर ससुराल चल, तो बंदर ससुराल जाने का नाटक करता, हाँ चल भाई बंदर बनरिया से रूठ जा, तो बंदर तुरंत रूठ जाता है एक कोने में, चल भाई बंदर बंदरिया को ससुराल से ले आ, बंदर ले आने का नाटक करता। हम लोगों को दिखाई पड़ता, वाह वाह वाह बंदर कितना समझदार है, देखो जैसा कह रहा वैसे ही हो रहा। सच ये है, बंदर की समझदारी नहीं, मदारी की पिटाई का कारण है। उसी प्रकार हम लोगों को जो भी दिखाई पड़ रहा, ये हम लोगों की चाल नहीं है, भगवान की ही चाल है। किसकी चाल है, बोलो बोलो बोलो बोलो, किसकी चाल है, भगवान की। लेकिन विचित्र बात, हमें हम लोगों को भूत पे भरोसा हो जाता, भगवान पे नहीं होता। हाँ ये और गजब बात है, कोई गांव का आदमी गांव में धोखे से कह दे उस नदी के किनारे से मत निकलना, राजकोट की जो नदी है ना, बोले क्या हुआ, बोले नदी के बाहर में भूत रहता है। अच्छा, धोखे से रात को निकलना पड़े, रात्रि हो और अकेले हो, आहा जितना हनुमान चालीसा याद आता, पूछो मत। ओ हनुमान चालीसा में ये वाली जब चौपाई आती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इतनी जोर से आदमी बोलता जितनी आंतों में दम होती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन इतने में ही कपड़ा पीछे किसी कांटेदार पेड़ में फंस जाए, जो पसीना मारा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और कपड़ा छोड़कर दे दौड़, ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा, गांव के झूठे आदमी ने मरे हुए व्यक्ति के भूत के बारे में झूठी बात बता दी कि नदी के किनारे भूत रहता, तुम्हें भरोसा हो गया। हम लोग संत महात्मा लोग करोड़ों सालों से चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान रहता, भूत पर भरोसा हो गया, भगवान पर भरोसा नहीं हुआ, इसी कारण दुखी है। क्या है, बोलो बोलो बोलो, इसी कारण दुखी है। अब तुलसीदास जी की कथा तो कलयुग की ही है, अभी 500 साल पहले हुए तुलसीदास जी, उनकी लाज भगवान ने ही बचाई। रामायण की जब परीक्षा ली गई विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में, और रामायण जी को जब रखा गया तो कैसे रखा, काशी के विद्वानों ने कहा रामचरितमानस को तभी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाएगा जब इस पर भगवान शंकर के या तो हस्ताक्षर हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तो तुलसीदास जी बोले चमत्कार क्या होगा, बोले एक काम करो, रामायण जी को नीचे रखो, ऊपर से चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इसमें कोई चमत्कार होगा तो अपने आप जो है पता लग जाएगा कि शंकर जी ने इसको स्वीकार कर लिया, और शिव जी स्वीकार कर लेंगे तो हम ब्राह्मण भी रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, रामचरितमानस जी नीचे, उसके ऊपर 4 वेद, उसके ऊपर 6 शास्त्र, उसके ऊपर 18 पुराण, लेकिन मेरे पागलो मेरे प्रिय जनों हमारे आत्मीय जनों, रात के समय तुलसीदास जी माला लेकर के बैठ गए। हे रघुनाथ जी, हे महादेव, ये रामचरितमानस आपने ही लिखवाई, आप ही इसकी लाज रखना, आप ही बचाना, आप ही कृपा करना। ब्राह्मणों ने चोरी करने के लिए 2 चोरों को साठ गांठ की पैसा दिया, जाओ रामचरितमानस की चोरी कर लाओ, यदि रामचरितमानस चोरी हो जाएगी तो यह पक्का हो जाएगा कि भगवान शंकर जी ने स्वीकार नहीं की, और यह झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही 2 चोर विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को चोरी करने गए, क्या देखते हैं, मंदिर के दोनों तरफ हाथ में धनुष मान लिए हुए नीलांबर स्वरूप है उनका, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी जुल्फे, बड़े बड़े घुंघराली लटके हैं, उनकी लटके लटक रही हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और वीर की भूमिका में धनुष बाण लेकर के कोई रक्षा कर रहा है। और जो चोर चोरी करने गए थे वो भगत और बन गए, बोलो सीताराम। गए थे चोरी करने, वो भी जो है रक्षा करने।

0: का कीर्तन करते हुए वो भी भगवान के भक्त बन गए। अच्छा भक्त बन गए सो तो ठीक है, सुबह तुलसीदास जी को बता भी दिया कि हम आए थे कोई चोरी को लेकिन हम ही रक्षा करने लगे। बोले क्यों तुलसीदास जी? बोले क्यों? अरे बोले क्या बताएं भैया, जब हम यहाँ चोरी करने आए तो हमने दो इतने सुंदर राजकुमार देखे कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, अब हमारा मन चोरी का नहीं बचा, अब तो भक्ति का हमारा मन बचा है। लो ये कौन है? वो दोनों राजकुमार अभी तो दिखाई नहीं पड़े। बोले भैया थे कैसे? बोले सांवले थे, बड़ी घुंघराली लटके थी, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, लेकिन जो दूसरे वाले थे ना वो सांवले नहीं थे। बोले वो कैसे थे? बोले वो गोरे थे, गौरांग अंग था। तो तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया जो सांवले थे वो तो राम जी थे, पर जो गौरांग थे गोरे थे वो लक्ष्मण जी थे। और जब पट खोला रामचरितमानस जी को देखा तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कलयुग में? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखी हुई थी, भगवान शंकर की अनुकंपा से चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण नीचे रखे, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी और भगवान शंकर के हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर के हस्ताक्षर, स्वयं भगवान शंकर ने उस पर हस्ताक्षर किए। बल्कि गोस्वामी जी ने कहा भी, रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा, ये हमारी ही रचना है। पर इस कथा का आशय हमारे कहने का यही है, मेरे पागलों मेरे प्रियजनों, यदि हमारा भगवान पर भरोसा होगा तो भरोसा कभी भगवान टूटने नहीं देगा। भरोसा हो, बात भरोसे की, तुम्हारा भरोसा पक्का होगा हनुमान दादा के प्रति तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, भगवान कृपा करेंगे। इसलिए एक बात नोट कर लो मेरे प्रियजनों, संसार पर विचार करो, भगवान पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? बोलो बोलो बोलो। लेकिन हम लोग भगवान के ही होने का सबूत मांगते हैं। अच्छा कोई तुमसे पूछ ले तुम हो कि नहीं, अपना सबूत दो, तो फिर जो है बड़ा हाल खराब हो जाएगा, फिर कहोगे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, ठटरी के भरे। और हम लोग भगवान पर ही जो है टिप्पणियां करते, भगवान पर ही कई बार संदेह मन में आता। इसलिए भक्त का लक्षण यही होना चाहिए, भगवान के प्रति खूब भरोसा होना चाहिए, खूब भरोसा होना चाहिए। और सुनो, भगवान को पाने का उपाय हनुमान है।
1: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
7: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
7: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
12: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
7: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
7: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
19: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
7: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
20: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
21: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
22: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
25: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
21: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
22: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
21: गुंडे चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
21: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
26: भारतीय नौसेना को मिले समंदर की 3 धुरंधर। पीएम ने कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे राष्ट्र को समर्पित किए। कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आज 5,000 से ज्यादा सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरे से नजर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता में पीएम मोदी ने योगासन किया। दुनिया भर में 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन, विदेश में भी लोगों में दिखा उत्साह, अद्भुत तस्वीरें बनी गवाह। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हजारों लोगों ने एक साथ किया योग, दिखा अद्भुत नजारा। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों का जोश भी दिखा हाई, भारी ठंड के बीच किया योग। लद्दाख के पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी ने किया योग। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ योगासन करते नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। गुरुग्राम में शिल्पा शेट्टी ने भी किया योग।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिरी बार आपने अपने लिए 10 मिनट कब निकाले थे? ऐसे 10 मिनट जिनमें ना फोन था, ना भागदौड़ थी, ना कोई चिंता थी। शायद यही वजह है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में योग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। योग हमें सिर्फ फिट नहीं रखता बल्कि खुद से जुड़ना भी सिखाता है। एक गहरी सांस, एक छोटा सा आसन और मन में एक नई शांति। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच में सामंजस्य का उत्सव भी है। आज इस खास शो में, योगा के शो में, हम बात करेंगे और साथ ही सेलिब्रेट करेंगे उसी योग साधना को जिसने भारत की परंपरा को दुनिया की पहचान बना दिया। तो अगले एक घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए जीएनडी को छोड़कर, क्योंकि आज की ये बातचीत सिर्फ योग के बारे में नहीं बल्कि बेहतर जीवन के बारे में है। मेरे साथ इस खास शो को और खास बनाने के लिए वो साथी हैं जिनको आप हर रोज जीएनडी पर देखते हैं, सुनते हैं। मेरे साथ हैं नवजोत रंधावा, मेरे साथ हैं श्वेता झा और मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत नवजोत आपकी तरफ से, ऐसे बढ़ते हैं क्रम में, आप सबके लिए योग क्या है और फिटनेस क्या है?
1: मुझे लगता है कि योग इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली आप मेरे से पूछें तो लोग फिजिकली फिटनेस के लिए करते हैं लेकिन मैं अपने मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, रिलैक्स होने के लिए करती हूँ। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ।
0: Nice. श्वेता, आपके लिए योग की परिभाषा?
2: मेरे लिए योग जीवन जीने की सबसे खूबसूरत पद्धति है जो हमारे आत्मिक शांति, मन की शांति और शारीरिक खूबसूरती सभी को बनाए रखती है। तो एक होलिस्टिक, अगर आप कहें कि होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक विकास के लिए योग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है।
0: बिल्कुल। दीपाली,
3: मेरे लिए योगा बैलेंस है जो माइंड और बॉडी के बीच बैलेंस बना के रखता है और जो हमारा टायरिंग हेक्टिक शेड्यूल है उसके बीच में हमें थोड़ी रिलैक्सेशन देता है।
0: चलिए, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है और हर कोई योग को अपनी अपनी तरह से देखता है। अच्छा, शुरुआत जब भी हम योगा की करते हैं ना, हम करते हैं ओम के उच्चारण के साथ ताकि माइंड और बॉडी का बैलेंस जो है वो एक साथ बरकरार रहे। तो 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम शुरुआत करेंगे हाथ जोड़ते हुए, ठीक है? डीप ब्रीथ करेंगे, फिर छोड़ते हुए सांस को हम ओम बोलेंगे, ठीक है?

इसके बाद आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों को हथेलियों को रगड़ते हुए जितना तेजी से हो सके, एक ऊर्जा आपको निकलते हुए इसमें से महसूस होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे और उन हाथों को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाना है। अब आप खोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम, जो योग की प्रोसेस है। सबसे पहले प्राणायाम के साथ शुरुआत करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम, उसके बाद करेंगे कपालभाति, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेंगे और दूसरे नाक से श्वास को छोड़ देंगे। राइट हैंड से हम पहले एक को स्टॉप करेंगे।

0: सारी बीमारियां जो हैं इससे ट्रीट हो सकती हैं। पेट की कोई समस्या है जो अक्सर आजकल के लाइफस्टाइल में हमने देखा है कि लड़कियों को रहती है, लोगों को रहती है, तो आप सिर्फ अनुलोम विलोम 10 मिनट कीजिए, आप कपालभाति 10 मिनट कीजिए, इससे आपका पेट जो है वो ठीक हो जाएगा, आपकी पाचन क्रिया है बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए।
1: शुरुआत कीजिए 5-5 मिनट। ये भी पूछना चाहूंगी अनुलोम विलोम शुरुआत में ही, क्योंकि योग के हम ये करते हैं, इससे आपको नहीं लगता है, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो नासिकाओं का इसमें इस्तेमाल होता है मुख्य तौर पर, उसी में आप एक तरफ सांस ले रहे हैं, एक से आप निकाल रहे हैं दूसरे नॉस्ट्रल से, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा वो आपको भी बेहतर होता है, बहुत ज्यादा बेहतर होता है।
0: मैंने अपना कोल्ड कफ जो हमें सीजनल होता है, मैं इससे ट्रीट करती हूँ।
1: एग्जैक्टली,
0: आपका नाक नहीं खुलेगा ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आप 5 मिनट लगातार अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा, आपकी नॉस्ट्रल्स खुल जाती हैं। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। कपालभाति पता है आप सबको, है ना,
1: बिल्कुल।
0: पेट अंदर खींचने की प्रक्रिया है, फायदा इसका ये है कि आपका, एक तो अगर आपको वजन घटाना है तो लड़कियों को फ्लैट स्टमक चाहिए आजकल के लाइफस्टाइल में, ठीक है, फैशन के लिए वो भी हो जाता है। पेट की अगेन अगर आपको दिक्कत है वो दूर हो जाती है, अगर आपको फैट लूज करना है वो भी इससे हो जाता है, एक नहीं अनेकों फायदे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।

0: साथ साथ अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि फायदा क्या है कपालभाति अनुलोम विलोम की। बिल्कुल शुरुआत करते हैं।
1: मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप योग में कोई आसन नहीं कर पाते हैं ना, आप सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, आपकी बहुत

0: अगेन ये आपके जो हमने पहले बात की श्वेता नवजोत दीपाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम आजकल लोगों के ठीक से काम नहीं करते हैं, जिस AQI में हम रहते हैं प्रदूषण में, वैसे में अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर लीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका जो श्वास प्रक्रिया है बहुत बेहतर हो जाएगी। अब करते हैं हम भ्रामरी। भ्रामरी आपको आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाता है। डिफोकस्ड है ना अगर आप लाइफ में, तो इससे फोकस आएगा, और आपको फोकस एक ही चीज़ पर करना है, वो आप दिमाग में सोचेंगे आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। इसमें आपके ये तीन ये हाथ ऐसे रहेंगे, तीनों उंगलियां आपके माथे के ऊपर, और जो थंब है थंब से आप कान बंद करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप देश और दुनिया और दुनियावी चीजों से दूर हो रहे हैं,
1: मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से
0: आप डिटैच्ड हो गए हैं, आपसे फोकस कर रहे हैं अपनी श्वास की प्रक्रिया पर। आप अपनी सांसों को सुनेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। ये तीन यहाँ पे, ये एक नीचे वाली उंगली आपकी आंखों पे, थंब से आप कान बंद करेंगे, ठीक है। आप डीप ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, और जब छोड़ेंगे ना तो हमिंग की तरह एक आवाज आप छोड़ेंगे, ठीक है।
1: मतलब बी साउंड जो होता है,
0: हाँ, वो बी वाला साउंड, बी साउंड आएगा आपका। चलिए ये तीन बार हम करेंगे।

0: अच्छा, ये आपके फेस पे ग्लो लाने का काम भी करता है,
1: माइंड रिलैक्स करता है। मुझे लगता है इसको इससे पहले अगर हम कर लें तो नींद अच्छी आएगी,
0: बहुत अच्छी आएगी। आप सोने से पहले इसको 5 से 10 बार खींचिए, आप बिल्कुल दुनियावी चीजों से डिटैच हो जाएंगे।
1: थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो सोने से पहले इसको कर सकते हैं ताकि नींद अच्छी आए।
0: अच्छा, इसमें ना एक चीज वैसे लोग मिस करते हैं बट मैं ऐड करना चाहूंगी, भस्त्रिका है। भस्त्रिका थोड़ी सी तेज प्रक्रिया है, जो कर पाए वो करे, नहीं तो नॉर्मली आप अनुलोम विलोम करते रहिए। इस प्रक्रिया में मैं एक बार करके दिखाती हूँ। इसमें ना सांस तेज लेते हैं और तेज छोड़ते हैं, ये अगेन आपके पेट को फ्लैट करता है। बहुत सारे आसन मैं आपको बता दूं जो आपकी इस बार, क्योंकि हमारा थीम जो हम बात कर रहे हैं इट्स योगा फॉर एंटी एजिंग, ठीक है। बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, हमेशा आपका यौवन आपकी जवानी बरकरार रहेगी, तो योगा जरूर कीजिए क्योंकि योगा से ही होगा, दिस इज एक मात्र मंत्र। चलिए ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, ये प्रक्रिया है इसको करने की, अगर आप कर सकते हैं तो हम 30 सेकंड करते हैं इसको, ठीक है, साथ में।

0: स्लो डाउन। इसमें थोड़ा रुकने के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए, अभी हमारे पास पानी नहीं है। इसको करने के बाद दो घूंट आप पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना है। अब इससे पहले कि मैं अगले आसन पर आऊं, मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं कि खुद को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा एक तो प्रोफेशन ये है, ऊपर से थीम ये है कि योगा फॉर एंटी एजिंग, हम एंकर्स खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं अपनी रोज की दिनचर्या में? हम कौन से ऐसे आसन करते हैं या फिटनेस के हमारे फंडे हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे? आई विल स्टार्ट विद नवजोत।
1: मैं मेरे हिसाब से क्योंकि वक्त अगर ज्यादा ना हो तो सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, जितना भी आपसे आपकी आपका शरीर जितना भी अलाउ करता है, जो अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से सबसे बेस्ट है। होल बॉडी एक्सरसाइज है, आपके हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करता है, रिलैक्स भी आप इससे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार से बेस्ट कुछ नहीं है, कम से कम आप ये कर सकते हैं।
0: श्वेता,
2: देखिए एक समय के बाद, एक एज के बाद आपको अपने शरीर में क्या क्या परेशानियां हैं वो पता होने लगती हैं। जैसे मुझे बैक एक इशू है तो उसके लिए मैं भुजंग आसन करती हूँ, रोज करती हूँ, और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये जो बटरफ्लाई वाला आसन, ये मैं जरूर करती हूँ। क्योंकि मैं ना सिर्फ योग, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जिम जाने के बाद, लास्ट जो होता है वर्कआउट के बाद, दैट इज योग, वो आपको मन को चित्त को शांत करता है, बहुत अच्छा लगता है और फ्लेक्सिबल भी आपको बनाए रखता है।
3: मैं सूर्य नमस्कार ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आपके पूरी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करती हैं और आपको रिलैक्सेशन देती हैं।
0: तो मैं बता दूं, सूर्य नमस्कार के साथ चलिए एक बार शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: स्टैंड हो जाएंगे उसके लिए, खड़े हो जाएंगे, और 12 फॉर्म्स हैं इसकी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। 12 फॉर्म्स सूर्य नमस्कार को करने का दो तरीके हैं, एक तो हम स्लो प्रोसेस में करते हैं, एक हम तेज करते हैं, तीसरा है कि हम एक्सटेंसिव फॉर्म में जाते हैं जिसमें हम एक पॉज पे रुकते हैं, ठहराव होता है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत है जैसे श्वेता ने कहा बैक, तो उस पे फोकस करता है। तो अभी आप जैसे फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे नमस्कार आसन में आते हुए। और अगर श्वेता बेंड ज्यादा नहीं हुआ जाता किसी से भी, तो बेंड मत होना, सिर्फ नमस्कार करते हुए ऊपर हाथ करते हुए।
1: योग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप कीजिए, कर सकते हैं।
0: चलिए नमस्कार आसन में आते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए आगे बेंड करेंगे, फ्रंट फुट आगे, ये योद्धा पोज में आते हुए दोनों पैर पीछे, पहाड़ासन, नीचे आते हुए आपका पेल्विक एरिया ऊपर को रहेगा, चिन टच करेगी, भुजंगासन में आ जाइए, इसके बाद फिर से पहाड़ आसन में आइए, लेफ्ट फुट आगे, योद्धा पोज, दोनों पैर आगे, एक बार पीछे बेंड होते हुए, और फिर आप आएंगे नमस्कार आसन में। ये आपकी 12 फॉर्म्स कंप्लीट हो गई। एक बार और कोई करना चाहे तो हम कर सकते हैं।
1: नहीं, बिल्कुल, हम सेकंड करेंगे।
0: चलिए नमस्कार, बैकवर्ड्स, फ्रंट, फ्रंट फुट, सीधा पैर, दोनों पैर पीछे, पहाड़ासन, नीचे झुकते हुए, चिन टच करते हुए, पेल्विक एरिया ऊपर रहेगा, भुजंगासन में आ जाइए, पहाड़ासन, लेफ्ट फुट आगे, दोनों पैर आगे करते हुए, पीछे फॉरवर्ड होते हुए, नमस्कार आसन। ये कुछ मत कीजिए, मैं कह रही हूं कोई योगासन मत कीजिए, दिन में आप 5 से शुरू कीजिए, 5-10, धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को और इस टेन्योर को आगे बढ़ाइए, बहुत फर्क लगेगा, आपका फेस पे ग्लो आएगा, 10 तरह की बीमारियां दूर होंगी, फैट लूज होगा।
1: एक और चीज बताते चले, अगर मैं गलत नहीं, इसको शायद जोड़ी के हिसाब से करते हैं, आप एक बार राइट करेंगे राइट फुट से, फिर लेफ्ट फुट से।
0: हाँ, पहले ऐसे ही करते हैं,
1: ये जोड़ी के हिसाब से आसन होता है, तब वो आपका एक आसन कंप्लीट होता है,
0: एक कंप्लीट होता है। बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वही अगेन कि जितना फ्लेक्सिबल आप हैं, जितना शरीर आपका अलाउ करता है उतना आप कर लीजिए। अब श्वेता ने कहा था भुजंगासन, श्वेता करेगी भुजंगासन और हम फॉलो करेंगे। चलो श्वेता आप कराओ।
2: वो तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो बैक के लिए
0: उसमें मैं एक और फॉर्म बताऊंगी फिर आपको, आप भुजंगासन कराओ फिर उसी में लेटे लेटे एक और करेंगे।
2: बिल्कुल, तो देखिए बैक इश्यू के लिए जैसा शगुप्ता मैंने आपको बोला, ये रोज मैं कोशिश करती हूँ, इससे काफी रियली फायदा हुआ है। हम सीधे ऐसे अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए इसे पीछे आएंगे, स्क्वाट्स जो प्लैंक हम करते हैं उस वाले, इसमें पूरा पहले लेट जाइए, चेस्ट के पास दोनों हाथों को ले आइए, एंड नाउ अब इतना उठिए आप ऊपर की तरफ कि आपके बैक पे स्ट्रेच आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए. अब बहुत ज्यादा भी मत उठिए, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं उठना है, वहां तक उठना है जहां आपके बैक में एक्चुअली
3: प्रॉब्लम है.
2: हाँ, फील होगा आपको ये स्ट्रेच. तो ये हम काउंट कर लेते हैं 20 सेकेंड्स तक, एंड देन अगेन नीचे आते हुए दोनों हाथों को पीछे एंड रेस्ट. वंस अगेन दोनों हाथ चेस्ट के पास, सामने चेहरा करेंगे अपना और ऊपर की तरफ उठेंगे धीरे धीरे. कोई जोर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, स्ट्रेच फील करें आप, क्योंकि आप फील करेंगे उसी से वो धीरे धीरे पेन, वो दर्द जाता है. होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स एंड अगेन कम बैक, नीचे आइए और फिर दोनों हाथों को रेस्ट पोजिशन. यस,
0: अच्छा है शगुप्ता. हाँ, ये बहुत बढ़िया आसन है. देखिए भुजंगासन अगेन, पांच बार कर लीजिए, दस बार कर लीजिए. अब मैं इसमें ये बता रही थी भुजंगासन की अनदर फॉर्म जो है, जो श्वेता ने एक बता दी है, दूसरे में ये है कि हम इसको अगर आप कर सकते हैं तभी कीजिएगा. पैर पकड़ते हुए, ठीक है, पैर पकड़े हमने और फिर हम ऊपर को उठेंगे. ये भी वही फोकस करेगा जहां पर आपका पेन है. ये L1, L2, L3, L4 पॉइंट्स पे फोकस करता है. और मैंने एक और नाम लिया था झूलासन, इसमें आप
2: वो झूल भी सकते हैं.
3: ये नहीं नहीं, ये हम बचपन में बहुत करते थे, प्रैक्टिस छूट गई है इस वजह से अब हम झूल नहीं पा रहे, लेकिन ये आसन कर ले रहे.
2: तो इससे पहले कि लाइफ ना झुलाए आपको, आप ये झूलासन कीजिए.
0: इसमें ये है कि आपकी बैक में कभी किसी तरह का पेन नहीं होगा अगर आप ये रेगुलर करते हैं, भुजंगासन और ये वाली फॉर्म.
4: मंगल के राशि परिवर्तन से क्या दुनिया में उपद्रव हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से क्या किसी राशि के व्यक्ति को करियर में लाभ हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के व्यक्ति के दुर्घटना की नौबत आ सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव और महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में.
5: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है.
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मतलब जो योगा डेली प्रैक्टिस में करते हैं ना, एक योगा का आसन है जो सबको बहुत पसंद है, मेरा भी फेवरेट है, इसको कहते हैं चाइल्ड पोज। रीजन इसका क्या है, क्योंकि बच्चों की तरह आप झुक जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगेन इट फोकसेस ऑन योर बैक, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। अगर आपने बहुत सारे योगासन कर लिए हैं उसके बाद आप चाइल्ड पोज जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आता है। इसमें क्या करेंगे, हम बैठेंगे वज्रासन में, ये है वज्रासन, अगर बैठ सकता है तो ठीक है कोई भी इंसान, नहीं तो ये वाली पोजिशन में भी आप रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पैर फोल्ड नहीं होते, बैठा नहीं जाता, ये आपका हो गया, ठीक है। ये दो तरह से मैं बता दूं, अगर हो रहा है साइड से बता दूं, ये कर लीजिए, अगर हो रहा है तो ये कर लीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए। चाइल्ड पोज का ये तरीका है, इसमें दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हम आगे जाएंगे दोनों हाथों को फॉरवर्ड करते हुए, और नीचे अपनी फेस को टच करिए जमीन से, दिस इज योर चाइल्ड पोज। धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। डीप सांस लेते हुए ऊपर आइए, ये आपको रिलैक्स करता है, ये आप दो बार कर लीजिए या आप तीन बार कर लीजिए, बट हर योगासन के बाद चाइल्ड पोज जरूर कीजिए, ये वैसे योगा प्रक्रिया में बताते हैं। दीपाली आप क्या बता रही थी, क्या करना
1: है? आपको ताड़ासन के बारे में बता रही थी, ज्यादा हाँ। कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि मैम को बैक पेन भी हो जाता है, तो आप सीधा खड़े होइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को पकड़िए और उसके बाद स्ट्रेच। इसको जितनी देर आप रख सकते हैं, 30 सेकेंड्स तक रख सकते हैं, इतनी देर तक रखिए, एंड देन रिलैक्स।
0: अच्छा, बचपन में कहते थे कि इससे हाइट बढ़ती है, कुछ नहीं ऐसा
2: हमारी
0: जितनी बढ़नी थी बढ़ गई वो।
2: मुझे लगता है इससे हमारे पैर, हमारी काफ मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और दूसरा हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो बहुत एक्यूरेट हो जाता है।
0: मैं आपको ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है,
1: करते हैं बच्चे तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है।
0: मैं एक और बताऊं, हमारे घर में शैटिका पेन छिड़ती है कुछ लोगों को, है ना, शैटिका की पेन वो ट्रीट होती है आपकी इससे, तो एक बार फिर से कर लेते हैं।
3: और ये आई थिंक आपकी बैलेंसिंग के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा आसन है।
0: यस,
3: एकाग्र होके आपको किसी एक बिंदु पर देखना है या सोचना है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे।
0: और धीरे धीरे वापस आते हुए। अच्छा, अब जो थीम है ना, थीम पे आते हैं, है ना, वो तो हमारे लिए मेन है, योगा फॉर एंटी
3: एजिंग के लिए है,
0: वी कांट स्किप दैट, है ना, वी आर हिकर्स। अच्छा, उसके लिए बैठ जाते हैं, मैं बताती हूँ उसके लिए क्या करना है। रिलैक्सिंग पोज में जैसे आप बैठना चाहें, इसमें कोई हार्डकोर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा, एक तो आजकल लड़कियों को प्रॉब्लम रहती है, हमारी डबल चिन आ रही है ना, विद एज 30s के बाद लड़कियों को लगता है कि फैट आने लग गया, और आपके फेस मसल्स जो हैं वो लूज होने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें हम EQ दो अल्फाबेट्स हैं वो फॉलो करेंगे, और इसमें चिन आपकी ऊपर को जाएगी, ठीक है, ऊपर को जाते हुए पहले ई से
1: क्यू,
0: ठीक है, ये आप कर सकते हैं 100 बार।
3: अरे वाह,
0: अगर आपको सच में असर देखना है, इसका इफेक्ट अगर दिखना है, तो 100-150 बार कर लीजिए, उसके बाद 100 पे जाइए।
3: शगुफ्ता, आज के अपने सारे जितने भी बुलेटिन होंगे, हर ब्रेक में हम ये करेंगे।
0: ये बहुत इजी है ना, कहीं बैठ के कर लीजिए।
2: मैं सोच रही हूँ, सोचो हम न्यूज रूम में बैठ के EQ कर रहे
0: हैं। ये जो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही, जो जेंट्स हमें देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आपको
1: डेस्क जॉब है वो भी इसको
0: हाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं, इनफैक्ट EQ यही करना है।
1: EQ
0: आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है ना, आपकी जॉ लाइन, अच्छा किसी की जॉ लाइन नहीं होती वो भी दिक्कत है लड़कियों की, हमारी जॉ लाइन नहीं दिखती है, साइड जॉ लाइन नहीं आ रही है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और है, गोलगप्पे खाते हैं आप सभी,
3: बिल्कुल
0: है ना, पानी से मुंह भर लेते हैं, तो मुंह फुलाइए पहले, तो इसको रखिए 20-30 सेकंड ऐसे ही, ठीक है, ये आपकी जो चीक की मसल्स है ना उसको टाइट करता है, फेस टाइटनिंग के ये प्रक्रियाएं हैं। अब मैं एक और आसन कराना चाहती हूँ, बट मैं कराऊंगी नहीं क्योंकि हमने मेकअप लिया हुआ है, ठीक है, वो मेकअप वाइप आउट हो जाएगा हमारा। मैं सिर्फ करके दिखाती हूँ, मैं इन लड़कियों को करके दिखा देती हूँ। ये दो हाथ की हमारी दोनों फिंगर्स लेनी है, नाइट टाइम में आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे रखी और स्किन को खींचा, ठीक है, स्किन को खींचा। ये आपने माथे से भी करना है, ये आपने आईज से भी करना है, ये आपने चिन से भी करना है, ये आपने नेक से भी करना है। नेक पे तो हम कर सकते हैं, नेक मसल्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यहाँ पे स्किन टाइटनिंग नहीं है, ठीक है। ये हाथ से, ये हाथ दो दो तरीके हैं, एक तो ये फिंगर से आपका ये तरीका है नेक मसल्स को, एक होता है कि कोई भी क्रीम आप यूज करते हुए ये ऊपर अपवर्ड करते हुए ये मसाज करेंगे अपने नेक की। दिस इज फॉर फेस योगा। अगेन जो शुरुआत में हमने प्राणायाम भी किया है ना, वो भी आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है।
2: क्योंकि द मोर यू स्वेट आउट, जितना आप पसीना निकालते हैं उतना आपका स्किन भी ग्लो करती है और आप फिट भी रहते हैं, तो पसीना निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि योगा से पसीना नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप मेरा तो ये मानना है कि अगर आप सबसे पहले जो हमने आसन किया था, कुछ प्राणायाम की बात कर लीजिए या फिर सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए, अगर आप सही तरीके से करते हैं विद एक्यूरेट ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिकॉज योगा इज ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो सही मायने में अगर आप ये करेंगे तो वाकई स्वेटिंग खूब होती है,
0: खूब होती है। एक और जो मैंने जिनसे योगा सीखा ना, उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था योगा में, शुरुआत में ना फोकस मत कीजिए कि आपको ब्रीद इन करना है ब्रीद आउट करना है, क्योंकि शुरुआत में ना आप सिर्फ उसी पे फोकस करते रह जाते हैं, ठीक है। लेट इट गो विद द फ्लो, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली और आप नेचुरली ब्रीद इन करने लग जाएंगे और ब्रीद आउट करने लग जाएंगे। जब आप कोई भी एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं तो आप फिर आप ब्रीद आउट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। शुरुआत में फोकस नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो आसन कर रहे हैं वो कीजिए और ब्रीदिंग को धीरे धीरे करना है, बस इतना फोकस करना है।
3: शगुप्ता, और खास करके बहुत लोगों का ना डेस्क वर्क होता है,
0: हाँ,
3: तो उनके लिए बताइए, एंटी एजिंग का तो आपने बता दिया, कुछ कुछ आपने बता दिया, वो टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, लेकिन और वो लोग जो डेस्क पे काम करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा,
0: उनके लिए बता सकती हूँ मैं, हालांकि यहाँ पे चेयर नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ अगर मैं खड़ी हो सकूँ तो, अगर वो कर सकते हैं तो। एक तो चेयर, चेयर पोज बोलते हैं इसको, चेयर योगा होता है, ये मैं साइड से दिखा देती हूँ करके, ये करना है आपको,
3: ये स्क्वाट्स हुआ,
0: ये स्क्वाट हुआ आपका, अगर इस पोजीशन में आप शुरुआत में 10 सेकंड ही कीजिए,
3: ये तो
0: अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। नवजोत
2: बिल्कुल ये ठीक है,
0: मैं स्टैंडिंग में आ जाती हूँ, ये हम ना साइडवेज करते हैं कैमरा से, घूम जाओ नवजोत, आप श्वेता की तरफ, ठीक है
3: दीपाली,
0: ठीक है, अब आ जाओ स्क्वाट पे, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना, हम बैठ गए कुर्सी पे, आप ट्राई कीजिए कि आपकी कमर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, कुर्सी में थोड़ा सा स्क्वाट हम और करेंगे, जितना कर सकते हो उतना, ठीक है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड्स ये है। और इसमें एक और बताती हूँ, ये चेयर पोज अब हो गया, आपने एक और चीज पूछी, अब वो लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं पैर लटका के बैठते हैं, पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ये चीजें आप बैठ के कीजिए या फिर चेयर पे या फिर थोड़ा खड़ा होके स्ट्रेचिंग आप जितनी पैरों की कर सकें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टेड है, वहीं पे आता है प्रेशर और फिर आपके L3, L2, L4 में गैप आता है, उसकी वजह से आपको बैक पेन रहती है, कई लोगों के शोल्डर्स में बड़ी पेन रहती है, आजकल बैक पेन की ये भी शिकायत है ना,
3: और इसको ऐसे भी शगुफ्ता और साथ ही साथ
0: रोटेट भी
3: सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट भी करते हैं,
0: यस,
3: इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
0: दोनों
3: हम रोटेट करते हैं, एक तरफ आपने देखा ये इस तरह से, फिर वापस जाते हुए ऐसे
0: एंटी क्लॉकवाइज
3: करते हैं।
0: और एक और चीज ये लोग कर सकते हैं, हाँ श्वेता बोलो,
3: और मैंने जो अभी सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके घर में भी पेरेंट्स हैं, मेरे घर में भी नी इश्यूज बहुत होते हैं पेरेंट्स को,
0: उनके लिए
3: तो उनके लिए जो एक मुझे बताया था किसी ने, दैट इज दोनों ये जो फीट है हमारी, इसको पीछे की तरफ,
0: ये कर सकते,
3: पीछे की तरफ
0: आप उठा भी सकते हैं,
3: जैसे घर में भी पेरेंट्स हैं, मेरे घर में भी नी इश्यूज बहुत होते हैं पेरेंट्स को, तो उनके लिए जो एक मुझे बताया था किसी ने, दैट इज दोनों ये जो फीट है हमारी, इसको पीछे की तरफ,
0: ये कर सकते,
3: पीछे की तरफ
0: उठा भी सकते,
3: जैसे आप खींच रहे हो ताकि वो प्रेशर आपके नी पे आए,
0: नी पे आए। तो नी पे नी वालों के लिए एक और एक्सरसाइज होती है ये, है ना, नी को एक को उठाया रखा, दूसरे को उठाया रखा, ठीक है। ये धीरे धीरे, जिनको ज्यादा पेन है वो स्लो करेंगे, जिनका थोड़ा ठीक है वो थोड़ा तेज कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज भी उनके लिए है। अब बैठे हुए जो हमारे साथी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं चेयर पे ही बैठ के, वो साथ साथ में ये वाली अब आर्म्स के लिए करते हैं, अपर बॉडी के लिए, है ना। अपर बॉडी आर्म्स को हम रोटेट करेंगे, इसके इससे आपकी अपर बॉडी जो है वो टोन होती है। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से कीजिए। पहले एक प्रोसेस आप 5 बार कीजिए, 4, 5। अच्छा, इसमें आपकी आगे जब हाथ लेके आते हैं तो ट्राई कीजिए कि दोनों जुड़े, ठीक है, जोड़ते हुए धीरे धीरे, और जितना पीछे आप स्ट्रेच लेके आएंगे आगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितना पीछे ले जाइए फिर क्लॉकवाइज करते हुए आगे को, इससे आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होगा अपने शोल्डर्स में। अच्छा, इसमें एक और होता है, हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ, ठीक है, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जितनी देर आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों। फिर एक हाथ को, ये वाला हाथ लेफ्ट से खींचते हुए, फिर दूसरे को राइट से खींचते हुए, फिर ऐसे ही नीचे की तरफ दोनों हाथ, एक को, दो को। एक और शोल्डर, शोल्डर्स में आजकल पेन रहता है, शोल्डर्स को घुमाते नहीं है, तो ये प्रक्रिया है, ये
3: ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है,
0: ठीक है, जितना स्ट्रेच कर सके।
3: पीछे से भी दिखाइए लोगों को, देखिए ये स्ट्रेच कर, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है,
0: ठीक है, जितना आप स्ट्रेच कर सके।
3: पीछे से भी दिखाइए लोगों को, देखिए ये एल्बो जो है ये ऐसे पकड़ते हैं, अगर आप टर्न करिए ये ऐसे पकड़ के इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए, तो ये ऐसे स्ट्रेच आएगा, आप इसको खींचिए अपनी तरफ,
0: ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है,
3: थोड़ी देर, एंड देन दूसरा हाथ इस तरह से,
0: स्ट्रेच फील हुआ ना।
1: आई थिंक ये जिन लोगों को नेक पेन या सर्वाइकल है
0: उनके लिए तो बहुत अच्छा है,
1: उनको एक डेली अपना रूटीन बना लेना चाहिए।
0: जो बैठे रहते हैं ना नवजोत, जो जिनका सिटिंग जॉब है उनके लिए एक्सरसाइजेस बैठे बैठे आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना मिल रहा है। अब आप लोग बताइए और किस पे योगा आप करना चाहते हैं।
3: देखिए जो लड़कियां देख रही हैं, खास करके वो तो सिर्फ अपनी ब्यूटी रिलेटेड पूछना चाहेंगी, पतली कैसे हो, वो 2-4 योगा जो वो रोज करे और बेली फैट कम हो जाए। अच्छा शगुफ्ता, आपसे आप बहुत ही रेगुलर है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ ऑनेस्टली, आप बहुत रेगुलर, ये बताइए कि आप बाकी शरीर को छोड़ दीजिए सिर्फ बेली फैट कम होता है किसी का?
0: हाँ होता है, 80% आपकी डाइट कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एंड रेस्ट 20% इफ यू फोकस ऑन योर एक्सरसाइज और योगा, देन दे कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली।
3: चलिए तो फिर बेली फैट कैसे कम करना है वो बताइए।
0: बेली फैट के लिए बहुत सारी, अच्छा याद है पुराने टाइम पे हमारे घर की महिलाएं चक्की पीसती होती थी, आटा पीसती थी, कहते थे वो फिट क्यों रहती हैं, केमिकल नहीं लगाती थी वो फेस पे,
2: ठीक है। आजकल ये कमर थी वो एक्चुअली पतली
0: पतली थी ना,
2: हमारी माओ की शेप यहाँ से भी आ जाएगी, आपका यहाँ से पेट अंदर जाएगा और बैक भी फ्लेक्सीबल होती है,
0: एब्स भी हो सकता है धीरे धीरे करके आपके आ जाए, ठीक है। हाथों को जोड़ेंगे, ये मैं बताती हूँ एक बार करके, ये दोनों हाथ जोड़े हमने, ठीक है, दोनों हथेलियों को ऐसे फिंगर्स को ये पकड़ते हुए जितना आगे हो सके और जितना पीछे हो सके, ठीक है, ये हम पीसेंगे चक्की और निकलेगा आटा,
2: निकलेगा
0: शरीर का जितना आपका फैट है वो आपका लूज होगा। अच्छा, इसमें अगेन ये फोकस करता है आपके बैक पेन पे, ठीक है, आपकी हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें, और आपकी लोअर बैक पे आपको अगर स्ट्रेच फील हो रहा है, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, जितना आप पीछे जा सकते हैं, और फिर ऊपर आइए, पीछे जाइए, फिर आगे आइए,
1: इसको एक बार रिवर्स कर लेते
0: हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरीके से, इधर से घुमाइए फिर हथेलियों को,
3: उतना पीछे जाते हैं,
0: हाँ
3: कितना पीछे तक जा सकते हैं,
0: जितना आप जा सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं,
3: अच्छा
0: ये देखिए जितना आप पीछे हो सके।
3: भाई गांव चलना पड़ेगा शुक्रिया,
0: वही होगा कुछ जाके,
3: चक्की यहाँ तो नहीं मिलने वाली।
0: चलिए कितनी अच्छी लग रही है, चार लड़कियां चक्की पीस रही है। एंकर्स घर के काम भी करती हैं, ऑफिस के काम भी करती हैं, ये भी कर लेती हैं। अच्छा एक हम करेंगे खुश रहने का आसन, ठीक है, ये मेरा फेवरेट आसन है कि खुश कैसे रहा जा सकता है लाइफ में। स्ट्रेस तो जाहिर सी बात है बहुत है आजकल की जिंदगी में, बट लेट्स मेक एंड लेट्स ट्राई टू बी हैप्पी एंड लेट्स मेक एवरीबडी हैप्पी इफ यू कैन।
3: एग्जैक्ट,
0: जस्ट राइट। अच्छा इसको बोलते हैं हास्य आसन। इसमें अपने सारे स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और जितना जोर से हंस सकते हैं उतना जोर से हंसना है, ठीक है, नेचुरली हंसी आपकी छूट जाएगी। शुरुआत करते हैं, चलो जिसकी जैसी हंसी। अब इसमें डोंट जज अस, ठीक है, हम सिर्फ योगासन कर रहे हैं। पार्क में आपने सुबह सुबह देखे होंगे अंकल आंटी है ना हंसते हुए। खुशी का मंत्र है ये। चलिए कोई लड़की नहीं हंस रही है, मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी।
1: एक जोक
0: के बिना हंसना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जितना जोर से आप अंदर से अपने फेफड़ों को फाड़ते हुए आप हंसिए, ठीक है। नेचुरली हंसी आती है इसमें, आप इस आसन को कंटिन्यू कीजिए।
2: आप खुद कह सकते हैं आराम से,
0: शुरुआत में आप थोड़े से नर्वस होते हैं कि क्या कैसे हंस रहे हैं,
2: सेकंड में या थर्ड में, फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती,
0: जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा किसी को और स्पेसिफिक पेन के लिए कुछ जानना है या कुछ आसन आप करना चाहें?
1: बैक पेन आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं?
0: वही भुजंगासन,
3: भुजंगासन
0: की फॉर्म्स आपको बताई है। एक आसन जो हमने किया नहीं है वो भी हम कर सकते हैं। एक और आसन मैं बताती हूँ अभी आपको, फेस योगा हो गया। एक होता है वॉरियर आई, इसको बोलते हैं वॉरियर आई, जिसमें आपका शरीर की जो पोजिशन है वो एक योद्धा की तरह दिखाई देती है। मैं करके बताती हूँ, आप मुझे फॉलो करना। इसमें फ्रंट फुट आगे जाएगा, राइट फुट आपका, ठीक है, बहुत ही इजी है, और जितना आप स्ट्रेच कर सकें पैर जितना पीछे लेके जा सकते हैं, नी आपका इसमें बेंड होगा, ठीक है, ये, और इसमें हाथ आपके ऊपर अच्छा। जाएंगे, ठीक है, एक योद्धा की तरह, जैसे योद्धा ने तलवार उठाई होती है, ठीक है, ये है। आप जितना
3: तो इसको अपने आप को बेंड कर सकें, नहीं कहते,
0: नहीं ये धनुरासन नहीं है, ठीक है, इसको वॉरियर आई या फिर योद्धासन भी बोलते हैं। जितना आप पीछे जा सकते हैं और जितना आप आगे जा सके,
2: इसको जब हम जिम में करते हैं तो हम इसको लंजेस बोलते हैं,
0: हाँ,
2: लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हम रुकते नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्टे देना है, रुक के करना है,
0: मतलब आपके लिए जितना संभव है जितनी देर स्टे देना उतनी देर दे दीजिए आप। चलिए एक बार फिर से करेंगे, इसमें आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितना हो सके, दूसरे पैर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट कई बार ना आपका बैलेंस नहीं बन पाता तो मैं यही कहूंगी कि अभी अवॉइड कर दो राइट फुट से, क्योंकि मेजरली हम अपना पूरा बॉडी का वेट उस पर डालते हैं तो इसलिए वो बढ़िया रहता है। चलिए ये तो मेन आसन हो गए, और
2: डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: डाइट में
2: हम
0: तो बहुत
2: ये भी बताते चले कि जब भी आप योगासन कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग कर रहे हैं चाहे इवनिंग कर रहे हैं, उससे कितने घंटे पहले तक आपकी मील हो जानी चाहिए और कौन सी मील होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी योगा करने जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आपका कम से कम 1.5-2 घंटा पहले तक खाना हो जाए, स्टमक पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा हो, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करने चाहिए। नहीं तो आप पहली बात ना तो ठीक से एक्सरसाइज कर पाएंगे और ना ही वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं लगेगी भी नहीं, और आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा बेसिकली।
0: बिल्कुल। एक और चीज है, आजकल ना लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कि पेट क्लियर नहीं होता। मैं करके बता देती हूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप भी कर सकते हैं। सुबह आपको क्या करना है, योगासन में जो जहां से मैंने सीखा है वो गुरु ये बताते हैं कि सुबह उठ के पहले तो आप गर्म पानी पीजिए, और इस पोजीशन में आपको पीना है जो पोजीशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपका पेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप अपना योगासन स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग इट अर्ली मॉर्निंग, ये प्रोसेस है, आप पंजों के ऐसे, ये अगर आप कर सकते हैं, इस पोजीशन में आते हुए आपको पानी पीना है, ठीक है। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है, कितनी ही पुरानी है, कितने सालों पुरानी है, वो दूर हो जाएगी, डेफिनेटली दूर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे घर में। ये पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत इजी है, नहीं बैठ सकते तो अगर किसी से नहीं हो रहा तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस बनता है तो। इट्स नॉट ईजी बट बहुत अच्छा किया हुआ है हम सब ने, इट्स क्या
2: इट इज नॉट दैट टफ आल्सो, इतना मुश्किल भी नहीं.
0: नहीं, कई लोगों से ना बैलेंस नहीं
3: जैसे या फिर नी इशू है अगर तो आप
0: नहीं, फिर आपको रेकमेंड करते ही नहीं है. अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज है तो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया जाता. तो ये है आपका कॉन्स्टिपेशन का आसन. एक और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है. आई थिंक ये नीज को हम स्ट्रेच कर लेते हैं एक बार, जितने आसन हम कर चुके हैं. राइट.
1: अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो भी आप आसन कर रहे हैं और आपको जहां पे भी इम्पैक्ट चाहिए उसका, अगर आप वहां पे फोकस करेंगे, अपने ब्रेन में सोचेंगे उस जगह के बारे में, तो बहुत इम्पैक्ट.
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बिल्कुल.
0: एक और चीज है इसमें कि अगर आप कोई आसन कर रहे हैं ना, अगर आपको फील नहीं हो रहा कि वहां पे असर नहीं आ रहा, तो मतलब
3: आप गलत कर रहे हैं,
2: कुछ गड़बड़ कर रहे हैं,
0: कुछ गलत. वहां पे थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाना चाहिए.
2: तो चलिए, हमारी कोशिश यही है कि इस योग दिवस पर आप सबको योग के साथ जोड़ा जाए, इस योग उत्सव को मनाया जाए.
3: बिल्कुल. और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है.
0: दीपाली,
1: तो योग दिवस के दिन हम ये थे हमारे योगा के आसन. उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और उम्मीद है कि ये सिर्फ एक दिन के आसन नहीं थे, आप इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे.
2: हाँ, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से. ये हम आपको बताते चले साथ.
0: चलिए, मेरा लास्ट का एक ही फंडा है कि योगा से ही होगा, वरना नहीं होगा. डेली प्रैक्टिस में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ट्राई कीजिए, जरूर होगा. आई होप कि ये हमारी खास पेशकश आप सबको बहुत पसंद आई होगी. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं.

0: राशि परिवर्तन से क्या दुनिया में उपद्रव हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से क्या किसी राशि के व्यक्ति को करियर में लाभ हो सकता है? मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के व्यक्ति के दुर्घटना की नौबत आ सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव और महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: To achhi aur sachi khabron ka waqt. Raat 8 baje, Good News Today par.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: भारतीय नौसेना के बेड़े में आज एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए हैं। इनमें एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट अग्रय और तीसरा सर्वे वेसल लार्ज संशोधक शामिल है। आपको बता दें कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वॉरशिप्स को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, और ये तीनों जो युद्धपोत हैं ये पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं, और इनका एक साथ तैयार होना और नौसेना में शामिल होना केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को दिखाता है। ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन की दिशा में देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी को दिखाता है। इन लड़ाकू जहाजों के आने से हिंद महासागर एरिया में भारत की स्थिति और मजबूत होने वाली है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप्स को नौसेना में शामिल किया है, और माना जा रहा है कि इन तीनों वॉरशिप्स के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत का दबदबा अब बढ़ने वाला है। तो वहीं इससे दुश्मन की टेंशन बढ़ना भी लाजमी है। 3 वॉरशिप्स भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं, और अब ये तीनों डिप्लॉय हो चुके हैं, और भारत की सुरक्षा में अब कोई भी सेंध लगाने में से पहले 100 बार सोचेगा। ये तीन वॉरशिप कई मायनों में सक्षम हैं, जो भारतीय नौसेना में कमीशन किए जा चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, हिंद से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत का दबदबा इससे बना रहने वाला है।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन, मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब, टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन, सपने से सितारे तक स्मृति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: भारतीय नौसेना को मिले समंदर के 3 धुरंधर। पीएम ने कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे राष्ट्र को किए समर्पित। कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आज 5,000 से ज्यादा सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरा से नजर। उत्साह और जोश के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर पीएम मोदी ने मनाया योगोत्सव का। संतुलित जीवन की कला को सिखाता है योग। दुनिया भर में 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन। विदेश में भी लोगों में दिखा उत्साह। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर दिखा योग का अद्भुत नजारा। प्रयागराज में संगम किनारे 8,000 लोगों ने एक साथ किया योग। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों का जोश भी दिखा हाई। लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी ने योगा किया। फिल्मी सितारे भी योग करते नजर आए। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का शुभारंभ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में मंगल एक ऐसा ग्रह है ना जो बड़ा क्विक, बड़ा तेज परिणाम देता है और मंगल का बदलाव तुरंत दुनिया भर में उथल पुथल पैदा कर देता है। अब मंगल राशि बदल रहे हैं और जा रहे हैं वृष राशि में। वृष राशि में मंगल जितने दिन रहेंगे वो आपकी जिंदगी पर, दुनिया पर कैसा असर डालेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। मंगल देव का ध्यान मंत्र है और बड़ा प्रभावशाली है। अगर जिंदगी में कभी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला चल रहा है, बार बार दुर्घटनाओं की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसी दशा में आप एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह जब आप पूजा करते हैं 3 बार ये श्लोक पढ़ेंगे, 3 बार या 9 बार, और मंगल देव से कृपा की प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो मंगल की जो समस्या है, मुकदमेबाजी, दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, बेवजह के विवाद, कर्जे, इन तमाम चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो मंत्र फिर से दोहराता हूं मैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। अब आते हैं अपने विषय पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल का ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है, क्या होने जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरी स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक मेष राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 21 जून को मध्य रात्रि में वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 और 21 तारीख की जो दरमियानी रात है, मध्य की रात है, उसमें वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि जो है वो मुख्यतः है शुक्र की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो मंगल यहां पर निगेटिव नहीं होते। मंगल की जो पोजीशनिंग है, मंगल की जो सिचुएशन है,

में लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। अब मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस समय मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय सूर्य और बुध एक साथ हैं, मंगल के राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा और केतु भी एक साथ विद्यमान हैं, जो खतरे की घंटी है। राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा का निगेटिव होना बहुत अच्छा नहीं है, और सबसे ज्यादा नकारात्मक बात है शनि और मंगल का आपसी संबंध बना हुआ है राशि परिवर्तन के समय। तो चंद्र केतु, शनि मंगल, ये जो हालत है ये दुनिया भर में अशांति फैला सकता है, दुनिया भर में अशांति हो सकती है। मंगल शनि का संबंध दुर्घटना और विस्फोट का कारण बनता है, तो भयंकर दुर्घटना और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। अंतरिक्ष में, संचार के साधनों में और वायुयान दुर्घटना के योग इस समय में बन रहे हैं। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। मंगल जो है वो लोकतंत्र का बिल्कुल एंटी है, निरंकुशता का प्लेनेट है, ये लोकतंत्र पे नहीं चलता, और शनि जो है वो लोकतंत्र का मालिक है। तो शनि मंगल का जो संबंध है, एक तो वो है, दूसरे चंद्रमा केतु जो हैं वो इमोशंस को, भावनाओं को भड़का सकते हैं। तो भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है, और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। किसी राज्य की सरकार के लिए इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, लोग पार्टियां बदल सकते हैं, और बड़े बड़े उठा पटक इस समय राजनीति में हो सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा केतु के साथ इन्वॉल्व है और शनि जल की राशि में बैठे हैं, इसीलिए जलीय आपदाएं, पानी से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के आने की, भूकंप जैसी समस्याओं के आने की संभावना बन सकती है। तो देखिए, मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ना, ये दुनिया भर में एक महीने तक बड़ी उठापटक करेगा, और आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शांति हो रही है या शांति होने वाली है, लेकिन शांति नहीं होगी। शांति के पीछे से भी झगड़े, झंझट, विवाद, उपद्रव चलते रहेंगे। तो देश दुनिया का हाल तो देखिए मंगल के हिसाब से आपने समझ लिया। अब अपनी राशि के हिसाब से जानिए कि मंगल का राशि परिवर्तन अगले एक सवा महीने तक आपकी राशि पर, आपके जीवन पर कैसा असर डालेगा। अगर मेष राशि की बात करें, देखिए मेष राशि वालों की जो पैसे रुपए की मुश्किल है, जो धन की मुश्किल है, वो थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि सूर्य की अनुकूलता है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल का वृषभ राशि में जाना इनके धन के लिए समस्या बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान

0: रहेगा। सेहत को लेकर के इस समय मेष राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। दुर्घटना और शल्य चिकित्सा की स्थिति बन रही है। मेष वाले चोट चपेट से बचें, क्योंकि अगर चोट चपेट लगेगी तो आपकी सर्जरी होगी, आपकी दुर्घटना होगी, शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। देखिए, मेष वालों के स्वास्थ्य के मामले और धन के मामले अगले कुछ दिनों तक नकारात्मक निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेष वालों को इस समय अपने जीवन के बड़े निर्णयों में, बड़े डिसीजंस में सावधानी रखनी चाहिए। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वृषभ राशि, मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृषभ राशि में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ने वाला है। आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है, चोट चपेट ना लगे, हड्डियां ना टूटें, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान भी आपको बनाए रखना है। पैसा इस समय जरूर आएगा, उससे हम इनकार नहीं करेंगे, पैसे आपके पास अवश्य आएंगे, लेकिन धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पैसे रुपए का खर्चा आपके ऊपर बढ़ सकता है, काम की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। पारिवारिक मामले इस समय वृषभ वालों को ज्यादा परेशान करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके नजदीकी रिश्तों में इस समय अशांति हो सकती है। लंबे समय से चला आ रहा रिश्ता इस समय टूट सकता है। बेवजह की मुकदमेबाजी और बेवजह के विवाद की नौबत आ सकती है, ये संभावना इस समय वृषभ वालों के लिए बनी हुई है। तो वृषभ वाले ये समझ लें कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, रिश्तों का टूटना और बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। इसको लेकर के वृषभ वालों को सतर्क रहना चाहिए, शांति और धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि, मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आंखों का ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान दें, कान नाक और गले का ध्यान देना भी मिथुन वालों के लिए जरूरी रहेगा। आपके बड़े महत्वपूर्ण काम, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे या शादी की बात फाइनल करने जा रहे थे, वो तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैरिटल लाइफ में झगड़े बढ़ेंगे बिना कारण के, कुछ दिन तक मन मुटाव और अशांति रह सकती है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह के वाद विवाद से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। तो मिथुन वाले अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण काम रुक रहा है तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो, कुछ समय बाद आपका महत्वपूर्ण काम होगा, लेकिन अगर इस समय रुक रहा है तो उसको लेकर परेशान मत होइए। कर्क राशि, मंगल का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पैसे रुपए के हालात बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और हो सकता है नई नौकरी मिले, नया काम शुरू करें, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय हो सकती है। आपके काम में जो तमाम रुकावट चली आ रही थी, आपके काम में जो तमाम बाधा अचानक आ गई थी, वो बाधा वो रुकावट आपकी दूर होगी और हर महत्वपूर्ण काम इस एक सवा महीने में आप निपटा ले जाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे, इस समय आलस्य नहीं दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, तो प्रयास करने से आपको अपने करियर में और अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। सिंह राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपको करियर में एकदम से बचा करके उठा देगा। सिंह वालों को करियर की जो तमाम परेशानियां थीं, जो करियर की तमाम चिंताएं थीं, इनसे सिंह वालों को राहत मिलेगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। खास तौर से करियर और पैसों का जो मामला है, करियर और पैसों का जो काम है, वो इस समय पूरा होगा। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी का फायदा होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। यानी इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे, धन का, करियर का और संपत्ति का फायदा भी इस समय आप उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, सिंह राशि वाले बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं, तो सिंह राशि के लोग जोश में आ करके कोई निर्णय इस समय नहीं लेंगे। कन्या राशि, पारिवारिक मामले आपके मुश्किलें बढ़ाएंगे। भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए कन्या राशि के लोग पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें। बेवजह का तनाव परिवार के कारणों से बढ़ सकता है और आपको पेट में या सर पर चोट लग सकती है, उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, अचानक ट्रांसफर का आर्डर आ गया और करियर में आपके बदलाव हो गया, तो करियर में अचानक बदलाव हो सकता है और कन्या वाले कीमती चीजें और पैसा संभाल कर रखें, धन के मामलों में सतर्कता रखें, नहीं तो आपका धन डूब सकता है, आपको पैसे का बड़ा झटका लग सकता है। तुला राशि, अगर मंगल के राशि परिवर्तन की बात करें और तुला राशि को समझना चाहें, तो आठवें स्थान में मंगल का गोचर हो रहा है। आपके जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा से बचिएगा। इस समय आपको चोट चपेट लग सकती है और अचानक आपके ऑपरेशन की, आपके सर्जरी की नौबत आ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ, जो आपके बॉस हैं ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पर आपके सीनियर्स हैं, वहां पर बेवजह का विवाद हो सकता है और संबंध बिगड़ सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। बिना वजह के झगड़े मत करिए। दो बातों का ध्यान रखिए। एक, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए। ऑफिस में, पड़ोस में विवाद ना करें और उच्चाधिकारियों के साथ बहस मत करिएगा, वरना कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ से चूक जाएगी। वृश्चिक राशि, आपके करियर को लेकर इस समय प्रॉब्लम आ सकती है। करियर में कोई इंटरनल परिवर्तन हो सकता है। करियर में किसी आंतरिक परेशानी की संभावना दिख रही है और रोजगार के अलावा, नौकरी के अलावा पारिवारिक जीवन में परेशानी रह सकती है, खास तौर से बच्चों को लेकर या पति पत्नी को लेकर इस समय आपकी परेशानी बढ़ सकती है। चोट चपेट से बचाव करिएगा। खास तौर से कोई एडवेंचरस काम मत करिएगा कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा, वरना दुर्घटना के भयंकर शिकार हो सकते हैं। कर्ज जो आपने लिया है उसको समय से चुकाने का प्रयास करिए। पैसे आपके पास आते रहेंगे, आप कर्जा चुकाते रहिए। अगर कर्ज चुकाने में लापरवाही करेंगे तो आपको अपयश का या बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो कृपा करके कर्जा चुकाइए, शांत रहिए, दूसरों के मामले में अड़ंगा मत डालिए, तो चीजें ठीक रहेंगी। धनु राशि, पिछले दिनों आपने बड़ी मेहनत की है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए। तो धनु राशि के लोग ये जान लें कि उस फायदे का समय आ गया है। करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव आपके लिए हो सकता है। करियर में बड़े लाभकारी बदलाव के योग बन रहे हैं। मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, इस समय प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। पुरानी तमाम समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। थोड़ी सी कोशिश करिए, करियर और रोजगार को तो बढ़िया कर ही लेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो पुरानी समस्या भी समाप्त होगी। इस समय धनु वालों के करियर का और पैसे का मामला बहुत अच्छा बना रहेगा। निरंतर धन इनके पास आता रहेगा, पैसे की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। मकर राशि, मंगल मकर राशि में निगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा और पॉजिटिव होता है तो और भी ज्यादा, लेकिन ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है ये नकारात्मक है, इसीलिए मकर वाले स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान दें। अगर गाड़ी चलाते हैं या चलाती हैं तो बड़े सावधानी से गाड़ी चलाइए या साइकिल चलाइए ताकि कोई चोट चपेट ना लगे। करियर में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिए, जैसे हाल चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए, क्योंकि करियर में इस समय अगर आप रिस्क लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। संपत्ति और धन के विवादों से बचिए, प्रॉपर्टी के मुकदमे, पैसे के झगड़े झंझट परिवार वालों के साथ चल रहे हैं, शांति से हल करने का प्रयास करिए। इस समय अगर कोशिश करेंगे तो लाभ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहें, पति या पत्नी के अलावा अन्य रास्तों पर चलने का प्रयास ना करें। कुंभ राशि, देखिए मंगल आपके मेंटल लेवल पर ज्यादा बुरा असर डाल सकता है, मंगल आपको मेंटली परेशान कर सकता है, आपका तनाव बढ़ा सकता है, और इस समय गाड़ी चलाने में कुंभ राशि के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। तो इस समय प्रेशर बढ़ेगा कुंभ वालों पे, शांत रहिए। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, और जरूरत से ज्यादा शारीरिक परिश्रम, बहुत ज्यादा दौड़ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत शरीर पर प्रेशर डालना उचित नहीं होगा। मीन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसके परिणाम अच्छे दिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में आपके सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, संतान और परिवार को लेकर जो चिंताएं चली आ रही थी वो चिंताएं समाप्त होंगी। कोशिश करके देखिए, आपके जो रुके हुए काम हैं, प्रॉपर्टी वाला है, बच्चे वाला है, घर खरीदने वाला है, इस समय आप एक सवा महीने में निपटाइएगा, बहुत आसानी से निपटेगा। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन तो होगा ही, आपको धन का भी ज्यादा लाभ होगा। जो आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रु और विरोधी मीन वालों के परास्त होंगे। देखिए मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो केवल चार राशियों के लिए अच्छा है, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। बाकी आठ राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा प्रतिकूल है, इनके लिए सबसे ज्यादा खराब है। जिनके लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है, कहीं भी जरा सा जोखिम हो, ट्रैक करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी रिस्क दिखाई देता है, जरा सा भी जोखिम दिखाई देता है, तो बचने का प्रयास करिएगा। इस समय आप रिस्क लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग किसी तरह का जोखिम ना लें। इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। ज्यादा दिक्कत है तो जल में थोड़ी रोली मिला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल या प्लेन वाटर अर्पित करेंगे। सुबह और शाम एक एक बार घर के पूजा स्थान पर बैठ करके शांति से संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति को सुबह शाम दोनों समय एक एक बार पढ़िएगा। जब भी आपको मौका मिले, रोज चाहे तो रोज, नहीं तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा तो बहुत बेहतर होगा। और ये समय मंगल का बहुत सारी राशियों के लिए नकारात्मक है, इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क नहीं है, सिंह नहीं है, धनु नहीं है, मीन नहीं है, तो कृपा करके दुर्घटनाओं से बचें। लाल रंग की चीजों का और लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी दुर्घटना को आकर्षित कर सकता है। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इन राशियों के लोग, कर्क, सिंह, धनु और मीन वाले, अपने करियर में कोई निर्णय लेना चाहें, करियर में आगे बढ़ना चाहें या प्रयास करना चाहें, तो इनको फायदा जल्दी होगा, ये सफलता जल्दी पा सकेंगे। और इन चार राशि के लोगों को इस समय प्रॉपर्टी के मामले में, मुकदमे के मामले में सफलता की कोशिश करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क वालों को धन का फायदा होगा मंगल की वजह से, सिंह वालों को पद प्रतिष्ठा और रुतबे का फायदा होगा, धनु वालों को करियर में बड़ा फायदेमंद बदलाव होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, और मीन राशि वालों की पारिवारिक चिंताएं, फैमिली की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। इसका आप ध्यान रख करके समय का सही सदुपयोग करिएगा। फिर से बता दूं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, लाल रंग से परहेज करें, और जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करिएगा, आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो मंगल देव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन। मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब। टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गीता के अध्यायों में योग की महत्ता बताई गई है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानव को जीवन जीने की सीख दी गई है और इसीलिए गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को गति और दिशा देने का कार्य करती है। गीता के कई अध्याय योग शब्द से भरे पड़े हैं। चलिए आपको बताते हैं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश।

0: ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्था है योग। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की चरम सीमा है योग। माना जाता है कि योग से तन मन की शुद्धि होती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कुरुक्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी गीता ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था। मैं वासुदेव कृष्ण स्वयं योगेश्वर हूं। मेरे कुछ भक्त मुझे योगीराज भी कहते हैं। मैं ही योग माया का स्वामी हूं। मनुष्य जो कुछ भी क्रिया करता है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म ही है। चाहे वे कर्म कायिका हो, वाचिका हो अथवा मानसिक हो। और तो और जीना मरना भी कर्म ही है।
1: गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा कहा गया है कि योग कर्मशु कौशलम। गीता के अनुसार तो कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। केवल आसन करना योग नहीं है, केवल प्राणायाम करना योग नहीं है, केवल ध्यान करना योग नहीं है। एक व्यक्ति है, बाहर कार्य करता है, तो वो अपना कर्म योग कर रहा है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, उसे हमें कुशलता पूर्वक यानी कि 100% डिवोशन के साथ में करना ही योग है।
0: द्रोणाचार्य को अजेय देखकर मैंने अर्जुन से कहा था, एको ही योगेस्य भवेत्वाधाय, अर्थात द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही योग है। वहां योग युक्ति या उपाय के रूप में था। महाभारत और गीता में योग योगी शब्द कई बार प्रयुक्त हुए हैं। गीता में सृष्टि निर्माण को योग कहा गया है। इसी अर्थ में मैं योगेश्वर हूं। मेरे लिए योग का मुख्य अर्थ है कर्म योग। मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्म करने की कुशलता, युक्ति अथवा शैली को योग कहते हैं। गीता के शंकर भाष्य में भी कर्मसु कौशलम का यही अर्थ लिया गया है। कर्म में स्वभाव सिद्ध रहने वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं। धर्म की स्थापना के कई मार्ग हैं। मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाता तो एक क्षण में सारे अधर्मियों का नाश कर देता। मैंने अर्जुन को प्रेरित किया। मैंने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। तो देखा आपने कि कैसे हमारी संस्कृति और शास्त्रों से जुड़ा है, सार्वभौम बन चुका ये योग। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि श्वास का नियमन योग का एक अंग मात्र है, वो संपूर्ण योग नहीं है। योग को समझने के लिए हमें पुराणों की शरण में जाना होगा। माना जाता है कि ध्यान की एक और विधा ओम का जाप करने से आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। माना जाता है कि जब आप ओम का जाप करते हैं, तब आप एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति अपने अंदर करते हैं।
1: ओम एक ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा शब्द है, जिस जब हम यहां बैठ करके ओंकार का जाप करते हैं, तो वो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को समाहित हो जाता है। क्योंकि आवाज जो है, शब्द जो है, एक आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व से हम जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी महत्ता भरपूर मात्रा में हमारे योग में दर्शाई गई है।
0: माना जाता है कि आसनों के द्वारा श्वास पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्राणायाम की सहायता से प्राण वायु का नियमन मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्राणायाम के माध्यम से समाधि या ध्यान के नए सोपान पाए जा सकते हैं।
1: यदि हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया, तो अष्टांग योग में यम नियम की उन्होंने बात करी है। योग के बिना सब अधूरा है, तो जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे प्रारंभ में जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अवरोध होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा जो मनोबल बढ़ता है उससे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
0: योग भारतीय जीवन दर्शन का ही अंग है। इसमें वेदों का ज्ञान और पुराणों का विज्ञान मिला है। विज्ञान भी मानता है कि योगासनों से शरीर की भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर पाती हैं, जो आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखने का काम करता है। माना जाता है कि इससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, मोटापा घटता है और दुबला पतला व्यक्ति भी तंदुरुस्त रहता है।
2: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन, मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब, टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन, सपने से सितारे तक स्मृति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: भारतीय नौसेना को मिले समंदर के 3 धुरंधर। पीएम ने कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे राष्ट्र को समर्पित किया। कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आज 5,000 से ज्यादा सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरा से नजर। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 गेंदों में बनाया अर्धशतक, वनडे क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 बॉल में बनाए 94 रन। उत्साह और जोश के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर पीएम ने मनाया योग उत्सव का, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। दुनिया भर में 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन, विदेशों में भी नजर आया उत्साह। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर दिखा योग का अद्भुत नजारा, प्रयागराज में संगम किनारे 8000 लोगों ने एक साथ किया योग। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों का जोश भी नजर आया। लद्दाख में पैंगोंग लेक के किनारे आईटीबीपी ने किया योग, फिल्मी सितारे भी योग करते दिखाई दिए। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और भंडारे का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
14: दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम ने कोलकाता में किया योग, 130,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। देशभर में लाखों जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन, देशभर में 100 प्रमुख जगहों पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से योग कार्यक्रमों का आयोजन। दुनिया भर के करीब 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है भारत। हेल्दी एजिंग के लिए योग है और इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया, गृहमंत्री ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में योग किया, जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नवीन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में किया योग, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया, दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया, झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, धामी ने चंपावत के बनबासा में योग किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में किया योग, फडणवीस ने किया योग के कई आसन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलांग में किया योग, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी किया योग। योग दिवस पर सेना के जाबाज जवानों ने 14,091 फीट की ऊंचाई पर किया योग, जवानों ने लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे किया योग। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया, जवानों ने लुकुंग पोस्ट पर योग किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में योग किया, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया योग, पीयूष गोयल ने मुंबई के दाना पानी बीच पर योग किया। समंदर में देश की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज, भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्ध पोत। INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधित नौसेना में शामिल पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 युद्ध पोत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, आईएनएस दूनागिरी बनेगी नेवी की नई स्टेल्थ ताकत, आईएनएस अग्रेसर पनडुब्बी रोधी क्षमता हुई मजबूत। आईएनएस संशोधक करेगा समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे तीनों युद्ध पोत। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और भी मजबूत, जीआरएसई की ने आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक का निर्माण किया है। बिहार और मिथिलांचल के लोगों के लिए गुड न्यूज, दरभंगा से जयपुर के लिए चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल यात्रियों को होगी सहूलियत। आज होगा दरभंगा जयपुर अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन, 23 जून से दरभंगा से नियमित ट्रेन का होगा संचालन। किसानों को आर्थिक राहत, पीएम ने जारी की पीएम किसान की 23वीं किस्त, 9,44,00,000 किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर। शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, राजनाथ सिंह ने वायु सैनिकों के साथ स्नैक्स खाए। रक्षा मंत्री ने की भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता और पेशेवर कौशल की सराहना, कहा वायुसेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम। मुंबई में एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की बेटी की शादी से कई हस्तियां हुई शामिल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रणबीर कपूर भी हुए शामिल। शादी समारोह में जावेद अख्तर, शिबाना आजमी, फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर भी पहुंचे, रितेश और जुनेलिया ने भी शादी की रौनक को बढ़ाया। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में सीएम फडणवीस और अमृता फडणवीस हुए शामिल, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने भी शिरकत की। नेताओं में राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी ने भी शादी समारोह में शिरकत की। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में नीता अंबानी बहू के साथ पहुंची, गौतम अडानी भी परिवार के साथ शामिल हुए, कई और उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ओर से दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स का किया गया आयोजन, नीरज चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड। लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी को मिला सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड, उत्कृष्ट योगदान के लिए कई अन्य खिलाड़ियों और कोचेस को भी किया गया सम्मानित। नेशनल एक्टिविटीज चैंपियनशिप में आर्यन नेहरा का कमाल देखने को मिला, पुरुषों की मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 8 मिनट से कम समय लेने वाले देश के पहले भारतीय तैराक बने। आशीष नेहरा ने अपने ही बेस्ट इंडियन टाइम बेहतर करते हुए जीता गोल्ड मेडल और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई। LGBTQ+ समुदाय के लोगों ने वडोदरा में प्राइड परेड का आयोजन किया, परेड में शामिल लोगों ने समानता और अपने अस्तित्व का मनाया जश्न। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भगवान शनिदेव के दर्शन किए, सीएम सोरेन ने शिगनापुर

0: दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियों में।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
4: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा।

ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है
पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्नकंद, ये है सूर्नकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और
पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपा मार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: भारतीय नौसेना को मिले समंदर के तीन धुरंधर। पीएम ने कोलकाता में निर्मित तीन स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आज 5,000 से ज्यादा सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरे से नजर। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 गेंदों में बनाया अर्धशतक, वनडे क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 बॉल में बनाए 94 रन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अगर जिंदगी में सुख है भोगना, बीमारियों को है रोकना, बात तू जान ले, बात मेरी मान ले, दवाइयों को दूर कर, योग कर, योग कर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो इस स्पेशल डे के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पापा का प्यार, सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे आप सभी के साथ। हर घड़ी में साथ निभाते बहुत महान इंसान है, सच कहूं तो भगवान है, पापा तो बस उनका प्यारा सा नाम है। आप सभी फादर्स डे को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे आपके सैक्रिफाइसेस को, आपके हार्डवर्क को और आपके प्यार को। और उसके साथ साथ आप सभी से ये कहेंगे कि आप भी योग को अपनाएं। ये तो है हमारी 5,000 साल पुरानी परंपरा जिसे पूरी दुनिया अपना चुकी है। योग से सिर्फ बाहरी शरीर ही स्वस्थ नहीं होता बल्कि अंदर से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे यही स्पेशल दिन आप सभी के साथ। और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
7: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए क्या लौट आएगी। विक्रांत की याददाश्त, मन्नत को तड़पता हुआ देख, क्या फिर एक बार हो जाएगा इनका मिलन। मूसा के चलते खतरे में पड़ी जगधात्री की जान, क्या सुहानी ही रूही है नाहर का फूटा गुस्सा।
8: आप इनके इरादे समझ में आ रहे हैं?
7: अपराजिता की माने की रक्षित की बेइज्जती।
8: आपको शर्म नहीं आती?
9: आप अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज के यहाँ ऐसे सफाई करने जाते।
7: नैनिका पर लगे इल्जाम,
10: तो घर के छोटे बच्चे के सामने ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें दिखाई नहीं देता।
7: और योग दिवस के मौके पर देखिए पारुल चौधरी संग ये खास दिन। और बरेली के बच्चन के सेट पर मनाया जाएगा फादर्स डे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मन और आत्मा को और भी खूबसूरत सिर्फ योग से बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी जगदात्री। जगदात्री, इसे आप तो जरूर योग करती होंगी क्योंकि आपके ये स्टंट्स और आपके वो फुल ऑन एक्शन सीक्वेंसेस, ओ माय गॉड, किस तरह मुड़ तोड़ जाती हैं। तभी तो हैं हमारी जगदात्री सुपर फिट और करती हैं हम सबको इंस्पायर। और आज तो वो हम सबसे कह रही हैं कि योग करें और स्वस्थ रहें। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री के सेट पर।
1: जगदात्री संग हुआ हादसा। भेस बदल कर आए मूसा के आदमी। बुरी फंसी जगदात्री। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में मूसा को पकड़ने के लिए जगदात्री ने खुद को चारा बना लिया है। तभी तो जानते हुए भी कि आगे खतरा है, वो ऑटो में अकेली सवार हो गई है। और देखे, जैसा वो चाहती थी वैसा ही हुआ है। एक ट्रक ने आकर उसके ऑटो को टक्कर मार दी है, जिसके चलते न सिर्फ ऑटो चालक बल्कि जगदात्री भी घायल हो गए हैं। और तो और, जगदात्री बेहोश है।

वापस फिर गया। एक्सीडेंट देखकर वहां पर मौजूद लोगों ने भीड़ जमा कर ली और इसी बीच मूसा के आदमी भेस बदल कर पहुँच गए हैं एम्बुलेंस वाले बनकर।

और देखिए कैसे सभी लोगों के सामने उन लोगों ने जगधात्री को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने की पूरी कोशिश की है, या यूं कह लो किडनैप कर लिया है। अब जगधात्री असली में बेहोश हुई है या फिर बेहोशी का ड्रामा कर रही है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो जगधात्री मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि वो अकेली है और गुंडे कई सारे, तो देखना होगा जगधात्री कैसे सामना करेगी, या फिर शिवाय उसकी रक्षा करने के लिए सही समय पर पहुंच जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं योग को मेरे साथ। जी हाँ, मैं पहुंची हूँ अभ्यास स्कूल ऑफ योगा, जहां मैंने एक्सपीरियंस किया है योग को एक अलग ही तरीके से। यहाँ तो सात्विक भोजन के साथ साथ मैंने करवाई है पंचकर्मा क्रिया, और बस यहां तो डेफिनेटली हो गई हूं मैं कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर।

0: छेड़ा वेलनेस का साज,
1: पागलपन है सौ बातें करता,
0: योग ही है सेहतमंद होने का राज,
1: जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता,
0: योग अभ्यास के संग सुकून के रंग, डिटॉक्स का सफर हर पल बने बेहतर, सास बहू और बेटियां की होस्ट और टीवी एक्ट्रेस पारुल चौधरी अपने दर्शकों संग खोल रही हैं अपनी सेहत का राज, इसीलिए वो पहुंच गई हैं मुंबई के वसई में करने योग का अभ्यास, जहां उन्होंने शुरू किया है वेलनेस और सेल्फ हीलिंग का एक खास सफर।

सुबह। नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी और आप सबका स्वागत है अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में, जिसे अभ्यास आयुर्वेद हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये है इस जगह की एंट्री, जहां पर जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको फुटवेयर निकालने हैं बाहर, तो आप अपने बाहर वाले फुटवेयर अंदर लेकर नहीं जा सकते। और उसके बाद अभी चलते हैं अंदर। एक बार आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं, आपकी मुलाकात होती है सिस्टर रिचा से, जहाँ आपकी एक पूरी फाइल तैयार होती है, जो कि एक हेल्थ रिपोर्ट है जो हमेशा इनके पास रहेगी, जहाँ पर आपकी हाइट, आपका वेट, आपके कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हैं या नहीं, आपको किसी चीज से एलर्जी है या नहीं, सारे डिटेल्स नोट किए जाते हैं। फिर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है, आप आराम से डॉक्टर के साथ बैठ सकते हैं और वो एक डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है, तो वो भी उस फाइल में अपने डिटेल्स नोट करते हैं। फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर या योगा थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको कहीं पे क्रोनिक पेन है, आपको क्या परेशानी है, क्या हेल्थ है, वो भी उस फाइल को रेफर ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उन्हें आधी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बता दिए, तो उस हिसाब से फिर आपके पूरी रूटीन की डिजाइनिंग होती है यहाँ पर, उस हिसाब से आपको थेरेपीज दी जाएंगी और उस हिसाब से ही आपको योगा कराया जाएगा स्पेसिफिकली। और यहाँ का बेस्ट पार्ट यही है कि ये बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है, बहुत ही छोटे ग्रुप्स होते हैं। रूम्स यहाँ पर हैं एक्चुअली सिर्फ 10 रूम्स हैं, तो आप सोचिए मैक्सिमम 20 पीपल एट अ टाइम। तो क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम ताकि अटेंशन दे सकें हर एक गेस्ट पर, इसलिए हम यहाँ पर लोगों को कम ही एक टाइम पर बुलाते हैं, तो अगर एक बड़ा ग्रुप आ रहा है तो उस टाइम पे उस बड़े ग्रुप के अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा, ताकि सारा टेंशन उस बड़े ग्रुप को दे दिया जाए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं।

इसके बाद अंदर पहुंचकर वहां के इंस्पिरेशनल सदगुरु सदफल देव जी महाराज का आशीर्वाद लिया और फिर शुरुआत की अभ्यास स्कूल ऑफ योगा के टूर की।

0: क्या करूं?
1: क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, आप ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। तो रेणुका अभी हमें दिखाने वाली है यहाँ का स्टे का।
0: क्या करूं, धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूं। क्या करूं, थोड़ा थोड़ा तो असर।
1: तो ये है यहाँ का स्टैंडर्ड रूम, स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड, वेरी कंफर्टेबल। आपके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं इस रूम में। हर रूम में ऑलमोस्ट एक ब्यूटीफुल बालकनी है जो एक पूरे ग्रीन एरिया को फेस करती है, लाइक अ जंगल। सो मच फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, इट्स ब्यूटीफुल।
0: क्या करूं, सोए सोए से कहीं अरमा है जागे। क्या करूं, कोई कोई सी है कहीं राह।
1: और हर रूम में आपके लिए दो वाटर बॉटल्स हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं डाइनिंग रूम में जाकर। लेट्स शो यू द क्लोजेट एरिया एंड द वॉशरूम। यहाँ पर रखे हैं क्लीन टॉवल्स, टिश्यू रोल्स, एक मिरर भी है। सो दिस इज लाइक योर गेटिंग रेडी एरिया। यहाँ पर है वॉशरूम विच इज नीट एंड क्लीन, स्पेशियस। और उसके साथ साथ आपको टॉयलेट्रीज भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रखी हैं।

अब पेट पूजा भी जरूरी है, इसलिए आ गए हैं हम भोजनालय। आइए दिखाते हैं आपको सारी बातें। सो ये तो है आपकी एक रेगुलर डाइनिंग टेबल, वहाँ पे वॉश बेसिन है जहाँ पर आप भोजन करने से पहले अपने हाथ धो सकते हैं, भोजन करने के बाद भी। और आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं नीचे बैठ के खाने में, एक्चुअली ये तो हमारा ट्रेडिशन ही है कि नीचे बैठकर भोजन करना, तो उनके लिए ये लोअर सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। अब मैंने तो हर वक्त यहीं बैठकर खाना खाया, एक्चुअली मैं तो घर पर भी यही प्रैक्टिस करती हूँ, हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बस लंच टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में, यहाँ पर सेटअप हो जाएगा लंच और यहीं पर हम आकर अपनी हर मील कंज्यूम करते हैं। और अगर आपका मन है तो यहाँ पर ग्रीन टी हमेशा अवेलेबल रहती है, तो आप ग्रीन टी लेकर जा सकते हैं। और यस, मटके का ठंडा ठंडा पानी जो यहाँ पर हर वक्त रहता है, तो आप अपने रूम की बॉटल भरकर भी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। क्या करूं?

और हर टेबल पर रखा है सुकृत आयुर्वेद का च्यवनप्राश, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जो बना है ढेर सारी जड़ी बूटियों से, ढेर सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, जो है एकदम एकदम नेचुरल। चलिए अब मैंने खोल ही लिया डब्बा, तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ।

0: बिल्कुल जैसे हम रेगुलर च्यवनप्राश खाते हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और आमला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट और फ्लेवर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स नॉट लोडेड विद शुगर, वेरी यमी एंड वेरी हेल्दी।
1: वैसे बता दें कि पारुल वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई है अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। ऐसे में पारुल ने अगले दिन की शुरुआत की है पारंपरिक क्रियाओं के साथ, जल नीति, आई वॉश और ऑयल पुलिंग के साथ हरी हरी घास पर चलकर दिन की शुरुआत को बना रही है एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग।
2: ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बजे हैं ऑलमोस्ट 6:15 और हम आ गए हैं रेणुका के पास करने मॉर्निंग एक्टिविटीज। तो रेणुका बताएंगी हमें कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ओवर टू यू।
3: यस नमस्ते। तो आयुर्वेदा में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताई गई है कि जो हमारी बॉडी क्लींजिंग के लिए बहुत जरूरी है डेली लाइफ रूटीन में। तो सबसे पहले हम जाते हैं दंत मंजन के लिए। ये जो दंत मंजन है ये क्या करता है कि एक दांतों में शाइन लाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि लवंग हुआ, कथ्या हुआ, सुंठ हुआ, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो ये क्या करते हैं कि जब वो सलाइवा के साथ वो जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो जब सलाइवा के साथ अंदर जाता है तो हमारे शरीर का जो पित्त है उस पित्त को घटाने का काम ये करता है।
2: okay.
3: तो फिर दांतों का बैड ब्रेथ वगैरह है वो खत्म करता है, गम्स और टूथ को स्ट्रेंथनिंग देता है।
2: okay.
3: ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके।
2: और बेसिकली हम इसको करते भी हैं अपनी उंगली के साथ। yes. तो हमारे मसूड़ों की मसाज yes. भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके okay. yes. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे?
3: आफ्टर द दंत मंजन वी कैन गो फॉर द गंडूषा। गंडूषा वी कॉल्ड इट एज गार्गलिंग एज वेल। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि हम घर में भी है तो घर में हम क्या करते हैं सॉल्ट वाटर विद टर्मरिक उससे भी हम गार्गलिंग कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे अभी हमने यहाँ अभी आयुर्वेद के जो हर्ब्स है उसके साथ गार्गलिंग करना ये किया है।
2: बेसिकली रेणुका कह रही है कि आपके घर में आयुर्वेदिक हर्ब्स तो होंगे नहीं तो आप नमक और हल्दी के पानी से गार्गलिंग कर सकते हैं, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
3: यस yes, जरूरी है कि आपका जो सोर थ्रोट है, सोलन कुछ है आपके थ्रोट में या फिर थ्रोट को क्लियर आउट करने के लिए आप ये गार्गलिंग कर सकते हैं। यस
2: ओके।
3: सो नेक्स्ट विल गो टू दी ऑयल पुलिंग जिसको हम कवला बोलते हैं। कवला हाँ इसको हम कवल बोलते हैं। इसको क्या करना होता है कि स्वैशिंग करना होता है इस ऑयल को इन माउथ, वी जस्ट हैव टू स्वैश दैट ऑयल जो कि ऑयल के पास जैसे खींचने की प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज ऑयल पुलिंग। तो इसके पास खींचने की प्रॉपर्टीज है, जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए हैं निकले वो निकल जाते हैं सारे। और अगेन दी ये जो है कि ओवरऑल ओरल हाइजीन मेंटेन करना काम ऑयल पुलिंग करता है।
2: तो बेसिकली ये जो आप इतना सुनते हैं सोशल मीडिया पर, शिल्पा शेट्टी जी इसको बहुत ही प्रमोट करती हैं ऑयल पुलिंग, तो ये बेसिकली हमारी ओरल हेल्थ के लिए है और ओवरऑल गम हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके नेक्स्ट
3: विल गो टू दी त्रिफला वाटर जिससे हम आई वॉश करते हैं। यस
2: ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है। तो कल मैं इसे मॉर्निंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और एक्चुअली इसे करने के बाद इतनी फ्रेशनेस फील होती है आईज में, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, स्क्रीन के सामने इतना एक्सपोजर है। तो ये तो आई थिंक हम सबको करना चाहिए सुबह सुबह। बस इसको अपनी आईज पर लगाना है और कुछ देर तक ब्लिंक करना है अपनी आईज को।
3: yes.
2: उसके बाद बिल्कुल ऐसी टेंशन चली जाती है आईज से और एक क्लैरिटी से भी आ जाती है। दिस इज अमेजिंग।
3: यस एक कामनेस इफेक्ट देता है।
2: कामनेस इफेक्ट। ओके
3: तो नेक्स्ट जो है वो है जलनीति। जैसे आयुर्वेदा में शतक्रियाज बताई गई है उसमें से हमने बहुत सिंपल प्रैक्टिस यहाँ लाई है वो है जलनीति, जो कि सारे लोग नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं, इसके लिए एडवांस लोगों की जरूरत नहीं है। तो जलनीति के कैसे परफॉर्म करते हैं कि जो इसमें जो सलाइन वाटर हम डालते हैं इसमें से हम जो नमक वाला पानी ऐड करके इसमें भर देते हैं और
2: थोड़ा सा गुनगुना पानी।
3: यस थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूरी है वो। तो उसको क्या करते हैं कि एक नॉब को एक नॉस्ट्रल में फिट कर देते हैं एंड पोर करते हैं दैट वाटर, इट विल कम फ्रॉम ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल।
2: ओके तो ये हम सब आपको वीडियो में दिखा देंगे, स्पेशली ये वाली क्रिया और ये आईज वाली।
3: तो इससे क्या होता है कि नेसल ब्लॉकेजेस जो है क्लियर हो जाता है, जिससे हम योग और प्राणायाम जो हमारी प्राण की शक्ति है उससे बढ़ जाती है, तो
2: लवली
3: वी कैन ब्रीथ नॉर्मली एंड
2: लवली,
3: वेरी फ्रीली।
2: वाओ। तो आप सबने देखा कि सुबह सुबह ही हम कितनी सारी क्लेंजिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही इस तरह हो तो आपका दिन तो फिर सेट है। और इसके बाद ऑफ कोर्स हम एक योगा सेशन पर जाने वाले हैं जो हमें रेणु का ही गाइड करने वाली है, तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिन की सारी एक्टिविटीज दिखाएंगे।

तो हो गई है मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट फिनिश. स्टार्ट किया हमने दंत मंजन से, उसके बाद हमने किया गार्गलिंग, उसके बाद हुई ऑयल पुलिंग, फिर आई वॉश हुआ और उसके बाद जल नीति. फीलिंग एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड एंड ऑसम. और इस एक्टिविटी को अब हम एंड करेंगे अनु तेलम से, जिसकी दो ड्रॉप्स हम ईच नॉस्ट्रल में डालेंगे. सो दिस इज बेसिकली फॉर योर nose health overall, in case you have any issues with sinus or any other nose or throat related issues, this really helps. So let's do it.

0: इसके बाद अ जेंटल मसाज अराउंड योर नोज एरिया। लेट्स गो। तो रेनुका, अब हम क्या कर रहे हैं?
1: इसको बोलते हैं कॉन्शियस वॉकिंग। जैसे हम नमस्कार मुद्रा करते हैं, वैसे इसको बोलते हैं हाकिनी मुद्रा। जैसे हमारे इस पांच उंगलियों में भी पंच तत्वास की एनर्जी है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सारे। तो इससे हम क्या करते हैं कि एक साथ हम जोड़ते हैं उस दोनों उंगलियों के, और ये इसको बोलते हैं हाकिनी मुद्रा।
0: हाकिनी मुद्रा,
1: यस। तो बड़े बड़े स्पीकर्स को भी आप देखे होंगे कि इस मुद्रा में वो संभाषण या संवाद देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो है, तो एक अलाइनमेंट में कार्य करने लगता है। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होती है कि कभी कभी हम थॉट्स कुछ अलग करते हैं और एक्शंस में हमारे कुछ अलग ही होता है, बट ये ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ये मुद्रा धारण करते हैं, हमारे कॉन्शियस ब्रीथिंग पे फोकस करके हम कॉन्शियस वॉक करते हैं।
0: वाओ, तो जिनके पास भी ऐसी फैसिलिटी है कि उनके पास गार्डन है जिसमें घास है,
1: ग्रास भी चल सकता है, और हमारे जो फ्लोर भी है,
0: अच्छा, उसपे बेसिकली नंगे पैर हमें चलना है जिससे हम कॉन्शियस वॉकिंग, और उसके साथ साथ ये मुद्रा में, हकीनी मुद्रा में हम कॉन्शियस ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंडिंग।
0: वाओ, सो रेणुका और मैं तो हो गए हैं एक्चुअली ग्राउंड। अब हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की और आपको दिखाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज। लेट्स गो।
2: तो
0: रेणुका,
2: अब हम क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम उषापान की क्रिया करने जा रहे हैं, जो हमारे मॉर्निंग रिचुअल में से सबसे लास्ट प्रैक्टिस है। तो उषापान में क्या करते हैं, हम मलासन में बैठ के सिप बाय सिप करते हैं गुनगुना पानी जो होता है, मतलब ज़्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं, ज़्यादा कम ठंडा नहीं, जैसे रूम टेम्परेचर गुनगुना पानी होता है वैसे हम सिप बाय सिप करके वो पीते हैं। तो हमारे बॉडी में एक अमा क्रिएट हुआ होता है, जैसे हमने सुबह की क्लिनिंग प्रैक्टिसेस की, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारे बाउल मूवमेंट्स को क्लियर करने का काम जो है उषापान का है। जब हम मलासन में बैठे हैं तो हमारे की पेट के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो जब हम ऊपर से भी पानी डाल रहे हैं और पेट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हमारे बाउल मूवमेंट्स कोलॉन जो है क्लींज हो रहे हैं, तो उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छे हो रहे हैं, और डाइजेशन हमारा अच्छा रह रहा है, प्रॉपर रह रहा है।
0: तो बेसिकली एक छोटी सी क्रिया है ये, बट इसके बेनिफिट्स देखिए कितने हैं। सुबह आपको मलासन में बैठ के गुनगुना पानी पीना है, हाइड्रेशन, डाइजेशन, जो अमा क्रिएट होता है उससे आप रिट पा सकते हैं। तो इतनी छोटी सी एक्टिविटी जो हम सब कर सकते हैं अपने अपने घरों में, ऑफकोर्स मैं तो इसे काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती हूँ, बट अगर आप सब भी इसे अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, सो प्लीज डू इट।
3: फ्रेश होने के बाद बारी आई योग प्रैक्टिस की। पारुल ने कई योग आसनों का अभ्यास किया और शरीर को स्ट्रेच करते हुए फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस किया।

योग सेशन के बाद पारुल ने पंचकर्मा थेरेपी का अनुभव लिया, जिसे आयुर्वेदा में शरीर को डिटॉक्स करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इन्हीं क्रियाओं के साथ दिन ढलता गया। पारुल एक बार फिर योग सेशन में शामिल हुई। शाम की शांत फिजा और योग की सकारात्मक ऊर्जा ने उनके वेलनेस जर्नी को और भी खास बना दिया है।

0: भाई कुल मिलाकर अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में पारुल चौधरी का ये सफर रहा है सेहत, सुकून और सेल्फ डिस्कवरी का एक यादगार अनुभव। इसी के साथ यहाँ पर बिताए हुए हर दिन की क्रियाओं को पारुल ने अपनी जिंदगी में शुमार कर लिया है और वहाँ से जाते जाते पारुल ने की है डॉक्टर अनमोल से मुलाकात भी और उनकी बातों को कर लिया है अपनी डायरी में लिस्ट।
1: आपको एक प्रॉपर डाइट दिया जाएगा, मतलब डाइट इसके लिए क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना वात बढ़ाने वाली, वायु बढ़ाने वाली, पेन को इंक्रीज करने वाली, तो वो आपको डाइट में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे आज के तारीख में हम बहुत ज्यादा पाव ब्रेड या जंक फूड या मैदे वाली चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो उससे शरीर में वायु बढ़ता है, वात बढ़ता है और वो वायु फिर पेन क्रिएट करता है।
2: तो एक बेसिकली डॉक्टर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जब आते हैं और वो जब उनका एक रूटीन सेट हो जाता है, स्पेशली जब वो कुछ दिन अपने साथ लेके आते हैं, जैसे 10-12 दिन कोई यहाँ पर है, तो अपने आप जब वो रोज वही चीजें खाएगा तो उसको वो एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी और वो ओल्ड हैबिट ब्रेक हो जाएगी और उससे उसकी हेल्थ,
1: मतलब इंटेंशन हमारा यही है कि आप 10 दिन यहाँ पे रहे हो, 8 दिन जहाँ पे रहते यहाँ पे रह रहे हो ना, तो आपको एजुकेट करना।
2: करेक्ट,
1: वो जो चीजें हम पेन से रिलेटेड आपको बताएंगे, जो थेरेपीज पंचकर्मा या जो भी योगा सेशन से एक्सरसाइज है, वो आपको आगे डेली उसको अच्छी तरह से उसको फॉलो करना है, जैसे आपको जमेगा तो आप लॉन्ग लास्टिंग में पेन से आप दूर रह सकते हो।
0: वही अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में पारुल का तन हुआ है लाइट, मन हुआ है ब्राइट और योग ने बना दिया है उनके दिन को डिलाइट। इसी के साथ पारुल चौधरी का यहाँ सफर हो गया है पूरा।
2: नमस्कार, दिस इज पारुल चौधरी। आई एम एन एक्टर, एंकर एंड नाउ एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। माय एक्सपीरियंस एट द अभ्यास स्कूल ऑफ योगा हैज बीन टोटली अमेजिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेन मैनेजमेंट, दीज गाइज एक्सेल। आजकल हमारा कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहता है टू मोबाइल फोन्स, टू स्क्रीन्स, टू लैपटॉप्स, एंड ऑल ऑफ अस हैव पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स सर्वाइकल, लोअर बैक प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ पेन इन आवर बॉडी, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड। पेन मैनेजमेंट को अभ्यास स्कूल ऑफ योगा इतने अच्छे से एड्रेस करते हैं, यहाँ के थेरेपिस्ट, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलती है, यहाँ के योगा इंस्ट्रक्टर्स, they all have knowledge and they train you according to your specific problem. यहाँ पर आपको personal attention मिलती है और एक बार आप यहाँ आ गए अपने कोई भी pain related issue को लेकर, आप वापस जाएंगे pain free. So thank you once again to all the staff, to all the members of Abhyas School of Yoga. The experience has been amazing.
0: Mumbai से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सपने तो मेरे ही थे लेकिन चुपके से उन्हें कोई पूरा किया जा रहा था, वो हैं मेरे पापा। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पापा का प्यार, सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे आप सभी के साथ, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जहाँ तो डेफिनेटली है भर भर कर पापा का प्यार। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
4: बच्चन के बच्चों ने मनाया फादर्स डे।

0: पापा और बेटों की बॉन्डिंग।
1: चाबी भरी राम ने।
0: आज है फादर्स डे और इस खास मौके पर जूनियर बच्चन तैयार है अपने सीनियर बच्चन यानी अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए। और आज तो ये सच में बच्चे ही बन गए हैं। तभी तो देखिए कैसे ये स्पेशल वाला कार्ड बना रहे हैं अपने हाथों से ड्राइंग करके। तो भाई सबसे पहले हम पहुँचे हैं सतलुज के मेकअप रूम में, जहाँ आज सतलुज यानी कि अंश अपने पापा अजब सिंह को देने वाले हैं फादर्स डे का ये खास वाला सरप्राइज। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हैं और आज वो फादर्स डे पर अपने पापा के लिए क्या खास करने वाले हैं।
2: बरेली के बच्चन में से सतलुज बच्चन है हमारे साथ और आज वो खास अपने पिताश्री यानी कि अजब सिंह बच्चन जी के लिए कुछ खास करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा एंग्री और चुप चुप से और अपने पापा से उनकी कुछ खास पटती नहीं है, राइट?
3: करेक्ट, मतलब ज़्यादा पटती है नहीं हम लोगों की, पर फादर्स डे एक ऐसा दिन है जिसमें हर बच्चे को चाहे उनकी उनके बाप से बनती हो या ना बनती हो सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए।
2: कहीं ना कहीं छुपा हुआ जो प्यार होता है जो फादर्स कम एक्सप्रेस कर पाते हैं।
3: करेक्ट, क्योंकि बाप लोगों के शायद खून में होता है एक्सप्रेस ना करना, तो हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वो इतना एक्सप्रेस कर दे कि बाप को अंदर ही अंदर एक खुशी मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि
2: यहाँ जो है सतलुज और अजब सिंह की जो केमिस्ट्री है, जरा उसके बारे में बताएं, कितना एंजॉय करते हैं आप दोनों?
3: हम लोग एंजॉय तो बहुत करते हैं, मतलब मेरे से अगर पूछा जाए कि मेरा पहला गो टू पर्सन कौन होगा यहाँ पे, तो मैं किंचुक भाई के बाद अजब सिंह ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत मेल खाता है और प्लस उनसे सीखने को बहुत मिलता है। ही एवरीबडी नो हु ही इज़, बट उनके साथ रहकर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो शायद और कोई मुझे नहीं सिखा सकता था। और एक जो ठहराव होता है बाप के अंदर, वो जो उनके अंदर ठहराव है, अगर वो उसका 10% भी मेरे अंदर आ जाए, ओहो तो क्या बात हो जाए। तो इसलिए मुझे पता है कृष्णा माही इन सब के अंदर इतनी बुद्धि तो है नहीं कि बाप के लिए कुछ कर लें, तो वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है हमेशा, कि जो अच्छी चीज़ें हैं भले सड़के करूँ चाहे जैसे भी करूँ, लेकिन वो मैं ही कर देता हूँ, तो कर देते हैं बाप के लिए।
2: जो है वो क्या कुछ खास करने लगे, बचपन की यादें ताज़ा करते हुए नजर आ रहे हैं।
3: आज मैंने सोचा तो सिर्फ ऐसे ही है कि एक छोटा सा डायग्राम अपना अपने पिताजी का और बच्चों का, और उस पर हैप्पी फादर्स डे लिख के 2-3 पंछी बना के पापा को बोल देता हूँ कि आप भी थोड़ा खुश रहो। हालांकि उतना अच्छा तो डायग्राम बनाऊंगा नहीं, बट दिल से बनाई हुई चीज़ अच्छी होती है। जैसे आज माँ को चाय भी अच्छी लगी थी मेरी।
0: तो भाई आज सतलुज ने डिसाइड किया है कि वो अपने हाथों से अपने पापा यानी अजब सिंह के लिए बनाएंगे ये ड्राइंग, जिस पे वो हैप्पी फादर्स डे तो लिखेंगे ही, साथ ही लिखेंगे कुछ प्यारा सा मैसेज भी।

0: तो भाई सतलुज ड्राइंग कर ही रहे होते हैं और ये कार्ड बना ही रहे होते हैं कि उनके मेकअप रूम में आ जाते हैं उनके दूसरे भाई यानी कि माही, जिन्होंने खुद भी ले लिया है पेपर और पेन और बना रहे हैं फादर्स डे के लिए कुछ खास।
1: अरे भैया क्या हो रहा है?
2: अरे भाई
1: अच्छा फादर्स डे,
2: ये भी हम याद दिला है तुम्हें? ये मेरा है अपना बना, चल रुक जाओ पहले खत्म कर दो।
1: ये क्या क्या बना रहे? आप बहुत जरूरी हो, आपके बच्चे एक दो तीन नाम है ना?
2: हाँ
1: ये छोटा वाला।
2: तो मैं कृष्णा, गंगा भैया।
3: आप बहुत जरूरी हो, आपके बच्चन कुछ भी
1: लिखे के लिए।
3: नहीं वो तो मैंने ये लिखा
1: सबसे पहले।
2: मैं इसमें बाउंड्री दे देता हूँ।
1: अरे भैया क्या
2: वो बना दे बढ़िया, फिर
1: ये लो टेस्ट आ गई होगी। फादर्स डे का
2: लेफ्टी है तू?
1: हाँ
2: मुझे भी नहीं पता था। कुछ कैसा है ना कि जब पटे कम तो ऐसी सब चीजों में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। काहे कि
1: डे
2: स्पेशल है ना उनके लिए।
1: अरे मैं
2: ये बना रहे हैं फुल अजब सिंह।
1: यस।

0: तो भाई इन दोनों भाइयों ने तो अपने पापा के लिए ये कार्ड बना लिया। अब बारी गंगा भैया की, तो सतलुज और माही पहुंच गए हैं गंगा भैया के रूम में और उनसे भी बनवा रहे हैं फादर्स डे पर ये स्पेशल वाली ड्राइंग। तो आइए देखते हैं किंचुक क्या ड्रॉ करने वाले हैं।
1: कि भैया हम लोगों ने तो देखिए अपनी पेंटिंग बना ली है, तो घर के सबसे अच्छे बेटे होने के नाते इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि ये करें।
2: हाँ, तो अभी मेरे को पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग बनानी है इसमें
1: कुछ भी, मतलब पापा के लिए फादर्स डे है यार, मतलब बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग।

0: के दिन टन टन टन। अच्छा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
1: कि हम चार भाई हैं। ओ हो
0: भैया यार, माही को भूल गए यार, भैया यार
1: माही को भूल गया था, सॉरी माही, मतलब मैं सॉरी, कुछ हो गई गलती। ऐसी गलती होती है। ये हमारे पापा हैं, ये हमारे पापा हैं, और उनके
0: देखो सोच
2: छोटा बन गया है।
3: सोच कितनी मिलती है कि मैंने भी यही बनाया है।
2: क्या
3: देखो नीचे हम चार हो पापा।
2: ओ माय गॉड,
3: देख रहे
2: हो? ओ माय गॉड,
3: सेम ब्लड।
4: अरे हमारा तो
3: भैया इस आर्टिस्ट फ्रॉम लखनऊ,
5: आंखों देखा बनाते हैं, लाइव पेंटिंग।
1: ये भी लाइव पेंटिंग है।
3: तो चले पापा को सरप्राइज करने अब। आओ पापा को खुश करते हैं। माफी ये चाहूंगा कि हम तीन ही हैं यहाँ पे, माफी ये चाहूंगा। हाँ, कृष्णा अभी गए हुए अपनी आस्की लड़ाने, उनका अभी फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रही है जिसको हैंड ब्रेक हम ही लोग लगाएंगे, लेकिन फिलहाल उनको भी उड़ाने दो अपनी गाड़ी को, भिड़ाने दो अपने पेंच, लड़ाने दो आस्की, आगे उनको आने दो, फिर देखते हैं। फिलहाल अभी अपने बाप का ध्यान हम तीन ही रखेंगे। कोई बात नहीं,
1: ये जो हमारे पापा के रूम में ना ये सारी चिट्ठा
0: अकेला नहीं है।
6: तो भाई इनकी ड्रॉइंग तो हुई पूरी, अब बारी सीनियर बच्चन के पास जाने की, यानी पापा अजब सिंह के पास जाने की। अब देखते हैं इन कार्ड्स और सरप्राइज को देखकर अजब सिंह बच्चन कितने खुश होते हैं।
0: पापा कहते हैं करेगा, बेटा है उनका बड़ा काम करेगा। तो फादर्स डे आ रहा है,
7: हमारा नाम
0: करेगा।
8: चालू है क्या?
0: हाँ। फादर्स डे की खुशी में हमने, आपके बच्चे हैं तो थोड़ा बचकांड सा कार्ड बनाया आपके लिए हम सब ने। ये देखिए,
9: प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा।
10: आपके बच्चे, आपका परिवार, सबसे पहले तो आप हमारे लिए, आप बहुत जरूरी हो। अरे वाह, थैंक यू भाई, ये तो आज हमारा दिन बना दिया आपने। क्या बात, अच्छा
3: ताकि आपको याद रहे।
1: मैं तो साइन नहीं किया।
10: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
10: जीते रहो और पीते रहो।
1: ये मतलब मेरा बहुत सिंपल सा है सर,
10: आई लव माई पापा। तो पहले हेट करते थे क्या?
1: नहीं नहीं, मैं गार्ड तो सर अपने बना रहे ना।
9: भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए।
10: ये क्या है? गजब
3: सर, जी
10: छोटा गजब
3: अजब।
10: अच्छा जी जी, अजब बच्चन सिंह। अच्छा,
0: थोड़ा सा
10: अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है। नहीं नहीं, अभी सीरियल के एंड तक सीख जाएगा। थैंक यू,
9: तुमसे कल मुलाकात करूंगा।
10: बिंदास एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बीच बीच में हम आ जाते हैं, हम देखते रहते हैं। हमारा तो मतलब इतना है कि चारपाई पर बैठे और देखते रहो, बीच में जहाँ फुदकनी सी लगी उठ के चले गए, यहाँ भाई दो लाइन बोल के आ गए, फिर फैंटास्टिक मोमेंट।
0: हमारे पिताजी ने अगर अंग्रेजी में तारीफ कर दी, मतलब आप समझ लो कि वो चरम पे है इस वक्त। हम लोग तो वही

0: हैप्पी फादर्स डे.
1: थैंक यू.
0: आप हमेशा हमारे बाप रहे.
1: थैंक यू.
2: हम हमेशा आपके बच्चे रहे.
3: अरे बेटा
0: नहीं, कोई लीव की बातें नहीं करेगा.
3: आगे
0: कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा.
1: नहीं, उसमें है ना एक बार ये जब बोलता है कि यही तो दुख है कि हम आपके बेटे हैं.
0: अब बीती बीती बातों को याद नहीं करते.
1: बेटे तुम बेटा ही पैदा हुए थे बेटा.
4: तो देखा आपने, ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी जुड़ गया है इनका रिश्ता. रियल वाला जो हो गया है रियल वाला. तो भाई इन जूनियर बच्चन ने तो अपने सीनियर बच्चन को फादर्स डे कुछ इस तरह से विश किया और इनका दिन बना दिया. अब आप सब भी फादर्स डे को

0: से ही खुशी खुशी मनाइए और अपने पापा को दीजिए स्पेशल वाला सरप्राइज। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तो हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जो हजारों घंटे तक काम करके भी हम अर्जित नहीं कर सकते। जी हाँ, यही है हमारे योग की शक्ति, हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा की शक्ति। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ ये योग दिवस। कैसे? ऐसे।

एक शाम सितारों के नाम तौबा, तौबा, तौबा, तौबा। रेड कारपेट पर लगा सितारों का मेला। दिखदा परांदा नहीं हूँ देखदा पराडा। स्टॉप। पिगरे तो लग दी लटीनो एक बारी दस दो जी। जगमगाते अंदाज में नजर आए आपके फेवरेट कलाकार। तू पेरिस तो मंगाया वेलेंटिनो। हाँ, तेनू क्यों ना दिखा। तेरे को किसे। बीती शाम मुंबई में हुआ बुगल बॉलीवुड पैलिस्टिक इवेंट, जिसमें नजर आए आपके फेवरेट कलाकार जो सज धज कर पहुंच गए हैं इस खास अवार्ड फंक्शन में। बटोरने आप सभी का अटेंशन। भाई यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँचे हैं बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन से जुड़े कई सारे कलाकार, और ऐसे में सास बहू और बेटियाँ लेकर आया है आपके लिए इस रेड कारपेट के सभी खास पल, जहाँ आपके फेवरेट कलाकार अपने फेवरेट आउटफिट में लग रहे हैं बेहद ही कमाल। भाई बात करते हैं सबसे पहले टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म की हसीनाओं की। भाई यहाँ पर खास ऐश्वर्या खरे,

Sana Sultan. Myra Dharti. Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, party, party, won't you burn the floor all night? Archana Gautam. सारा किल्लेदार सपनों के दिन है सपनों की रातें ओ गूंजे दिल के तराने यामिनी मल्होत्रा गीत सुहाने बहके हैं सारे दीवाने तो नचो नचो चिंकी मिंकी यानी कि समृद्धि सुरभि

0: Chinky Minky, yani ki Samriddhi Surbhi. Akansha Puri. Urvashi Upadhyay. इसके अलावा हैंडसम मुंडो की बात करें तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं बसीर अली, आशीष दीक्षित, मनीष राय सिंघानी, संजय गगनानी, रोहन मेहरा, अभिषेक शर्मा, सागर पारिक,
1: बीजी हो गई तैयार, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में
0: शहबाज बदेशा और कई और कलाकार। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर ये कलाकार इस अवार्ड नाइट को कितना एंजॉय कर रहे हैं और अवार्ड्स मिलने पर ये कितने एक्साइटेड हैं।
2: मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एक्चुअली सारे व्यूअर्स को, सारे फैंस को जो हमारा शो देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट शो है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं किया है अपनी लाइफ में, एंड आई एम ग्लैड कि आरंभी मेरे लिए आया और मैं ये शो कर पाई। मैं एक्चुअली रियलिटी शोज देखती नहीं हूँ और मैंने ट्राई कर चुका है रियलिटी शो, छोरियाँ चली गाँव में करके देख चुकी हूँ, एंड आई थिंक रियलिटी समथिंग दैट मैं थोड़ा सेकंड फुट पे रखती हूँ उसे। मुझे जो मैं काम करती हूँ, मेरी एक्टिंग जो मेरा काम है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पूरी तरह से ना भी नहीं कहने चाहती, लेकिन एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है मेरे साथ छोरियाँ में जो कि वॉजेंट वेरी गुड फॉर मी, तो अभी थोड़ा वो बैक फुट पे है।
3: ये लुक कोशिश की है मैंने परफेक्टली पहनने की, बस देखिए आप आज मैं पिंक बन रही हूँ और फुल मस्ती करूँ, धमाल करूँ और कुछ नया करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हर सीजन में हर शो में मैं कुछ नया करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर रियलिटी शो में मैं आपको कुछ नया दूँ, अर्चना एक नई आपको मिले। जल्दी मेरे खुद के भी शोज आ रहे हैं, मेरी खुद की भी कुछ लाइनअप चीज़ें हो रही है वो आ रही हैं, जल्दी से मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी।
4: सबसे पहले इंडियन लुक के साथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड वाला ये अटायर है, बिकॉज सीधा मैं फिल्म सिटी से आ रही हूँ शूट से, और ये कुसुम के गेटअप को मैं कैरी कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट लाइक गजरा वजरा थोड़ा सा मैंने एड ऑन किया है, लेकिन ढाई साल से हमारा शो जो दर्शकों के इतने सारे प्यार की वजह से चल रहा है, और जो अमेजिंग किरदार मुझे करने का मौका मिला, कुसुम को जितना ढेर सारा प्यार मिला, तो आज मौका ऐसा था कि टाइम की भी थोड़ी मर्यादा थी और मुझे लगा कि क्यों ना इतने खूबसूरत गेटअप के साथ ही बाहर निकला जाए, एक और दिन जिया जाए उसके साथ, और अवार्ड लेने की ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट है मैं कुसुम के साथ शेयर करूं, तो बस आज। और मुझे ऑलवेज, आप सबको पता ही है कि मुझे साड़ी पहनना, इंडियन अटायर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, साड़ियों की तो मैं बहुत ही शौकीन हूँ कि मुझे सबसे मेरा कम्फर्टेबल ड्रेस है तो साड़ी है, तो आई ऑलवेज प्रीफर टू वेयर साड़ी।
5: मुझे आज यंग अचीवर इन टेलीविजन अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक एज सभी एक्टर्स ने अभी भी अंदर कहा, एंड आई टोटली बिलीव कि समटाइम्स अप्रिशिएटिंग somebody एंड somebody's वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कि हमें भी पता चलता है कि आई थिंक हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आई थिंक दीज स्मॉल अप्रिसिएशन आई थिंक एनकरेजेस एवरी आर्टिस्ट एंड एवरी एक्टर, सो आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू।
6: Hamari glamorous and she got the best award, yeah.
7: No, no, she's got the best glamorous and versatile.
6: Yes.
7: I got what? Glamour and versatile award, okay, thank
6: and
7: you.
6: And I'm the versatile entertainer.
7: We both are so versatile and I'm so happy. You know, it feels so amazing when you get an award
6: get it
7: with
6: together.
7: Your best friend.
6: Exactly.
7: That's the best feeling.
6: And next award will be with our third best friend also very soon.
7: Yeah.
6: Matlab dosti ke bare mein sochte to bahut bahut high lows, emotional high lows bahut hai, because we are so close to each other. Matlab distance होता है तो ऐसा लगता है कि यार कुछ अंदर से खाली लग रहा है.
8: आई नो. हां, बट सबके बारे में आपको बहुत जल्दी एक नए तरीके से पता चलने वाला है.
6: यस.
8: एंड वो हम बाद में रिवील करेंगे कि हमारी दोस्ती कैसे शुरू हुई, कैसी हमारी जर्नी है, ये सब आपको हम जरूर दिखाएंगे बट एक नए अंदाज में.
6: या वी लेट यू नो अबाउट दैट.
9: सो आई गॉट एन अवार्ड फॉर स्टाइल डीवा और जब लोगों को मैं अपनी स्टाइल के लिए इंस्पायर करती हूँ तो आई लव इट. एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग गाइस, आपका स्टाइल आपका होना चाहिए, मेरा स्टाइल मेरा है. सो जस्ट स्टे इन स्टाइल, दैट्स ऑल आई कैन से. See, I always try to look different. Mera har outfit, har mood alag hai, toh outfit bhi alag hona chahiye. And I'm very happy that aaj main yahan pe hoon at Google Bollywood. Because ye third year hai jab main aane ka try kar rahi hoon but nahi aa pa rahi thi. But finally, third attempt ho gaya and I'm here. And congratulations. Thank you, Gaurav, for having me here.
5: Mujhe award mila hai as Beauty Preneur of the Year. Matlab mixture of entrepreneur जो ब्यूटी बिजनेस में है एंड मेरा ब्रांड सोल्ड आउट हो गया विद इन 4 weeks ऑफ लॉन्च. सो बाई ग्रेस ऑफ गॉड पहला अवार्ड एज एन एंटरप्रेनर इज अ ग्रेट फीलिंग. मुझे दो रियलिटी शोज के ऑफर आ चुके हैं, एक जो ऑलरेडी हो चुका है और एक जो होने वाला है. तो आप मुझे, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी. ओके.
6: अवार्ड्स मेरे लिए एक रिकॉग्निशन है एंड आई फील अगर अवार्ड मिलता है तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप अपना जो काम कर रहे हो ऑलरेडी वो और भी ज़्यादा शिद्दत से करो, पूरी दिल और जान से करो.
10: लाइक डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, तो हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है.
11: यही कहना चाहूंगी और मैं पूरी टीम की तरफ से गुल्लक की कहना चाहूंगी कि हम लोग अपनी ऑडियंस के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. टीवीएफ, सोनी लिव, हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, सारे को एक्टर्स, हम सब अपनी ऑडियंस के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मतलब हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर से भी हमको इतना प्यार मिल रहा है और सब लोग हमारे 5वें सीजन को भी बहुत पसंद कर रहे हैं. तो मतलब इससे ज़्यादा और आदमी क्या मांग सकता है एक एक्टर के, उसको हर कोई पसंद कर रहा है. हाँ, पंचायत की हम लोगों ने आधी शूट कर ली है और आधी अभी हमारी चल रही है इन दिनों, तो मिड जुलाई तक शायद ख़त्म हो जाएगी और इसी साल के अंत तक होपफुली पंचायत सीजन 5 भी लोगों के बीच आ जाएगा. बिट्टू की मम्मी तो ऐसे ही है, घरवाली बारवाली टाइप.
12: तो हम एक्चुअली 10 साल बाद मिल रहे हैं. वैसे हमारी त्वचा को देख के हमारी उम्र का पता नहीं चलता लेकिन हमने एक शो किया था 10 साल पहले.
6: yes.
12: और एक मैं तब से इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने सालों बाद दोबारा
11: मेरे बाद मिले हैं.
12: शी इज किलिंग इट एज यूजुअल. ऐसा कोई है नहीं,
11: ऐसा नहीं है,
12: छा गई है ये. और तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके. आई थिंक अवार्ड फंक्शंस वगैरह में यही मजा है कि आप अपने पुराने
11: दोस्त मिल जाते हैं, साथी मिल जाते हैं जिनके संग आप वैसे टच में हो पर व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले होते हो, तो ये यहाँ मिल जाते हैं.
12: तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद इनसे मिलके. बहुत कमाल काम कर रहे हैं. मेरा अभी अभी शो खत्म हुआ है तो थोड़ा वक्त मिल रहा है बाहर निकलने का, तो अच्छा लग रहा है काफी यहाँ आकर.
11: और ये आजकल के बच्चों से तो मैं हमेशा प्रेरित रहती हूँ, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना अप टू डेट रहते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं. मतलब इट्स अमेजिंग. आई एम सो प्राउड ऑफ यू.
12: बस अभी अभी खत्म हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ शो खत्म हुए, तो अभी थोड़ा रुक रही हूँ, देख रही हूँ कि और क्या क्या आते हैं नए अपॉर्चुनिटीज. और हाँ, जल्दी कुछ नया करूंगी.
13: आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर. जस्ट मेट माय फ्रेंड्स, एजाज भाई से मिला हूँ, दानिश से मिला हूँ, अ लॉट माय अदर फ्रेंड्स अभी जिससे मिलना बाकी है. सो आई एम जस्ट गोना जंप इन एंड गो से हाय टू एवरीबॉडी. 30 साल का हो गया हूँ मैं, सो आई हैव बीन डूइंग माय फैशन गेम ऑलवेज टॉप नॉच एंड आई फील लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ आई एम लुकिंग. आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज? हाँ, let me know in the comments. हो गया भाई, मेरा excitement हो गया. मेरा जो last experience रहा है, I have realized, I have felt कि there's a shift in the way reality shows are made in India. पहले बहुत कुछ अलग होता था जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, but मेरे खुद के Big Boss experience के बाद मुझे 100% पता चल गया है कि ये शो बिज है और ये शो बिजनेस ही है. तो अभी आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट प्रोजेक्ट्स इन लाइफ. एंड इतनी सारी भीड़ हो गई है विद रियलिटी शोज, करते रहेंगे, कहीं ना कहीं प्लेस हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. फॉर नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी रियलिटी शो. कहीं भी देख सकते हो आप, मुझे लिमिट क्यों करना चाह रहे हो? मैं वेब भी करूंगा, मैं टीवी भी करूंगा, मैं एड्स भी करूंगा, मैं सब करूंगा. आप हर जगह देख सकते हो. कीप एक्सपेक्टेशंस, बट दुआओं में याद रखना आपका भाई मेहनत कर रहा है.
14: यार बिल्कुल, अवार्ड नाइट है और ये थैंक्स टू गूगल बॉलीवुड जिन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है द मोस्ट लव्ड टेलीविजन पर्सनालिटी अवार्ड. जैसा कि ये पहले ही मुझे मेरे फैंस ने दे दिया है आज मुझे सम्मानित हुआ है बिकॉज जो मेरे फैंस है 2.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूअरशिप जो हमारी 24 आवर्स में आते हैं वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि आई एम मोस्ट लव्ड पर्सनैलिटी ऑफ टेलीविजन ऑफकोर्स. तो दिस अवार्ड इज फॉर माय फैंस एंड सभी दर्शकों के लिए जो पूरे देश के कोने कोने से मेरे शो को इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बिल्कुल. अब सूरज जो है मतलब कि काफी प्यार करता है ईशा जी से. ईशा जी भी अब सूरज को मिल गई हैं. अब नया पड़ाव यही आने वाला है कि गांव से वापस आने के बाद ईशा जी के ऊपर कुछ लांछन लगाया गया है कि लाइक पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी तुम वैसे ही हो, मतलब घर का ही काम करती हो. तो अब सूरज ने कुछ नया मतलब कि दिमाग दौड़ाया है कि शायद से ईशा विल बिकम द IPS ऑफिसर सोन, और IPS ऑफिसर बनने में जो मदद होगी हेल्प होगी वो सूरज अपने हैंड से करेगा बिकॉज एक IAS और एक IPS. सो ऐसी कहानी शुरू होने वाली है हमारे शो में.
15: यार सबको खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो या कुछ भी अपना काम करते हो उसके लिए रिकग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है और दुनिया का प्यार मिलता है, इतने लोगों का प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है और हमेशा से हम कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे ही करते रहें. मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ यार उनको, बहुत एक्साइटिंग होते हैं और जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं सारे शोज देखता हूँ और यस इट्स अ फन फैक्टर और कभी ना कभी मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी चाहूँगा कि कभी हिस्सा बनूँ.
16: अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर, सॉरी मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर. आई थिंक यू नो ये बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये मुझे मिला है. ओवर द ईयर्स यू नो आई हैव रियली गिव I have given my everything to this industry and with this promising award I promise ki main aage aane wale saalon mein bhi aur behtar logo se connect karunga aur behtar apne performances in logo ko entertain karunga.
17: Jis category mein main nominated hu uska naam hai heartthrob, youth heartthrob of the year. To mujhe laga ki shayad agar mujhe wo award milta hai to acha lagega agar you know anime character ko jaisa youth related kuch pehnunga, so that's why I chose this outfit. अभी फिलहाल मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. उसके बाद में भी यू नो अगर लगता है कि रियलिटी शो करना चाहिए तो करूँगा. जी हाँ सीता फिल्म्स की फिल्म आ रही है मेरी एक जिसका नाम है क्योस. उसमें गुलशन ग्रोवर सर है मेरे साथ, संजय दत्त सर है और आई एम प्लेइंग द लीड. तो आई थिंक 4-5 मंथ्स में रिलीज हो जानी चाहिए, शूट कम्प्लीट हो चुका है तो मैं उसी की काफ़ी वेट कर रहा हूँ. और उन्हीं के लोगों की अभी वेलकम टू द जंगल भी आ रही है, सेम प्रोडक्शन हाउस, सो यार वेटिंग फॉर दैट.
18: अवार्ड्स है ये मेन है आई थिंक, और गूगल बॉलीवुड ये थर्ड ईयर है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर टू देम. तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड होपफुली अगर हम लोग लकी हैं तो हमें अवार्ड्स भी मिलेंगे. मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया है और जब ये मुझे ऑफर हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि काफ़ी डिफरेंट शेड्स है एंड आई प्ले अ कैरेक्टर ऑफ अ कॉर्टिसन एंड उसके बाद कैसे कैसे उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता है और कैसे वो फाइनली एक इज्जतदार घर में जाती है, यही बेसिक स्टोरी है. आई थिंक अभी अलायंस बेस्ड शो में हम लोग गए थे सो इतना जल्दी वापस से लाना आए.
19: नहीं बुला भी सकते ऐसी बात नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यस मैं तो करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहती हैं. बोल नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है बट यस हम लोग ही वेट कर रहे हैं.
0: तो देखा आपने कहिए शाम रही बेहद खास और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी. कहिए कलाकार अवार्ड्स पाकर बेहद खुश है और यूं ही आपके प्यार के लिए वो आपको एंटरटेन हमेशा करते रहेंगे. मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
20: हमारी छोटी सी खुशी के लिए भी सब कुछ सहन कर जाते हैं हमारे पापा, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर दुआ और विक्रांत का रिश्ता भी. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा मन्नत के सेट पर और देखते हैं क्या यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है फादर्स डे या फिर सेलिब्रेट किया जा रहा है किसी नए ट्विस्ट को. कहानी का लेखक लेकर आ रहा है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़. तो क्या अब कहानी से आएगी हमारे लिए कोई गुड न्यूज या फिर से आएगा कोई नया ड्रामा, लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास.
21: मन्नत का रक्षक बनकर आया विक्रांत.

जमानत पर हुआ जानलेवा हमला। सामने होकर भी नहीं हुआ मन्नत और विक्रांत का आमना सामना। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत पर हो गया है जानलेवा हमला और ये गुंडे किसी और के नहीं बल्कि धैर्य के भेजे हुए हैं जो मन्नत पर मुसीबत ढाना चाहते हैं। लेकिन शुक्र है कि भगवान ने मन्नत का रक्षक बनाकर भेज दिया है अभिमन्यु यानी कि मन्नत के विक्रांत को। और देखिए कैसे अनजाने में विक्रांत मन्नत की मदद कर रहा है, उन गुंडों की पिटाई कर रहा है और मन्नत विक्रांत के सामने होते हुए भी विक्रांत को देख नहीं पा रही, पहले तो चश्मे की वजह से और फिर दुपट्टे की वजह से। हालांकि उसको अपने विक्रांत के होने का एहसास जरूर हो रहा है।

0: आए थे, मतलब मैं अलग से आई थी गुरुद्वारे प्रार्थना करने के विक्रांत मिल जाए, इतना दूर तक आई हूँ तो. और धैर्य जी ने गुंडे भेजे हैं टू अटैक ऑन मन्नत, ताकि वो अकेली आ गई थी कि नहीं मैं देख लूंगी एंड ऑल दैट, तो ताकि फैमिली प्रेशर करे कि कुछ हो जाता तो अब बस बहुत हुआ विक्रांत की सर्च को, ऐसा फैमिली प्रेशर क्रिएट करने के लिए. वाइल रॉनी पापा और बच्चे फोन पे थे तब ये लोग गुंडे मुझ पर अटैक करते हैं, तो वो लोग सुन लेते हैं. तो वहाँ पे फिर धैर्य जी एक एक्स्ट्रा पैनिक क्रिएट करते हैं कि क्या हो गया, मैं तो कहा ही था अकेले नहीं जाना चाहिए और ये वो. एंड देन यहाँ पे विक्रांत जो अभिमन्यु हैं फिलहाल, वो आते हैं और वो देखते हैं कि कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं लड़की को, एंड फिर उन पे अटैक होने वाला होता है और मन्नत बीच में आ जाती है. हालांकि मन्नत देख नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि पहले उसका चश्मा नहीं होता है, वो चश्मा लगाती है तब तक उनकी पीठ हो जाती है, बट उसको एक एहसास हो रहा है कि एक खिंचाव महसूस हो रहा है.
1: अब मन्नत को लगता है कि उसके सामने विक्रांत ही है. ऐसे में उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही मन्नत आगे बढ़ती है, पीछे से गुंडा उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते मन्नत हो जाती है बेहोश. और बेहोश मन्नत को संभालने लगता है अभिमन्यु. हालांकि मन्नत को देखते ही अभिमन्यु को अपनेपन का एहसास होता है.

0: खैर जैसे तैसे अभिमन्यु न सिर्फ अपने आप को संभालता है बल्कि किसी से रुमाल लेकर मन्नत के सिर पर बांध भी देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खून ना बहे।
1: Yeah, it's not easy to find love. Very few find love, and when you find it, it's very difficult to keep it. So I think that's the whole circle of life that keeps going. इसलिए जब आपको वो लव मिल भी जाता है तो टू होल्ड ऑन टू इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यू माइट गेट बोर्ड, यू माइट हैव फाइट्स, यू माइट हैव यू नो एक्सटीरियर प्रॉब्लम्स, अदर पीपल इंटरफेयरिंग और व्हाटएवर, बट यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट।
0: अब किस्मत मन्नत और विक्रांत को मिलाने में जुट गई है। ऐसे में विक्रांत जो कि अपनी याददाश्त खो चुका है वो घायल मन्नत को उठाकर अपने गेस्ट हाउस में ले जाता है। ऐसे में विक्रांत की गोद में घायल मन्नत को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और गोल्डी के बताने पर विक्रांत मन्नत को उसके रूम में ले जाता है। इससे पहले कि वो मन्नत को छोड़कर वहाँ से जाता, मन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे एहसास हो चला है कि ये हाथ विक्रांत का ही है। ऐसे में बेहोशी की हालत में ही वो अपने विक्रांत को पुकार रही है और अभिमन्यु उसे कहीं न कहीं विक्रांत के नाम से और मन्नत से अपनेपन का एहसास होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए देखिए कैसे वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके करीब खींचा चला जा रहा है।

0: इससे पहले कि विक्रांत की धुंधली यादें ताजा होने लगती, तभी वहाँ पर आ जाती है मान्यता, जो विक्रांत को इस तरह मन्नत के करीब देखकर नाराज होने लगती है और विक्रांत को वहाँ से ले जाने की जिद करती है। अभिमन्यु मान्यता से कुछ कह पाता, मान्यता उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। इतना ही नहीं, अब तो मान्यता ने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ पर रहेगी नहीं, और तो और उसे विक्रांत पर शक भी हो रहा है। हालांकि अभिमन्यु मान्यता को समझाता है कि वो तो उस औरत को जानता तक नहीं, उस पर गुंडों ने हमला कर दिया था, बस वो उसकी मदद कर रहा था।
1: बल्कि अकेली है यार, एक बार डॉक्टर से पक्का तो कर लेते ना कि वो ठीक है कि नहीं, बहुत खून आया उसका।
2: डॉक्टर से पक्का करने के लिए तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, गोल्डी यही आसपास है, मैं दीदी से बात करूंगी, वो तुम्हारी उस बेचारी लड़की की अच्छे से हेल्प कर देगी, लेकिन मैं और तुम आज ही आते।
0: भाई मान्यता तो शकी और इनसिक्योर्ड है, ऐसे में उसने तय कर लिया है यहाँ से जाने का, और तो और विक्रांत को भी अपने साथ ले जाने का। अब देखना होगा क्या किस्मत विक्रांत और मन्नत को फिर से दूर कर देगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: बेमतलब की इस दुनिया में हमारी शान होता है, पिता तो हमारे वजूद की पहचान होता है। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे, क्या कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं यहाँ पर रूहान नाहर के लिए। रूहान और नाहर का ये रिश्ता भी है स्पेशल, बिल्कुल किसी भी पिता और बेटे के रिश्ते की तरह, और हम तो यही चाहते हैं कि इसमें भी खुला रहे ढेर सारा प्यार। तो क्या कुछ हो रहा है मन सुंदर की इस कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
4: नाहर की कश्मकश। सुहानी ने किया नाहर को पहचानने से इनकार।
2: हाँ तो मैं आपको नहीं जानती हूँ।
4: बदलते रिश्तों की उलझती कहानियाँ। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में भाई आज फिर एक बार नाहर के सामने रूही आ गई है, यानी कि सुहानी, और देखिए कैसे रूही को देखते ही नाहर का गुस्सा फूट पड़ा।
5: इतनी पतली कैसे हो गई तुम? हाँ?
2: अभी क्या बोल रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: ऐसे इतना सब कुछ होने को जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना, जैसे तुम मुझे पहचानती भी
2: नहीं। हाँ तो मैं आपको नहीं जानती हूँ।
5: क्या बात है? तुम मुझे नहीं जानती। अरे गुस्सा भी तो बात करती, लड़ती, झगड़ती, दो थप्पड़ लगा देती, छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ के चली जाऊंगी, जैसे दो दिन पहले मिले अजनबी हो। जवाब दो ना, क्यों, कब तक दोगी सजा? जवाब दो, पांच साल रुई, पांच साल से तड़प रहा हूं मैं।
2: कैसी सजा? मैं आपको कोई सजा क्यों दूंगी? मैं आपको जानती भी नहीं।
4: नाहर ने रूही को काफी याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पहचानने से इनकार कर दिया, देखिए कैसे नाहर का गुस्सा फूट पड़ा।
5: तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती तुम? हाँ? इतना पराया कर दिया अपने दिल से, खुद से, और मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो तुम? इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? हाँ? जवाब दो ना रूही, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, रूहान के साथ?
4: ऐसे में वहाँ पर मिष्टी आ जाती है जो नाहर को समझाने की कोशिश कर रही है।
2: ये क्या कर रहे हो?
5: बस मिष्टी, प्लीज आज हम जाते
2: हैं। मुझे आना पड़ेगा नाहर जी, कि मुझे नहीं पता आप इसे यूं ही लेके क्यों बुला रहे हैं। ये इतनी नहीं है, ये सुपारी है।
5: क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? कौन सुहानी? कौन सुहानी? ये रूही है, मेरी रूही है।
2: ये सुहानी है, मेरी दोस्त है, सालों से मेरे साथ काम करिए। मिस्टर नाहर आपको कोई गलत करेंगे।
5: मुझे पूरी गलत फहमी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरी रूही है, ये रूही है।
2: क्या आप जिस रूही की बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली से
5: है?
4: भाई इन सब के बाद नाहर बेहद कंफ्यूज हो गया और गुस्से से यहाँ से चला भी गया, क्योंकि घर में रूहान की बर्थडे पार्टी जो है, भाई सभी लोग तैयार होकर मौजूद है, गेस्ट भी आ चुके हैं और केक कटिंग भी बहुत जल्द होने वाली है। इस बीच ये सब तमाशा उसके लिए काफी टेंशन वाला माहौल क्रिएट करने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई नाहर ये मान लेगा कि ये रूही नहीं सुहानी है, या फिर कोई नए सबूत लाकर रूही की याददाश्त वापस लेकर आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारे अंदर डर को पैदा करती है, लेकिन योग उन्हें दूर करता है। तो अपराजिता, अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं ना, अगर आपको किसी भी बात को लेकर लग रहा है डर, तो बस आप योग करें, देखिएगा सारे डर भाग जाएंगे, बस यूं ही हो जाएंगे छू मंतर। और उसके साथ साथ अगर आपने कर लिया ना हनुमान चालीसा का पाठ, तो बस फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अपराजिता और रक्षित के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज।
6: कवर साहब से क्यों दूर होना है? डिवोर्स क्यों चाहिए? आधी रात को बाहर घूमने मिले इसलिए?
4: रक्षित पर उठे सवाल।
6: और आप बड़े घर से हैं ना, और हरकतें इतनी छोटी।
4: माँ, अपराजिता की माँ के इल्जाम।
6: आप इनके इरादे समझ में आ रहे हैं?
4: शुरू हुआ अपराजिता का नया सफर।
7: आप अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज के यहाँ से सफाई करने जाते हैं? या आपको कोई स्पेशल एम्प्लॉय है?
4: स्टार प्लस की सीरियल तुम देना साथ मेरा में, भाई आज अपराजिता की माँ फिर एक बार उससे नाराज हो गई है। घर में इतना हंगामा होने के बाद अपराजिता रक्षित की बर्थडे पार्टी में जो चली गई थी, तभी तो देखिए जैसे ही ये बात अप्पू की मम्मी को पता चली, भाई उसने अपराजिता को तो सुनाया ही, लेकिन रक्षित को भी नहीं छोड़ा।
6: अंदर चल के बात करते ना, सड़क पे ऐसे तमाशा क्यों? तमाशा सिर्फ तो अकेली कर सकती हूँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम सबको रास्ते पर लाया कौन? अब बात होगी तो यही होगी सड़क पे। कवर साहब से क्यों दूर होना है? डिवोर्स क्यों चाहिए? आधी रात को बाहर घूमने मिले इसलिए? ना कोई रोके ना कोई टोके, इसलिए चाहिए था?
8: मैं पार्टी में इसलिए गई थी क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था। आप ही ने सिखाया ना कि वादे नहीं तोड़ते।
6: हाँ अपराजिता, तुझे तो मेरी दी हुई सारी सीख, सारे संस्कार याद है। तो फिर वो वादा, वो संस्कार याद नहीं है कि शादी के बाद पति का साथ सात जन्मों का होता है, सात जन्मों तक निभाना होता है? तूने तो पहले ही जन्म में तोड़ दिया। वो याद नहीं है, लेकिन बॉस को दिया हुआ वादा वो याद है। और आप बड़े घर से है ना, और हरकतें इतनी छोटी।
4: माँ,
9: मालती जी, ये क्या बात कर रही हैं आप?
6: वही बात कर रही हूँ जो उन्हें सुननी चाहिए। उस दिन कवर साहब का गला पकड़ लिया था इन्होंने, और आज ये, आप इनके इरादे समझ में आ रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा लड़की के साथ आप इतनी रात गए बाहर घूम रहे हैं?
4: क्यों कह रही है आप ये सब?
6: तो किसे बोलूं? तुझे? तू सुनेगी? तुझे घर से मैंने बाहर निकाला क्योंकि तुझे अकल आए, तेरी जिद की कीमत तुझे समझ आए, तू अपने ससुराल अपने घर वापस जाए। लेकिन नहीं, तुझे तो पार्टी में जाना है। आपके कहने पर मैं इसे वापस लेने आई थी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। ये लड़की मेरे घर में रहने लायक ही नहीं है। और अपराजिता आखिरी बार सुन, ये जो तेरे पीछे खड़े हैं ना, इनके जैसे समाज में बहुत लोग हैं। जब समाज को पता चलता है कि एक औरत अकेली है तो उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे तुझे। अभी भी समय है, समझ जा, क्योंकि जब तक तुझे अक्ल आएगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
8: क्या बोल रही हैं आप? प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए।
6: मुझे कोई बात नहीं करनी। अब बात तभी होगी जब कवर साहब तेरे साथ खड़े होंगे और मैं तुझे भोपाल जाने के लिए विदा कर रही हूँ। उससे पहले मेरे घर की और मेरी जिंदगी के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं।

0: भाई अब तो उन्होंने अपराजिता को अपने घर में लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद रक्षित को बहुत गिल्टी फील हुआ। ऐसे में अपराजिता को भी काफी बुरा लग रहा है कि उसकी मम्मी ने रक्षित को बिना बात इतना सुना दिया।
1: मेरी वजह से आपको माँ की डांट सुननी पड़ी। I'm really sorry.
2: I'm sorry कि मेरी वजह से आंटी जी ने तुम्हें इतना सुना है।
3: Actually, मुझे आना ही नहीं चाहिए था वापस।
2: एक दिन तुम्हारे किराने की दुकान को अपने पास रख देता क्या ही हो जाता,
3: या उसके अंदर के
2: सामान को बेचकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकता था
3: मैं, लेकिन नहीं,
2: ढक्कन हूँ मैं, मुझे वापस ही आना था। So I'm sorry.
1: नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अच्छे इंसान होने के लिए कभी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आपकी गलती नहीं है, गलत तो मैंने किया ना।
2: तुम्हारा फैसला गलत नहीं है,
1: शायद मेरी उम्मीद गलत है।
2: तुम्हारा दिल ना उम्मीद है, नाकाम नहीं। वैसे लक्ष्मी के घर में कब तक रहने का प्लान है?
1: सोचा नहीं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। सोचूंगी, आप सो जाए।
2: तुम भी सो जाओ।
3: अपने आज के प्रॉब्लम्स के अकाउंट को बंद करके सो जाओ। तुम्हारी लाइफ में तो हर रोज कोई नई प्रॉब्लम आती है,
2: इसलिए पुराने का दी एंड करो और नए के लिए रिचार्ज हो जाओ। और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे गुरु के पास हिम्मत का रिचार्ज हमेशा रहता है।
1: थैंक यू।
0: जिसके बाद रक्षित ने यह फैसला किया कि वो अपराजिता को नया घर ढूंढ कर देने में उसकी मदद करेगा, और वो हो भी जाता है। लेकिन फिर एक बार वहाँ पर अपराजिता की मम्मी पहुँच जाती है, जो रक्षित को साथ देखकर फिर एक बार उनके रिश्ते पर सवाल उठाती है।
4: आपको इस घर में देखकर मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है।
1: घर साफ करने में हमारी मदद कर रहे हैं।
4: आप अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज के यहाँ ऐसे सफाई करने जाते हैं, या आपको कोई स्पेशल एम्प्लॉय है जो हर बार उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं? क्या रिश्ता है आपका अप्पू के साथ?
0: ऐसे में देखना होगा कि आखिर रक्षित अपने और अपराजिता के रिश्ते को क्या नाम देता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: पापा को आज मैं क्या उपहार दूं? तोहफा दूं फूलों का या फिर फूलों का हार दूं? जो है मेरी जिंदगी में सबसे प्यारा, उस पर तो मैं अपनी जिंदगी ही वार दूं। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पापा का प्यार, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं योग दिवस। और अपने शो सास बहू और बेटियां में हम तो रोजाना सेलिब्रेट करते हैं एंटरटेनमेंट को, तभी तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये अगली खबर, जिसमें है एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ।
6: नोएनिका, इरानी कुछ कहा है तुमसे?
0: नोएनिका से मिलने पहुंचा ईशान।
6: मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे दो जरूरी बातें करनी है।
1: ईशान, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए।
0: ससुराल वालों ने लगाए नोएनिका पर इल्जाम।
7: उस लड़के के साथ उसके कहने पर उसका घर देखने चली गई, फिर सारा दिन उसके साथ घूमती रही, और फिर उसे अपने घर में ये कराए।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में भाई नोएनिका की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, और इसी के चलते जैसे ही ये बात टिन्नी ने ईशान को बताई, देखिए कैसे वो उससे मुलाकात करने पहुंच गया, लेकिन नोएनिका ने उससे मिलने से इनकार कर दिया।
1: ईशान आप यहाँ?
6: हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, मैंने सोचा एक बार एयरपोर्ट जाने से पहले मिल लेता हूँ। नोएनिका, इरानी कुछ कहा है तुमसे?
1: तुम्हारी फ्लाइट है ना अभी, तुम्हें जाना चाहिए।
6: मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे दो जरूरी बातें करनी है।
1: ईशान, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए।
0: और इसके बाद घर आए नोएनिका के मम्मी पापा, जिनके आते ही नोएनिका पर लगने लगे इल्जाम, वो भी ईशान और उसके रिश्ते को लेकर।
8: देखिए, मैं कुछ बोलूंगी आप सबको बुरा लग जाए, लेकिन ईशान जिस तरह से नोएनिका बोनी के साथ मिलने की कोशिश करता रहता है, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर ये अट्रैक्शन टिन्नी या मिनी की तरफ हो तो सही होता, मैं बकवास बातें नहीं करती हूँ। डे वन से ईशान जो भी कुछ कर रहा है नोएनिका बोती के लिए, ये मुझे बहुत अजीब लगता है, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता है। किसी जवान लड़की के लिए करता तो समझ में आ जाता।
9: श्रेया, प्लीज बस। श्रेया, कुछ बोलने से पहले एक पल भी सोचती नहीं ना। बच्चों ने सुन लिया तो घर के छोटे बच्चे के सामने ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें दिखाई नहीं देता। और घर के छोटे बच्चे के लिए इतना ज्यादा परेशान अगर होना ही होता तो उनके सामने ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ईशान के बारे में बात कर रही हूँ। ईशान बहुत डेस्परेट हो रहा है।
6: ये सब बातें सुनकर असल में ये सब देखने वालों की सोच पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग में तो ये सब बातें आई नहीं।
7: नयनिका हमारी बहू है और उसे इस घर में बहू की तरह ही रहना चाहिए। उस लड़के के साथ जिसके कहने पर उसका घर देखने चली गई, फिर सारा दिन उसके साथ घूमती रही और फिर उसे अपने घर में ये कराई।
9: बस दी, बस कीजिए, क्या बोले जा रही। मैं अपनी सास से
0: ऐसे में क्या वाकई नोएनिका को भी ईशान से मोहब्बत हो गई है या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। भाई ये पूरी कहानी तो आगे आने वाले वक्त में देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब जिंदगी तो ऐसी है दोस्तों, इसमें है लगातार उतार और चढ़ाव, कभी रॉकिंग तो कभी शॉकिंग। तो बस आप भी योग को अपनाएं और जीवन में स्थिरता लेकर आएं। जब आप प्राणायाम करते हैं ना एकदम शांत जगह में बैठकर, तो उससे आपका दिमाग भी एकदम शांत हो जाता है। और अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखा रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले देख लीजिए खतरों के खिलाड़ी का ये नया प्रोमो।

में से डालते हैं पति ब्रह्मचारी के सेट से इन बिहाइंड द सीन नजारों पर, जहां सूरज और ईशा कर रहे हैं आने वाले ट्रैक की शूटिंग।

भाई काफी लंबे समय से यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई जा रही थी और फाइनली अब इसकी नई रिलीज डेट सामने आई है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। देख लीजिए सीआईडी टीम का ये रियूनियन वीडियो जहां सभी कलाकार एक साथ पहुंच गए हैं ट्रिप पर।

0: तो लेकर आता है जीवन में क्रांति। नियमित योग करने से आपके जीवन में होगी सुख शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे रखा छांव में और खुद चलते रहे धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। एक बार फिर आप सभी फादर्स को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अब इसी बात पर लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। आप योग करें, स्वस्थ रहें, और हाँ, अपने माता पिता को यूं ही प्यार दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो कुछ भी आप उनके लिए कर सकते हैं उससे भी बढ़कर करें, क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: நமக்கே உன்னை ஹோக்க சொடி கலி சூன் கையில வலமும் புசெஜியா பெலோட்ட கலனாக ஹோக்க சொடி கலி சூன் கையில வலமும்.
1: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
2: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
1: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
3: Because people who all watch games, they hear the voice.
1: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में आज फिर हो रही है नीट की परीक्षा। सघन सुरक्षा जांच के बाद सेंटर पर पहुंचे छात्र, लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरा से नजर। इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल करेंगे कप्तानी, अय्यर बने उप कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अक्षर पटेल भी टीम में शामिल। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 गेंदों में बनाया अर्धशतक, वनडे क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 बॉल में बनाए 94 रन। भारतीय नौसेना को मिले समंदर के 3 धुरंधर, पीएम ने कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत। उत्साह और जोश के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर पीएम ने मनाया योगोत्सव का, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: दुनिया भर में मनाया जा रहा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम ने कोलकाता में किया योग, 30,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। देशभर में योग कार्यक्रमों का आयोजन, संस्कृति मंत्रालय की ओर से 100 प्रमुख जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन। दुनिया भर में करीब 2500 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम आयोजित किया, हेल्दी एजिंग इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। बारहवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में योग किया, जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नवीन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में किया योग, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया, दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया योग, झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, धामी ने चंपावत के बनबासा में योग किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योग किया, फडणवीस ने किया योग के कई आसन। रक्षा

0: आवश्यक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग किया। कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी किया योग। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा योग से स्वस्थ उत्तम रहता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में योग किया। बड़ी संख्या में लोग भी हुए शामिल। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधु और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग किया। कहा अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी। गैंगटोक में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर लोगों के साथ मिलकर योग किया। चंदौली में मंत्री अनिल राजभर ने लोगों के साथ मिलकर योग किया। मंत्री ने नागरिकों से योग करने की अपील की। अलवर में केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री ने योग से स्वास्थ्य का संदेश दिया। लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। दिल्ली के कैंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ धीरज सेठ ने किया योग। भारतीय सेना के जवान हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर CISF के जवानों ने देश के अलग अलग इलाकों में योग किया। तो वहीं लोगों से की योग करने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने किया योग। पैंगोंग झील किनारे किया योग। जर्मनी में भी योग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सऊदी अरेबिया के भारतीय दूतावास पर भी योग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। कोलकाता के जलदापाड़ा नेशनल पार्क में दिखा अनोखा नजारा। लोगों के साथ हाथियों ने योग किया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। दिखा अद्भुत नजारा। रक्सौल की भारत नेपाल सीमा की पहचान गेटवे ऑफ नेपाल पर योग का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजकोट में स्विमिंग पूल के अंदर महिलाओं ने किए एक्वा योग। लोगों से योग करने की अपील की। आसनसोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। कई मंत्री भी हुए शामिल। प्रयागराज के संगम किनारे 8,000 लोगों ने एक साथ योग किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हिस्सा लिया। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों के साथ योग किया। कई मंत्री शामिल हुए। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। छात्र छात्राएं भी शामिल। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने योग किया। कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में योग का आयोजन। मंत्री श्रेयसी सिंह हुई शामिल। समंदर में देश की ताकत को बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्धपोत। INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक नौसेना में हुए शामिल। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 युद्धपोत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। INS दूनागिरी बनेगा नेवी की नई स्टेल्थ ताकत। INS संशोधक करेगा समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग। भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे 3 युद्धपोत। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और भी मजबूत। GRSE ने INS दूनागिरी और INS अग्रे और INS संशोधक किया है निर्माण।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: Order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
4: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर, ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन, मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब। टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae
9: exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop
11: exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
13: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
15: कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में आज फिर हो रही है नीट की परीक्षा सघन। सुरक्षा जांच के बाद सेंटर में पहुंचे छात्र, लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरा से नजर। इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान शुभमन गिल करेंगे कप्तानी। आईआर बने उप कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और अक्षर पटेल भी टीम में शामिल। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 गेंदों में बनाया अर्धशतक। वनडे क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 बॉल में बनाए 94 रन। भारतीय नौसेना को मिले समंदर के 3 धुरंधर। पीएम ने कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, रक्षा के क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। उत्साह और जोश के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर पीएम ने मनाया योग उत्सव। का संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का शुभारंभ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।

देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। 21 जून जिसे पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है और इस दिन वाकई में पूरी धरती वसुदेव कुटुंबकम के रंग में रंग जाती है। आज हम जानेंगे क्या है योग से जुड़े चमत्कारी प्रयोग जिसे करने से आपके तन और मन में न सिर्फ अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि योग की शक्ति से आध्यात्म का मार्ग भी खुल जाता है। साथ ही आज बात करेंगे सूर्य नमस्कार की जिसके 12 आसनों में छिपा है सेहत का खजाना। तो चलिए जानते हैं योग की इन आसन को लेकर जिसे पूरी दुनिया अपना रही है।

0: तन और मन को निखारता है योग। पारह आसनों के संगम से दूर भागेंगे रोग। अगर आप भी रहना चाहते हैं स्वस्थ, सुंदर और जवान, योग के प्रयोग से बनेगी आपकी अलग पहचान। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में पूरा योग समाया हुआ है। केवल सूर्य नमस्कार करने से कम ही वक्त में संपूर्ण व्यायाम का लाभ मिल सकता है। ऋषि मुनियों ने योग की इस विद्या को सबसे उत्तम बताया है।
1: जब हम योग को जीने लगते हैं, योग को जानने लगते हैं, तो हमारी पूरी प्रकृति में, पूरी यूनिवर्स में हमारा विलय हो जाता है, या कहें हम लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो हम अपने एक्सटेंशन में पूरी विश्व को देखना शुरू करते हैं, प्रकृति में, हवा में, पानी में, पंचतत्व में, आकाश में, पृथ्वी में, इन सारी चीजों में अपनी ही एक्सटेंशन को देखना शुरू करते हैं। तो योग जब हम जानते हैं तो योग को हम जीना शुरू करते हैं।
0: जानकारों की माने तो सूर्य नमस्कार के रोजाना अभ्यास से आप निरोग जीवन जी सकते हैं। रोग बीमारियां आपके इर्द गिर्द नहीं फटकेंगी। सूर्य नमस्कार के चमत्कार को ठीक से समझने के लिए आपको योग के बारे में कुछ रोचक बातें जानना जरूरी है। सूर्य को नमस्कार करने की विधि को आखिर एक योग क्रिया क्यों माना जाता है? योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। महर्षि पतंजलि की दी हुई योग की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने मन की कामनाओं के नियंत्रण को योग कहा है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को संपूर्ण रूप से योग कहा जाता है। आसन या योगासन योग का मात्र एक अंश है, आसन संपूर्ण योग नहीं है।
1: पतंजलि योग सूत्र में योग की ढेर सारी विधाएं बताई गई हैं। दूसरा है हठ योग, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी हठ योग बताते हैं, जिसमें कि यम और नियम नहीं है। जिसमें पतंजलि ने जो योग सूत्र बताया है वो अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग में यम नियम है, बाकी के सारे हैं। लेकिन हठ योग में यम नियम नहीं है, बाकी के सारे हैं। तो हमें पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करना चाहिए, पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग को देखना चाहिए, और जो यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये सारी जो प्रक्रिया है, तब जाके हम किसी योग की स्थिति में पहुंचते हैं।
0: माना जाता है कि योग करने से जीवन में संतुलन आता है, बीमारियों से मुक्ति तो मिलती ही है, बल्कि योगासन से व्यक्तित्व में निखार आता है। योगासन से शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि योग हमारे लिए वरदान जैसा है।
1: एक्चुअली आसन का मतलब होता है सीट ऑफ अवेयरनेस। हमारी चेतना पूरे योग के दौरान हम जितने भी पोज को करते हैं, उस पोज में सिर्फ हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं हो रहा होता, शरीर के साथ हमारी चेतना भी उस पोस्चर में पूरी बॉडी को ट्रेवल करती है। तो हम जब योग करते हैं, जब हम आसन करते हैं, तो आसन से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए योग को जानना, योग को समझना और समझ के योग करना, ये बहुत जरूरी है।
0: ईश्वर को पाने के लिए योग की प्रक्रिया अनिवार्य है। योग का एक अंग आसन भी है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। योगासन करना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए जरूरी है। बहुत सारे योगासन हैं जो अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। इनमें सबसे सरल और संपूर्ण योगासन सूर्य नमस्कार है। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत हैं और माना जाता है कि इनकी किरणें जीवन दायिनी से कम नहीं हैं। इसलिए आप चाहे रोज कोई और योगिक क्रिया करें या ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो शरीर के लिए जरूरी लगभग सारी योगिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा से आरोग्य की प्राप्ति हर प्रहर में संभव है, यानी सूर्य नमस्कार हर प्रहर में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार अगर दोपहर में किया जाए तो यह शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। शाम को सूर्य नमस्कार किया जाए तो तनाव कम होता है। सूर्य नमस्कार तेज गति से किया जाए तो अच्छा व्यायाम साबित होता है। तेज गति से सूर्य नमस्कार वजन कम करने में मदद कर सकता है।
1: जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी दो तीन नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और हमारी एक मध्य में चल रही होती है एक नाड़ी। ये दोनों नाड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाता है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी प्राण है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमें हमारे पूरे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। हम पूरी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं शरीर के, हमारी पूरी बॉडी माइंड सोल की जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी ब्लॉकेजेस ओपन हो जाती हैं।
0: सूर्य नमस्कार के लाभ इतने ही नहीं बल्कि अनंत हैं। सूर्य नमस्कार से न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है बल्कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से लड़ने का बल भी मिलता है, जिससे आपका तनाव भी कम होता है। तो चलिए सूर्य नमस्कार की विधि या उसके आसनों को समझाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसे करने से आपको और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है, शरीर में लचीलापन आता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, सुंदरता में निखार आता है, ये हार्मोन को भी बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है।
1: सूर्य नमस्कार से हमारा मन खुश होता है। सूर्य नमस्कार के प्रयोग से हमारी पूरे बॉडी में एक प्राण प्रवाहित होती है, और वो ऐसी एक प्राण है कि हमारी पूरे जीवन को अलाइन कर देती है। हमारे जीवन की सारी एरियाओं पे काम करना शुरू हो जाता है, मन फोकस होता है, प्रकृति आपके साथ अलाइन हो जाएगी, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका रिएक्शन करना, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार करने से सिर्फ हम अपना ही भला नहीं कर रहे, हम पूरे युग का भला कर रहे हैं, हम पूरे समाज का भला कर रहे हैं, जिससे हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छी दुनिया और एक अच्छा संसार इस पूरी दुनिया को गिफ्ट करेंगे।
0: जानकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो आपको सूर्य नमस्कार से हासिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि सूर्य नमस्कार की सही विधि क्या है, इससे जुड़ी सावधानियां क्या हैं, आगे जानिए।
2: सूर्य नमस्कार करने से शरीर तेजवान और ऊर्जावान बनता है, जिससे इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में संपूर्ण योग का लाभ छिपा हुआ है, जो कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो क्या है सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि और वो चमत्कारी मंत्र, जिसे अपनाकर आप भी अपने भाग्य के सूर्य को चमका सकते हैं, लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी है ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें।

0: सूर्य नमस्कार, जिससे होगी पूरे शरीर की कसरत। तन मन होगा तंदुरुस्त तो पूरी होगी हर हसरत। कहते हैं योग का सार है सूर्य नमस्कार, आपकी सेहत का आधार है सूर्य नमस्कार। सूर्य को ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना गया है। सूर्य से ही संसार चलायमान है। सूर्य की रश्मियां जीवन को आत्मबल देती हैं। सूर्य की किरणें आरोग्यता का वरदान देती हैं। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तो आखिर सूर्य नमस्कार का क्या है आरोग्यता से संबंध, चलिए आपको बताते हैं।
1: सूर्य नमस्कार कोशिश करना चाहिए कि वो सवेरे किया जाए, सूर्य के सामने किया जाए, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो हमारा सूर्य नारी हमें तापमान को मेंटेन करता है। हमारी बाएं तरफ की जो नाड़ी है उसे हम ईड़ा कहते हैं, वो चंद्रमा की नाड़ी होती है, वो हमारे मन की क्वालिटी पे काम करता है। तो सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीज कंट्रोल होती हैं।
0: सूर्य नमस्कार का सही असर तभी होता है जब आप उसे सही क्रम और सही मंत्रों के साथ करते हैं। पूरा लाभ पाने के लिए सूर्य नमस्कार के मंत्रों और आसनों को सही क्रम में करना जरूरी है। ये सब संभव हो सकता है सूर्य नमस्कार के सही क्रम से।
1: सूर्य को दोनों हाथ से प्रणाम, पीछे की तरफ झुकने के बाद हृदय चक्र के पास प्रणाम, नीचे झुकना। इस पॉस्चर से हम सूर्य को देखेंगे। कॉन्शियस ब्रीदिंग, सांसों पे ध्यान, अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना हर एक पॉज पे, हर एक योग की स्थिति पे। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना योग के हर स्वरूप में। इसे कहते हैं सीट ऑफ अवेयरनेस। आसन का मतलब सीट ऑफ अवेयरनेस, जहां हमारी चेतना जाके बैठती है। इसे हम सूर्य नमस्कार का एक छोटा सा रूप कह सकते हैं।
0: जानकार मानते हैं कि सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेने मात्र से योग का लाभ लिया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है सूर्य नमस्कार को करने का सही क्रम और क्या होंगे मंत्र। पहली स्थिति में प्रणाम और आह्वान करें और ओम मित्राय नमः जपें। दूसरी स्थिति में गर्दन और तीनों नाड़ियों का व्यायाम करें और ओम रवये नमः जपें। तीसरी स्थिति में रीढ़ की हड्डी और कमर को ऊर्जावान करें और ओम सूर्याय नमः जपें। चौथी स्थिति में सारा दबाव पैरों और फेफड़ों पर दें और ओम भानवी नमः जपें। पांचवी स्थिति, एड़ियों, पैरों और ठोड़ी पर दबाव बनाएं और ओम खगये नमः जपें। अब पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करें और ओम पुष्णे नमः जपें। पैरों के पंजे और घुटनों पर दबाव देते हुए आसन करें और ओम हिरण्य गर्भाय नमः जपें। शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव देते हुए झुकें और ओम मारीचाय नमः जपें। कमर से फेफड़ों तक का वायु का आवागमन तेज करें और ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस आसन में नाभि पर सारा दबाव होता है। दसवां मंत्र है ओम सावित्री नमः जपें। गर्दन के पीछे की ओर दबाव डालते हुए आसन करें और ओम आर्काय नमः जपें। बारवां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है सूर्य नमस्कार। लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। सूर्य नमस्कार, सुबह उगते हुए सूर्य के सामने खाली पेट करें। कमर और रीढ़ की समस्या हो तो सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत पहले और बाद में पानी न पिएं। काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ दूध से बनी चीजों का सेवन बढ़ा दें।
1: एक कहावत है, God purest language is silence, rest everything is a pure translation of that। जो हमारी purest being है ना, वो silence की है। भगवान की जो वजूदगी है ना, वो silence में है, वो निराकार अस्तित्व में है। तो जब हम मौन और silence की combination में जाते हैं तो हम निराकार के उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां से, जिसके गर्व से ये पूरी दुनिया बाहर आई है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी, जब हम मौन करते हैं तो उस मौन की स्थिति से हम ऐसे इन्फिनिटी में मर्ज हो जाती है हमारा पूरा अस्तित्व, कि छोटी छोटी प्रॉब्लम, जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो हमें दिखती ही नहीं। मौन से, साधना से, ध्यान से, मेडिटेशन से हम उस सारी चीज को पा सकते हैं।
0: तो आप भी इसे अभ्यास में लाकर निरोगी काया के धनी बन सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार करने में किसी तरह की बाधा है तो बिना आसन के कैसे इस चमत्कारी योग का लाभ उठा सकते हैं, आगे जानें।
2: सनातन संस्कृति में सूर्य को साक्षात देव माना गया है। हमारे व्रत और त्योहारों में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने का भी विधान है। सूर्य से ही पूरी सृष्टि चलती है और इसलिए सूर्य की साधना में मानव का कल्याण छिपा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं, जिनका शरीर लचीला नहीं है वो कैसे सूर्य नमस्कार का लाभ उठा सकते हैं।
0: लाभकारी है सूर्य नमस्कार। शरीर से दूर होंगे सारे विकार। सूर्य नमस्कार है सबसे उत्तम योग। आप होंगे तंदुरुस्त और निरोग। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सूर्य नमस्कार के लिए शरीर का लचीला होना बेहद जरूरी है, पर जो लोग शारीरिक रूप से इस काबिल नहीं हैं, ऐसे लोगों को बिना सूर्य नमस्कार के भी पूरा लाभ मिल सकता है।
1: अगर हम योग नहीं करते हैं तो जीवन हमारे पूरे शरीर में जीवित नहीं रहता, उसे जगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम योग आसन करना शुरू करते हैं तो हम अपने चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से अपने पूरे शरीर को नहला देते हैं और फिर हमारा पूरा शरीर प्राणवान हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, यूनिवर्स के साथ हमारी अलाइनमेंट हो जाती है, हमारी सोच, हमारी कंसीविंग, हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी पूरी एनर्जी फील्ड में जो कंसीव होती हैं वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आसन बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: सूर्य के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें, इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। जितने भी सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं, एक एक करके पढ़ें। मंत्र जाप के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। सूर्य नमस्कार को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। सूर्य की उपासना अनादिकाल से ही चली आ रही है। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कई समस्याओं का हल बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने वाले इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तेजस्वी हो सकता है। तो आप भी इस चमत्कारी योगासन का लाभ उठाएं और निरोगी काया का वरदान पाएं।
2: जीएनटी के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: के खून हो कचौड़ी गली सुन कैल बल से जिया पे लौट काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बल.
1: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
1: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
1: गुड न्यूज टुडे.

बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन। मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब। टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है नीट री एग्जाम, लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 138,000 कैमरे से नजर, शाम 5:15 बजे तक चलेगी परीक्षा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान, टीम में विराट रोहित शामिल। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, महज 11 गेंद में बनाया अर्धशतक, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 बॉल पर बनाए 94। समंदर में बढ़ी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल हुए 3 धुरंधर, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय की कमिश्निंग। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा।

0: नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जीएनटी पर ये उत्सव हम लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो में। वेलकम ऑन जीएनटी अगेन। संदीप आर्या मेरे साथ सुबह से बने हुए हैं। संदीप आपको बता रहे हैं कि योगा आप सबके लिए कितना फायदेमंद है, योगा आपको नियमित रूप से क्यों करना चाहिए, योगा करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, रोगों का निवारण आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रियंका आपसे पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके लिए योगा अभ्यास क्या है, आपके लिए योगा के क्या मायने हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा फॉर यू?
1: देखिए, योगा क्योंकि मैं 10 साल की थी तब से योगा कर रही हूँ, तो मुझे लगता है योगा ने मेरी पूरी पर्सनालिटी को यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मेंटली, फिजिकली और भी कई तरीकों से, स्पिरिचुअली भी। क्योंकि योगा आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं रखता है, ये आपके पूरे आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से आपको मजबूत करता है। आप स्पिरिचुअल रूप में भी आगे बढ़ते हैं, मेंटली हेल्थ के रूप में भी आगे बढ़ते हैं, और फिजिकल हेल्थ तो आपकी अच्छी होती ही होती है। तो योगा से सबसे पहले तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, दूसरी चीज़ बॉडी में आपके ऑक्सीजन अच्छा रहता है, तीसरी चीज़ आपकी जो फिटनेस है, जैसे जहाँ पे आप लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, जब आप योग का अभ्यास रेगुलर करते रहते हैं तो उस समय पे आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, बॉडी में स्थिरता आती है, जैसे कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिर जिस भी आसन में आप सुख से बैठ सकते हैं वही आपकी स्थिरता है, वही आपका आसन है। और योगा से जैसे कि मैंने अपने जीवन में देखा है, जब से मैं योगा करती हूँ मैं अपने आप को साध सकती हूँ, मेरी इंद्रियों पे कंट्रोल है, मैं खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल करना जानती हूँ। मुझे भूख लगी है, अगर मैंने कंट्रोल कर रखा है कि मैं नहीं खाऊंगी तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। इसी तरीके से अगर मुझे कोई काम करना है तो वो करना है, कोई काम नहीं करना है तो उसके लिए मेरी इंद्रियां पूरी तरीके से संतुलित है, संतुलन में है, वो नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है योग करने से आज की जनरेशन में योग इतना इम्पोर्टेंट हो गया, जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा एंजाइटी है लोगों में, तो उनके लिए योग एक माध्यम है कि वो आसानी से इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो योग का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है हर किसी के जीवन में। योग, वैसे योग का शाब्दिक अर्थ जो है वो है जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, मनुष्य का मनुष्य से जुड़ना, जैसे मैं आपसे जुड़ रही हूँ ये भी एक योग ही है,
0: और खुद से जुड़ना
1: भी योग ही है।
0: अच्छा ये बताइए प्रियंका
1: जी,
0: आजकल डिप्रेशन बहुत है लोगों को
1: जी,
0: है ना, स्ट्रेस बहुत है,
1: बहुत ही ज्यादा,
0: जिन पे काम का प्रेशर है वो स्ट्रेस में है
1: जी,
0: घर में कोई बीमार है उसका स्ट्रेस है
1: जी,
0: काम करते हैं उसका स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्ट्रेस बस्टर योगा क्या हो सकता है?
1: देखिए, स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए सबसे पहले जो, अगर हम आसन में जाते हैं, पहले आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग पे बात में करेंगे, सबसे पहले आसन, तो जितना फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं।
0: अच्छा।
1: जानते हैं, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड की तरफ

0: Inhale. Inhale. एक्सेल. ऐसे 10 टू 1 के क्रम में आइए. जैसे 10 पे काउंट किया फिर 1 तक ऐसे आइए. आप देखेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आप इस अभ्यास को करते हैं तो सडनली आपका स्ट्रेस आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा प्रैक्टिकली.
1: ये तो बहुत ही नॉर्मल और नॉर्मल बैठे कर सकते
0: कहीं पे भी बैठे. जैसे बहुत से लोग किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. कुछ लोग हाथ पैर इधर उधर मारने लगते. मैंने देखा यंग एज के लोगों को,
1: बच्चे भी करते हैं
0: घर में. तो ये प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को कराएं, इससे उनका एंजाइटी लेवल दूर होगा. इसके साथ साथ ओम चैंटिंग है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये भी आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं. मैं एक एक प्रैक्टिस बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है. आप सुखासन पद्मासन किसी भी पोज में बैठ सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो. इनहेल करेंगे, सबसे पहले ओम चैंटिंग करेंगे.

ओम चैंटिंग जब हम करते हैं तो उसको पूरा फील भी करें. जब हमें स्ट्रेस रिलीज करना होता है तो जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी, जब भी हम स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, जब हम ओम चैंट करते हैं उसको लास्ट में, जो उसकी शांति आई है आपके हमिंग करने से, वो आप पूरी तरीके से महसूस करें. और कम से कम 3 से 4 बार आप ओम चैंटिंग करें. इसके बाद एक बार आपको बताऊंगी सही तरीका भ्रामरी प्राणायाम का क्या है. आपके थंब इस तरीके से आप ईयर्स को लॉक करिए, लिटिल फिंगर आपकी लिप्स के पास में. ये हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों को पहले लॉक कर रहे हैं, फिर हम नॉस्ट्रिल के पास रखते हैं और आईज पे और फोरहेड पे. अब जो नॉस्ट्रिल है वहां धीरे से उंगलियों को ऊपर उठा करके लंबी गहरी सांस भरेंगे और उंगलियों को हल्के से रख करके हमिंग करेंगे लाइक अ बी.

0: इसको भी हमने किया, इसे भी आपको 3 से 4 बार कम से कम करना है. और ये जितने हमिंग और ओम चैंटिंग वाले ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप फील भी करिए. जैसे 3 से 4 बार किया, कुछ देर आंख बंद करके शांति से बैठिए, उसको ब्रेन में फील करिए, तब आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन रिलीज होता है.
1: अच्छा संदीप, आपने अभी हम जब ब्रेक में थे आपने बताया कि 1 मिनट का चैलेंज,
2: बिल्कुल
1: है ना, सांस रोकने का चैलेंज. पहले तो वो बताइए, फिर मैं टाइमर ऑन करूंगी, ठीक है, 1 मिनट तक देखते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अच्छा आप मत कीजिए बिना प्रैक्टिस के, मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ दर्शकों को, क्योंकि ये श्वास की प्रैक्टिस है कि आप 1 मिनट तक अगर आप श्वास को रोक पाते हैं, ब्रीथ को रोक पाते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस को, तो फिर आप पूरी तरह से फिट हैं, यही कहा ना आपने. तो उसके फायदे क्या है बता दीजिए, और किनको नहीं करना है वो भी बता दीजिए.
2: जी, जिनको ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है उनको ये अभ्यास नहीं करना है. स्टार्टिंग में आप 10-12 सेकंड का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट है, कहते हैं मैं बिल्कुल फिट हूं, तो पता लग जाएगा. आप एक बार अपने पूरा श्वास को भर के फेफड़ों के अंदर उसको होल्ड करना है. अगर आप जितना टाइम उसको 1 मिनट या उससे अधिक रोक सकते हैं तो आप बिल्कुल फिट है. एक बार करेंगे सभी,
1: ठीक है. मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी,
2: बिल्कुल.
1: मैं 1, 2, 3 करूंगी और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ये मैं टाइमर लगा रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर, कौन कितना रोक पाता है, ठीक है,
0: ठीक है,
1: वो क्लियर हो जाएगा इससे. ठीक है, 1, 2, 3.

0: ये अगर आप जूम इन कर सकते हैं इस पे, तो मैंने भी रोक लिया है. संदीप एक मिनट तक रोका है, प्रियंका ने भी रोक लिया है. आई थिंक ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. अच्छा मैं फिट हूँ फिर?
1: बिल्कुल
0: है, रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने.
2: सुपर फिट.
1: कोशिश करनी चाहिए हमें कम से कम.
0: अच्छा ये
1: 12 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 40 सेकंड.
0: एक मिनट का क्या पैमाना है? एक मिनट आपने जो बोला,
1: जी जी,
0: एक मिनट अगर आप करते हैं तो ये किस आधार पे आपने कहा कि
1: ये मतलब हमारे हार्ट
0: के लिए?
1: हाँ, अगर हार्ट को आपको 100% अगर मजबूत और स्ट्रांग बनाना है ना,
0: हाँ,
1: तो इसे अभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं इसको.
0: अच्छा.
1: अष्टांग योग का भाग. तो
0: हाँ,
1: अभ्यंतर प्राणायाम श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास.
0: हाँ,
1: तो जितना इसको अभ्यास हम 3-4-5 वर्ष लेके 10 बार तक कर सकते हैं, और इसको फिर धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट तक भी श्वास को.
0: अच्छा, ये आप पानी में भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल,
0: है ना, पानी में भी यही प्रैक्टिस करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और वहां पे कितनी देर तक, शुरुआत में कितनी देर तक की?
1: शुरुआत तो 10-15 सेकंड की होती है, धीरे धीरे. इससे आपका शरीर का स्टेमिना, ताकत और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो तेजी से बढ़ जाता है, और किसी प्रकार का रक्त का में नस नाड़ी कोई ब्लॉकेज हो रही है वो ये प्राणायाम का अभ्यास करने से ब्लॉकेज भी दूर हो जाता है, और एक बिल्कुल फिट इंसान बन जाता है.
0: ठीक है, आसन कौन सा कराएंगे अब नेक्स्ट बताइए.
1: जी जी, आसन कराएंगे, सब आसनों का राजा शीर्षासन.
0: शीर्षासन तो आप ही करेंगे ना?
1: जी जी.
0: शीर्षासन जो नहीं करने वाले वो नहीं करेंगे, ठीक है? 2-2 घंटे ये लोग योगा करके आए हैं. अच्छा मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. मीनल पाठक योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट स्टूडियो में आ गई हैं. वेलकम ऑन GNT.
3: नमस्कार.
0: इनके ग्लो का राज, एक तो मुझे लगता है इनको देखते हुए थीम रखा गया है इस बार, योगा फॉर एंटी एजिंग फॉर मीनल, जस्ट फॉर मीनल. मैं आपका इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, ठीक है
3: शगुफ्ता, ये आपके लिए भी कह सकती हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल, सेम चीज. आई थिंक वो सभी लोग जो अपने फिटनेस के लिए, अपनी वेलनेस के लिए जागरूक है ना, ये सबके लिए बात है. इनफैक्ट कल आई वॉज डूइंग दिस वन शो जिसमें वो बोल रहे थे कि ER करके जीन थेरेपी आ रही है फॉर एंटी एजिंग. कितने इंजेक्शन लगवा लेंगे, कितना बोटॉक्स करवा लेंगे, कितना फिलर करवा लेंगे, यू कांट डू इट फॉर एवर. लेकिन वो जो बॉडी का अंदर से जो काम है ना, वो जरूरी है. वो दैट हैज टू स्टार्ट.
0: ठीक,
3: और वो योगा से ही होगा.
0: और योगा से ही होगा, वरना नहीं होगा. देख लीजिए, मान लीजिए आप इस बात को कि नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं.
2: आप एज को रिवर्स कर सकते हैं योगा से, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को. हाँ. बहुत से लोग एग्जाम्पल हैं इस फील्ड में, तो योगा आप लोग भी करिए घर बैठ करके, और अपनी अपनी एज को भूल जाइए आप कितने साल के हैं.
0: एज रिवर्स हो जाएगी,
2: हो जाएगी,
0: है ना, रिवर्स हो जाती है. आप आजकल कह रहे हैं ना कि जो मिलेनियल्स हैं वो बूढ़े क्यों नहीं हो रहे.
3: एग्जैक्टली,
0: यही रीजन.
3: बिकॉज ऑफ, और इनफैक्ट उन सभी के लिए हमने किया है ना इस बार थीम, योग फॉर एंटी एजिंग.
0: एंटी एजिंग. अच्छा मीनल, चलो आप आ गई हो तो फिर आप ही शुरुआत कराओ. बताओ कहाँ से शुरू करें.
3: तो आई थिंक जब हम ये इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत यूथ टाइप की पॉपुलेशन है, बट लोगों का योग की तरफ थोड़ा झुकाव कम हो रहा है. तो आइए एक ऐसा आसन करते हैं जो हेल्प करेगा आपके फेस के ग्लो के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत चल रहा है. तो एक सिंपल सी क्रिया है, हम इसको फॉरवर्ड फोल्ड भी बोलते हैं, पश्चिमोत्तान आसन भी बोलते हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ पोज ऑफ सरेंडर. मतलब
0: अच्छा.
3: आप अपना जितना भी आपके दिमाग में जितने भी ब्लॉक्स हैं इसको छोड़ दीजिए, इसको आज के इस मैट पे छोड़ के जाइए इस तरह से.
0: मैट तो घर ले जाऊंगी लेकिन मैं सब छोड़ जाऊंगी क्योंकि खरीदा हुआ मैंने. ठीक है चलो.
3: ठीक है, तो अपने पंजे सीधे कर लीजिए. लंबी गहरी सांस, भरते हुए हाथ ऊपर. वो सभी लोग जिनकी स्पाइन में अभी हल्का सा इन्फ्लेमेशन है और लगता है कि फोल्ड करेंगे तो दर्द हो सकता है, तो आप पहले हल्के से घुटने मोड़ सकते हैं. अपनी चेस्ट को अपने थाइस के साथ लगा लीजिए, सांस को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए. ठीक है, इस तरह से अब जब आप एक्सहेल करेंगे ना, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक लेकर जाइए.
2: मैं तो पूरा
3: सांस को छोड़ते हुए पूरा, अगर पूरा जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बट बहुत सारे लोग हैं जो पूरा फोल्ड नहीं कर सकते. आपको इससे आसन का पूरा फायदा हो रहा है, जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए. और फिर धीरे से अपने फोरहेड को भी डाउन कर लीजिए, होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर, लेकिन सांस को नहीं, सांस को लंबा गहरा भरिए और फिर विद एवरी एक्सहेल आप जाने दीजिए. आप देखिए आपका पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्कल की तरफ आ रहा है. ये सारे के सारे जो पोजेज है ना जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये नॉट जस्ट फॉर योर ग्लो, ये आपको इंटरनली ना द आइडिया ऑफ लेटिंग गो सिखाते हैं. सो वो आपके सोच में भी, आपकी नेचर में भी फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक सोच जिसमें आप दूसरे का नजरिया भी शामिल कर पाएं, वो सिखाते हैं, और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर वापस आ जाए।
0: अच्छा, इसमें जो स्ट्रेच फील हुआ है वो है
3: पूरा काफ्स में भी, हैमस्ट्रिंग्स में भी, लोअर लंबर स्पाइन में भी, सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल,
0: ये इस एरिया में पूरा का पूरा आपका स्ट्रेच।
2: और देखो, जो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग होती है ना थाई।
0: मेरी बढ़ जाएगी क्या अब?
2: क्या है वैसे, आप डेली प्रैक्टिस करो तो
0: नंबर में, मतलब पूछना चाह रही हूँ कि नहीं मीना,
3: नहीं बिल्कुल
2: बढ़ जाएगी एक दो इंच तो बढ़ जाती है।
3: जो बुढ़ापे के साथ हमारी हड्डियाँ और हमारा फेशिया टाइट हो जाता है ना, वो नहीं होगा इसमें, फेशिया पूरा ऐसे हाइड्रेट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो जो ये चीज हो जाती है ना, ये खुल
0: जाएगी। कुछ लोग, हाँ मैंने देखा कुछ लोग ना चेयर पे बैठे बैठे, अच्छा पोस्चर करेक्शन,
2: जी जी
0: संदीप आई थिंक थोड़ा सा वो तो नहीं फील कर रहे कि महिलाएं मेरे पे हावी हो रही है, महिलाएं बता दी हैं, मैं अकेला वहां पे बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं है संदीप। पोस्चर करेक्शन की बात करते हैं, पोस्चर करेक्शन के बारे में बताइए। लोग ना स्लाउच करते हैं
1: जी,
0: है ना, आप नॉर्मली इस चीज को फील नहीं करते, आप फोन देखते हैं, आप फोन चला रहे हैं, या आप घर में बैठे इसी पोस्चर में आप लेट जाते हैं, यू डोंट फील कि आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, है ना, उसी तरह बैठ के आप खाना भी खाते हैं, तो उसको कैसे करेक्ट करें?
1: आजकल कमर दर्द की सबसे बड़ी समस्या हो रही है ना,
0: यही है
1: वो सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें बैठना नहीं आ रहा आज तक, हमें सोना नहीं आ रहा, खाना खाना नहीं आ रहा,
0: करना क्या आ रहा है हमें, करना तो कुछ गलत कर रहे हैं, फोन सही करके
1: करना क्या हमें, बस कमर सीधी करके बैठना, जब भी खाना खाएं तो कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
0: ठीक है,
1: जब भी हम कहीं बैठे तो कमर, लेकिन स्कूल में भी आजकल बच्चे देखते हैं ऐसे बैठे ऐसे
0: बैठे,
1: जल्दी बुढ़ापा ऐसे आ जाता है बच्चों को आजकल, तो 20 साल के बच्चे भी कहते हैं जी हमसे भी योग नहीं होता।
0: बताओ फिर पोस्चर करेक्शन के लिए बताओ क्या करना चाहिए,
1: सबसे बढ़िया है इसके लिए
0: आप सभी इनफैक्ट एक एक करके बता सकते हो,
2: बिल्कुल
1: सबसे बढ़िया है कि आप पहले पद्मासन सीखिए, पद्मासन सीखो, ये धीरे धीरे अपने आप ही पहले पाँव,
0: बस यही नहीं होगा,
1: जब ये सीख जाओ तो कमर अपने आप सीधी रहने लग जाएगी हमारी,
0: ठीक है। सुखासन या पद्मासन में आप बैठे हैं ना, बट आपकी जो बैक
1: वज्रासन में बैठ सकते, वज्रासन में बैठ सकते हो आप,
0: वज्रासन में भी कुछ लोगों से नहीं बैठा जाता,
1: नहीं वज्रासन में बिल्कुल।
0: अच्छा, वो बात सही है कि खाना खाने के बाद अगर आप 40 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है,
2: बिल्कुल सही है,
1: खाने के बाद करने वाला एक आसन
3: है, एक ही ऐसा आसन है, हम हमेशा बोलते हैं कि योग करना और खाने के बीच में गैप दीजिए, बट वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद भी बैठ सकते हैं, इसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना पूरा एंडोक्राइन रीजन में जाता है, तो आपके डाइजेशन के लिए, आपके पाचक के लिए बहुत अच्छा है। तो पोस्चर करेक्शन के लिए मैं एक सिंपल आसन बताऊंगी, द आइडिया इज कि हम सारा दिन ये करते हैं, आपको इसका ऑपोजिट करना है, सो नथिंग बेटर देन भुजंग आसन और द कोबरा पोज, और इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि जब वो लोग ना जो ऑफिस में काम करते हैं और किसी दिन एक दिन आपका वर्क फ्रॉम होम है ना, तो अपने लैपटॉप्स को अपने सामने रख दीजिए, ठीक है, हम इसे स्फिंक्स पोज भी बोलते हैं, अपने हाथों को अपने चीक्स के पास रख दीजिए और उसके बाद अच्छे से अपने लेग्स को ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, ये तो बहुत सिंपल है ना, आराम से कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा, आप देखिए आपके शोल्डर्स, आपके रोटर्स, चेस्ट सब खुला है और रिलैक्स भी है,
1: इससे कमर का दर्द है ना उसको भी जिनको रहता है वो ठीक होगा, और वजन भी कम होता है इससे,
3: बहुत बढ़िया, क्योंकि कोर एंगेज्ड है ना। आइए अब इसमें कोबरा पोज करते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, ठीक है, अपने पंजों को खींच के रखेंगे, ग्लूट्स को एंगेज रखेंगे, लोग क्या करते हैं इसमें सारा का सारा वेट छोड़ देते हैं और कमर के भार के ऊपर आ जाते हैं, वो नहीं करना है आपको, अपने शोल्डर्स को कान से दूर भी रखना है और ग्लूट्स और लोअर बॉडी को अच्छे से एंगेज भी रखना है। अब सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ आए, एल्बोस को सॉफ्ट रखेंगे, लॉक नहीं करेंगे, और सीलिंग को देखिए, और अगर देख सकते हैं तो पीछे देखिए, देखिए ये आप इस आसन में अपने थ्रोट चक्र को भी पूरा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपका हार्ट चक्र अनाहता पूरा खुल गया है, मणिपुरा चक्र नेवल के आसपास, कितना ज्यादा आप यू कैन फील द प्रेशर, सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है और हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है एज अ बिगनर ऑल्सो, धीरे से वापस आ जाइए। So this is very important and very simple pose which everyone can do for posture correction.
2: और इसके बाद एक मैं बताऊंगी posture correct का आसन, ये बहुत ही आसान है, सभी कर सकते हैं, जिनके
0: spine,
2: हाँ बैठ के करते, जिसके स्पाइन सीधी नहीं रहती है, ऐसे हमेशा झुके रहते हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगी, आप गौमुख आसन करिए सबसे पहले, तो
0: अच्छा,
2: एक पैर को इधर ले जाइए, दूसरे पैर को ऊपर से, अब ध्यान रहे कि जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर आएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ आपका नीचे जाएगा। अब एक हाथ को ऊपर उठाइए, दूसरा हाथ पीछे से ले जाइए। अगर आप लॉक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लॉक कर सकते तो आप कोई रुमाल या कपड़ा या रॉक ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। इससे देखिए आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो गई। ये जो ये पोस्चर करेक्शन का सबसे बेस्ट आसन है, इससे आपकी स्ट्रेट स्पाइन होगी। देखो गर्दन और आपके पेट पे और आपकी थाईस पे, इसमें भी आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल दूसरी तरफ से भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जरूरी है, ये पोज जब हम एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से भी करना जरूरी, क्योंकि हाथों को हम दोनों हाथों को मूवमेंट चाहिए, तो इसलिए आप दूसरे साइड से करेंगे।
4: और यही वाला हाथ,
2: हाँ, अब ऊपर वाला, राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और नीचे से लेफ्ट हैंड। देखो मैंने तो आसानी से पकड़ लिया, आपने सगुप्ता पकड़ लिया, मीनल आपने, संदीप आप
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हाँ। तो जो आप लोग देख रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो वो एक रस्सी ले लें या रुमाल ले लें या कुछ भी ले लें, जिससे ऊपर नीचे करके आप आसानी से पकड़ लेंगे, आपका पोस्चर तो करेक्ट होगा एटलीस्ट। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है, और ये पोस्चर करेक्ट ना होने के चक्कर में और होती, लोग लंबे समय तक डेस्क पे बैठते हैं, काम करते हैं कंप्यूटर पे,
1: वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन
2: बहुत, हाँ,
1: जिनको भी शुगर की
2: शुगर है और सर्वाइकल है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर है।
4: अच्छा, किसी ने सवाल भेजा है, बता देती हूँ आपका होगा कुछ नहीं वैसे, उन्होंने कहा है कि बैठे बैठे मैम कैसे वेट कम किया जा सकता है, भाई कोई जवाब आपसे देना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: कौन से आसन करें
3: बैठे बैठे, हमारे बड़े अच्छे प्राणायाम है एक्चुअली। द आइडिया बिहाइंड वेट लॉस इज कहीं ना कहीं अपनी श्वास का यूज कीजिए, अपने प्राण एनर्जी का, तो उसके लिए आई थिंक भस्त्रिका बहुत बढ़िया है। आप जिस तरह से अपने पूरे सिस्टम को, हर सेल को ऑक्सीजनेट करते हैं ना, तो मजा आ जाता है। और आप मेरे साथ अभी करिए, यू विल रियलाइज कि आपको कुछ मिनटों तक सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतने अच्छे से अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को यूज करते हैं।
2: अभी मिनल आपके आने से पहले हमने ब्रीथ की वैसे एक्सरसाइज कर रखी है,
3: हाँ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हाँ, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। तो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे,

0: अब धीरे से ज्ञान मुद्रा में बैठिए, देखिए कितनी देर तक यू कैन फील दैट सेंसेशंस। आप वो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं अपने पाम में, अपनी उंगलियों में, अपनी चेस्ट में। दिस इज द मैजिक ऑफ प्राण एनर्जी। आजकल लोग सांस लेना भूल गए, याद भी नहीं रहता कि कब ले रहे हैं, गर्दन से ले रहे हैं, छाती से ले रहे हैं, बेली ब्रीदिंग तो चली गई है आज कहीं। तो आप देखिए, अगर आप इस तरह से अपनी बॉडी को प्राण एनर्जी से भर देंगे तो आपका हर एक सेल डीपली ऑक्सीजनेट हो रहा है। हमें इसी एनर्जी को तो यूज करना है, इसी तरह से तो फैट लूज होता है। मतलब व्हेन यू वर्क आउट क्या हो रहा है, आप इस एनर्जी को अंदर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कसरत नहीं करेंगे, वो जरूरी है, लेकिन बैठे बैठे कुछ करना है तो ये कर सकते हैं।
1: अच्छा गुप्ता, बैठे बैठे और भी आसन है जो किए जा सकते हैं, जैसे आप दोनों पैरों को इस तरीके से ब्रॉड करिए और बस थोड़ा सा इधर जाइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। इससे क्या होगा, आपका पेट बेली फैट जितना है वो धीरे धीरे कम होगा। 20 से 30 बार आप इसको करें दिन में।
2: कुछ लोग बेचारों पे स्ट्रेस बहुत होता है ना, काम का प्रेशर बहुत है, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपने श्वास की प्रक्रिया बताई है ना। चेयर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं वो?
3: वजन कम करने सबसे बेस्ट एक ये सूर्य नमस्कार, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। एक दिन में आप 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं।
2: कैसे?
3: सूर्य नमस्कार।
2: सूर्य नमस्कार।
1: संदीप तो एक्सपर्ट है।
2: खाना कुछ नहीं है संदीप? खाना क्या है?
3: ये खाना क्या है? बिल्कुल, थोड़ा सलाद ले लो, फ्रूट ले लो,
0: ये बंद कर बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं कसरत कर लीजिए और खाते रहिए। तो
3: सबसे पहले जरूरी है, मतलब कि अपनी डाइट तो हमें जरूरी है। अगर हम डाइट फॉलो नहीं कर रहे, सुबह योग करते हैं, कपालभाति, प्राणायाम कर लिए, जाके बर्गर खा लिया,
1: बर्गर पिज्जा ऑल दीज,
3: फिर वजन कम नहीं होने वाला है।
0: अच्छा, इनफैक्ट आई वॉज नोटिसिंग कि हमारे यहाँ पर बस स्टेशन के आगे, रेलवे स्टेशन के आगे आपको इतने लोग पूरी छोले छोले भटूरे खाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आज मैं नोटिस कर रही थी, मेरे ख्याल हमें सड़कों पे भागते हुए कसरत करते हुए कितने कम लोग दिखते हैं, लेकिन खाते पीते सब दिखते हैं।
2: मतलब एक दिन की जगह रोज कर लीजिए ना योगा, आप रोज सेलिब्रेट कीजिए। 21 जून एक दिन आता है, लेकिन आपके लिए बाकी
3: जब योग से हम जुड़ जाते हैं ना, फिर ये चीजें ऑटोमेटिक छूट जाती है।
0: और अब जब आप ये बात मान लेंगे ना कि जिस तरह से नाश्ता जरूरी है, जिस तरह से वो नहीं भूल रहे हैं ना, उस तरह से कसरत भी जरूरी है, वो भी नहीं भूलनी है, वो भी हर दिन करनी है, आपके दिनचर्या का भाग होना चाहिए।
2: अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब संदीप क्योंकि वो सूर्य नमस्कार के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो इनके साथ एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ना सारे एकरान में। संदीप खुश होगा, एक बड़ी सी स्माइल दे रही है,
3: तो कर रहे हो स्माइल, मेरे देशवासी भी साथ में करें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए।
2: आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जीएनडी के माध्यम से कि योग दिवस को हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, प्रियंका, मीनल, संदीप और शगुफ्ता के साथ और जीएनटी की पूरी टीम के साथ।
3: बिल्कुल,
2: चलिए कराइए शुरू।
3: एक श्वास, एक दिन नॉर्मल, दो श्वास को भरते हुए, तीन श्वास को बाहर निकालते हुए, चार श्वास को भरते हुए, पांच श्वास को बाहर निकालते, पर्वतासन बोलते, छह अष्टांग नमस्कार, इसमें श्वास निकलती नॉर्मल, सात श्वास को भरते हुए भुजंगासन, यह आसन साथ में मेरुदंड को भी, कमर को ठीक करेगा, फेफड़ों को मजबूत करेगा, आठ
4: यह आसन फिर से रिपीट हो जाता है पर्वतासन,
3: नौ लेफ्ट पांव आगे असुंचालासन, दस राइट आगे
4: श्वास बाहर, और ग्यारह श्वास को भरते हुए।
2: चलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमने तो एक बार किया है लेकिन आप कम से कम 10-15-20
3: सूर्य नमस्कार डेली,
2: 10 सूर्य नमस्कार का चैलेंज हम आपको देते हैं कि
3: जिनको बिल्कुल फिट बनना हमारी तरह, तो 100 सूर्य नमस्कार रो रूटीन में बनाएं।
2: और हम सबको एक काम कीजिए, अपना सूर्य नमस्कार करते हुए जीएनटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को और इन सबको टैग करते हुए हमें पोस्ट कर दीजिए।
1: हम आपको टैग करेंगे,
2: हम टैग करेंगे, कोलैबोरेट भी करेंगे,
1: कोलैबोरेट भी करेंगे।
3: बताइए कि हम इतने इतने सूर्य नमस्कार रोज लगा रहे हैं, पता चलेगा कि हमारे देश के युवा आज 100-100 सूर्य नमस्कार, 200-200, 500-500 लगा रहे हैं।
0: और मुझे लगता है कोशिश करके बाहर कीजिए, अपनी बालकनीज में कीजिए, अपने और इस भाव से कीजिए कि दैट यू आर ट्रूली थैंकफुल टू सूर्य गॉड।
3: बिल्कुल, कम से कम
2: सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। प्रियंका, मीनल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए,
1: थैंक यू।
2: और तस्वीरें आपको केरल की दिखाते हैं, चलिए केरल में भी योगा अभ्यास किया जा रहा है। हाथियों पर सवार होकर ये योगाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है।

0: सेजिया पे लोट काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलम।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: उत्पल उदित ने कचौड़ी गली का स्वाद फिर से आबाद किया है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उत्पल आपका जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करें, हम शुरुआत इन्हीं दो लाइनों के साथ करेंगे जो आजकल एक सेंसेशन बना हुआ है हर जगह।
1: हेलो एवरीवन, पहले तो बहुत शुक्रिया जी एंटी का टू फॉर हैविंग मी हियर। एंड इतना प्यार कचौड़ी गली को मिलना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक तो। और बहुत शुक्रिया।
2: बिल्कुल उत्पल, चूंकि बिहार की मिट्टी से आते हैं आप, सहरसा से आते हैं, मैं खुद मिथिलांचल से हूँ, हमने सुना है भोजपुरी में तो आप गाते ही हैं, मैथिली गीत भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो दो लाइन सबसे पहले कचौड़ी गली आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हर जगह इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह आप ही गर्दा मचाए हुए हैं, तो पहले ये कचौड़ी गली सुनाइए और फिर हम मैथिली में कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल, अहाँ के लिए पेश है कचौड़ी गली।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

निर्जपुर कैला तुल जाने वो कथम बीग।

0: की बात बहुत खूब उत्पल एक टा आर कनी मिथिला में कनी एक टा गाना सुना दिया
1: बहुत विद्यापति जी के एक टा गीत है पिया मोर बालक
0: बिल्कुल सुनाओ
1: पिया ले लगोद की

0: बहुत सुंदर गाया आपने उत्पल। इसी के साथ मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कचौड़ी गली की सक्सेस के लिए, और इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि जो बिहारी गाने हैं उनको आप दुनिया भर में मशहूर करें और दुनिया भर में प्रचलित हो, इसके इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी सोच क्या है?
1: मोटिवेशन सबसे बड़ा ये रहा कि लोकगीत के पीछे कि आप अगर कहीं भी जाएं बिहार से बाहर, तो जिस तरह से आप बिहारी म्यूजिक को या फिर भोजपुरी म्यूजिक को देखा जाता था, वो एक बहुत चिंता का विषय था और मेरे मन में हमेशा था कि इसको बदलना है। और
0: जी
1: क्योंकि शुरुआत मतलब बॉलीवुड कवर से ही थी, मगर एक मोमेंट पे ये भी आया दिमाग में कि मतलब फोक मेनस्ट्रीम क्यों नहीं हो सकता है, और अगर फोक मेनस्ट्रीम हुआ होगा तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये भी एक उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ में।
0: उत्पल, अभी हाल फिलहाल में देखिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं अगर हम भोजपुरी गानों की बात करें, लेकिन हाल फिलहाल में ये भी खबर आई कि ये तय किया गया है कि उसमें अश्लील कंटेंट या भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए संगीत की कोई भाषा नहीं होती, आप जो गा रहे हैं भले ही हम नहीं समझ पा रहे हो लेकिन वो उस म्यूजिक के साथ कहीं ना कहीं हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। क्या क्या ये एक नई शुरुआत है वापस से? और दूसरी बात, देखिए कोक स्टूडियो में जब आपने कहा कि फोक म्यूजिक को ले जाना, हम पंजाबी फोक म्यूजिक, सूफी फोक म्यूजिक सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने इस म्यूजिक की बात की है जिसमें चाहे वो मैथिली म्यूजिक हो या भोजपुरी हो, दोनों चीजें जब यहाँ पर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया भी इसको देखती है, इसके पीछे आपकी सोच क्या है? यहां तक पहुंचने का सफर भी साथ ही साथ बताइए कैसा रहा?
1: सफर तो बहुत अच्छा रहा, और मतलब पहले तो बहुत स्केप्टिकल थे क्योंकि एक ऐसा कुछ करना जो मतलब जिसका कंजप्शन बहुत कम हो चुका है, बट इसको एक नए साउंड में प्रेजेंट किया गया, मतलब पहली बार हमको लगता है कि इस ऐसे साउंड में, ऐसे सेटअप में इस चीज़ को परफॉर्म किया गया है, और जितना प्यार मिल रहा है ये बहुत मतलब मेरे लिए बड़ी बात है। और ये जैसे ही ये गाना आया ना, ये गाना कम फील हुआ, ये मतलब एक नया फेस्टिवल, नया त्योहार, एक नया सेलिब्रेशन, एक वी कैन कॉल इट अ न्यू एरा फॉर बिहारी एंड भोजपुरी
0: बिल्कुल
1: फोक म्यूजिक।
2: बिल्कुल उत्पल, खास करके मुझे लगता है कि जब से कोक स्टूडियो, इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म ही लोगों के सामने आया है, तो जितनी अब कह लीजिए जो फोक म्यूजिक है उसको यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक ऐसा मंच है हम कह सकते हैं, इसीलिए हमने पंजाबी हो, सूफी हो और तमाम तरह के जो रीजनल लैंग्वेज है उनके गानों को यहाँ पे हमने सुना है। अब रेखा भारद्वाज के साथ आपने गाया, रेखा भारद्वाज अपने आप में बहुत बड़ा नाम रही है, उनके गाने बहुत ही फेमस रहे हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छे गाने उनके एक से एक रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा उनसे रहा इंटरेक्शन, और जब म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा था, जब ये गाना पूरा रिकॉर्ड हो रहा था, उस समय का कुछ एक्सपीरियंस बताइए।
1: पहले तो स्टूडियो में जब आप पहली बार इतने बड़े दिग्गज कलाकार से मिलते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, मगर वो बस स्टूडियो के बाहर तक था। जैसे ही स्टूडियो एंटर किए, पहला तो ये भी होता है एज अ म्यूजिशियन, आपका दायित्व तो बनता है सबसे पहला आपका काम होता है, और जैसा नेचर है रेखा भारद्वाज जी का वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है, मतलब वो जिस तरह से बात करती हैं, मतलब हमको याद है पहली बार हम लोग मिले थे तो हम लोग 1.5 घंटे बस आपस में बात किए, मतलब अबाउट लाइफ, अबाउट हमारे फोक म्यूजिक है, ज़्यादातर म्यूजिक के बारे में बात हुआ, तो वो बहुत कम्फर्टिंग माहौल था स्टूडियो में।
2: अगर इस कचौड़ी गली की हम बात करें तो उसमें कौन सा ऐसा पैरा है, कौन सा ऐसा अंतरा है जो आपका फेवरेट हो, आप हमें सुनाना चाहें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें?
1: क्योंकि मेरा बहुत ध्यान है वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, तो इसमें एक जो आखिरी जो लाइन है वो है बहुत, वो रेज निकल के आता है और वो फील्स वेरी एम्पावरिंग, तो वो ये लाइन है कि हर

0: बहादित गोर वन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बल से जिया फलोट काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल।
1: क्या बात क्या बात, बहुत खूब।
0: थैंक यू सो मच
1: उत्पल। ये जो आपने 200 साल पुराना जो लोकगीत एक बार फिर से इसको गुनगुनाया है, बहुत सुंदर। और इसने सोशल मीडिया पर जो धमाल मचाया हुआ है, जो रिएक्शन अब यूजर से आ रहा है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
0: मतलब सच बताया तो एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब ऐसा लाइफ का फ्लिप हो जाने वाला मोमेंट है। बिकॉज पहचाना जानना एक चीज है
1: जी
0: और अपने फोक के लिए पहचाना जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक तो बहुत बहुत बड़ा ये हुआ कि रिवाइवल हुआ, और जब कचौड़ी गली आया तो नहीं पता था इतना फैल जाएगा, मतलब हर जहां जाए वहां बज रहा है। मतलब एक छोटा सा किस्सा है कि हम अभी बनारस गए थे और हम जहां ठहरे थे तो वहां पे जो इंसान नहा रहे थे वो मतलब कचौड़ी गली बजा रहे थे, और वो जैसे ही निकले और वो हमको देखे एंड ही वाज लाइक ये क्या हो गया। तो ये बहुत एक प्यारा बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स अभी हो रहे हैं साथ में।
1: अब इसी के साथ ना दर्शकों को बहुत उम्मीदें अब आपसे होंगी आगे भी, तो कुछ आगे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं?
0: फ्यूचर प्लान्स ये है कि मतलब जो यहाँ के जो बिहार के जो धरोहर हैं, जैसे अगर मिथिला से ले ले बात करें तो महाकवि विद्यापति हैं, अगर भोजपुरी से ले ले तो महेंद्र मिश्र जी हैं, भिखारी ठाकुर जी हैं जो एक टाइम पे विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं भोजपुरी लिटरेचर के। और
2: हाँ एकटा उत्पल हाँ एकटा अपन पसंदीदा गाना गाओ जे अहाँ के नीक लगे है।
0: मैथिली फोक
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे सबक एकटा गीत छे जैसे सब कुछ शुरू है छे एंड इट इज कॉल्ड जय जय भैरवी, मतलब
2: अरे हमरा सबके घर आंगन में यही बजे छे रोज सुबह।
0: बिल्कुल तो

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जल्द हम आपके नए गीतों को भी सुनना चाहेंगे।
1: बिंदिया पे लुट काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलम।
2: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन, मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब, टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ Good News Today पर।
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दुनिया भर में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में किया योग, 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। देशभर में योग कार्यक्रमों का आयोजन, संस्कृति मंत्रालय की ओर से 100 प्रमुख जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दुनिया भर में करीब 2,500 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, हेल्दी एजिंग साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में किया योग, जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में योग किया, विदेश मंत्री अजय शंकर भी दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया, दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया योग, झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए, धामी ने चंपावतमी के बनबासा में किया योग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योग किया, फडणवीस ने किए योग के कई आसन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलोंग में किया योग, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी योग किया। योग दिवस पर सेना के जवानों ने 14,091 फीट की ऊंचाई पर किया योग, जवानों ने लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे योग किया। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया, जवानों ने लुकुंग पोस्ट पर किया योग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में योग किया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया योग, पीयूष गोयल ने मुंबई के दाना पानी बीच पर योग किया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने योगाभ्यास किया, बेहतरीन जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक ऐसा कहा। विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया योग, कार्यक्रम में भाग लिया, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर लोगों के साथ मिलकर योग अभ्यास। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग किया, कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। पटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लोगों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी योग किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, कहा योग से स्वस्थ उत्तम रहता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में योग किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग किया। गंगटोक में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। चंदौली में मंत्री अनिल राजभर ने लोगों के साथ मिलकर योग किया। मंत्री ने नागरिकों से योग करने की अपील की। अलवर में केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने योग से स्वास्थ्य का संदेश दिया। लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। दिल्ली कैंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ धीरज सेठ ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने देश के अलग अलग कोनों में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। पेंगोंग झील के किनारे योग किया गया। जर्मनी में भी योग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास पर भी योग आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता के जलदापाड़ी नेशनल पार्क में दिखा अनोखा नजारा। लोगों के साथ हाथियों ने किया योग। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हजारों लोग शामिल हुए। रक्सौल के भारत नेपाल सीमा के पहचान गेटवे ऑफ नेपाल पर योग अभ्यास किया गया। राजकोट में स्विमिंग पूल के अंदर महिलाओं ने किए एक्वा योग। लोगों से योग करने की अपील की। आसनसोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कई मंत्री भी शामिल हुए। प्रयागराज के संगम किनारे 8,000 लोगों ने एक साथ योग किया। डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हजारों लोग शामिल हुए। छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी। जम्मू के नक्सल प्रभावित इलाकों में योग का आयोजन। मंत्री श्रेयसी सिंह शामिल हुए। समुद्र में देश की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्धपोत। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक नौसेना में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 युद्धपोत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। आईएनएस दूनागिरी बनेगी नेवी की नई स्टेल्थ ताकत। आईएनएस संशोधक करेगी समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग। भारत और भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगी। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और मजबूत। जीआरएससी ने आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक तैयार किए। पौड़ी शहर की आराध्या देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोगों ने देव निशानों का स्वागत किया। भक्तों ने लगाए जयकारे। मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर की पहल। परीक्षार्थियों को ठंडे पानी और गुड़ चना से स्वागत किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया। गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में माता खीर भवानी यात्रा की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ भव्य शुरुआत हुई। 8,500 तीर्थयात्रियों के साथ 214 बसें रवाना हुई। माता रागन्या देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। खीर भवानी यात्रा बनी हाल के वर्षों की सबसे बड़ी यात्रा। टिक्कर, देवसर और अनंतनाग में भी माता खीर भवानी की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्ति और आस्था के साथ आगे बढ़ी खीर भवानी यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं के कदमों से जगमग हुई घाटी की पवित्र राहें। ज्येष्ठ अष्टमी पर 22 जून को संपन्न होगी माता खीर भवानी की यात्रा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, come home. It's supper time.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
8: Jack FM, playing what we want.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा नीट री एग्जाम, लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरों से नजर, शाम 5:15 बजे तक चलेगी परीक्षा। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान, टीम में विराट रोहित शामिल। कर के लाल वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, महज 11 गेंद में बनाया अर्धशतक, ट्राई सीरीज फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन। समुद्र में बड़ी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल हुए 3 धुरंधर, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह की कमिश्निंग। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की

0: उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बानियामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी। पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को ले

0: अंदर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड द फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वाज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वी विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार आरसीबी को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों की शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda. और आज भी सांगली जाना और वहाँ वक्त बिताना उन्हें बहुत पसंद है।
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: सांगली में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि सांगली के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि सांगली में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, देश भर में आज बड़े ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कहीं पर नदी में बहती नाव पर, तो कहीं पर पार्क में, कहीं पर स्कूल, तो कहीं पर खुले मैदान में लोगों ने योग किया। जगह जगह योग को लेकर बड़े आयोजन किए गए। इसी कड़ी में गुजरात के राजकोट में भी योग को लेकर खास कार्यक्रम किया गया। देखिए तस्वीरें, यहाँ योग का आयोजन स्विमिंग पूल में रखा गया। इस योग कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने शामिल होकर योग किया, उसके फायदे भी गिनाए और इस विशेष आयोजन में 107 महिलाएं शामिल थी। कुल 157 लोगों ने स्विमिंग पूल के पानी के अंदर अलग अलग योगासन किए। संयोग से आज म्यूजिकल डे भी था और इसको लेकर पूरे योग सेशन को म्यूजिकल थीम पर आधारित रखा गया। और एक्वा योग करने वाली महिलाओं ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि पानी में योग करने की कई फायदे हैं। तस्वीरें देखिए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। समुद्र में बढ़ी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल हुए 3 धुरंधर, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह की कमिश्निंग। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ संदेश। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम के कमान, टीम में विराट रोहित शामिल।
9: स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। जब जब योग की बात होती है तो स्वामी जी का जिक्र होता है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी आपसे ही योग बना है।
10: योग युगो युगो से भारत में है। योग हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, और योग पूरी दुनिया की जरूरत है। अब देख रहे हैं दाई तरफ बाई तरफ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे योग कर रहे हैं, पीछे से मुड़ करके यहाँ आ गए कि जो है आकंठ जो है योग में पूरे खो गए, और यहाँ ये पीछे तो पावर योग चल रहा है। देखो ऐसे ये योग पूरे देश में जिस दिन होगा उस दिन ये पूरा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा, और पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और बीमारी ना हो, जीवन को भी तो अच्छा बनाना। मैं कहता हूँ ना एक बहुत बड़ा तत्व है मेरी बहन पूजा जी, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से अपने भीतर का वो देवत्व, योग से भीतर की वो दिव्यता। अब इतना कठिन योग ना हो किसी से तो घबरा नहीं रहे हमसे, तो ये इतना
9: मेरे को तो बहुत समय लगेगा ये करने।
10: पूजा सूत्री कहे मुझे स्वामी जी ना कह दे कि ये करो। तो ये योग इतना कठिन भी हो तो इतना तो होगा आपसे कि आप जो है भस्त्रिका कर सके, कपाल भाति कर सके, आप भी और हम भी कर सकेंगे। ये बिल्कुल ये बिल्कुल सहज मंडू का आसन सब कर सकते, ऐसे आगे झुक गए मंडू का आसन हो गया। तुम कह रहा था स्वस्थ जीवन के लिए इस बार का थीम रखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर प्रिवेंशन, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। अब देखो एक तो ये यहाँ पर हमारे साथ योगा फॉर यूथ, योगा फॉर जेंजीज है, और देखो क्या ये तो नजारा है देखिए, और यहाँ कृष्णा नदी का पावन। चंद्रबाबू नायडू जी जो एक देश के विजनरी मुख्यमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ऐसा देश के सभी मुख्यमंत्री हो जाए तो जो मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विकसित बनाना 2037 तक ही पूरा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ इस बार आंध्र प्रदेश में इसलिए नहीं, सच में विजन होना चाहिए, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा सभी मंडू का आसन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए योग भी करें, और जरा सोचे कि योग करते करते क्या कर्म योग करना है, क्या अपना कर्तव्य करना है। तो योग में योग भी है, योग में कर्मयोग भी, गीता के 18 अध्याय अष्टादश योग है पूजा जी।
9: बिल्कुल स्वामी जी, आप क्योंकि बोल रहे हैं कि सबको ही योग करना चाहिए,
10: सबको योग करना, जाति वर्ग समुदाय का कोई इसमें भेद नहीं है। और वैसे भारत के मुसलमानों के बारे में तो कहूंगा, भारत के मुसलमानों का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, अर्थात हमारे पूर्वज एक है, सब हमारे पूर्वज योगी थे। और योग तो बात यहाँ कोई इस्लाम की, कोई ईसाइयत की, कोई आस्तिकता नास्तिकता की है ही नहीं, बात मानवता की, और बात ह्यूमन वैल्यूज की, बात हेल्थ की है। अब सबको मोटापा है ना, अब देखो मोटे हैं, यदि ये करें मैं तो कहता हूँ ये दो ही अभ्यास करें, ये देखो ये बाई तरफ तो क्या गजब आसन कर रहे हैं बच्चे, टिट्टी भासन, इधर भूनो बना आसन हो रहा है और इधर पीछे पावर योग चल रहा है।
9: स्वामी जी मैं कह रही थी कुछ योग दीदी के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि दीदी जी काफी परेशान है बंगाल में,
10: ये उलट पुलट योग करना चाहिए। देखो ये अब आप कहेंगे दीदी को क्या योग करना चाहिए, अब दीदी से हम कहेंगे हनुमान आसन, फिर ये इधर कठिन कठिन आसन, ये तो नहीं हो पाएगा। दीदी को प्राणायाम करना चाहिए,
9: धैर्य बनाए रखें,
10: धैर्य बनाए रखे, अनुलोम विलोम, जो पंछी उड़ गए अब नए एमपी बनाने पड़ेंगे, नए एमएलए बनाने पड़ेंगे, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी पूरी खंडबंड हो गई। तो योग में राजयोग भी सन्निहित है, योग में अध्यात्म योग है, योग में राजयोग है। मैं तो कहता हूँ योग मूलक शिक्षा मेरी बहन पूजा जी, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक शिक्षा तंत्र, योग मूलक चिकित्सा तंत्र, योग मूलक शासन तंत्र, योग मूलक जिस दिन कृषि तंत्र, योग मूलक समाज तंत्र जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन सारा षड्यंत्र ही दूर हो जाएगा। अब ये इतना कठिन योग तो था, मुश्किल हो जाएगा,
11: ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
10: पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है।
11: स्वामी जी कितना समय लगा इन बच्चों को?
10: ये तो एक साल में ट्रेंड कर देते हैं। वैसे आपको भी एक साल में योगी पूरा बना देंगे लेकिन एक साल में नहीं, एक महीने में हम तो ट्रेंड कर देते हैं। आप तो वैसे भी जो है स्वभाव से ही योगी है। तो देखो जो बात मैं कह रहा था ना, योग जाति पंथ से परे। योग क्या है? अथ योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों मन चित्त चेतना आत्मा का अनुशासन, डिसिप्लिन इन बॉडी इन माइंड इन थॉट्स इन एक्शन, डिसिप्लिन इन फूड, डिसिप्लिन लाइफ ही योग है, अथ योगानुशासन। डिसिप्लिन होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, तो वैयक्तिक जीवन में परिवार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक जीवन में परिवार में सब जगह योग हो। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र और योग में विश्व। अब योग धर्म, योग धर्म बनेगा ऐसा हमारा विचार है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि आज लोग प्रेरणा लेंगे, और जैसे आपने कहा आज तक शुरू नहीं किया तो आज शुरू कर दे। और योग जब आदत बन जाएगी ना, तो सुबह उठने की आदत बन जाएगी, योग करने की आदत से सब बुरी आदतें, नशा की आदत, ज्यादा खाने की आदत, उल्टा पुल्टा सोचने की, उल्टा पुल्टा देखने सुनने की, बोलने की करने की आदत, बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। योग में कितना कुछ है, माने योग करेंगे सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बुरी आदतें, सब रोग, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रताओं से मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होंगे। योग से जीवन में शुचिता जरूर आएगी, शुचिता पूर्ण जीवन योग से होगा, ये एकदम पक्की बात है।
11: स्वामी जी जैसे हम ऑफिस में होते हैं ना पूरे समय, तो बहुत समय नहीं मिल पाता, जैसे मैं बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो योग करने का समय ही नहीं मिल पाता, तो क्या करें हम ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ऐसे आसन?
10: ये तो सुबह सुबह करके चले जाना, मंडूक आसन आगे झुकने वाला, अब ये योगा प्रोटोकॉल में भी है उष्ट्रासन, ऐसे ये तो बहुत ईजी है। और फिर देखो एक है आगे झुक गए ऐसे, ये शशकासन, तो ये तो सुबह सुबह करके जाना। सुबह सुबह एक बार आप जाने से पहले, अब बच्चों को तो शीर्षासन करना चाहिए, जैसे बच्चे शीर्षासन कर रहे, अब देखो सुबह सुबह यदि ये करके चले गए ना, इससे तो पूरी जिंदगी बन जाती है। ऊपर उठे नीचे आए ऐसे, ये ऐसे, तो देखो घर जाने से कहीं पर भी ऑफिस में जाने आदि से पहले भुजंगासन करके निकलो। मैं तो कहता हूँ एक भुजंगासन भी कर लेंगे ना, तो देखो हम आपकी तरह हम भी दुबले पतले
11: हैं। तो नहीं है स्वामी जी
10: लेकिन आपके भी पूजा जी ऐसे ही बना देंगे, ये देखो पूरा शरीर।
11: तो मतलब मैं डेली करके जाऊंगी तो जल्दी बन जाएंगे
10: सोमवार पूजा का हासिल करना है तो, और अश्वगंधा शतावर थोड़ा खा लेना। और फिर देखो ये बच्चों को इधर देखा तो मैंने देखा ही, मैंने कहा कोई टूट फूट तो नहीं गए, और इधर
11: मुझे रबड़ की तरह है, जहाँ मुड़ है वहां मुड़ जाते हैं।
10: देखो ये पावर योग चल रहा है, ऐसे आज का हमारा एक संदेश भी है, पावर योग आपको चाहिए तो भी कर, योगा फॉर यूथ पावर योग। फिर जिनको डायबिटीज है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको ओबिसिटी है, सबके लिए योग। तो और इसके साथ जो आप बोल रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भस्त्रिका कर सकते हैं, ये तो मेन है ना भस्त्रिका, सांस लिया और छोड़ा कपाल भाति, फिर ये अनुलोम विलोम, बाई से लिया दाई से छोड़ा, दाई से लिया बाई से छोड़ा ऐसे, फिर ये भ्रामरी ओम, कभी आपस में गुस्सा ज्यादा हो जाए बोस लोग
11: तो तुरंत आसन कर ले,
10: तो थोड़ा अपने चित्त को अपने मन को शांत करने के लिए शीत लिए, हाँ ये शीत करिए, और कभी ये नहीं खड़े होकर के भी ना, जैसे ये बड़ा अच्छा है ऐसे कर लिए। तो मैं तो कहूंगा अभी जब भी थोड़ी फुर्सत मिले, कुछ लोग सिगरेट का सुट्टा लगाने निकल जाते हैं अपने, वैसे इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, और उसी से तो सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तीन ही तरह की तो बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, दोष। फिर जेनेटिक डिजीज, जीन्स में भी चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना, रेडिएशन, पोल्यूशन और चारों तरफ यूरिया, डीएपी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ये सब के कारण से लोगों की जिंदगियां बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो योग से जेनेटिक चेंज आता है, माने योग करेंगे ना तो देखो ये भी कर लेना चाहिए, कंधे खुल जाते हैं। योग से जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, और जिनको इनकेरेबल डिजीज बोला जाता है ना, हम तो लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, ऑटोमेटिक डिजीज, इनको भी ठीक करते हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं पर भी फुर्सत मिली, और ऑफिस में भी बैठ के प्राणायाम तो सबसे हो जाता है, तो सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। हाँ, ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, चलो हलासन करो, बट सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सबको करना चाहिए। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, चलो बच्चों चक्रासन करो। चक्रासन खड़े होकर के करते हैं। अब देखो खड़े होकर के चक्रासन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा।
11: खड़े होकर नहीं होगा, पर बैठ कर मैं कर लूंगा।
10: हाँ, आप लेट करके करो। चलो ऐसे, ओ, ऐसे लेट करके। तो अरे पूजा ने भी अच्छा किया भाई, जोरदार अभिनंदन है। हाँ तो जो है
11: स्वामी जी, आपसे ही सीखा है योग तो मैंने, आप भी जानते हैं स्वामी जी। इस बार का जो योग का थीम है उस पर क्या कहें, क्योंकि हर बार योग का थीम बदल ही रहा है।
10: योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब देखो आप तो हमसे आधे से भी कम उम्र के हो लेकिन हम भी आपसे दुगने उम्र के नहीं लग रहे। इसको कहते हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग धीरे धीरे एजिंग होती है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट। कोई सामान बाजार से लाते तो लिखा रहता है 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में एक्सपायरी हो जाएगी। खाने पीने की चीजों में जल्दी एक्सपायरी होती है, कुछ चीजें थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती है। तो व्यक्ति की भी एजिंग है। व्यक्ति 100 साल तक युवा रह सकता है, 150 साल तक, 200 साल तक जी सकता है। प्राचीन काल में 400 साल तक जिया करते थे। इसके लिए एक तो प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्ट चक्र नव द्वार, 72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र नव द्वार, देवाराम पुर, अयोध्या स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, और उनका पूरे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वो अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग से। हेल्दी एजिंग के लिए डीप ब्रीदिंग, फिर कपाल भाती, फिर अनुलोम विलोम। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम योग करेंगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, मोटापा नहीं होगा, बीपी, शुगर नहीं होगा, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाएंगे और उसको बीट कर पाएंगे। हम जीवन में हर समय एक विजयी बनकर के उभरेंगे। तो डिटोरेशन जो बॉडी में होता है एज, जो है आयु के साथ, जैसे जैसे आप बड़े होते वैसे, तो उस डिटोरेशन को आप रोक सकते हो एक तो योग से, फिर अपनी दिनचर्या में थोड़ा चेंज करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं पिछले 50 सालों से 1 बार भी बीमार नहीं पड़ा, 1 बार भी कोई दवाई नहीं, 1 बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई न बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न ओबिसिटी, ये तो हमारे पड़ोस में भी नहीं फटकती है। तो ये आप यदि योग करते हैं तो सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज से, जेनेटिक डिजीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। हमने बीपी, शुगर, थायराइड ऐसे लोगों का रिवर्स किया है, और जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज है, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो योगा फॉर इम्यूनिटी भी है, योगा फॉर लॉन्जिविटी भी है, योगा फॉर एंटी एजिंग है, योगा फॉर
11: विपक्ष भी है,
10: योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर पक्ष एंड विपक्ष है, योग तो निष्पक्ष है ना। योग दर्शन क्या है, ये योग जो है ना वो आपके पूरे शरीर में एक जो नैसर्गिक व्यवस्था, पूजा जी एक बड़ी बात कह रहा हूं, प्रकृति परमेश्वर ने 99% इस बॉडी को, ब्रेन को, हमारे जीवन को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर बनाया है। मनुष्य भगवान की धरती पर अप्रतिम रचना है, और इस पूरी बॉडी की एनर्जी का अलाइनमेंट करने के लिए योग एक तरीका है। नहीं तो योग नहीं करेगा ना तो आदमी जो है ना उलट पुलट हो जाता है जिंदगी में, और वो इतना कठिन कठिन योग जो बच्चे कर रहे ना, कभी कोई घबरा जाए, रे भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमसे ना हो।
11: खूबसूरत लग रहा है,
10: इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, संतुलन कितना गजब है। और देखो पीछे तो ये देखो बहन पूजा, ये एक हाथ में पूरा संतुलन। ओए राम राम राम राम राम राम,
11: जीवन में भी संतुलन हो जाएगा।
10: ऐसा संतुलन के लिए तो अब इतना ना हो तो अनुलोम विलोम तो हो जाता है। हम हर कार्य को ठीक से प्रामाणिकता से कर सके, यही हमें योग सिखाता है। योग कर्म सुकौशलम, और जहां पर भी रहे वहां संतुलित होकर के रहे, बैलेंस। ये जब बैलेंस होता है ना तब आदमी गड्डमड्डा, तो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे बच्चे देखो कठिन कठिन योग कर रहे हैं,
11: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा,
10: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। देखो ये बड़े, ये विश्वविद्यालय के बच्चे, पता नहीं विश्वविद्यालय के आचार्य कुलम के बच्चे,
11: स्वामी जी छोटे छोटे बच्चे।
10: और ये बेटियों को देखो इधर, क्या अजब गजब है। अब भी मेरे पास और छोटी आती है ना तो आपको भी ऐसे ही बना देता पूजा, मैं आपको भी अभी काफी सिखा दिया। समत्वम योग उच्चते योग कर्मसु कौशलम, मैं आज सबसे एक आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सब योग करो। योग का व्रत लो, आयुर्वेद का व्रत लो, स्वदेशी का व्रत लो, अपने जीवन में कुछ ऐसे तत्व अपनाओ। दो बार खाओ, कम खाओ, गम खाओ, गम को सहलो, सहज रहो। ये जितने भी सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, जितने भी अनहेल्दी चीजें, इनका बहिष्कार करो। इतनी छोटी छोटी कुछ पहल कर लेंगे जीवन में, छोटे छोटे इनिशिएटिव ले लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी।
11: स्वामी जी एक आखिरी सवाल कि वैसे तो विश्व में भी अब योग किया जा रहा है, योग को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है, अब और इसको एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए क्या सोचा है?
10: मेरे चित्त में ये चल रहा है, वैसे तो मैं जन्म जन्मांतरों से जुगन जुगन से हम जोगी है। एक कबीर साहब का भजन है, जुगन जुगन हम योगी। तो युगो युगो से योग चला रहा है, और मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया योग करेगी। और सबसे ज्यादा जरूरत तो ट्रंप साहब को है, सबसे ज्यादा जरूरत तो पुतिन साहब को है, जेलेंस्की जी को है, खामनाई को है। अच्छा, पूरी दुनिया में युद्ध मचा हुआ है, युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। और ये चारों तरफ हिंसा, घृणा, नफरत, मार धार, लूट मार, ये सब क्या चल रहा है? तो योग से युद्ध भी रुकेंगे, योग से लोगों में सच्चरित्रता, पवित्रता आएगी, योग से सच्चे अर्थों में जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो योग से ही उभरेंगे। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूं पूरी दुनिया में, योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सब जगह योग होगा। योग योग से ही उद्योग भी अच्छा होगा, और एक दूसरे का योग करें, सहयोग करें, योग के पथ पर चले। और चलाए मैं तो कहता हूँ कम से कम इंटरनेशनल योग डे पर, जैसे क्रिसमस के दिन तो सब लोग चर्च में जाते थे, हाँ। कि भाई आज तो चलो, लोग ईद और जो है रमजान आदि में तो कहते हैं भाई आज तो चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जब कोई गुरु पर्व होता है तो कहते हैं चलो आज तो गुरुद्वारा चलते हैं। जैसे रामनवमी या जन्माष्टमी है तो बोलो आज तो चलो मंदिर में चलते, आज तो चलो तिरंगा फहरा लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी है, चलो आज तो योग कर लेते हैं, योग दिवस है। तो शुरुआत तो कहीं से होगी, तो फिर धीरे धीरे योग जीवन में समा जाएगा।
11: यही बहुत शुक्रिया।
10: एक बार जरा हंस हंसन करेंगे, ये भी एक योग है, हास्य योग, लाफ्टर योग,
11: ये भी एक योग,
10: हास्य योग और सिंहासन है, दाढ़ो गला थायराइड भी लोगों का गड़बड़ हो रखा
11: है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पे हमें समय देने के लिए।
12: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
13: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
14: Khabrein.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और शानदार खबर आपको बताते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ऑकलैंड में खेले गए बहुत रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से करारी शिकस्त दी और इस शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी के तुरंत बाद हॉकी इंडिया ने पूरे टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए बम्पर प्राइज मनी की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की बेटियों की इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और इसी की जीत के साथ आपको बता दें हॉकी प्रो लीग 2026-27 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया गया है। तो बड़ी और शानदार खबर आपको बता दें, एक शानदार खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर से शानदार कामयाबी हासिल की है, इतिहास अपने नाम कर लिया है। FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आइए बात करेंगे अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो नए विमान में उड़ान भरने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होने के लिए नया विमान तैयार किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड में खुद इसका मुआयना किया। आपको दिखाते हैं इस विमान में क्या खास है और आखिर क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको पाकर बहुत खुश हैं।

0: चकाचक, ब्रांड न्यू, बेहद शानदार, आलिशान, ये वो विमान है जिस पर आने वाले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उड़ान भरेंगे। ये अमेरिका का नया एयरफोर्स वन है जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल प्लेन VC-25A की जगह लेने जा रहा है। इस नए विमान को VC-25B नाम दिया गया है। अमेरिका में मेरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर राष्ट्रपति ट्रंप के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार इस नए विमान का मुआयना किया और इसे शानदार करार दिया।
1: As you probably have learned, these planes are much bigger. The other plane was about 35 years old, and it was time, and President of the United States, numerous of them, would land, and they'd be standing next to one of the new 747s, and the biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size, and it actually on a runway, it looks even...
0: इस बोइंग 747 बिजनेस जेट को कतर के अमीर ने पिछले साल अमेरिका को उपहार में दिया था। इसकी कीमत करीब $400 मिलियन यानी लगभग 37 अरब रुपए बताई जा रही है, जबकि इसे नए सिरे से किए गए बदलावों में भी $1 अरब से ज्यादा रकम खर्च की गई है। अमेरिका को सौंपे जाने के बाद विमान के लुक में खास बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के आधार पर नए विमान में पुराने एयरफोर्स वन की हल्के नीले रंग वाली पारंपरिक डिजाइन को हटाकर नया लुक दिया गया है। इसके नीचे के हिस्से को नेवी ब्लू रंग में रंगा गया है। ऊपरी हिस्से का रंग चमकदार सफेद है, जबकि बीच वाले हिस्से में लाल पट्टी लगाई गई है और सुनहरे रंग के डिजाइन वाला इंटीरियर बनाया गया है। विमान के बाएं हिस्से पर राष्ट्रपति का प्रतीक चिन्ह लगाया गया है। वहीं पीछे के हिस्से पर बड़ा अमेरिकी ध्वज दिखेगा। इसमें शानदार प्रेसिडेंशियल सुइट है, लेदर सीटें और मुलायम कालीन लगाई गई है, साथ ही लकड़ी की भव्य पैनलिंग की गई है। अमेरिका को सौंपे जाने के बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की और राष्ट्रपति के सुरक्षा मानकों के लिहाज से इसमें खास बदलाव किए गए हैं। विमान में हाई लेवल के सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं। इसे सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से लैस किया गया है। साथ ही इसमें जरूरी सैन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। इस विमान के विंग्स में मिरर बॉल डिफेंस सिस्टम है जो इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम को चकमा दे सकता है। दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए इसमें ECM डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ये विमान 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर विमान का जायजा लेने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके मैकेनिकल डोर पर दस्तखत भी किए। उन्होंने विमान की तारीफ करते हुए इसके लिए कतर के अमीर के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
1: There will never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane. When it was built at a level that will probably never be seen again. And the workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest. They're the best in the world. Nothing like it. So... It's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy. He went through a lot over the last few months. He's very brave.
0: बताया जा रहा है कि कतर से मिला यह विमान राष्ट्रपति के लिए अस्थायी रूप से उपयोग में लाया जाएगा। बोइंग कंपनी की ओर से राष्ट्रपति की फ्लीट के लिए 2028 तक दो नए विमान सौंपे जाने की संभावना है, जिनके लिए ऑर्डर 2018 में ही दिया गया था। डिलीवरी में देरी को देखते हुए कतर से गिफ्ट में मिले इस विमान को राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल करने का फैसला किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी विदेश यात्राओं के लिए इस नए विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अगले महीने अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में इसी नए विमान से जाएंगे। वहीं 4 जुलाई को अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। To walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
4: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा और आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। समुद्र में बड़ी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल हुए 3 धुरंधर, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की कमिश्निंग। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान, टीम में विराट कोहली शामिल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। देश की तरह बिहार में भी वो आधी आबादी की नुमाइंदगी करती हैं। 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में करीब 6.5 करोड़ की हिस्सेदारी उनकी है, उनकी यानी महिलाओं की। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में बल्कि कुल आधी आबादी उनकी है तो उसी हिसाब से वो क्राइम की शिकार भी होती होंगी। बस इसीलिए बिहार पुलिस ने अपनी आधी आबादी को सुरक्षा मुहैया कराने के इरादे से एक नई पहल की है। ये पहल है घर के बाहर हर उस ठिकाने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की जहां जहां वो जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाजार, दफ्तर, मेला, यानी हर जगह। और खास इसीलिए बिहार पुलिस ने पुलिस की खास यूनिट बनाई है। ऐसे तो इनका नाम शक्ति सुरक्षा दल और अभिया ब्रिगेड रखा गया है, वैसे इन्हें लोग पुलिस दीदी कहकर बुलाते हैं। पूरे देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। सोचिए, जहां शक्ति और ताकत सबसे ज्यादा हो, भला उस राज्य में महिलाएं कैसे सुरक्षित नहीं होंगी। इसमें कोई कमी ना आए, बस इसीलिए बिहार पुलिस ने एक नई पहल की है। इस पहल का नाम है अभया ब्रिगेड और शक्ति सुरक्षा दल। वैसे आप इन्हें प्यार से पुलिस दीदी भी बुला सकते हैं।
1: ऐसे ही बिहार हाईएस्ट राज्य है जिसका पुलिस में महिलाएं हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ ट्रांजिशनल फेज है। उस हिसाब से हम लोग टीम्स को तो अच्छा सा वेल इक्विप कर दिए हैं।
0: अभया यानी भय से मुक्त, यानी निर्भय, निडर, निर्भीक, बेखौफ, साहसी, बहादुर और बहुत कुछ। बिहार में 33,000 अभया यानी भय मुक्त कदमों की आहट आपको सुनाई देगी। बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए 1.25 लाख से ज्यादा खाकी वाले मौजूद हैं। खास बात यह है कि इनमें से 33,000 सिर्फ महिला पुलिसकर्मी है, यानी कुल पुलिसकर्मियों का 25%। वर्दी में नजर आ रही महिला पुलिस वालों को बिहार में चलते फिरते बस गिनते जाइए, आपकी उंगलियां थक जाएंगी बिहार में महिला पुलिसकर्मियों और महिला सुरक्षा के इंतजामों को गिनते गिनते। चलिए गिनती छोड़िए, ताकत का अंदाजा लगाइए। छोड़िए, हिम्मत और हौसला ही सोचकर देखिए। नहीं समझ पाए तो ये चंद लाइनें सुन लीजिए, आपको मदद मिलेगी। जब वर्दी वाली महिलाएं गिनती नहीं ताकत बन जाती हैं, तब समाज की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती हैं। इस बार खौफ से रिहाई की बारी है बिहार की, और ये आजादी बिहार की 6.5 करोड़ महिलाओं को बेखौफ और निडर बनाने की है। उन्हें बस इतना एहसास दिलाना है कि 4 दीवारी से बाहर की सारी दुनिया पर उनका भी उतना ही हक है जितना मर्दों का। किसी भी समाज की असली तरक्की उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या बढ़ती जीडीपी से नहीं मापी जाती, बल्कि उस इलाके में महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और तरक्की से मापी जाती है। बिहार में अपराध, खौफ, बदमाशी और डर का आलम बताने की जरूरत तो नहीं है, मगर हाँ, बदलाव, कोशिश, असलियत आप तक पहुँचाना जरूरी है। बिहार की आज की पहचान इस बात से है कि वहाँ बेटियाँ कितनी बेखौफ है, कितनी महफूज हैं और कितने इत्मीनान से जिंदगी काट रही हैं। और हाँ, इन सब के पीछे की वजह

0: अभिया ब्रिगेड और शक्ति सुरक्षा दल का मकसद कमोबेश एक जैसा ही है। इसीलिए इन टीमों का सबसे बड़ा काम होता है हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई यानी चिन्हित करना और सबक सिखाना।
1: बेसिकली हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से चल रहा है, जहां स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स, कोई मॉल्स हो, जहां लड़की लोगों को, लेडीज का ज्यादा फुटफॉल हो, उसी पे चल रहा है। 988 लोकेशंस ऐसा हम लोग चिन्हित कर दिया था, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स में ही बहुत अच्छा काम इन लोग के द्वारा किया। जो पिकअप करने के बाद इनकी द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई भी कराया था, जो ऐसा लोग यू टीजर्स है वो सभी का, क्योंकि वो अगर एडोलेसेंट लोग हैं तो उसके आदेश के अनुसार उन लोग को जेजेबी बोर्ड के अंतर्गत प्रस्तुत करना है। उसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी किया, कुछ केसेस में FIR भी दर्ज किया। हर जिला में हॉटस्पॉट्स पहले से चिन्हित हुआ है, तो हम लोग जिला SPs को भी लिखे हैं कि अगर हॉटस्पॉट्स को इंक्रीज करना है अपने हिसाब से, वो भी इंक्रीज कर सके, ताकि जितना मैक्सिमम कवरेज हो वो हम लोग करने की उद्देश्य से इसको स्टार्ट किए हैं।
0: बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ब्रिगेड हर गली नुक्कड़ पर आपको मिल जाएंगी, उनके इस पहल के बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए। अगर उन्हें कोई परेशानी, कोई शिकायत होती है तो वो कहां और किसे बता सकती हैं, इसकी जानकारी उन्हें हो, इसको लेकर वक्त वक्त पर उन्हें जागरूक करने का काम ये ब्रिगेड करती है।
1: मुख्य रूप से लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं। जमुई जिला के बारे में बता सकते, बहुत अच्छा सा किया इन लोग ने, स्कूल्स में सभी कवर कर दिया, कॉलेजेस में जाके दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द किड्स, जो बच्चियां हैं जो जहां जा रहे हैं कि दे हैव दिस, दे कैन अप्रोच देम।
0: अब सवाल यह है कि महिला पुलिस की ये टुकड़ी कैसे अलग अलग संस्थानों तक पहुंचेगी, कैसे अपनी बात और उनकी सुरक्षा को उन तक पहुंचाएगी। महिलाओं की सुरक्षा तय करने के लिए पहले खुद की तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया, सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा देने वाली महिला पुलिस को सारी सुविधा मिलनी चाहिए, और इसीलिए इस खास ब्रिगेड के लिए स्कूटी के इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: तो इसकी एडवांस स्टेज में सीएम सर का कॉन्सेप्ट है पुलिस दीदी का, उसका भी हम लोग स्कूटी जैसा टू व्हीलर्स गाड़ी देने की प्रक्रिया में, खरीदने के लिए भी पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग एंड ऑल। इसीलिए क्योंकि अगर स्कूटी होगा तो देखें अप्रोचेबिलिटी और बढ़ेगी, रीच ज़्यादा बढ़ेगा, एंड दे विल ऑलवेज हैव समवन की नियर टू द कॉलेजेस, जब कॉलेज का वर्किंग आवर्स हो, स्कूल्स का वर्किंग आवर्स हो, क्योंकि यू टीजिंग मात्र ही नहीं है मगर बहुत चीज़ है। गर्ल्स ऑल्सो बिकम विक्टिम्स बहुत अलग तरीके से, इवन ग्रुपिंग कर लेते हैं और कुछ लूड कॉमेंट्स पास करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी ऑफेंसिव। सो इस सभी को रेडिकेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
0: पूरे प्रदेश के 38 जिलों में आपको कहीं ये स्कूटी गाड़ी महिला पुलिस दिख जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मनों, गुंडों, बदमाशों का काल सड़कों पर गश्त कर रहा है। पूरे बिहार को इस ब्रिगेड से कवर करने की पूरी तैयारी बिहार पुलिस ने कर ली है।
1: हाँ, बिहार के सभी जिलों में है अभी, इनफैक्ट गाड़ी का भी 1500 स्कूटी टाइप का व्हीकल्स का हम लोग फर्स्ट इनिशियली हम लोग करेंगे। हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड और वी विल ट्राई टू कवर ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड एवरी प्लेस वेयर द वीमेन फुटफॉल इज मोर।
0: अभिया ब्रिगेड की अलग अलग टुकड़ी उन जगहों पर तैनात रहेंगी जहां महिलाएं ज्यादा आती जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, बाजार, चौक, चौराहे, नुक्कड़। एक ब्रिगेड में 4 महिला पुलिस शामिल रहती हैं और इस ब्रिगेड की पूरी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक की महिला अफसर पर होती है। उनके साथ 3 और मेंबर टीम में शामिल रहते हैं, जिसमें 1 महिला सिपाही और 2 पुरुष सिपाही होते हैं। अभिया ब्रिगेड की टीम स्कूटी और गाड़ी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शक्ति सुरक्षा दल में सिर्फ महिला पुलिस ही होती है।
2: शक्ति सुरक्षा दल जो है मेनली है ये छात्राओं के लिए है, शहरी क्षेत्र की जो छात्राओं हैं उनके लिए, जो स्कूल कॉलेज जो जाती हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो चीज़ का हम लोग ध्यान रखे हैं। कोचिंग वगैरह में भी है ना कि

0: वो लोग शाम में भी जाते हैं, दोनों कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को ये तकरीबन साल भर पहले से ये गाड़ी जो है वो हम लोग को स्टार्ट हुआ है। जो टीम है, टीम टू, दो टीम हम लोग का काम कर रही है, एक गांधी मैदान का पश्चिमी क्षेत्र, एक गांधी मैदान का पूर्वी क्षेत्र, दोनों तरफ में काम कर रही है हम लोग का टीम।
1: अब ज्यादा दूर क्या जाना, चलिए आपको बिहार की राजधानी पटना ही लिए चलती हूँ। पटना में ये शक्ति सुरक्षा दल की टोली है, पार्क, सड़क, बाजार, हर जगह ये गश्त कर रही हैं, ताकि बिहार की बेटियां सुरक्षित रह सके। पढ़ने और आने जाने वाली छात्राएं जिन्हें घर पहुंचने में देरी हो जाती है या कोई परेशानी रहती है, तो ऐसे में वो खुद को महफूज महसूस करे, इसीलिए ये लोगों से जा जाकर खुद बताती हैं कि कोई मुश्किल घड़ी हो तो वो इन्हें बेशक याद कर सकती हैं।
2: पुलिस दीदी, मैं तो केवल महिला रहेंगे स्कूटी पे,
3: ये अभिया ब्रिगेड और महिला।
2: अभिया ब्रिगेड में दोनों मिक्स है। बहुत अभी तक जो भी चल रहा है वो सब में दोनों मिक्स है। अभी जो अभिया ब्रिगेड में तो ऑलरेडी फोर व्हीलर से चल रहा है, जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर है और महिला कॉन्स्टेबल्स भी है और मेल कॉन्स्टेबल्स भी हैं। तो अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस दीदी में तो अगर कोई टू व्हीलर चला रहा है, एक महिला पदाधिकारी रहेगी, एक कॉन्स्टेबल भी रहेगी, उसको अपना सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम लोग उसका ट्रेनिंग कर देंगे, और द सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ERSS व्हीकल से अटैक कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट रेस्क्यू तो ERSS व्हीकल ही कर रही है, एंड उसी हिसाब से हम लोग उसको टैग करके काम कराएंगे।
1: खुद अपनी परेशानी बताने के लिए ये लड़कियां शक्ति सुरक्षा दल को कॉल करती हैं। अपनी परेशानी, लोकेशन और तमाम जानकारियां उनको देती हैं, जिसके बाद ये टुकड़ी फौरन लोकेशन पर पहुंचकर मदद का हाथ बढ़ाती है। 15 से ज्यादा शिकायतें रोजाना इस दल को मिलती हैं।
0: शिकायतें बहुत तरह की मिलती है, बहुत जगह से कंप्लेन आता है, कॉलेज से भी, स्कूल से भी, कि हम लोग के साथ मतलब ये स्टूडेंट का ही छेड़खानी, ये सब का, तो हम लोग जाकर उसका निवारण करते हैं। कोचिंग में ही हो जाती है बहुत सी लड़कियों का, कि वो आ रही है, बहुत सारे लड़के हैं बाहरी जो कोचिंग के हैं नहीं, वो लड़कियों के साथ में छिड़कानी कर कोशिश, तो हम लोग उसका निवारण करने जाते हैं, निवारण भी करते हैं। पार्कों में भी वही है कि लड़कों लड़कियों की ही समस्या मेनली है ये। स्कूलों की समस्या वही है, कोई कोई लड़की है जो स्कूल नहीं जाना चाहती है, फिर हम लोग उसको समझा के स्कूल करते हैं, स्कूल भेजते हैं। फिर हम लोग कॉल अगर किया जाए तो तकरीबन एक दिन में 15-20 कॉल आ जाती है। हाँ, कोई कोई होता है फेक भी होता है, लेकिन जहाँ तक हम लोग कोशिश किया जाए वहाँ तक पहुँचते हैं।
1: खुद बिहार की लड़कियाँ अब खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उन्हें जरा सी भी परेशानी हुई तो उनके लिए ये पुलिस दीदी हमेशा तैयार है।
4: ये तो बहुत अच्छा है, मतलब काम की लड़कियों सब के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, क्योंकि आजकल लड़की बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर नहीं कर पाती है, बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है हर चीज़ को लेकर, या कहीं भी सिक्योरिटी अगर नहीं मिलता है तो उनको फील नहीं होता है सिक्योर। बाकी ये अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, जिससे अगर कोई किसी को कभी प्रॉब्लम हो जा रहा है तो वो उनके पास नंबर रह रहा है कि वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिससे उनको सेफ्टी मिल सके।
5: ये तो वुमेन सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा मतलब पहल है, जो कि हम लोग काफ़ी सुरक्षित सेफ्टी महसूस करेंगे घर से निकलने के बाद, आने के बाद। और सही है कि कभी मतलब कोई बॉयज मिसबिहेव कर रहा है या फिर कोई भी फॉलो कर रहे हैं या कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अगर हम अनसेफ फील कर रहे हैं तो मैम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
6: अगर ये रहा तो हम लोग कहीं भी सेफ रहेंगे, कहीं भी जा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉल करके, मतलब डर लगा तो ऐसे कॉल कर दिए।
7: लगता नहीं है क्या?
6: हाँ सर, बहुत लगता है, कभी तो बहुत लगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि मतलब कोई पीछा उछा कर रहा है ऐसा। अभी तो बहुत अच्छा हुआ है कि जो लागू हो गया हम लोग के लिए।
4: हाँ, कि मतलब अगर बाहर निकलते अगर थोड़ा सा भी लेट नाइट हो जाता है, जैसे 6-7 भी बज रहा है तो लेट हो गया, तो अगर हम हॉस्टल या घर के बाहर है तो उस टाइम तक लिए अभी इतना फील नहीं हो रहा सिक्योर, मतलब कि अब टाइम तक घर आ जाए। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अब टाइम से पहले घर आ जाए, ये चीज़ को लेकर है। बट अगर ये चल रहा है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कभी, तो वो इस पर कॉल कर सके और उसको सिक्योरिटी ऑब्वियसली मिलेगी। हाँ, हम भी लोग होंगे।
1: ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है, ये कहानी भरोसे की, हौसले की, ताकत की, हिम्मत की और हाँ वर्दी की, जिनके कंधों पर सितारे नहीं बल्कि उन सितारों से लाखों बेटियों की जिंदगी रोशन करने की भी जिम्मेदारी है। सड़कों पर गश्त करती अभिया ब्रिगेड की टीम हो, शक्ति सुरक्षा दल की टोली हो, महिला हेल्प डेस्क हो या फिर आपकी अपनी पुलिस दीदी, सबका मकसद सिर्फ एक ही है, महिला सुरक्षा। इसीलिए बिहार की कोई भी लड़की जब आधी रात को भी घर लौट रही हो तो लौटते वक्त अपने कदमों से ज्यादा अपने ख्वाबों के बारे में सोचे, यही इस कोशिश का सफल नतीजा होगा। सुजीत गुप्ता के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे।
8: साइबर क्राइम अब सिर्फ शहर की बीमारी नहीं रही बल्कि धीरे धीरे अब ये दूर दराज के इलाकों, कस्बों और गांव तक फैलती जा रही है। बस यूं समझ लीजिए जितने हाथों में मोबाइल है ये बीमारी हर उन हाथों को दस्तक दे सकती है। अब शहर के मुकाबले गांव के लोग जाहिर है इसे लेकर ना इतने जागरूक हैं ना ही उनके पास जानकारी है। बस इसीलिए यूपी के अलग अलग इलाकों में गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यूपी पुलिस भी अपनी तरफ से सहयोग कर रही है।

0: ओटीपी बोलो।
1: ओटीपी
0: अरे मोबाइल में देख के बोलो।
1: ओटीपी
0: हम तार गोड़ छू सक नहीं।
2: बेशक ये एक रील है और रील में मजा। रील बनाने वाले ने इसे बनाया भी मजाकिया अंदाज में है, लेकिन जाने अनजाने वो इस रील के जरिए एक छुपा सच बता गया। सच ये कि शहरों से दूर गांव और कस्बों में आज भी लोग नए दौर की तकनीक और उसके साथ ही बीमारी की तरह फैल चुकी साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत कम जानते हैं। काम मुश्किल है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। गाँव के पंचायत के बारे में तो आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक बोर्ड उसी नई शुरुआत का ऐलान कर रहा है। जी हाँ, साइबर पंचायत, यही है वो शुरुआत। अब एक नया खतरा गांव की गलियों और दरवाजों तक पहुंच चुका है। एक ऐसा चोर जो दरवाजा नहीं तोड़ता, खिड़की नहीं तोड़ता और फिर भी आपकी जिंदगी भर की कमाई लेकर गायब हो जाता है। इस नए जमाने के चोर का नाम है साइबर ठग। इसी खतरे के खिलाफ लखनऊ के इस कठवारा गांव में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया।
3: देखिए, आज ये कार्यशाला साइबर पंचायत की रखी गई, उसका उद्देश्य भी यही था। जागरूकता ही सुरक्षा है और जागरूकता की कमी है जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। गलत लिंक पे क्लिक करना, एपीके फाइल डाउनलोड करना, गलत स्पेलिंग वाली वेबसाइट से किसी चीज को आवेदन करना और डिजिटल अरेस्ट और नकली इन्वेस्टमेंट स्कैम जैसे लोगों में फंसना।
2: बख्शी का तालाब इलाके में गांव कटवारा में ये पंचायत ना किसी जमीन के विवाद की है और ना ही किसी के घर के मसले सुलझाने की और ना ही बिजली पानी की शिकायतों पर बात हो रही है। आपकी जमा जोड़ बचाने वाली यही वो अनोखी पंचायत है। साइबर एक्सपर्ट्स गांव के लोगों को उस अपराध के बारे में जागरूक कर रहे हैं जो मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होता है और बैंक खाते तक पहुंच जाता है। और लोगों को साइबर ठगी से जागरूक करने के लिए साइबर मामलों के जानकार रक्षित टंडन गांव के लोगों को समझा रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में।
3: तो आज जागरूकता होनी जरूरी है और इसी उद्देश्य से ये हम लोग जगह जगह, आज ये तीसरी साइबर पंचायत हमने यहाँ लखनऊ में करी और ये साइनारी फाउंडेशन और आरटी साइबर एकेडमी की मिली जुली पहल है। और आपने देखा इसमें हर लेवल पे, मतलब वो छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है वो बता रहा है कि साहब मैं गेम खेलता हूँ, और उस बेचारे बच्चे को ये नहीं पता है कि वो गेम की जो उम्र निर्धारित है वो 17+ है, लेकिन वो खेल रहा है। तो यहाँ से खतरे शुरू होते हैं। तो आज जो ये 150 लोगों से हमने बातचीत करी और इन लोगों ने खुद एक प्लेज ली, आज इन लोगों ने एक ओथ ली जो आपने पढ़ा 11 पॉइंट की, कि हम अपना ओटीपी साझा नहीं करेंगे, हम किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, हम अनजान आदमी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम अपना मोबाइल और अपना खाता किसी और के हाथ में नहीं देंगे।
2: साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने गांव के लोगों को बिल्कुल आसान जुबान में समझाया कि कैसे उनकी जिंदगी भर की कमाई को कोई पल भर में उड़ा ले जा सकता है।
4: मोहनलालगंज में एक 12 साल के बच्चे ने अपने पिताजी का फोन ले लिया। पिताजी ने एक हफ्ता पहले जमीन बेची थी, 13 लाख रुपए मिले थे। कितने? 13 लाख। वो बच्चा है, बच्चे को गेम खेलना था। वो गेम खेलने में इतना संलग्न हो गया, इतना घुस गया कि उसने किसी बटन पे ध्यान नहीं दिया। पता कब चला? जब 13 लाख रुपए बैंक से गायब हो गए।
2: बेशक शहर जैसी सुविधा या शहर जैसी टेक्नोलॉजी देश के एक दूर दराज इलाकों में ना पहुंची हो, लेकिन गांव में भी हर हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और साइबर फ्रॉड की खिड़की यहीं से खुलती है। इसीलिए साइबर क्राइम को लेकर साइबर पंचायत जैसी शुरुआत एक नायाब कोशिश है। मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। और शेली एसी के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान, टीम में विराट रोहित शामिल। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ संदेश। एक शानदार खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जिसे दुनिया की धड़कन कहा जाता है, जहां पर 2400 घंटे नियॉन लाइटें चकमगाती हैं, यहां पर रफ्तार कभी नहीं थमती, शोर आसमान छूता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तस्वीरें देखिए, टाइम्स स्क्वायर भी योग के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ नजर आया। इस भव्य आयोजन में हजारों सांसें 100 से जुड़ गई, बड़ी संख्या में तमाम लोग जुटे, इस कंक्रीट के चौराहे पर अपने योग मैट भी बिछाई, और सिर्फ व्यायाम नहीं था बल्कि माइंड ओवर मैडनेस, यानी इस आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ में मन की विजय का शंखनाद किया गया। इस मौके पर देखिए, योग का मंत्र बड़ा ही सीधा और सटीक था, जिसके जरिए यह बताया गया कि देखिए, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं होता बल्कि बिखरे हुए विचारों को जोड़ने का नाम भी है योग। आज जब दुनिया तनाव चिंता के दौर में है, तब योग हमें अपनी सांसों की ओर लौटने का गुर सिखाता है, और ये संदेश जो है देता है कि बाहरी शोर चाहे कितना भी ज्यादा गहरा हो, आपके भीतर का जो मौन है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसी संदेश के साथ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। तस्वीरें देखिए,
3: बैक टू सेंटर एंड वन लास्ट टाइम, लेट्स डू इट।
2: और आइए अब देखते हैं GNT एक्सप्रेस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: दुनिया भर में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया योग, 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। देश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, संस्कृति मंत्रालय की ओर से 100 प्रमुख जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन। दुनिया भर में करीब 2500 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, हेल्दी एजिंग इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया योग, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में किया योग, जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नवीन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में योग किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया, दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया, झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, धामी ने चंपावत के बनबासा में योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योग किया, फडणवीस ने किए योग के कई आसन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलोंग में योग किया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मौजूद रहे। योग दिवस पर सेना के जांबाज जवानों ने 14,091 फीट की ऊंचाई पर किया योग। जवानों ने लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे किया योग। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। जवानों ने लुकुंग पोस्ट पर किया योग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में किया योग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया योग। पीयूष गोयल ने मुंबई के दानापानी में पीच पर किया योग। गुवाहाटी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने योगासन किया। कहा बेहतर जीवन के लिए व्यायाम जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योग। कार्यक्रम में भाग 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग किया। कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी। पटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लोगों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी योग किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा योग से स्वस्थ उत्तम रहता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में योग किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधु और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग किया। गंगटोक में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। चंदौली मंत्री अनिल राजभर ने लोगों के साथ मिलकर योग किया। मंत्री ने नागरिकों से योग करने की अपील की। अलवर में केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने योग से स्वास्थ्य का संदेश दिया। लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। दिल्ली कंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ धीरज सेठ ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने देश के अलग अलग कोनों में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। पेंगोंग झील के किनारे योग किया गया। लेह से आया अद्भुत नजारा। जर्मनी में भी योग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास पर योग का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता के जल्दापाड़ा नेशनल पार्क में दिखा अनोखा नजारा। लोगों के साथ हाथियों ने भी योग किया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। अद्भुत नजारा। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा की पहचान गेटवे ऑफ नेपाल पर योग आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजकोट में स्विमिंग पूल के अंदर महिलाओं ने एक्वा योग किया। लोगों से योग की अपील की गई। आसनसोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कई मंत्री शामिल हुए। प्रयागराज के संगम किनारे 8,000 लोगों ने एक साथ योग किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लोगों के साथ योग किया। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों लोगों ने शिरकत की। छात्र छात्राएं भी योग अभ्यास में शामिल हुए। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में योग का आयोजन किया गया। मंत्री श्रेयसी सिंह शामिल। समुद्र में देश की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्धपोत। INS दूनागिरी, INS आग्रह और INS संशोधक नौसेना में शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, INS साधु नगरी बनेगी नेवी की नई स्टेल्थ ताकत। INS संशोधक करेगा समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और मजबूत, GRSE ने तैयार किए हैं तीनों निर्माण। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन में भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोगों ने देव निशानों का स्वागत किया, भक्तों ने लगाया जयकारे। मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहल हुई, परीक्षार्थियों को ठंडे पानी और गुड़ चना से स्वागत किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया, गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर मॉक ड्रिल की, इमरजेंसी की तैयारियों को बरखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, IED विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां। अट्ठाईस अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भगवान शनिदेव के दर्शन किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने माउंट आबू का दौरा किया, मुख्यमंत्री ने नक्की झील में नाव की सवारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में प्रधानमंत्री किसान उत्सव में शामिल हुए। हरियाणा में पानी से जुड़ी परियोजनाएं होंगी साकार, विश्व बैंक ने प्रदेश को मंजूर किया 4,000 करोड़ का लोन, मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी। देश में क्रूड ऑयल सप्लाई से जुड़ी राहत वाली खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके स्वदेश रवाना हुए 3 टैंकर, लाखों मिलियन टन क्रूड लेकर स्वदेश आ रहे हैं 3 टैंकर। बिहार और मिथिलांचल के लोगों के लिए गुड न्यूज, दरभंगा से जयपुर के लिए चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल यात्रियों को होगी सहूलियत। आज होगा दरभंगा जयपुर अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन, 23 जून से दरभंगा से नियमित ट्रेन का होगा संचालन, रेल यात्रियों को आरामदायक सफर की सौगात। किसानों को आर्थिक राहत, पीएम ने जारी की पीएम किसान की 23वीं किश्त, 9,44,00,000 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर। शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, राजनाथ सिंह ने वायु सैनिकों के साथ स्नैक्स किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायु सेना की ताकत, क्षमता और पेशेवर कौशल की सराहना की, कहा वायु सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम। मुंबई में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के बेटी की शादी में कई हस्तियां शामिल हुई, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रणबीर कपूर भी शामिल हुए। शादी समारोह में जावेद अख्तर, शबाना आजमी और फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर भी पहुंचे, तो रितेश और जेनेलिया भी शामिल हुए। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री फडणवीस और अमृता फडणवीस शामिल हुए तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने भी शिरकत की। नेताओं में राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी भी शादी समारोह में शामिल हुए। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में नीता अंबानी की बहू के साथ पहुंची तो गौतम अडानी भी परिवार के साथ शामिल हुए। कई और उद्योगपति ने भी शिरकत की। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ओर से दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स का आयोजन किया गया। नीरज चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड। लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी को मिला सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड। उत्कृष्ट योगदान के लिए कई अन्य खिलाड़ियों और कोचों को भी सम्मानित किया गया। नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में आर्यन नेहरा का कमाल। पुरुषों की मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 8 मिनट से कम समय में देश के पहले भारतीय तैराक बन गए। आशीष नेहरा ने अपने ही बेस्ट इंडियन टाइम बेहतर करते हुए जीता गोल्ड। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। LGBTQ समुदाय के लोगों ने वडोदरा में प्राइड परेड का आयोजन किया। परेड में शामिल लोगों ने समानता और अपने अस्तित्व का मनाया जश्न। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमीरपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का शिलान्यास। अल्मोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री, ये धामी लोगों को सम्मानित किया। पहुंचे LG विनय कुमार सक्सेना, कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण। मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। जयपुर से दरभंगा के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। यश की टॉक्सिक की नई रिलीज डेट का ऐलान, 4 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। श्रद्धा कपूर की ईथा से होगी महाटक्कर। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में बॉलीवुड का जमावड़ा, रणबीर अमिताभ समेत कई सितारे शामिल। 325 करोड़ की फी के साथ भारतीय सिनेमा का सबसे महंगे सितारे बन गए रणवीर सिंह। शाहरुख खान, रजनीकांत को बछाड़ दिया। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ योगासन करते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने योग किया, छोटे बच्चों को सिखाया योग। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कॉकटेल 2 का शानदार प्रदर्शन। फिल्म ने 2 दिन में कमाए करीब 30 करोड़। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने किया कॉकटेल 2 का रिव्यू। फिल्म से इंप्रेस नजर आई मीरा राजपूत। फिल्म में पति शाहिद ने निभाई मुख्य भूमिका। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर चीन के ग्वांगडोंग में रोमांचक रेस ड्रैगन बोट ड्रिफ्ट का दिखा जलवा। पारंपरिक रेस में दिखे नए करतब। हुईलाई काउंटी में खास ड्रिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल। पेडलर्स ने खंबा पकड़कर मोड़ी नाव, रफ्तार के सहारे लिया शानदार ड्रिफ्ट टर्न। दर्शकों ने देखा रोमांचक मोड़ का नजारा। फोशान में डीएजियाओ रेस आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल में मिनी जोंगजी बने आकर्षक का मुख्य केंद्र। चोंगकिंग में छोटे जोंगजी के देखने पर उमड़ी भारी भीड़। हाथ से बनाए जाते हैं ये खास डंपलिंग, रंगीन धागों से सजाए गए जोंगजी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का हो गया ऐलान। शुभमन गिल की कप्तानी में श्रेयस अय्यर होंगे उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी मिल गई जगह, जसप्रीत बुमराह की वापसी। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाएंगे 5 T20 और 3 वनडे, 1 जुलाई से होगी शुरुआत। वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 11 बॉल में बनाया अर्धशतक। इंडिया ए और श्रीलंका ए के ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉलों में बनाए 94 रन। वैभव ने श्रीलंका के कौशल वीरत्न का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
6: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देखिए, जून में बढ़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन यानी पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें।
7: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
8: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेली, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
9: मेरा नाम आरुही संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
10: उधमपुर से आया, समर वेकेशन की स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनी टॉप में आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
11: यहाँ पे बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
7: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
12: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, शूटिंग है हमारे पास, आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
7: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
13: है। कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
5: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
15: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
0: भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
19: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर देखिए संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से दी मात, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का घाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
20: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिरी बार आपने अपने लिए 10 मिनट कब निकाले थे? ऐसे 10 मिनट जिनमें ना फोन था, ना भागदौड़ थी, ना कोई चिंता थी। शायद यही वजह है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में योग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। योग हमें सिर्फ फिट नहीं रखता बल्कि खुद से जुड़ना भी सिखाता है। एक गहरी सांस, एक छोटा सा आसन और मन में एक नई शांति। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच में सामंजस्य का उत्सव भी है। आज इस खास शो में, योगा के शो में हम बात करेंगे और साथ ही सेलिब्रेट करेंगे उसी योग साधना को जिसने भारत की परंपरा को दुनिया की पहचान बना दिया। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए GNT को छोड़कर, क्योंकि आज की ये बातचीत सिर्फ योग के बारे में नहीं बल्कि बेहतर जीवन के बारे में है। मेरे साथ इस खास शो को और खास बनाने के लिए वो साथी हैं जिनको आप हर रोज GNT पर देखते हैं, सुनते हैं। मेरे साथ है नवजोत रंधावा, मेरे साथ है श्वेता झा और मेरे साथ है दीपाली। शुरुआत नवजोत आपकी तरफ से, ऐसे बढ़ते हैं क्रम में, आप सबके लिए योग क्या है और फिटनेस क्या है?
21: मुझे लगता है कि योग इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली आप मेरे से पूछें तो लोग फिजिकली फिटनेस के लिए करते हैं लेकिन मैं अपने मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, रिलैक्स होने के लिए करती हूँ। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ।
20: Nice. श्वेता, आपके लिए योग की परिभाषा?
22: मेरे लिए योग जीवन जीने की सबसे खूबसूरत पद्धति है जो हमारे आत्मिक शांति, मन की शांति और शारीरिक खूबसूरती सभी को बनाए रखती है। तो एक होलिस्टिक, अगर आप कहें कि होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक विकास के लिए योग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है।
3: बिल्कुल दीपाली,
4: मेरे लिए योगा बैलेंस है जो माइंड और बॉडी के बीच बैलेंस बना के रखता है और जो हमारा टायरिंग हेक्टिक शेड्यूल है उसके बीच में हमें थोड़ी रिलैक्सेशन देता है।
3: चलिए, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है और हर कोई योग को अपनी अपनी तरह से देखता है। अच्छा, शुरुआत जब भी हम योगा की करते हैं ना, हम करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, ताकि माइंड और बॉडी का बैलेंस जो है वो एक साथ बरकरार रहे। तो 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम शुरुआत करेंगे, हाथ जोड़ते हुए, ठीक है। डीप ब्रीथ करेंगे, फिर छोड़ते हुए सांस को हम ओम बोलेंगे, ठीक है।

इसके बाद आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों को हथेलियों को रगड़ते हुए जितना तेजी से हो सके, एक ऊर्जा आपको निकलते हुए इसमें से महसूस होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे और उन हाथों को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाना है। अब आप खोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम, जो योग की प्रोसेस है। सबसे पहले प्राणायाम के साथ शुरुआत करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम, उसके बाद करेंगे कपालभाति, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेंगे और दूसरे नाक से श्वास को छोड़ देंगे। राइट हैंड से हम पहले एक को स्टॉप करेंगे।

0: प्रक्रिया है बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए।
1: शुरुआत कीजिए 5-5 मिनट। ये भी पूछना चाहूंगी, अनुलोम विलोम शुरुआत में ही, क्योंकि योग के हम ये करते हैं, इससे आपको नहीं लगता है, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो नासिकाओं का इसमें इस्तेमाल होता है मुख्य तौर पर, उसी में आप एक तरफ सांस ले रहे हैं, एक से आप निकाल रहे हैं दूसरे नॉस्ट्रल से, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा वो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा बेहतर होता है?
0: मैंने अपना कोल्ड कफ जो हमें सीजनल होता है मैं इससे ट्रीट करती हूँ।
1: एग्जैक्टली,
0: आपका नाक नहीं खुलेगा ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आप 5 मिनट लगातार अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा, आपकी नॉस्ट्रल्स खुल जाती हैं।
1: Exactly.
0: इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। कपालभाति पता है आप सबको है ना,
1: बिल्कुल
0: पेट अंदर खींचने की प्रक्रिया है। फायदा इसका ये है कि आपका, एक तो अगर आपको वजन घटाना है तो लड़कियों को फ्लैट स्टमक चाहिए आजकल के लाइफ स्टाइल में, ठीक है, फैशन के लिए वो भी हो जाता है। पेट की अगेन अगर आपको दिक्कत है वो दूर हो जाती है, अगर आपको फैट लूज करना है वो भी इससे हो जाता है। एक नहीं अनेकों फायदे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।

0: अगेन ये आपके जो हमने पहले बात की श्वेता नवजोत दीपाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम आजकल लोगों के ठीक से काम नहीं करते हैं जिस AQI में हम रहते हैं प्रदूषण में. वैसे में अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर लीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका जो श्वास प्रक्रिया है बहुत बेहतर हो जाएगी. अब करते हैं हम भ्रामरी. भ्रामरी आपको आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाता है. डीफोकस्ड है ना अगर आप लाइफ में, तो इससे फोकस आएगा और आपको फोकस एक ही चीज़ पर करना है, वो आप दिमाग में सोचेंगे आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं. इसमें आपके ये तीन ये हाथ ऐसे रहेंगे, तीनों उंगलियां आपके माथे के ऊपर, और जो थंब है थंब से आप कान बंद करेंगे. इसका मतलब ये है कि आप देश और दुनिया और दुनियावी चीजों से दूर हो रहे हैं,
1: मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से
0: आप डिटैच्ड हो गए हैं. आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी श्वास की प्रक्रिया पर, आप अपनी सांसों को सुनेंगे उसी पे फोकस करेंगे. ये तीन यहाँ पे, ये एक नीचे वाली उंगली आपकी आंखों पे, थंब से आप कान बंद करेंगे, ठीक है. आप डीप ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे ना तो हमिंग की तरह एक आवाज आप छोड़ेंगे, ठीक है.
1: मतलब बी साउंड जो होता है,
0: हाँ,
1: वो
0: बी वाला साउंड,
1: बी साउंड
0: आएगा आपका. चलिए ये तीन बार हम करेंगे.

0: अच्छा, ये आपके फेस पे ग्लो लाने का काम भी
1: माइंड रिलैक्स करता है। मुझे लगता है सोने से पहले अगर हम कर लें तो नींद अच्छी आएगी,
0: बहुत अच्छी आएगी। आप सोने से पहले इसको 5 से 10 बार कीजिए, आप बिल्कुल दुनियावी चीजों से डिटैच हो जाएंगे।
1: थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो सोने से पहले इसको कर सकते हैं ताकि नींद अच्छी आए।
0: अच्छा, इसमें ना एक चीज वैसे लोग मिस करते हैं बट मैं ऐड करना चाहूंगी, भस्त्रिका है। भस्त्रिका थोड़ी सी तेज प्रक्रिया है, जो कर पाए वो करे, नहीं तो नॉर्मली आप अनुलोम विलोम करते रहिए। इस प्रक्रिया में मैं एक बार करके दिखाती हूँ। इसमें ना सांस तेज लेते हैं और तेज छोड़ते हैं, ये अगेन आपके पेट को फ्लैट करता है। बहुत सारे आसन मैं आपको बता दूं जो आपके इस बार, क्योंकि हमारा थीम जो हम बात कर रहे हैं इट्स योगा फॉर एंटी एजिंग, ठीक है। बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, हमेशा आपका यौवन, आपकी जवानी बरकरार रहेगी। तो योगा जरूर कीजिए क्योंकि योगा से ही होगा, दिस इज एक मात्र मंत्र। चलिए, ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये प्रक्रिया है इसको करने की, अगर आप कर सकते हैं तो हम 30 सेकंड करते हैं इसको, ठीक है, साथ में।

0: स्लो डाउन, इसमें थोड़ा रुकने के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए. अभी हमारे पास पानी नहीं है. इसको करने के बाद दो घूंट आप पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना है. अब इससे पहले कि मैं अगले आसन पर आऊं, मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं कि खुद को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा एक तो प्रोफेशन ये है, ऊपर से थीम ये है कि योगा फॉर एंटी एजिंग, हम एंकर्स खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं अपनी रोज की दिनचर्या में? हम कौन से ऐसे आसन करते हैं या फिटनेस के हमारे फंडे हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे? आई विल स्टार्ट विद नवजोत.
1: मैं मेरे हिसाब से क्योंकि वक्त अगर ज्यादा ना हो तो सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी एक्सरसाइज है. जितना भी आपसे आपकी आपका शरीर जितना भी अलाउ करता है, जो अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से सबसे बेस्ट है. होल बॉडी एक्सरसाइज है, आपके हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करता है, रिलैक्स भी आप इससे हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार से बेस्ट कुछ नहीं है, कम से कम आप ये कर सकते हैं.
0: श्वेता,
2: देखिए एक समय के बाद, एक एज के बाद आपको अपने शरीर में क्या क्या परेशानियां वो पता होने लगती हैं. जैसे मुझे बैक एक इशू है तो उसके लिए मैं भुजंग आसन करती हूँ, रोज करती हूँ. और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये जो बटरफ्लाई वाला आसन ये मैं जरूर करती हूँ. क्योंकि मैं ना सिर्फ योग, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जिम जाने के बाद, लास्ट जो होता है वर्कआउट के बाद, दैट इज योग. वो आपको मन को, चित्त को शांत करता है, बहुत अच्छा लगता है और फ्लेक्सिबल भी आपको बनाए रखता है.
3: दीपाली, सूर्य नमस्कार ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आपके पूरी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करती हैं और आपको रिलैक्सेशन देती हैं.
0: तो मैं बता दूं, सूर्य नमस्कार के साथ चलिए एक बार शुरुआत कर लेते हैं. स्टैंड हो जाएंगे उसके लिए, खड़े हो जाएंगे. और 12 फॉर्म्स हैं इसकी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे. 12 फॉर्म्स सूर्य नमस्कार को करने का दो तरीके हैं. एक तो हम स्लो प्रोसेस में करते हैं, एक हम तेज करते हैं. तीसरा है कि हम एक्सटेंसिव फॉर्म में जाते हैं जिसमें हम एक पॉज पे रुकते हैं, ठहराव होता है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे श्वेता ने कहा बैक तो उस पे फोकस करता है. तो अभी आप जैसे फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए. चलिए शुरुआत करेंगे नमस्कार आसन में आते हुए. और अगर श्वेता बेंड ज्यादा नहीं हुआ जाता किसी से भी, तो बेंड मत होना, सिर्फ नमस्कार करते हुए ऊपर हाथ करते हुए.
1: योग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आसन को कर सकते हैं.
0: चलिए नमस्कार आसन में आते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए आगे बेंड करेंगे, फ्रंट फुट आगे, ये योद्धा पोज में आते हुए दोनों पैर पीछे, पहाड़ासन. नीचे आते हुए आपका पेल्विक एरिया ऊपर को रहेगा, चिन टच करेगी. भुजंगासन में आ जाइए, इसके बाद फिर से पहाड़ासन में आइए, लेफ्ट फुट आगे, योद्धा पोज, दोनों पैर आगे, एक बार पीछे बेंड होते हुए, और फिर आप आएंगे नमस्कार आसन में. ये आपकी 12 फॉर्म्स कंप्लीट हो गई. एक बार और कोई करना चाहे तो हम कर सकते हैं.
1: नहीं बिल्कुल, हम सेकंड करेंगे.
0: चलिए नमस्कार, बैकवर्ड्स, फ्रंट फ्रंट फुट, सीधा पैर, दोनों पैर पीछे, पहाड़ासन. नीचे झुकते हुए, चिन टच करते हुए, पेल्विक एरिया ऊपर रहेगा. भुजंगासन में आ जाइए, पहाड़ासन, लेफ्ट फुट आगे, दोनों पैर आगे करते हुए, पीछे फॉरवर्ड होते हुए, नमस्कार आसन. ये कुछ मत कीजिए, मैं कह रही हूँ कोई योगासन मत कीजिए. दिन में आप 5 से शुरू कीजिए, 5-10, धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को और इस टेन्यो को आगे बढ़ाइए. बहुत फर्क लगेगा, आपका फेस पे ग्लो आएगा, 10 तरह की बीमारियां दूर होंगी, फैट लूज होगा.
1: एक और चीज बताते चले, अगर मैं गलत नहीं, इसको शायद जोड़ी के हिसाब से करते हैं. आप एक बार राइट करेंगे, राइट फुट से, फिर लेफ्ट फुट से.
0: हाँ, पहले ऐसे ही करते हैं,
1: जोड़ी के हिसाब से आसन होता है, तब वो आपका एक आसन कंप्लीट होता है.
0: बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वही अगेन कि जितना फ्लेक्सिबल आप हैं, जितना शरीर आपका अलाउ करता है, उतना आप कर लीजिए. अब श्वेता ने कहा था भुजंगासन, श्वेता करेगी भुजंगासन और हम फॉलो करेंगे. चलो श्वेता आप कराओ.
2: वो तो बहुत ही सिंपल है. मैं तो बैक के लिए
0: उसमें मैं एक और फॉर्म बताऊंगी फिर आपको. आप भुजंगासन कराओ, फिर उसी में लेटे लेटे एक और करेंगे.
2: बिल्कुल. तो देखिए बैक इश्यू के लिए, जैसा शगुप्ता मैंने आपको बोला, ये रोज मैं कोशिश करती हूँ, इससे काफी रियली फायदा हुआ है. हम सीधे ऐसे अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए इसे पीछे आएंगे, स्क्वाट्स जो प्लैंक हम करते हैं उस वाले, इसमें पूरा पहले लेट जाइए, चेस्ट के पास दोनों हाथों को ले आइए, एंड नाउ अब इतना उठिए आप ऊपर की तरफ कि आपके बैक में स्ट्रेच आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए. अब बहुत ज्यादा भी मत उठिए, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं उठना है, वहां तक उठना है जहां आपके बैक में एक्चुअली
3: प्रॉब्लम
2: है, हाँ फील होगा आपको ये स्ट्रेच. तो ये हम काउंट कर लेते हैं 20 सेकेंड्स तक, एंड देन अगेन नीचे आते हुए दोनों हाथों को पीछे एंड रेस्ट. वंस अगेन दोनों हाथ चेस्ट के पास, सामने चेहरा करेंगे अपना और ऊपर की तरफ उठेंगे धीरे धीरे, कोई जोर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, स्ट्रेच फील करें आप, क्योंकि आप फील करेंगे उसी से वो धीरे धीरे पेन वो दर्द जाता है. होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स एंड अगेन कम बैक, नीचे आइए और फिर दोनों हाथों को रेस्ट पोजिशन. यस
3: ये बहुत बढ़िया आसन है. देखिए भुजंगासन अगेन पांच बार कर लीजिए, दस बार कर लीजिए. अब मैं इसमें ये बता रही थी भुजंगासन के अनदर फॉर्म जो है, जो श्वेता ने एक बता दी है, दूसरे में ये है कि हम इसको अगर आप कर सकते हैं तभी कीजिएगा, पैर पकड़ते हुए, ठीक है, पैर पकड़े हमने और फिर हम ऊपर को उठेंगे. ये भी वही फोकस करेगा जहां पर आपका पेन है. ये L1 L2 L3 L4 पॉइंट्स पे फोकस करता है. और मैंने एक और नाम लिया था झूलासन, इसमें आप
1: वो
3: तो झूल
1: नहीं सकते. ये नहीं नहीं, हम बचपन में बहुत करते थे, प्रैक्टिस छूट गई है इस वजह से अब हम झूल नहीं पा रहे, लेकिन ये आसन कर ले रहे.
2: तो इससे पहले कि लाइफ ना झुलाए आपको, आप प्लीज झूलासन कीजिए.
3: इसमें ये है कि आपकी बैक में कभी किसी तरह का पेन नहीं होगा अगर आप ये रेगुलर करते हैं, भुजंगासन और ये वाली फॉर्म.
4: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
5: You hear it once and remember everything.
6: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
5: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
7: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: अच्छा, जो योगा डेली प्रैक्टिस में करते हैं ना, एक योगा का आसन है जो सबको बहुत पसंद है, मेरा भी फेवरेट है, इसको कहते हैं चाइल्ड पोज। रीजन इसका क्या है, क्योंकि बच्चों की तरह आप झुक जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगेन इट फोकसेस ऑन योर बैक, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। अगर आपने बहुत सारे योगासन कर लिए हैं उसके बाद आप चाइल्ड पोज जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आता है। इसमें क्या करेंगे, हम बैठेंगे वज्रासन में, ये है वज्रासन। अगर बैठ सकता है तो ठीक है कोई भी इंसान, नहीं तो ये वाली पोजिशन में भी आप रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पैर फोल्ड नहीं होते, बैठा नहीं जाता, ये आपका हो गया, ठीक है। ये दो तरह से मैं बता दूं, अगर हो रहा है साइड से बता दूं, ये कर लीजिए, अगर हो रहा है तो ये कर लीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए। चाइल्ड पोज का ये तरीका है, इसमें दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हम आगे जाएंगे दोनों हाथों को फॉरवर्ड करते हुए, और नीचे अपनी फेस को टच करिए जमीन से। दिस इज योर चाइल्ड पोज। धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। डीप सांस लेते हुए ऊपर आइए, ये आपको रिलैक्स करता है। ये आप दो बार कर लीजिए या आप तीन बार कर लीजिए, बट हर योगासन के बाद चाइल्ड पोज जरूर कीजिए। ये वैसे योगा प्रक्रिया में बताते हैं। दीपाली, आप क्या बता रही थी, क्या करना है?
1: मैं आपको ताड़ासन के बारे में बता रही थी, ज्यादा हाँ। कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि मैम को बैक पेन भी हो रहता है, तो आप सीधा खड़े होइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को पकड़िए और उसके बाद स्ट्रेच। इसको जितनी देर आप रख सकते हैं, 30 सेकेंड्स तक रख सकते हैं, इतनी देर तक रखिए, एंड देन रिलैक्स।
0: अच्छा, बचपन में कहते थे कि इससे हाइट बढ़ती है, कुछ नहीं ऐसा हमारी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई वो।
2: मुझे लगता है इससे हमारे पैर, हमारी काफ मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और दूसरा हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो बहुत एक्यूरेट हो जाता है।
0: मैं आपको ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा
1: करते हैं बच्चे, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है।
0: मैं एक और बताऊं, हमारे घर में शैटिका पेन छिड़ती है कुछ लोगों को, है ना, शैटिका की पेन, वो ट्रीट होती है आपकी इससे। तो एक बार फिर से कर लेते हैं,
3: और ये आई थिंक आपकी बैलेंसिंग के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा आसन है।
0: यस,
3: एकाग्र होके आपको किसी एक बिंदु पर देखना है या सोचना है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे।
0: और धीरे धीरे वापस आते हुए। अच्छा, अब जो थीम है ना, थीम पे आते हैं, है ना, वो तो हमारे लिए मेन है, योगा फॉर एंटी
3: एजिंग के लिए है।
0: वी कांट स्किप दैट, है ना, वी आर एंकर्स। अच्छा, उसके लिए बैठ जाते हैं, मैं बताती हूँ उसके लिए क्या करना है। रिलैक्सिंग पोज में जैसे आप बैठना चाहें, इसमें कोई हार्डकोर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा, एक तो आजकल लड़कियों को प्रॉब्लम रहती है, हमारी डबल चिन आ रही है ना, विद एज 30s के बाद लड़कियों को लगता है कि फैट आने लग गया, और आपके फेस मसल्स जो हैं वो लूज होने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें हम EQ, दो अल्फाबेट्स हैं वो फॉलो करेंगे, और इसमें चिन आपकी ऊपर को जाएगी, ठीक है। ऊपर को जाते हुए पहले ई से
1: क्यू,
0: ठीक है। ये आप कर सकते हैं 100 बार, अगर आपको सच में असर देखना है, इसका इफेक्ट अगर दिखना है, तो 100-50 बार कर लीजिए, उसके बाद 100 पे जाइए।
3: शगुफ्ता, आज के अपने सारे जितने भी बुलेटिन होंगे, हर ब्रेक में हम ये करेंगे।
0: ये बहुत इजी है ना, कहीं बैठ के कर लीजिए।
2: मैं सोच रही हूँ, सोचो हम न्यूज रूम में बैठ के EQ कर रहे
0: हैं। ये जो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही, जो जेंट्स हमें देख रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको
1: डेस्क जॉब है वो भी इसको
0: हाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इनफैक्ट EQ यही करना है।
1: EQ
0: आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है ना, आपकी जॉ लाइन। अच्छा, किसी की जॉ लाइन नहीं होती वो भी दिक्कत है लड़कियों की, हमारी जॉ लाइन नहीं दिखती है, साइड जॉ लाइन नहीं आ रही है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और है, गोलगप्पे खाते हैं आप सभी,
3: बिल्कुल,
0: है ना, पानी से मुंह भर लेते हैं, तो मुंह फुलाइए पहले, तो इसको रखिए 20-30 सेकंड ऐसे ही। ठीक है, ये आपकी जो चीक की मसल्स है ना उसको टाइट करता है, फेस टाइटनिंग के ये प्रक्रियाएं हैं। अब मैं एक और आसन कराना चाहती हूँ, बट मैं कराऊंगी नहीं क्योंकि हमने मेकअप लिया हुआ है, ठीक है, वो मेकअप वाइप आउट हो जाएगा हमारा। मैं सिर्फ करके दिखाती हूँ, मैं इन लड़कियों को करके दिखा देती हूँ। ये दो हाथ की हमारी दोनों फिंगर्स लेनी है, नाइट टाइम में आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे रखी और स्किन को खींचा, ठीक है, स्किन को खींचा, ये आपने माथे से भी करना है, ये आपने आईज से भी करना है, ये आपने चिन से भी करना है, ये आपने नेक से भी करना है। नेक पे तो हम कर सकते हैं, नेक मसल्स को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, यहाँ पे स्किन टाइटनिंग नहीं है, ठीक है, ये हाथ से, ये हाथ दो दो तरीके हैं, एक तो ये फिंगर से आपका ये तरीका है नेक मसल्स को, एक होता है कि कोई भी क्रीम आप यूज करते हुए ये ऊपर अपवर्ड करते हुए ये मसाज करेंगे अपने नेक की। दिस इज फॉर फेस योगा। अगेन जो शुरुआत में हमने प्राणायाम भी किया है ना, वो भी आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है।
2: क्योंकि द मोर यू स्वेट आउट, जितना आप पसीना निकालते हैं उतना आपका स्किन भी ग्लो करती है और आप फिट भी रहते हैं, तो पसीना निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि योगा से पसीना नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप मेरा तो ये मानना है कि अगर आप सबसे पहले जो हमने आसन किया था, कुछ प्राणायाम की बात कर लीजिए या फिर सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए, अगर आप सही तरीके से करते हैं विद एक्यूरेट ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिकॉज योगा इज ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो सही मायने में अगर आप ये करेंगे तो वाकई स्वेटिंग खूब होती है,
0: खूब होती है। एक और जो मैंने जिनसे योगा सीखा ना, उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था योगा में, शुरुआत में ना फोकस मत कीजिए कि आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, क्योंकि शुरुआत में ना आप सिर्फ उसी पे फोकस करते रह जाते हैं, ठीक है, लेट इट गो विद द फ्लो, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली और आप नेचुरली ब्रीद इन करने लग जाएंगे और ब्रीद आउट करने लग जाएंगे। जब आप कोई भी एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं तो आप फिर आप ब्रीद आउट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, शुरुआत में फोकस नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो आसन कर रहे हैं वो कीजिए और ब्रीदिंग को धीरे धीरे करना है, बस इतना फोकस करना है
4: गुप्ता। और खास करके बहुत लोगों का ना डेस्क वर्क होता है, हाँ। तो उनके लिए बताइए, एंटी एजिंग का तो आपने बता दिया, कुछ कुछ आपने बता दिया, वो टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, लेकिन और वो लोग जो डेस्क पे काम करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा,
0: उनके लिए बता सकती हूँ मैं, हालांकि यहाँ पे चेयर नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ अगर मैं खड़ी हो सकूँ तो, अगर वो कर सकते हैं तो। एक तो चेयर, चेयर पोज बोलते हैं इसको, चेयर योगा होता है, ये मैं साइड से दिखा देती हूँ करके, ये करना है आपको,
4: ये स्क्वाट्स हुआ,
0: ये स्क्वाट हुआ आपका, अगर इस पोजीशन में आप शुरुआत में 10 सेकंड ही कीजिए, ये तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। नवजोत
2: बिल्कुल ये ठीक है,
0: मैं स्टैंडिंग में आ जाती हूँ, ये हम ना साइडवेज करते हैं कैमरा से, घूम जाओ नवजोत, आप श्वेता की तरफ, ठीक है
4: दीपाली,
0: ठीक है अब आ जाओ स्क्वाट पे, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना, हम बैठ गए कुर्सी पे, आप ट्राई कीजिए कि आपकी कमर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, कुर्सी में थोड़ा सा स्क्वाट हम और करेंगे, जितना कर सकते हो उतना, ठीक है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड्स ये है। और इसमें एक और बताती हूँ, ये चेयर पोज अब हो गया, आपने एक और चीज पूछी, अब वो लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं पैर लटका के बैठते हैं, पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ये चीजें आप बैठ के कीजिए या फिर चेयर पे या फिर थोड़ा खड़ा होके, स्ट्रेचिंग आप जितनी पैरों की कर सकें ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टेड है, वहीं पे आता है प्रेशर और फिर आपके L3, L2, L4 में गैप आता है, उसकी वजह से आपको बैक पेन रहती है, कई लोगों के शोल्डर्स में बड़ी पेन रहती है, आजकल बैक पेन की ये भी शिकायत है ना,
4: और इसको ऐसे भी शगुफ्ता और साथ ही साथ
0: रोटेट भी कर सकते
4: हैं, मोशन में ऐसे रोटेट भी करते हैं,
0: यस,
4: इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
0: दोनों
4: हम रोटेट करते हैं, एक तरफ आपने देखा ये इस तरह से, फिर वापस जाते हुए ऐसे
0: एंटी क्लॉकवाइज
4: करते हैं।
0: और एक और चीज ये लोग कर सकते हैं, हाँ श्वेता बोलो,
4: और मैंने जो अभी सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके घर में भी पेरेंट्स हैं, मेरे घर में भी नी इश्यूज बहुत होते हैं, पेरेंट्स को एक एज के बाद, तो उनके लिए जो एक मुझे बताया था किसी ने, दैट इज दोनों ये जो फीट है हमारी, इसको पीछे की तरफ,
0: हाँ ये कर सकते,
4: पीछे की तरफ आप
0: उठा भी सकते,
4: जैसे आप खींच रहे हो ताकि वो प्रेशर आपके नी पे आए,
0: नी पे आए, तो नी पे, नी वालों के लिए एक और एक्सरसाइज होती है ये, है ना, नी को एक को उठाया रखा, दूसरे को उठाया रखा, ठीक है, ये धीरे धीरे, जिनको ज्यादा पेन है वो स्लो करेंगे, जिनका थोड़ा ठीक है वो थोड़ा तेज कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज भी उनके लिए है। अब बैठे हुए जो हमारे साथी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं चेयर पे ही बैठ के, वो साथ साथ में ये वाली अब आर्म्स के लिए करते हैं, यहाँ पर बॉडी के लिए है ना, अपर बॉडी आर्म्स को हम रोटेट करेंगे, इससे आपकी अपर बॉडी जो है वो टोन होती है। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से कीजिए। पहले एक प्रोसेस आप 5 बार कीजिए, 4, 5। अच्छा, इसमें आपकी आगे जब हाथ लेके आते हैं तो ट्राई कीजिए कि दोनों जुड़े, ठीक है, जोड़ते हुए धीरे धीरे, और जितना पीछे आप स्ट्रेच लेके आएंगे आगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना पीछे ले जाइए फिर क्लॉकवाइज करते हुए आगे को, इससे आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होगा अपने शोल्डर्स में। अच्छा, इसमें एक और होता है, हाथ आगे कीजिए दोनों हाथ, ठीक है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जितनी देर आप कर सकते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों, फिर एक हाथ को ये वाला हाथ लेफ्ट से खींचते हुए, फिर दूसरे को राइट से खींचते हुए, फिर ऐसे ही नीचे की तरफ दोनों हाथ, एक को दो को। एक और शोल्डर, शोल्डर्स में आजकल पेन रहता है, शोल्डर्स को घुमाते नहीं है, तो ये प्रक्रिया है, ये
3: ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है,
0: ठीक है, जितना स्ट्रेच कर सके।
3: पीछे से भी दिखाइए लोगों को, देखिए ये एल्बो जो है ये ऐसे पकड़ते हैं, अगर आप टर्न करिए ये ऐसे पकड़ के इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए, तो ये ऐसे स्ट्रेच आएगा, आप इसको खींचिए अपनी तरफ,
0: ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है,
3: थोड़ी देर, एंड देन दूसरा हाथ इस तरह से,
0: स्ट्रेच फील हुआ ना।
1: आई थिंक ये जिन लोगों को नेक पेन या सर्वाइकल है उनके
0: लिए तो बहुत अच्छा है,
1: उनको एक डेली अपना रूटीन बना लेना चाहिए।
0: जो बैठे रहते हैं ना नवजोत, जो जिनका सिटिंग जॉब है उनके लिए एक्सरसाइजेस बैठे बैठे आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना मिल रहा है। अब आप लोग बताइए और किस पे योगा आप करना चाहते हैं।
3: देखिए जो लड़कियां देख रही हैं खास करके, वो तो सिर्फ अपनी ब्यूटी रिलेटेड पूछना चाहेंगी, पतली कैसे हो, वो 2-4 योगा जो वो रोज करे और बेली फैट कम हो जाए। अच्छा शगुफ्ता, आपसे आप बहुत ही रेगुलर है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ ऑनेस्टली, आप बहुत रेगुलर, ये बताइए कि आप बाकी शरीर को छोड़ दीजिए सिर्फ बेली फैट कम होता है किसी का?
0: हाँ होता है, 80% आपकी डाइट कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एंड रेस्ट 20% इफ यू फोकस ऑन योर एक्सरसाइज और योगा, देन दे कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली।
3: चलिए तो फिर बेली फैट कैसे कम करना है वो बताइए।
0: बेली फैट के लिए बहुत सारी, अच्छा याद है पुराने टाइम पे हमारे घर की महिलाएं चक्की पीसती होती थी, आटा पीसती थी, कहते थे वो फिट क्यों रहती हैं, केमिकल नहीं लगाती थी वो फेस पे,
2: आजकल ये कमर थी वो एक्चुअली
0: पतली थी ना, हमारी माओ
2: की शेप यहाँ से भी आ जाएगी, आपका यहाँ से पेट अंदर जाएगा और बैक भी फ्लेक्सीबल होती है,
0: एब्स भी हो सकता है धीरे धीरे करके आपके आ जाए, ठीक है। हाथों को जोड़ेंगे, ये मैं बताती हूँ एक बार करके, ये दोनों हाथ जोड़े हमने, ठीक है, दोनों हथेलियों को ऐसे फिंगर्स को ये पकड़ते हुए जितना आगे हो सके और जितना पीछे हो सके, ठीक है, ये हम पीसेंगे चक्की और निकलेगा आटा,
2: निकलेगा
0: शरीर का जितना आपका फैट है वो आपका लूज होगा। अच्छा, इसमें अगेन ये फोकस करता है आपके बैक पेन पे, ठीक है, आपकी हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें, और आपकी लोअर बैक पे आपको अगर स्ट्रेच फील हो रहा है, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, जितना आप पीछे जा सकते हैं, और फिर ऊपर आइए, पीछे जाइए, फिर आगे आइए,
1: इसको एक बार रिवर्स कर लेते हैं,
0: एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरीके से, इधर से घुमाइए फिर हथेलियों को,
3: उतना पीछे जाते हैं,
0: हाँ
3: कितना पीछे तक जा सकते,
0: जितना हम जितना आप जा सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं,
3: अच्छा
0: ये देखिए जितना आप पीछे हो सके।
3: भाई गांव चलना पड़ेगा
0: वही होगा कुछ जाके,
3: चक्की यहाँ तो नहीं मिलने वाली।
0: चलिए, कितनी अच्छी लग रही है, चार लड़कियां चक्की पीस रही है। yes. एंकर्स घर के काम भी करती हैं, ऑफिस के काम भी करती हैं, ये भी कर लेती हैं। अच्छा, एक हम करेंगे खुश रहने का आसन, ठीक है, ये मेरा फेवरेट आसन है कि खुश कैसे रहा जा सकता है लाइफ में, स्ट्रेस तो जाहिर सी बात है बहुत है आजकल की जिंदगी में, बट let's make and let's try to be happy and let's make everybody happy if you can.
3: Exactly.
0: Just try it. अच्छा इसको बोलते हैं हास्यासन. इसमें अपने सारे स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और जितना जोर से हंस सकते हैं उतना जोर से हंसना है. ठीक है, नेचुरली हंसी आपकी छूट जाएगी. शुरुआत करते हैं. चलो जिसकी जैसी हंसी है. इसमें डोंट जज अस. ठीक है, हम सिर्फ योगासन कर रहे हैं. पार्क में आपने सुबह सुबह देखे होंगे अंकल आंटी है ना हंसते हुए. खुशी का मंत्र है ये. चलिए, कोई लड़की नहीं हंस रही है, मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी.
4: एक जोक
0: के बिना हंसना पड़ेगा इसमें. ठीक है, जितना जोर से आप अंदर से अपने फेफड़ों को फाड़ते हुए आप हंसिए. ठीक है, नेचुरली हंसी आती है इसमें. आप इस आसन को कंटिन्यू कीजिए.
2: आप खुद कह सकते हैं आराम से.
0: शुरुआत में आप थोड़े से नर्वस होते हैं कि क्या कैसे हंस रहे हैं.
2: सेकंड में या थर्ड में फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती.
0: अच्छा, किसी को और स्पेसिफिक पेन के लिए कुछ जानना है या कुछ आसन आप करना चाहें?
1: बैक पेन आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ गया है. लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं?
0: वही भुजंगासन.
3: भुजंगासन
0: की फॉर्म्स आपको बताई है. एक आसन जो हमने किया नहीं है वो भी हम कर सकते हैं. एक और आसन मैं बताती हूँ अभी आपको. फेस योगा हो गया. एक होता है वॉरियर आई, इसको बोलते हैं वॉरियर आई, जिसमें आपका शरीर की जो पोजिशन है वो एक योद्धा की तरह दिखाई देती है. मैं करके बताती हूँ, आप मुझे फॉलो करना. इसमें फ्रंट फुट आगे जाएगा, राइट फुट आपका. ठीक है, बहुत ही इजी है. और जितना आप स्ट्रेच कर सकें, पैर जितना पीछे लेके जा सकते हैं, नी आपका इसमें बेंड होगा. ठीक है, ये, और इसमें हाथ आपके ऊपर अच्छा. जाएंगे. ठीक है, एक योद्धा की तरह, जैसे योद्धा ने तलवार उठाई होती है. ठीक है, ये है. आप जितना
4: तो इसको अपने आप को बेंड कर सके. नहीं कहते,
0: नहीं धनुरासन नहीं है ये, धनुरासन नहीं है. ठीक है, इसको वॉरियर आई या फिर योद्धासन भी बोलते हैं हम. जितना आप पीछे जा सकते हैं और जितना आप आगे जा सके.
2: इसको जब हम जिम में करते हैं तो हम इसको लंजेस बोलते हैं.
0: हाँ,
2: लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हम रुकते नहीं है. इसमें थोड़ा सा स्टे देना है, रुक के करना है.
0: मतलब आपके लिए जितना संभव है, जितनी देर स्टे देना उतनी देर दे दीजिए आप. चलिए एक बार फिर से करेंगे. इसमें आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितना हो सके. दूसरे पैर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट कई बार ना आपका बैलेंस नहीं बन पाता, तो मैं यही कहूंगी कि अभी अवॉइड कर दो राइट फुट से, क्योंकि मेजरली हम अपना पूरा बॉडी का वेट उस पर डालते हैं, तो इसलिए वो बढ़िया रहता है. चलिए, ये तो मेन आसन हो गए. और
2: डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है.
0: डाइट में
2: हम
0: तो
2: ये भी बताते चले कि जब भी आप योगासन कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग कर रहे हैं चाहे इवनिंग कर रहे हैं, उससे कितने घंटे पहले तक आपकी मील हो जानी चाहिए और कौन सी मील होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप कोई भी योगा करने जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आपका कम से कम 1.5-2 घंटा पहले तक खाना हो जाए, स्टमक पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा हो, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करने चाहिए. नहीं तो आप पहली बात ना तो ठीक से एक्सरसाइज कर पाएंगे और ना ही वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं लगेगी भी नहीं, और आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा बेसिकली.
0: बिल्कुल. एक और चीज है, आजकल ना लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कि पेट क्लियर नहीं होता. मैं करके बता देती हूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप भी कर सकते हैं. सुबह आपको क्या करना है, योगासन में जो जहां से मैंने सीखा है वो गुरु ये बताते हैं कि सुबह उठ के पहले तो आप गर्म पानी पीजिए, और इस पोजिशन में आपको पीना है जो पोजिशन मैं आपको बताने जा रही हूँ. आपका पेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप अपना योगासन स्टार्ट कर सकते हैं. इफ यू आर डूइंग इट अर्ली मॉर्निंग, ये प्रोसेस है. आप पंजों के ऐसे, ये अगर आप कर सकते हैं, इस पोजिशन में आते हुए आपको पानी पीना है. ठीक है, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है, कितनी ही पुरानी है, कितने सालों पुरानी है, वो दूर हो जाएगी, डेफिनेटली दूर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे घर में. ये पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत इजी है, नहीं बैठ सकते तो अगर किसी से नहीं हो रहा तो आप ये भी कर सकते हैं. अगर आपका बैलेंस बनता है तो. इट्स नॉट इजी, बट बहुत अच्छा किया हुआ है हम सब ने. इट्स
2: It is not that tough also. इतना मुश्किल भी नहीं.
0: नहीं, कई लोगों से ना बैलेंस नहीं
4: जैसे, या फिर नी इशू है अगर तो आप
0: नहीं फिर आपको रेकमेंड करते ही नहीं है. अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज है तो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया जाता. तो ये है आपका कॉन्स्टिपेशन का आसन. एक और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है. आई थिंक ये नीज को हम स्ट्रेच कर लेते हैं एक बार, जितने आसन हम कर चुके हैं राइट।
1: अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो भी आप आसन कर रहे हैं और आपको जहां पे भी इम्पैक्ट चाहिए उसका, अगर आप वहां पे फोकस करेंगे, अपने ब्रेन में सोचेंगे उस जगह के बारे में, तो बहुत इम्पैक्ट।
2: ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल।
0: एक और चीज है इसमें कि अगर आप कोई आसन कर रहे हैं ना, अगर आपको फील नहीं हो रहा कि वहां पे असर नहीं आ रहा, तो मतलब
4: आप गलत कर रहे
2: हैं, कुछ गलत कर रहे हैं,
0: कुछ गलत। वहां पे थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाना चाहिए।
2: तो चलिए, हमारी कोशिश यही है कि इस योग दिवस पर आप सबको योग के साथ जोड़ा जाए, इस योग उत्सव को मनाया जाए।
4: बिल्कुल, और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारी कामना है।
0: दीपाली,
1: तो योग दिवस के दिन हम ये थे हमारे योगा के आसन। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और उम्मीद है कि ये सिर्फ एक दिन के आसन नहीं थे, आप इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे।
2: हाँ, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। हाँ, ये हम आपको बताते चले साथ।
0: चलिए, मेरा लास्ट का एक ही फंडा है कि योगा से ही होगा, वरना नहीं होगा। डेली प्रैक्टिस में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ट्राई कीजिए, जरूर होगा। आई होप कि ये हमारी खास पेशकश आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts. That's Q-E-L-L-O for free on Amazon Prime Video today.
3: जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: बात करेंगे चारधाम यात्रा की। देखिए इस बार नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है। उत्तराखंड की पावन वादियों में बसी सनातन संस्कृति की आत्मा यानी चारधाम यात्रा में इस बार भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लेकिन इस भारी भीड़ के बीच देवभूमि को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक महाअभियान भी चल रहा है। देखिए

0: उत्तराखंड की वादियों के बीच बसे चार धाम जिन्हें मोक्ष का द्वार माना गया है। हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि इन धामों में दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। यही महिमा और यही आकर्षण हर साल लाखों भक्तों को इस दुर्गम राह पर खींच लाता है। लेकिन इस साल तो जैसे भक्तों की आस्था नया इतिहास रचने जा रही है। भगवान बद्री विशाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो 19 जुलाई तक 12 लाख से ज्यादा भक्त भगवान बद्री के इस भव्य और दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इससे पहले इतिहास में कभी भी जून में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ नहीं पहुंचे थे।
1: बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। जहां 19 जून तक की यात्रा शाम 5 बजे तक यात्रा पूरी हो चुकी है, वहीं इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इस बार 19 जून तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पहाड़ों में इस बार मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। अभी भी पहाड़ों में ठंडक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित नीति माड़ा जो बॉर्डर रोड है वहां तक जा रहे हैं। 2 महीने का समय पूरा होने को है, ऐसे में 12 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। तो 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है, जो 19 किलोमीटर की एकदम पैदल चढ़ाई है, वहां पे यात्रा कर चुके हैं। लगातार श्रद्धालुओं की आस्था का जो केंद्र है वो बना हुआ है।
0: सिर्फ बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि बाबा केदार की नगरी में भी भक्तों की तादाद हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। हर हर महादेव और जय केदार के उद्घोष से पूरी केदार घाटी गूंज उठी है। जहाँ एक तरफ आस्था का महासैलाब है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पवित्र धाम की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम और वहां तक पहुंचने के यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाएं।
2: स्पष्ट निर्देश है कि केदारनाथ धाम ट्रैक रूट और पूरे जनपद की सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इसी के क्रम में एक हीलिंग हिमालयस एनजीओ है, उनके द्वारा यह इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया और इसमें जिला प्रशासन, नगर पंचायत केदारनाथ सभी लोग इसमें जुड़ करके इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। इसमें 1500 से भी ज्यादा जो हमारे तीर्थयात्री हैं उन्होंने वॉलंटियर के रूप में योगदान दिया है। लगभग 2.5 टन कूड़ा इसमें अभी तक नीचे लाया जा चुका है।
0: चार धाम में उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि महादेव और भगवान बद्री विशाल के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास है। जाहिर है कि बाबा के प्रति भक्तों की ये दीवानगी और ये श्रद्धा रुकने वाली नहीं। आने वाले दिनों में भक्ति का ये रंग और भी गहरा होने वाला है, यानी इस साल भक्तों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड गढ़ने वाला है। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
7: Today.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के नए धुरंधरों की। देखिए, इंडियन नेवी को आज 3 स्वदेशी युद्धपोत मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से भारत के इन नए धुरंधरों को नौसेना को समर्पित कर दिया है। INS अग्रह, INS दूनागिरी और INS संशोधक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया। और इस मौके पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, अब सिर्फ रक्षा खरीदार के तौर पर नहीं रहना चाहते, बल्कि भारत की पहचान जो है डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रही है।

0: भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के सीने पर शौर्य की एक नई और अमर इबारत लिख दी है। समंदर में भारत की ये वो त्रिशक्ति है जिसकी गूंज से दुश्मन देश कांप उठेंगे। लहरों को चीर कर रास्ता बनाना और समंदर की छाती पर तिरंगा लहराना, ये शौर्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना के जाबाजों के हिस्से आता है। और भारत की इसी ताकत को तीन गुना करने के लिए समंदर में उतरे हैं स्वदेशी तकनीक से बने तीन नए धुरंधर, जो पानी के ऊपर से लेकर पानी के पाताल तक दुश्मन की हर साजिश को भस्म करने का दम रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन तीन जहाजों को देश को समर्पित किया तो ये सिर्फ तीन जहाजों की कमीशनिंग नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के नक्शे पर भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। ये तीनों प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब एक एक कर आपको इन तीनों धुरंधरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार होने वाला पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो दुश्मन के नजरों से बचकर हमला करने में माहिर है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। दुश्मन का रडार इसे चाह कर भी ढूंढ नहीं सकता, लेकिन ये रडार के नीचे से निकल कर दुश्मन का खात्मा कर सकता है। ये हवा से लेकर पानी तक मौत बांटने में माहिर है।
1: दूनागिरी इज द फिफ्थ शिप इन द सीक्वेंस। सो व्हाई डू वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट? वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट बिकॉज इट हैज गॉट रिड्यूस्ड RCS, रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी हैव फीचर्स दैट मेक्स इट वेरी वेरी साइलेंट। So, in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state-of-the-art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions of the Navy.
0: हिंद महासागर और तटीय इलाकों में पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए INS अग्रय को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। ये अर्नाला क्लास का चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कम गहरे पानी में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए साक्षात यमराज से कम नहीं है। इसे हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और एडवांस्ड सोलर सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे ये तटों पर तैनात दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है।
2: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडरवाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडरवाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
0: भारत की स्त्री शक्ति में INS संशोधक भी शामिल है, जिसका मकसद युद्ध लड़ना नहीं बल्कि समुद्र का सर्वे करना है। इसे तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन और डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर और वजन तकरीबन 3,300 टन है। ये विशाल पोत ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और समुद्र तल की सटीक मैपिंग करने वाले सेंसरों से लैस है। ये अपने रडार से ऐसे नक्शे बनाता है जिससे दूसरे युद्धपोत सुरक्षित रास्ता तय कर सकें। ये HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट भी कर सकता है।
1: This is basically a survey ship. So, primary role is to conduct a hydrographic survey and collect maritime data. So, as a secondary role, this ship can be converted into a hospital ship. So, various onboard spaces that we will convert it into wards and the operation theater. So, we have modern telemedicine facility which help in
3: real time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with a lab facility for routine blood and urine investigation, and we are also having the ultrasound machine, so we can treat the patient. We will stabilize him here during any emergency.
0: लेकिन INS संशोधक की एक और खासियत

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, देखिए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया। योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
2: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योग आसन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। दो 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र

0: के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ईशा फाउंडेशन में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। सदगुरु जग्गी वासुदेव के मार्गदर्शन में ईशा फाउंडेशन ने देश के कोने कोने में मुफ्त योग सत्रों का आयोजन किया। तस्वीरें देखिए, कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर से लेकर बेंगलुरु तक CRPF, BSF और NCC कैडेट्स के साथ हजारों लोगों ने इस योग क्रांति में हिस्सा लिया। 112 फीट ऊंचे आदियोगी की छत्र छाया में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 200 जवानों और सैकड़ों युवाओं ने एक साथ मिलकर योग और प्राणायाम किया। साथ ही साथ देखिए, बेंगलुरु में NCC कैडेट्स और आम लोगों ने एक साथ योग शिविर में हिस्सा लिया। तस्वीरें देखिए। नोएडा की MET यूनिवर्सिटी परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया और इस आयोजन में परिसर में मौजूद लोगों ने अलग अलग तरीके से योग किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने सामूहिक योग का अभ्यास किया। इस मौके पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को योग का महत्व भी समझाया गया। तस्वीरें देखिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई में हुई हाई प्रोफाइल शादी की बात करेंगे जिसमें शाहरुख खान बने मेहमान और जमकर उन्होंने धमाल मचाया। रिपोर्ट देखिए।
0: सुपरहिट गानों पर थिरकते दिखे बॉलीवुड के किंग खान। नए हेयर स्टाइल और ब्लैक ड्रेस में शाहरुख ने जमकर मचाया धमाल। वीडियो में शाहरुख अपनी शानदार डांस मूव्स की नुमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये तस्वीरें NCP शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की बेटी की संगीत सेरेमनी की है। इसके एक वीडियो में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी शाहरुख को गले लगाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में रेवती के संगीत और विवाह समारोह में शाहरुख खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और रंग जमा दिया। इस दौरान शाहरुख और सुप्रिया सुले की खास बॉन्डिंग भी देखने को मिली। बताया जाता है कि सुप्रिया सुले शाहरुख खान की बड़ी फैन है, लिहाजा बेटी की शादी में शाहरुख पहुंचे तो सुप्रिया ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया और फिर शाहरुख ने भी शादी से जुड़े समारोह में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको लाजवाब कर दिया। मुंबई में रेवती सुले की हाई प्रोफाइल शादी की रस्में शनिवार 20 जून को संपन्न हुई। सियासत से लेकर बिजनेस और एंटरटेनमेंट सहित हर सेक्टर की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता शादी में शरीक होने पहुंचे। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे भी इस शादी समारोह में शरीक हुए। तो पंजाब के CM भगवंत मान भी शादी में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर एक तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता सुप्रिया सुले के मेहमान बने। चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या छगन भुजबल और रामदास आठवले, सभी इस शादी समारोह में सियासत की अदावत से दूर सभी के साथ खुले मिले नजर आए। वहीं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर और रणबीर कपूर भी समारोह में नव दंपति को शुभकामना देने पहुंचे। संगीत समारोह से लेकर शादी तक व्यापार जगत की भी जानी मानी हस्तियों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बसावट शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: अनुशासित कदम ताल की गूंज और देशभक्ति के तरानों के बीच जमुई के पुलिस लाइन मैदान में नई इबारत लिखी गई। बिहार के अलग अलग जिलों से आई जांबाज बेटियों ने 11 महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और अपने माता पिता का सपना साकार कर दिखाया।
0: आंसू, सलामी, सिसकियां और गर्व की वो गूंज जिसने पूरे बिहार का सीना चौड़ा कर दिया। तस्वीरें जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन मैदान की हैं, जहां भव्य दीक्षांत समारोह परेड में एक साथ 581 बेटियों ने समारोह में शामिल होकर इतिहास रच दिया। इस खाकी वर्दी के पीछे संघर्ष की वो कहानियां हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। मिलिए बक्सर जिले की नीलू कुमारी से। एक साधारण किसान की इस बेटी का सपना खाकी पहनना था और कड़ी मेहनत के दम पर नीलू ने जब परेड के बाद मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गया की सिंधु कुमारी के लिए ये पल दोहरी भावनाओं का था। बड़ी बहन के दौड़ में असफल होने का मलाल तो था, लेकिन खुद सिपाही बनने की खुशी भी। सिंधु जब अपनी माँ मुनकी देवी से गले मिलकर फूट फूट कर रोई और पिता के सिर पर पुलिस की टोपी सजाई तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें छलक आईं। वाकई माता पिता के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है, जब उनकी कोख से जन्मी बेटी पूरे राज्य की रक्षक बन जाए। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे।
3: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का लगातार रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन यानी पटनी टॉप भी सैलानियों से पूरी तरीके से गुलजार है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। रिपोर्ट देखिए।
4: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पटनी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि छुट्टियां मजे में गुजार सके।
5: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पटनी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
6: मेरा नाम आरुही संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
7: उधमपुर से आया, समर वेकेशन के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनी टॉप में आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया।
8: यहाँ पर बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पर, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
4: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
9: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो शूटिंग है, हमारे पास आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
4: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है, लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है, बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
3: बात करेंगे बॉस बेबी वैभव सूर्यवंशी की। देखिए इनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अब जुड़ चुका है। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत भी दर्ज की है। उन्होंने अपने नाम ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया। देखिए वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का ये सबसे तेज अर्धशतक है। हालांकि वैभव शतक बनाने से चूक गए, 29 गेंदों में उन्होंने 94 रन बनाए और उनको वापस लौटना पड़ा। इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके शुमार हैं। वैभव ने अपनी तूफानी पारी में 324.14 की स्ट्राइक रेट से ये शानदार रन बनाए। खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. the Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
12: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग मेटल्स के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में, और ये जानेंगे कि अलग अलग धातुओं के प्रयोग से किसको किस तरह का लाभ होता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस धातु की बात करेंगे उसे कहते हैं सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड। दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान एनर्जी वाली धातु है सोना। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से, और कुछ मात्रा में सूर्य से भी संबंध होता है। जब आप सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध, आपके स्वभाव पर और आपके प्रशासन करने की क्षमता पर ये असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए सोना धारण करना बहुत शुभ होता है। सामान्यतः कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए सोना बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता है। अगली धातु है तांबा। तांबे का जो गुण है वो जल और अग्नि से मिला जुला है। आम तौर पर औषधीय धातु है, दवाई की तरह काम करती है, और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन पर और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबा बहुत ज्यादा अनुकूल होता है, खास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को तांबा ज्यादा सूट करता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा धातु अनुकूल नहीं होती। मिथुन, कन्या और तुला वालों को तांबा पहनने से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आगे कुछ और धातुओं की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं।
1: रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बेवजह का मेंटल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, मानसिक अवसाद का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। आने वाला समय बहुत अच्छा है, इसलिए बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जिस धातु के बारे में बात करने जा रहे हैं वो धातु है लोहा, आयरन। क्या खूबियां हैं इसकी? सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ये धातु शनि देव की धातु है, शनि से लोहे का सीधा संबंध है। जब आप अपने जीवन में लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये रक्त प्रवाह पर, हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है। लोहा पहनने से या प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बाल, आपकी स्किन पर असर तुरंत पड़ जाता है। लोहा जो है ये मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा सबसे ज्यादा निगेटिव है। सिंह राशि वालों को लोहे का प्रयोग जीवन में कम करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है ये कंपाउंड धातु है, दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है जिसका नाम है स्टील। इसके जो गुण हैं ये लोहे से काफी मिलते जुलते हैं। इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव लोहे से काफी मिलता जुलता है, लेकिन जो स्टील है ये धातु राहु और केतु की धातु है। जब आप स्टील का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी जीवन में दुर्घटनाओं को रोकता है, कम्युनिकेशन को ठीक करता है, जीवन में पावर को, शक्ति को बढ़ा देता है। जिन जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की, कान नाक गले की समस्या है या बार बार उतार चढ़ाव होता है जीवन में, ऐसे लोगों को स्टील जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि स्टील धारण करने से आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। कुछ और धातुओं पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम का दबाव कम होगा, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें, परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी कमिटमेंट मत करिएगा, कोई वादा करने से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी जो धातु है उसका महत्व क्या है और उसका प्रयोग क्या है? देखिए, चांदी जो धातु है ये अत्यंत शीतल मानी जाती है और औषधीय प्रभाव के साथ होती है। औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। ये धातु शरीर में कफ को और जल तत्व को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। जब आप चांदी पहनते हैं आपका मन बेहतर होना, आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों के लिए चांदी बहुत सूटेबल होती है, इनको बहुत फायदा पहुंचाती है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए ये धातु आम तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती है। जिन लोगों को मन की परेशानियां ज्यादा रहती हैं, जो लोग मन में चिंताएं ज्यादा करते हैं, उन्हें चांदी की चेन या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए, इससे उन्हें लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं पीतल की, ब्रास की। पीतल जो है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है और इसमें कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। इस धातु का संबंध होता है सामान्यतः बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इस धातु का असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि के लिए पीतल पहनना बहुत अच्छा होता है। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते वो सोने के स्थान पर पीतल का प्रयोग करते हैं और लगभग पीतल भी वैसे ही रिजल्ट जीवन में देता है जैसे रिजल्ट सोने से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
2: धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है,
1: लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिले, बहुत सारा सम्मान आपको मिलता रहे, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और खाने पीने की वस्तुओं का नियमित रूप से दान करते जाइए, आपको लाभ होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
3: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, देखिए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया। योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
9: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
8: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योगासन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। ये 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बसावत शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, पुणे में सीजन की पहली अच्छी बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, एफएच हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया, 4 साल बाद जीता खिताब। देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम, दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा।
8: स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है, जब जब योग की बात होती है तो स्वामी जी का जिक्र होता है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी आपसे ही योग बना है।
9: योग युगो युगो से भारत में है, योग हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है और योग पूरी दुनिया की जरूरत है। अब देख रहे हैं दाई तरफ बाई तरफ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारा प्यारा योग कर रहे हैं, पीछे से मुड़ करके यहाँ आ गए कि जो है आकंठ जो है योग में पूरे खो गए। और यहाँ ये पीछे तो पावर योगा चल रहा, देखो ऐसे ये योग पूरे देश में जिस दिन होगा उस दिन ये पूरा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा और पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बीमारी ना हो, जीवन को भी तो अच्छा बनाना। मैं कहता हूँ ना, एक बहुत बड़ा तत्व है मेरी बहन पूजा जी, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से अपने भीतर का वो देवत्व, योग से भीतर की वो दिव्यता, अब इतना कठिन योग ना हो किसी से तो घबरा नहीं, नहीं रे हमसे तो ये इतना,
8: मेरे को तो बहुत समय लगेगा ये करने।
9: पूजा सूत्री कहे मुझे स्वामी जी ना कह दे कि ये करो। तो ये योग इतना कठिन भी हो तो इतना तो होगा आपसे कि आप जो है भस्त्रिका कर सके, कपाल भाति कर सके, आप भी और हम भी कर सकेंगे। ये बिल्कुल, ये बिल्कुल सहज, मंडू का आसन सब कर सकते, ऐसे आगे झुक गए मंडू का आसन हो गया। तुम कह रहा था स्वस्थ जीवन के लिए इस बार का थीम रखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर प्रिवेंशन, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। अब देखो, एक तो ये यहाँ पर हमारे साथ योगा फॉर यूथ, योगा फॉर जेंजीज है। और देखो क्या ये तो नजारा ही देखिए, और यहाँ कृष्णा नदी का पावन। चंद्रबाबू नायडू जी जो एक देश के विजनरी मुख्यमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ऐसा देश के सभी मुख्यमंत्री हो जाए तो जो मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विकसित बनाना 2037 तक ही पूरा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ इस बार आंध्र प्रदेश में इसलिए नहीं, सच में विजन होना चाहिए, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा सभी मंडू का आसन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए योग भी करें और जरा सोचे कि योग करते करते क्या कर्म योग करना है, क्या अपना कर्तव्य करना है। तो योग में योग भी है, योग में कर्मयोग भी, गीता के 18 अध्याय अष्टादश योग है पूजा जी।
8: बिल्कुल स्वामी जी, आप क्योंकि बोल रहे हैं कि सबको ही योग करना चाहिए,
9: सबको योग करना, जाति वर्ग समुदाय का कोई इसमें भेद नहीं है। और वैसे भारत के मुसलमानों के बारे में तो कहूंगा, भारत के मुसलमानों का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, अर्थात हमारे पूर्वज एक है, सब हमारे पूर्वज योगी थे। और योग तो बात यहाँ कोई इस्लाम की, कोई ईसाइयत की, कोई आस्तिकता नास्तिकता की है ही नहीं, बात मानवता की और बात ह्यूमन वैल्यूज की, बात हेल्थ की है। अब सबको मोटापा है ना, अब देखो मोटे हैं, यदि ये करें, मैं तो कहता हूँ ये दो ही अभ्यास करें, ये देखो ये बाई तरफ तो क्या गजब आसन कर रहे हैं बच्चे, टिट्टी भासन, इधर भूलो बना आसन हो रहा है और इधर पीछे पावर योग चल रहा है।
8: स्वामी जी मैं कह रही थी कुछ योग दीदी के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि दीदी जी काफी परेशान है बंगाल में,
9: ये उलट पुलट योग करना चाहिए। देखो ये अब आप कहेंगे दीदी को क्या योग करना चाहिए, अब दीदी से हम कहेंगे हनुमान आसन, फिर ये इधर कठिन कठिन आसन, ये तो नहीं हो पाएगा। दीदी को प्राणायाम करना चाहिए,
8: धैर्य बनाए रखे,
9: धैर्य बनाए रखे, अनुलोम विलोम, जो पंछी उड़ गए अब नए एमपी बनाने पड़ेंगे, नए एमएलए बनाने पड़ेंगे, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी पूरी खंडबंड हो गई। तो योग में राजयोग भी सन्निहित है, योग में अध्यात्म योग है, योग में राजयोग है। मैं तो कहता हूँ योग मूलक शिक्षा, मेरी बहन पूजा जी, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक शिक्षा तंत्र, योग मूलक चिकित्सा तंत्र, योग मूलक शासन तंत्र, योग मूलक जिस दिन कृषि तंत्र, योग मूलक समाज तंत्र जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन सारा षड्यंत्र ही दूर हो जाएगा। अब ये इतना कठिन योग तो था, मुश्किल हो जाएगा,
8: ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा,
9: पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है।
8: स्वामी जी कितना समय लगा इन बच्चों को,
9: ये तो एक साल में ट्रेंड कर देते हैं, वैसे आपको भी एक साल में योगी पूरा बना देगा। लेकिन एक साल में नहीं, एक महीने में हम तो ट्रेंड कर देते हैं, आप तो वैसे भी जो है स्वभाव से ही योगी है। तो देखो जो बात मैं कह रहा था ना, योग जाति पंथ से परे, योग क्या है, अथ योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों मन चित्त चेतना आत्मा का अनुशासन, डिसिप्लिन इन बॉडी इन माइंड इन थॉट्स इन एक्शन, डिसिप्लिन इन फूड, डिसिप्लिन लाइफ ही योग है, अथ योगानुशासन। डिसिप्लिन होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, तो वैयक्तिक जीवन में परिवार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक जीवन में परिवार में सब जगह योग हो। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र और योग में विश्व। अब योग धर्म, योग धर्म बनेगा ऐसा हमारा विचार है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि आज लोग प्रेरणा लेंगे और जैसे आपने कहा आज तक शुरू नहीं किया तो आज शुरू कर दे और

0: सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बुरी आदतें, सब रोग, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रताओं से मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होंगे। योग से जीवन में शुचिता जरूर आएगी, शुचिता पूर्ण जीवन योग से होगा, ये एकदम पक्की बात है।
1: स्वामी जी, जैसे हम ऑफिस में होते हैं ना पूरे समय, तो बहुत समय नहीं मिल पाता। जैसे मैं बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो योग करने का समय ही नहीं मिल पाता, तो क्या करें हम ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ऐसे आसन?
0: ये तो सुबह सुबह करके चले जाना, मंडूक आसन आगे झुकने वाला। अब ये योगा प्रोटोकॉल में भी है उष्ट्रासन, ऐसे ये तो बहुत ईजी है। और फिर देखो एक है आगे झुक गए ऐसे, ये शशकासन। तो ये तो सुबह सुबह करके जाना, सुबह सुबह एक बार आप जाने से पहले। अब बच्चों को तो शीर्षासन करना चाहिए, जैसे बच्चे शीर्षासन कर रहे। अब देखो सुबह सुबह यदि ये करके चले गए ना, इससे तो पूरी जिंदगी बन जाती है। ऊपर उठे नीचे आए ऐसे, ये ऐसे। तो देखो घर जाने से कहीं पर भी, ऑफिस में जाने आदि से पहले भुजंगासन करके निकलो। मैं तो कहता हूँ एक भुजंगासन भी कर लेंगे ना, तो देखो हम आपकी तरह हम भी दुबले पतले
1: हैं। तो नहीं है स्वामी जी,
0: लेकिन आपके भी पूजा जी ऐसे ही बना देंगे। ये देखो पूरा शरीर,
1: तो मतलब मैं डेली करके जाऊंगी तो जल्दी बन जाएंगे।
0: सोमवार पूजा का हासिल करना है तो, और अश्वगंधा शतावर थोड़ा खा लेना। और फिर देखो ये बच्चों को इधर देखा तो मैंने देखा ही, मैंने कहा कोई टूट फूट तो नहीं गए। और इधर
1: मुझे रबड़ की तरह है, जहाँ मुड़ है वहाँ मुड़ जाते हैं।
0: देखो ये पावर योग चल रहा है, ऐसे आज का हमारा एक संदेश भी है, पावर योग आपको चाहिए तो भी कर, योगा फॉर यूथ पावर योग। फिर जिनको डायबिटीज है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको ओबिसिटी है, सबके लिए योग। तो और इसके साथ जो आप बोल रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भस्त्रिका कर सकते हैं, ये तो मेन है ना भस्त्रिका। सांस लिया और छोड़ा, कपाल भाति, फिर ये अनुलोम विलोम, बाई से लिया दाई से छोड़ा, दाई से लिया बाई से छोड़ा, ऐसे। फिर ये भ्रामरी, ओम। कभी आपस में गुस्सा ज्यादा हो जाए बोस लोग
1: तो तुरंत आसन कर ले,
0: तो थोड़ा अपने चित्त को, अपने मन को शांत करने के लिए शीत लिए। हाँ ये शीत करिए, और कभी ना खड़े होकर के भी ना, जैसे ये बड़ा अच्छा है, ऐसे कर लिए। तो मैं तो कहूंगा अभी जब भी थोड़ी फुर्सत मिले, कुछ लोग सिगरेट का सुट्टा लगाने निकल जाते हैं। अपने वैसे इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, और उसी से तो सब लाइफस्टाइल डिजीज, तीन ही तरह की तो बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, दोष। फिर जेनेटिक डिजीज, जीन्स में भी चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना रेडिएशन, पोल्यूशन, और चारों तरफ यूरिया, डीएपी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ये सब के कारण से लोगों की जिंदगियां बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो योग से जेनेटिक चेंज आता है, माने योग करेंगे ना तो देखो ये भी कर लेना चाहिए, कंधे खुल जाते हैं। योग से जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, और जिनको इनकेरेबल डिजीज बोला जाता है ना, हम तो लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, ऑटोमेटिक डिजीज, इनको भी ठीक करते हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं पर भी फुर्सत मिली, और ऑफिस में भी बैठ के प्राणायाम तो सबसे हो जाता है, तो सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। हाँ ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, चलो हलासन करो बट, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सबको करना चाहिए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो बच्चों चक्रासन करो, चक्रासन खड़े होकर के करते हैं। अब देखो खड़े होकर के चक्रासन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा,
1: खड़े होकर नहीं होगा, पर बैठ कर मैं कर लूंगा।
0: हाँ आप लेट करके करो, चलो ऐसे, ओ, ऐसे लेट करके। तो अरे पूजा ने भी अच्छा किया भाई, जोरदार अभिनंदन है। हाँ तो जो है
1: स्वामी जी आपसे ही सीखा है योग तो मैंने, आप भी जानते हैं स्वामी जी। इस बार का जो योग का थीम है उस पर क्या कहें, क्योंकि हर बार योग का थीम बदल ही रहा है।
0: योगा फॉर हेल्थ।

0: अब देखो, आप तो हमसे आधे से भी कम उम्र के हो लेकिन हम भी आपसे दुगने उम्र के नहीं लग रहे। इसको कहते हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग धीरे धीरे एजिंग होती है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट। कोई सामान बाजार से लाते तो लिखा रहता है 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में एक्सपायरी हो जाएगी। खाने पीने की चीजों में जल्दी एक्सपायरी होती है, कुछ चीजें थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती है। तो व्यक्ति की भी एजिंग है। व्यक्ति 100 साल तक युवा रह सकता है, 150 साल तक, 200 साल तक जी सकता है। प्राचीन काल में 400 साल तक जिया करते थे। इसके लिए एक तो प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्टचक्र नवद्वार बहत्तर बहत्तर लाख 10,201 नाड़ी, अष्टचक्र नवद्वार देवाराम पुर अयोध्या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, 86 ब्रेन के जो 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स और उनका पूरे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन वो अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग से। हेल्दी एजिंग के लिए डीप ब्रीदिंग, फिर कपाल भाती, फिर अनुलोम विलोम। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम योग करेंगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, मोटापा नहीं होगा, बीपी शुगर नहीं होगा, लिवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाएंगे और उसको बीट कर पाएंगे। हम जीवन में हर समय एक विजयी बनकर के उभरेंगे। तो डिटोरेशन जो बॉडी में होता है एज जो है आयु के साथ, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे, तो उस डिटोरेशन को आप रोक सकते हो एक तो योग से, फिर अपनी दिनचर्या में थोड़ा चेंज करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं पिछले 50 सालों से 1 बार भी बीमार नहीं पड़ा, 1 बार भी कोई दवाई नहीं, 1 बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई न बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न ओबेसिटी, ये तो हमारे पड़ोस में भी नहीं फटकती है। तो ये आप यदि योग करते हैं तो सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज से, जेनेटिक डिजीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। हमने बीपी शुगर थायराइड ऐसे लोगों का रिवर्स किया है, और जो बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो योगा फॉर इम्यूनिटी भी है, योगा फॉर लॉन्जिविटी भी है, योगा फॉर एंटी एजिंग है, योगा फॉर
1: विपक्ष भी है,
0: योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर पक्ष एंड विपक्ष है, योग तो निष्पक्ष है ना। योग दर्शन क्या है, ये योग जो है ना वो आपके पूरे शरीर में एक जो नैसर्गिक व्यवस्था, पूजा जी एक बड़ी बात कह रहा हूं, प्रकृति परमेश्वर ने 99% इस बॉडी को, ब्रेन को, हमारे जीवन को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर बनाया। मनुष्य भगवान की धरती पर अप्रतिम रचना है, और इस पूरी बॉडी की एनर्जी का अलाइनमेंट करने के लिए योग एक तरीका, नहीं तो योग नहीं करेगा ना तो आदमी जो है ना उलट पुलट हो जाता है जिंदगी। और वो इतना कठिन कठिन योग जो बच्चे कर रहे ना, कभी कोई घबरा जाए, रे भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमसे ना हो।
1: खूबसूरत लग रहा है,
0: इधर भी देखिए उधर भी देखिए, संतुलन कितना गजब है। और देखो पीछे तो ये देखो बहन पूजा, एक हाथ पर पूरा संतुलन, ओए राम राम राम राम राम राम,
1: जीवन में भी संतुलन हो जाएगा।
0: ऐसा संतुलन के लिए तो अब इतना ना हो तो अनुलोम विलोम तो हो जाता है। हम हर कार्य को ठीक से प्रामाणिकता से कर सके, यही हमें योग सिखाता है। योग कर्म सुकौशलम, और जहां पर भी रहे वहां संतुलित तो होकर के रहे, बैलेंस। ये जब बैलेंस होता है ना तब आदमी गड्ढमड्ढा,
1: बिल्कुल,
0: तो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे बच्चे देखो कठिन कठिन योग कर रहे हैं,
1: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा,
0: बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। देखो ये बड़े, ये विश्वविद्यालय के बच्चे, पता है विश्वविद्यालय के आचार्य कुलम के बच्चे,
1: स्वामी जी छोटे छोटे बच्चे,
0: ये बेटियों को देखो इधर क्या अजब गजब है। अब भी मेरे पास और छोटी आती है ना तो आपको भी ऐसे ही बना देता पूजा, मैं आपको भी अभी काफी सिखा दिया। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, मैं आज सबसे एक आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सब योग करो, योग का व्रत लो, आयुर्वेद का व्रत लो, स्वदेशी का व्रत लो, अपने जीवन में कुछ ऐसे तत्व अपनाओ, 2 बार खाओ, कम खाओ, गम खाओ, गम को सहलो, सहज रहो। ये जितने भी सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, जितने भी अनहेल्दी चीजें, इनका बहिष्कार करो। इतनी छोटी छोटी कुछ पहल कर लेंगे जीवन में, छोटे छोटे इनिशिएटिव ले लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी।
1: स्वामी जी एक आखिरी सवाल कि वैसे तो विश्व में भी अब योग किया जा रहा है, योग को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है, अब और इसको एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए क्या सोचा है?
0: मेरे चित्त में ये चल रहा है, वैसे तो मैं जन्म जन्मांतरों से जुगन जुगन से हम जोगी हैं, एक कबीर साहब का भजन है, जुगन जुगन हम योगी। तो युगों युगों से योग चला रहा है और मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया योग करेगी और सबसे ज्यादा जरूरत तो ट्रंप साहब को है, सबसे ज्यादा जरूरत तो पुतिन साहब को है, जेलेंस्की जी को है, खामनाई को है। अच्छा, पूरी दुनिया में युद्ध मचा हुआ है, युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। और ये चारों तरफ हिंसा, घृणा, नफरत, मार धार, लूट मार, ये सब क्या चल रहा है? तो योग से युद्ध भी रुकेंगे, योग से लोगों में सच्चरित्रता, पवित्रता आएगी, योग से ही सच्चे अर्थों में जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो योग से ही उभरेंगी। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ पूरी दुनिया में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सब जगह योग होगा,
1: क्योंकि
0: योग से ही उद्योग भी अच्छा होगा और एक दूसरे का योग करें, सहयोग करें, योग के पथ पर चले। और चलाए मैं तो कहता हूँ कम से कम इंटरनेशनल योग डे पर, जैसे क्रिसमस के दिन तो सब लोग चर्च में जाते थे कि भाई आज तो चलो, लोग ईद और जो है रमजान आदि में तो कहते हैं भाई आज तो चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जब कोई गुरु पर्व होता है तो कहते हैं चलो आज तो गुरुद्वारा चलते हैं, जैसे जन्म रामनवमी जन्माष्टमी है तो बोला आज तो चलो मंदिर में चलते, आज तो चलो तिरंगा फहरा लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी है, चलो आज तो योग कर लेते हैं, योग दिवस है। तो शुरुआत तो कहीं से होगी तो फिर धीरे धीरे योग जीवन में समा जाएगा।
1: यही बहुत शुक्रिया,
0: एक बार जरा हास्य आसन करेंगे, ये भी एक योग है, हास्य योग, लाफ्टर योग,
1: ये भी एक योग,
0: हास्य योग और सिंहासन है, दाढ़ो गला थायराइड भी लोगों का गड़बड़ हो रखा है।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पे हमें समय देने के लिए।
2: Pepsi Prebiotic Cola in Original and Cherry Vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: अब अगली खबर का रुख करेंगे, मुंबई में हुई हाई प्रोफाइल शादी की बात करेंगे जिसमें शाहरुख खान बने मेहमान और जमकर उन्होंने धमाल मचाया, रिपोर्ट देखिए।
8: सुपरहिट गानों पर थिरकते दिखे बॉलीवुड के किंग खान, नए हेयर स्टाइल और ब्लैक ड्रेस में शाहरुख ने जमकर मचाया धमाल। वीडियो में शाहरुख अपनी शानदार डांस मूव्स की नुमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये तस्वीरें एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की बेटी की संगीत सेरेमनी की है। इसके एक वीडियो में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी शाहरुख को गले लगाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में रेवती के संगीत और विवाह समारोह में शाहरुख खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और रंग जमा दिया। इस दौरान शाहरुख और सुप्रिया सुले की खास बॉन्डिंग भी देखने को मिली। बताया जाता है कि सुप्रिया सुले शाहरुख खान की बड़ी फैन है, लिहाजा बेटी की शादी में शाहरुख पहुंचे तो सुप्रिया ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया और फिर शाहरुख ने भी शादी से जुड़े समारोह में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको लाजवाब कर दिया। मुंबई में रेवती सुले की हाई प्रोफाइल शादी की रस्में शनिवार 20 जून को संपन्न हुई। सियासत से लेकर बिजनेस और एंटरटेनमेंट सहित हर सेक्टर की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता शादी में शरीक होने पहुंचे। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे भी शादी समारोह में शरीक हुए। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शादी में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर एक तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता सुप्रिया सुले के मेहमान बने। चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या छगन भुजबल और रामदास आठवले, सभी इस शादी समारोह में सियासत की अदावत से दूर सभी के साथ खुले मिले नजर आए। वहीं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर और रणबीर कपूर भी समारोह में नव दंपति को शुभकामना देने पहुंचे। संगीत समारोह से लेकर शादी तक व्यापार जगत की भी जानी मानी हस्तियों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अनुशासित कदम ताल की गूंज और देशभक्ति के तरानों के बीच जमुई के पुलिस लाइन मैदान में नई इबारत लिखी गई। बिहार के अलग अलग जिलों से आई जांबाज बेटियों ने 11 महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और अपने माता पिता का सपना साकार कर दिखाया।
9: आंसू, सलामी, सिसकियां और गर्व की वो गूंज जिसने पूरे बिहार का सीना चौड़ा कर दिया। तस्वीरें जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन मैदान की हैं, जहां भव्य दीक्षांत समारोह परेड में एक साथ 581 बेटियों ने समारोह में शामिल होकर इतिहास रच दिया। इस खाकी वर्दी के पीछे संघर्ष की वो कहानियां हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। मिलिए बक्सर जिले की नीलू कुमारी से। एक साधारण किसान की इस बेटी का सपना खाकी पहनना था और कड़ी मेहनत के दम पर नीलू ने जब परेड के बाद माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गया की सिंधु कुमारी के लिए ये पल दोहरी भावनाओं का था। बड़ी बहन के दौड़ में असफल होने का मलाल तो था, लेकिन खुद सिपाही बनने की खुशी भी। सिंधु जब अपनी माँ मुनकी देवी से गले मिलकर फूट फूट कर रोई और पिता के सिर पर पुलिस की टोपी सजाई तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें छलक आईं। वाकई माता पिता के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है, जब उनकी कोख से जन्मी बेटी पूरे राज्य की रक्षक बन जाए। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: क्या आप प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं? क्या बैंकिंग या कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे हैं? अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी मिलती कैसे है और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: गुवाहाटी में अम्बुबाची मेले की तैयारियां पूरी, 4 दिनों तक कामाख्या मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, पुणे में सीजन की पहली अच्छी बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया, 4 साल बाद जीता खिताब।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को छीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गई। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Fifty states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
6: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
8: Good News Today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
9: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
8: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: At WTU, flexibility is our foundation. With a learning model that lets you set your own schedule, one-on-one mentorship, and flat rate tuition, WGU helps you become a great teacher on your terms. Learn more at wgu.edu.
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
12: Sage University, transforming your passion into profession.
13: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: गुवाहाटी में अम्बुबाची मेले की तैयारियां पूरी, 4 दिनों तक कामाख्या मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है।
1: अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है।
0: फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है।
1: रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सट कर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया।

सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACF मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेडकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे

0: लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया।
0: माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR-LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। माणिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये एक टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 kV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही माणिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
2: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 kN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन माणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है।
1: भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
0: मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
2: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400, आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
2: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहाँ से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम हैं। फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला, दूसरे इलाके में गया, तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटर्मिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
0: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
8: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
1: Asambhav खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा. ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
6: गुवाहाटी में अंबुबाची मेले की तैयारियां पूरी. 4 दिनों तक कामाख्या मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन. अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां. अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल. 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा. महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून. पुणे में सीजन की पहली अच्छी बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत. जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज. गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, घरों से लेकर पेड़ों तक बर्फ की चादर. भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन. FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से दी मात. 4 साल बाद जीता खिताब. पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है. देखिए जून के महीने में जहां आधा हिंदुस्तान सूरज की तपिश से परेशान है, वहीं पर देखिए कश्मीर की वादियों में कुदरत का श्वेत श्रृंगार देखने को मिल रहा है. गुलमर्ग समेत कई इलाकों से ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं. घरों की छतें हों, गाड़ियाँ हों या देवदार की ऊंचे ऊंचे पेड़, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है. अचानक हुई इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट. GNT एक्सप्रेस.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें
6: विमेंस नेशंस कप में भारत की बादशाहत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से रौंद कर रचा इतिहास। नवनीत ने मैच के चौथे ही मिनट में एक जबरदस्त और दमदार स्ट्राइक के साथ गोल करके भारत को दिलाई 1-0 से बढ़त। मैच के 15वें मिनट में सुनीलियता टोपो ने किया कमाल, सुनीलिता टोपो ने किया गोल, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। महिला हॉकी इंडिया टीम पर पैसों की बरसात, हर खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए की नकद इनाम का ऐलान। भारतीय महिला की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, लिखा FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का हो गया चयन, शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस अय्यर उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में विराट और रोहित को भी मिल गई जगह, जसप्रीत बुमराह की वापसी। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाएंगे 5 T20 और 3 वनडे, 1 जुलाई से शुरू होगी T20 मैच। वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 11 बॉल में बनाया अर्धशतक। इंडिया ए और श्रीलंका ए के ट्रायल सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल पर बनाए 94 रन। वैभव ने श्रीलंका के कौशल्य वीरातनी का रिकॉर्ड तोड़ा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर मॉक ड्रिल की, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, IED विस्फोटक, गोलाबारी, आपदा जैसी तमाम स्थितियों को निपटने के लिए पूर्वाभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। श्रद्धालु अब खाटू श्याम दरबार उनके लिए जाना हो गया आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल स्टेशन पर जारी कर दिया डिजाइन, 8 महीने में रेलवे स्टेशन का काम हो जाएगा शुरू। सुंदरपुर में स्टेशन बनने से खाटू श्याम दरबार की दूरी हो जाएगी 11 किलोमीटर, देश भर के लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे एक्टर अनुपम खेर, साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने अनुपम खेर को साईं की प्रतिमा देकर किया सम्मानित। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का भी आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धार्मिक निशानों के साथ लोगों ने देव निशानों का किया स्वागत, भक्तों ने लगाए जयकारे। मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहल, परीक्षार्थियों को ठंडे पानी और गुड़चना से स्वागत किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया। समुद्र में देश की ताकत बढ़ाने वाली शानदार खबर, भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS अग्रय, INS संशोधक, नौसेना में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, INS दूनागिरी बनेगा नेवी की नई स्टेल्थ ताकत, INS संशोधक करेगा समुद्र सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री क्षमता बढ़ेगी। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और मजबूत, GRSE ने INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमीरपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अल्मोड़ा में श्रीमद भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, लोगों को सम्मानित किया। ले पहुंचे LG विनय कुमार सक्सेना, कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण। मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, जयपुर से दरभंगा के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरपुर में प्रत्युष बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। सहरसा की श्वेता और शिवम ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में किया कमाल, श्वेता ने 541 रैंक जबकि शिवम 965 रैंक हासिल किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडे ने बीपीएससी परीक्षा में किया टॉप। हैदराबाद की सड़कों पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, गची बोवली फ्लाईओवर बना ओपन एयर फुटबॉल गैलरी। खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना फुटबॉल का गैलरी, पिलर्स पर देखे दिग्गज के। यश की टॉक्सिक की नई रिलीज डेट अब जारी हो गई है, 4 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सुप्रीम सुले की बेटी रेवती की शादी में बॉलीवुड का जमावड़ा, रणबीर अमिताभ समेत कई सितारे। 25 करोड़ की फी के साथ भारतीय सिनेमा का सबसे महंगे सितारे बन गए रणबीर सिंह, शाहरुख खान रजनीकांत को पछाड़ दिया। फिल्मियों ने भी सेहत का संदेश दिया, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योगासन करते हुए नजर आए अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने योग किया, छोटे बच्चों को भी सिखाया योग। बॉक्स ऑफिस पर रॉ फिल्म कॉकटेल 2 का शानदार प्रदर्शन, लगातार जारी फिल्म ने 2 दिन में 30 करोड़ का आंकड़ा पार किया। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने किया कॉकटेल 2 का रिव्यू, उन्हें खूब पसंद आई फिल्म। और फिल्म 1920 को नए अंदाज मिलाएंगे विक्रम भट्ट, फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने जारी किया 1920 कोल्ड विंटर का फर्स्ट लुक। एक बार फिर से खतरनाक किरदार में नजर आएंगे राघव जोयल, नानी की फिल्म द पैराडाइज के सामने आया राघव जोयल का लुक। साल 2026 की सबसे सफल तमिल फिल्मों में से एक है फिल्म ब्लास्ट, ओटीटी पर देगी दस्तक। दुनिया भर में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया योग, 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। देश भर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संस्कृति मंत्रालय की ओर से 100 प्रमुख जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दुनिया भर में करीब 2,500 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम में आयोजन किया, हेल्दी एजिंग इस साल की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया योग, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में योग किया, जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नवीन। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने योगासन किया, कहा बेहतर जीवन के लिए व्यायाम जरूरी। विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया योग कार्यक्रम में हिस्सा, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लोगों के साथ मिलकर योग किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग किया, कहा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। पटना मुख्यमंत्री योग सम्राट चौधरी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी शामिल हुए। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, कहा योग से स्वस्थ उत्तम रहता है। दिल्ली कैंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ धीरज सेठ ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने देश के अलग अलग कोनों में किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, पेंगोंग झील के किनारे किया योग। जर्मनी में भी योग का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। सऊदी के भारतीय दूतावास पर योग का खुमार, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कोलकाता के जल्दापाड़ा नेशनल पार्क में दिखा अनोखा नजारा, लोगों के साथ हाथियों ने भी किया योग। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हजारों लोगों ने एक साथ योग किया, दिखा अद्भुत नजारा। रक्सौल के भारत नेपाल सीमा के पहचान गेट पर गेट पे नेपाल पर योग का आयोजन किया गया। राजकोट में स्विमिंग पूल के अंदर महिलाओं ने एक्वा योग किया, लोगों से योग की अपील की। आसनसोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, कई मंत्री शामिल हुए। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर चीन के ग्वांगडोंग में रोमांचक रेस हुई, ड्रैगन बोट ड्रिफ्ट का दिखा जबरदस्त जलवा। हुईलाई काउंटी में खास ड्रिफ्ट तकनीक का, पैलेटलर्स खंबा पकड़कर मोड़ देते हैं नाव। दर्शकों ने देखा रोमांचक मोड़ का नजारा, फुशान में डीएसयाओ रेस आकर्षण का मुख्य केंद्र। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल में मिनी जोंगजी बने आकर्षण, चोंकिंग में छोटे जोंगजी भी नजर आए। हाथ से बनाए जाते हैं खास डंपलिंग, रंगीन धागों से सजाए गए जोंगजी। ग्वानवू फेस्टिवल पर चीन के लहासा में खास आयोजन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस। 3600 मीटर की ऊंचाई पर ड्रैगन बोट रेस का रोमांच, 20 टीमों ने याक लेदर बोट रेस में लिया हिस्सा। पारंपरिक नावों में खींचा ध्यान, लोकल संस्कृति का शानदार प्रदर्शन, विजिटर्स के लिए बना फोक कल्चर जोन, एंटेजिबल हेरिटेज जोन रहा आकर्षण का मुख्य केंद्र, जोनसी बनाने का मिला जबरदस्त अनुभव। त्योहार का पारंपरिक रंग देखने को मिला, परंपरा और खेल का अनोखा संगम। ग्वानवू फेस्टिवल पर चीन के फुजियान में 300 साल पुरानी अनोखी परंपरा, शीशी में समुद्र में पानी उछालने की रस्म। 150 से ज्यादा नावों ने हिस्सा लिया, चीन और ताइवान के नाविकों ने हिस्सा लिया। नावों से एक दूसरे पर पानी उछालकर शुभकामनाएं दी जाती हैं, पर्यटकों के लिए अनोखा अनुभव। पानी उछालना बड़ा खुशी का प्रतीक, बत्तख पकड़ने की प्रतियोगिता भी की गई। रंगीन और जीवंत दृश्य ने खींचा सभी का ध्यान। चीन के शांची में ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर वॉटरफॉल में गूंजे ढोल नगाड़े। गोंग और ड्रम की ताल से गूंजा पूरा क्षेत्र, येलो रिवर की लहरों के साथ तालमेल से बनाया नजारा। प्राकृतिक झरने के साथ संगीत का मेल, पर्यटकों ने लिया लाइव परफॉर्मेंस का आनंद। देवोर में देखा नन्हा पांडा, रियो बना लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र। बोगोर में रियो के देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, माता पिता भी देखने के लिए पहुंचे। चीनी शेनजो 23 मिशन के तीनों क्रू ने गट माइक्रोबायोट और मेटाबॉलिज्म पर किया अध्ययन। माइक्रोग्रेविटी में विजुअल प्रोसेसिंग पर भी हुई रिसर्च, फ्लूइड और टू फेस एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पर भी चर्चा हुई। चीन इंटरनेशनल कार्टून एंड एनिमेशन फेस्टिवल में बड़े अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। हांगझोउ में एनिमेशन जगत का जमावड़ा, द लेजेंड ऑफ हे टू ने फीचर फिल्म कैटेगरी में जीता अवार्ड। ट्यूरिंग अवार्ड विजेता वेटफील्ड डिफी ने एआई सुरक्षा पर जताई चिंता। ह्यूस्टन में देखा नारंगी रंग का सैलाब, डच फैंस ने शहर की सड़कों पर जमाया रंग। नेदरलैंड्स के समर्थकों का जबरदस्त उत्साह, गाने नाच और जश्न से गूंजा माहौल, सड़कों पर बना मिनी फेस्टिवल जैसा माहौल। तरफ नारंगी झंडी और टी शर्ट, फैंस ने मिलकर किया जोरदार मार्च, खुशी में झूमते हुए नजर आए। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल प्राइड परेड में उमड़ा रंगों का सैलाब, सड़कों पर जश्न। झांकियों ने दर्शकों को आकर्षित किया, लोगों ने नाच गाकर कैपिटल प्राइड परेड का स्वागत भी किया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th.
8: This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
9: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
2: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई में हुई हाई प्रोफाइल शादी की बात करेंगे, जिसमें शाहरुख खान बने मेहमान और जमकर उन्होंने धमाल मचाया। रिपोर्ट देखिए।
11: सुपरहिट गानों पर थिरकते दिखे बॉलीवुड के किंग खान। नए हेयर स्टाइल और ब्लैक ड्रेस में शाहरुख ने जमकर मचाया धमाल। वीडियो में शाहरुख अपनी शानदार डांस मूव्स की नुमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये तस्वीरें एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की बेटी की संगीत सेरेमनी की है। इसके एक वीडियो में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी शाहरुख को गले लगाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में रेवती के संगीत और विवाह समारोह में शाहरुख खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और रंग जमा दिया। इस दौरान शाहरुख और सुप्रिया सुले की खास बॉन्डिंग भी देखने को मिली। बताया जाता है कि सुप्रिया सुले शाहरुख खान की बड़ी फैन है, लिहाजा बेटी की शादी में शाहरुख पहुंचे तो सुप्रिया ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया और फिर शाहरुख ने भी शादी से जुड़े समारोह में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको लाजवाब कर दिया। मुंबई में रेवती सुले की हाई प्रोफाइल शादी की रस्में शनिवार 20 जून को संपन्न हुई। सियासत से लेकर बिजनेस और एंटरटेनमेंट सहित हर सेक्टर की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता शादी में शरीक होने पहुंचे। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे भी शादी समारोह में शरीक हुए। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शादी में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर एक तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता सुप्रिया सुले के मेहमान बने, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या छगन भुजबल और रामदास आठवले, सभी इस शादी समारोह में सियासत की अदावत से दूर सभी के साथ खुले मिले नजर आए। वहीं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर और रणबीर कपूर भी समारोह में नव दंपति को शुभकामना देने पहुँचे। संगीत समारोह से लेकर शादी तक व्यापार जगत की भी जानी मानी हस्तियों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
13: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
14: What about me, Jack? What about me?
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
15: Well played, Jack. Well played.
13: Jack FM, playing what we want.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: Sage University, transforming your passion into profession.
18: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: गुवाहाटी में अंबुबाची मेले की तैयारियां पूरी, 4 दिनों तक कामाख्या मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, पुणे में सीजन की पहली अच्छी बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, घरों से लेकर पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया, 4 साल बाद जीता खिताब।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, एक अच्छी नौकरी पाने की चाहत हर किसी की होती है। कोई आईटी के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग, कोई मीडिया के क्षेत्र में, तो कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के क्या है सरल उपाय, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: जी, अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में लगातार समस्या रहती हो, अगर पिता की सेहत अच्छी ना रहती हो, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान की उपासना करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए और हर रविवार को गेहूं के आटे का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। अगर आप निरंतर ये उपाय करें तो आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, वो कौन से ग्रह हैं जिसके वजह से किसी को नौकरी मिलती है और कौन से क्षेत्र में मिलती है, क्या वो भी कुंडली देखकर पता किया जा सकता है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने की स्थितियां क्या होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को नौकरी दिलवाते हैं, कौन से ग्रह मुख्य रूप से नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली हो दुनिया की, उसमें नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, और शनि के बाद नौकरी दिलवाने में जो भूमिका आती है वो आती है सूर्य, बुध, राहु और केतु की। कुंडली का जो छठवां भाव होता है ये नौकरी का होता है, नौकरी से संबंध रखता है, और ग्यारहवां भाव, बारहवां भाव ये भी नौकरी में भूमिका निभाता है, कभी कभी दूसरे भाव की भूमिका भी होती है। नौकरी पाने का रास्ता क्या होगा, किस तरह की नौकरी करेंगे, इसके लिए कुंडली के ग्यारहवें और दूसरे भाव को देखना जरूरी है। जो नौकरी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र, एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके अलग अलग ग्रह होते हैं, तो जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है पहले ये समझना होगा और उस महत्वपूर्ण ग्रह को मजबूत करके आप उस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उसके ग्रहों को प्रबल करके, उसके ग्रहों को मजबूत करके आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं?
1: जी देखिए, बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं। कौन सा उपाय किया जाए जिससे प्रशासनिक सेवा में जाने में सफलता मिले? देखिए, प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल। इन दोनों की भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ज्यादा होती है। कभी कभी इनके अंदर चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है, यानी आपको प्रशासनिक नौकरी सूर्य, चंद्र और मंगल दिला सकते हैं। अगर आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलने में अड़चन आ रही है, तो इस तरह की नौकरी के लिए सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य की उपासना शुभ रहेगी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो प्रशासनिक सेवा प्राप्त करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
0: तो देखिए, एडुकेशन के सेक्टर में भी बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, टीचर्स होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए क्या कुछ करें, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: जी देखिए, बहुत सारे लोग एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिक्षा क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं या शिक्षा क्षेत्र का जो करियर होता है, उसमें भूमिका होती है गुरु, शुक्र और बुध की। अगर आप एजुकेशन फील्ड में सफलता चाहते हैं, तो आपको गुरु, शुक्र और बुध की जरूरत पड़ेगी। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिएगा। नित्य प्रातः 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करिए तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, बेवजह का मेंटल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, मानसिक अवसाद का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, आने वाला समय बहुत अच्छा है इसलिए बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,

0: भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है और रूपाली हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1981। जन्म का समय शाम के 7:45। जन्म स्थान है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, मैं अभी एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ और नौकरी में सफलता नहीं मिलती, कोई तरक्की नहीं होती, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। रूपाली आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए। अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और नौकरी में बदलाव के बाद आप ज्यादा तरक्की करेंगी। वैसे कुल मिलाकर मार्च 2027 के बाद आपका जीवन बेहतर दिख रहा है। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर अपने सवाल लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो पंडित जी आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1980। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। हेमंत जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से टेक्निकल फील्ड में नौकरी कर रहा हूं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार में जा सकता हूं? क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? और दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि मुझे संपत्ति का लाभ कब तक होगा? हेमंत जी आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी छोड़ करके पूरी तरह व्यापार में जा सकते हैं। जून 2026 के बाद ऐसा करना आपके लिए ठीक होगा और मुख्यतः आगे चल करके आपको व्यापार में बेहतर सफलता मिलेगी। बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान इसी साल खरीदेंगे आप, नवंबर 2026 के पहले, और वो खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको व्यापार में सफलता मिले, आपका करियर बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तकनीकी क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: जी बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी पाने का प्रयास

0: करते हैं। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, टेक्निकल फील्ड की जो नौकरियां होती हैं उस पर ज्यादा असर होता है शनि, मंगल और राहु का। टेक्निकल फील्ड की नौकरियों में शनि, मंगल और राहु की भूमिका होती है। और मुख्यतः अगर आप शनि को प्रबल करें, मुख्यतः अगर आप शनि को बेहतर करें तो टेक्निकल फील्ड में नौकरी पा सकेंगे। टेक्निकल फील्ड में नौकरी पाने के लिए शनि मंत्र का जप करिए रोज शाम को 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करिए और इसे हमेशा पहने रखिए। अगर ये उपाय लगभग 3 महीने तक आप करें तो टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका नौकरी पाना आसान होगा।
1: तो देखिए, आजकल अमूमन लोग कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी देखिए, आज के जमाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड है और इसमें लोग कॉरपोरेट के सेक्टर में नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, ऐसी नौकरी बिजनेस ग्रुप्स में करते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में करते हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कॉरपोरेट सेक्टर की कोई भी नौकरी हो, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इसमें सफलता पाने का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी। कॉरपोरेट सेक्टर का जो मुख्य ग्रह है वो बुध है और कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब कॉरपोरेट में बैंकिंग आ जाती है, फाइनेंस आ जाता है, तो इसमें बृहस्पति की भूमिका भी आ जाती है। अगर आप कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो एक पन्ना या एक पीला पुखराज ये आपको धारण करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आप निरंतर ऐसा करें, कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी आसानी से पाएंगे और नौकरी आसानी से चलती रहेगी।
1: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें, परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी कमिटमेंट मत करिएगा, कोई वादा करने से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो पंडित जी, अब सबसे जरूरी सवाल, वो लोग जो कि मीडिया के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को दूर से बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत फ्लैम्बॉयंट लगता है, खैर अगर इस क्षेत्र में कोई नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए क्या अचूक उपाय किए जा सकते हैं?
0: जी, बहुत सारे लोग मीडिया में नौकरी करना चाहते हैं, फिल्म की कंपनियों में, ग्लैमर वर्ल्ड में, कॉस्मेटिक्स आदि के फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मीडिया, फिल्म और ग्लैमर का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से बुध और शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुध और शुक्र की भूमिका होती है। कभी कभी मीडिया वर्ल्ड में या ग्लैमर वर्ल्ड में बृहस्पति की भूमिका भी हो जाती है। अगर आप मीडिया में, फिल्म में, ग्लैमर वर्ल्ड में नौकरी चाहते हैं या सफलता चाहते हैं तो आपको शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। इसके लिए सलाह लेकर एक ओपल और साथ में एक पन्ना, ये दोनों धारण करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति भगवान शिव की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। मीडिया वर्ल्ड में दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक, जो लोग स्क्रीन पर दिखते हैं वहां शुक्र की भूमिका जरूर होती है या राहु केतु की होती है, और जो लोग लिखते हैं, जिनका लिखना बहुत अच्छा होता है, राइटिंग वाले पार्ट पे होते हैं, वहां होती है बुध की भूमिका। और जो लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बढ़िया काम करते हैं वहां बुध और गुरु, इन दोनों की भूमिका पाई जाती है।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: जी, मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न मोहन कुमार जी ने हमें लिखा है और मोहन कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 मई 1973। जन्म का समय है सुबह के 8:40। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। मोहन जी लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में काफी समय से सेटल हो गया हूं और जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन मैं वापस जयपुर जाना चाहता हूं, अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहता हूं। क्या ऐसा करने का निर्णय मेरे लिए ठीक रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मोहन जी, देखिए, जयपुर से संबंध बनाए रखिए, आपका नेटिव प्लेस है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जयपुर में जाकर के सेटल होना आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। ऐसा करने का प्रयास मत करिए। दिल्ली में अच्छा भला जीवन चल रहा है, बेवजह झंझट पैदा मत करिए। जयपुर आते जाते रहिए, लोगों के संपर्क में बने रहिए, लेकिन दिल्ली में रहना आपके लिए हर लिहाज से बेहतर है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी। अगला प्रश्न हमें अंजलि ने लिखा है और अंजलि हमें मुंबई से मेल लिखती है। 3 अक्टूबर 1989 का जन्म है। जन्म का समय है 9:21। जन्म स्थान है मुंबई। अंजलि कह रही हैं कि मेरी एक शादी हुई थी पहले और वो शादी टूट चुकी है, क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकेगा? और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो क्या मेरा बच्चा भी उस विवाह में शामिल रहेगा, उसको मेरी दूसरी शादी में अडॉप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और मेरा भविष्य कैसा है? अंजलि, देखिए, मैं आपको दूसरी शादी करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरा विवाह भी इसमें सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं दूसरी शादी की सलाह नहीं दे सकता आपको। हाँ, ये जरूर है कि कोई मित्रता, कोई कंपेनियनशिप आपके जीवन में रह सकती है, कोई मित्र आपके बन सकते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ बने रहे। तो जब दूसरी शादी नहीं होगी तो बेटी के अडॉप्टेबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस करिए, और आने वाले समय में आप अच्छा काम कर पाएंगी, स्वयं का बेटी का जीवन बढ़िया बना पाएंगी, जीवन में ज्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: आप सभी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी और इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ है और सूर्य की वजह से जीवन में समस्या आ रही है तो किसकी पूजा करें। सूर्य के लिए दो तरीके से उपासना की जा सकती है, या तो सूर्य देव की ही पूजा करिए नियमों के साथ, या फिर ऐसी स्थिति में सूर्य की समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना उत्तम रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं शुभ पहर आखिर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का दान करें और किस ग्रह का दान ना करें। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको शुक्र और बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए, लेकिन मीन राशि वालों को चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप नृत्य संगीत के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, संभव हो तो सूर्य देव के सामने बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए या जल चढ़ाने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। सफेद रंग के नटराज की मूर्ति ले आइए या सफेद रंग के नटराज का चित्र लगाइए, रोज सुबह शाम उनकी पूजा करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है और इसका जो इस जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है, और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है। एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉम हॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार, यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब, यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है, तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है।

0: एक और कर लेता। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे एलआर एलएसीएम को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 केवी का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है।
2: ये मिसाइल 2000 से 5000 किलो

0: मीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
1: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VPs को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
1: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहाँ से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है। फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया, फ्लाइट उसने बदला, दूसरे इलाके में गया, तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
0: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और इंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्राइम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि टियर 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बराक 8 मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि टियर 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए, बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बसावट शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी। तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, that Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Good news today isliye acha lagta hai, iske andar na उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चिवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को ये पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहीं। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार आरसीबी को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि सांगली के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि सांगली में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Fifty states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, देखिए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया। योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योगासनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योगा अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योगा अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योगासन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। दो हजार 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका भी एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रणक्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रणक्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिपकर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना के युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर

0: या जीपीएस के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी आरएफ सीकर और आईएनएस सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
1: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जीपीएस है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे एलआर एलएसीएम को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 केवी का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
1: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
0: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी के एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को

0: किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
1: मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
2: मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम 2 मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
2: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है। फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया, फ्लाइट उसने बदला, दूसरे इलाके में गया, तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है।
0: मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक 2 स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्ट्री पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science and space to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बसावट शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी। तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थीं, तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते, तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पप्पा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चिवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गई। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफकोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: वो खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, देखिए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया।
3: योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योगासन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। ये 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़ कर की 100 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American Independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
9: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
10: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
9: Smartless.
11: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
9: Marketplace.
12: Big three on the program today, or, you know, the big three of
9: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सवलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है, इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू, जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एवॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही, जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है।
1: अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है।
0: फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एवॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एवॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है।
1: रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है।

0: मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVAIC या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
1: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भय मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भय मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR-LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 kV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
1: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 kN के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
0: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के NPO सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है, यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत की हवाई सुरक्षा

0: कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है, यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है।
1: भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी के एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
0: मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
2: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
2: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
0: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है।
1: मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्राइम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रणक्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बसावट शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पप्पा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून। And all the doctors had told that, you know, 6 months se pehle to you won't be able to play. But all the NCS staff, BCCI staff were really helpful. And unhone sabne bola ki, no, we'll try and make it that aap World Cup khel pao. So I remember wo 5 months, I was just thinking about 22nd June. And, you know, I want to go out and perform. So for that 5 months, I've just dreamed of that day. And, you know, jab wo score kiya and women of the match jab main lene gayi thi, tab it was like, ये ड्रीम मैंने 5 months से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वाज रियली वाचिंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थामकर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवद गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवद गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गई। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवद गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: वो खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देखिए, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोग को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया।
3: योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योग आसन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। yeah. 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई। और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़टुडे।
6: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका भी एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रणक्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रणक्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिपकर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना के युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी

0: ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
1: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
1: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
0: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के NPO सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की।

0: जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है, यानी एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। यह मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
1: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम 2 मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
1: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया, फ्लाइट उसने बदला, दूसरे इलाके में गया, तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
0: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak-8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को ये पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून and all the doctors had told that 6 months se pehle to you won't be able to play, but all the NCS staff, BCCI staff were really helpful and unhone sabne bola ki no we'll try and make it that aap world cup khel pao. So I remember wo 5 months I was just thinking about 22nd June and you know I want to go out and perform. So for that 5 months I've just dreamed of that day and you know jab wo score kiya and women of the match jab main lene gayi thi tab it was like ये ड्रीम मैंने 5 months से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वाज रियली वाचिंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: States, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: वो खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देखिए, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योगाभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया।
3: योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुक पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योगासन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। ये 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रॉयडर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है, इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका भी एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू, जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही, जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फॉल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सट कर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LACM को भारत की अपनी टॉम हॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना एक इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। यह मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVIC या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी माणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। माणिक स्मॉल

0: को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानिक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
1: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
2: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है।
2: भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
0: मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
1: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
0: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण

0: होता है एंगेजमेंट यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
1: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब ये है कि वो स्पीड।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी आस्था का एक भव्य रूप पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिला, जहां पर आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और 3 दिवसीय भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 19 जून से शुरू हुए इस महाधार्मिक अनुष्ठान में न सिर्फ स्थानीय लोग शामिल हुए बल्कि देश के कोने कोने से प्रवासी उत्तराखंडी अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।

0: जय कंडोलिया ठाकुर के जयकारों से गूंजती पौड़ी की वादियां और भक्ति के रस में सराबोर हजारों श्रद्धालु। मौका है पौड़ी के रक्षक माने जाने वाले और आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक 3 दिवसीय पूजन का। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु की अगाध आस्था देखने को मिलती है। कंडोलिया ठाकुर का यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उत्सव के पहले दिन की शुरुआत बेहद पारंपरिक ढंग से होती है। आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर लाया जाता है, जहां श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। दूसरे दिन पूरा मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति के सागर में डूबा रहता है। भव्य भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है और कंडोलिया ठाकुर का गुणगान करती है।
1: लंबे समय अरसे की बात है, जब बस आवत शुरू हो रही थी तो उस दौरान में काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहाँ पर स्थापित किया गया।
2: हाँ, ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसको आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं।
0: उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन विशेष हवन पूजन के साथ शुरू होता है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है विशाल भंडारा, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति और स्थानीय कारोबारी 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। कहते हैं कि पहाड़ों की संस्कृति और वहाँ के देवी देवता ही उत्तराखंड की असली आत्मा है और कंडोलिया ठाकुर का ये मेला इस बात का प्रमाण है। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी गढ़वाल, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देश भर में हुए नीट री एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि, छात्र बोले बहुत कठिन नहीं था पेपर, 3.25 घंटे चली परीक्षा। भारत की बेटियां बनी विश्व चैंपियन, FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से मात दी, 4 साल बाद जीता खिताब। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दिया संदेश।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन